100.7 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी के एफएम प्रसारण सेवा का लखनऊ केंद्र है। आज दिन शनिवार, वैशाख मास की 26वीं तिथि, शक संवत 1948, तदनुसार 16 मई सन 2026 है। प्रातः के 5:56 हुए हैं। अब हमारी आज की सभा आरंभ होती है।

नव ऊर्जा, नव सृष्टि सृजन, नव हो उमंग, पवित्र हो मन। नित्य नव दिवस का शुभारंभ भक्ति भाव की पुष्पांजलि।

सुमंगल सुप्रभात, नमस्कार। 100.7 FM रेनबो के सभी श्रोताओं का आज की इस पावन सुबह में हार्दिक अभिनंदन है। जैसे सूर्य का प्रकाश निरंतर संसार को आलोकित करता है, वैसे ही हमारा मन हर क्षण ईश्वर से जुड़ा रहता है। और जब मन में शुभ विचार और मुख पर प्रभु का नाम हो तो पूरा दिन अपने आप ही मंगलमय बन जाता है। आज वट सावित्री पूजा का ये पावन दिन भी हमें याद दिलाता है कि सच्ची साधना और समर्पण का भाव हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। तो आज इसी विश्वास, शक्ति और श्रद्धा भाव के साथ आज के कार्यक्रम पुष्पांजलि का श्री गणेश करते हैं। मैं हूं आपकी साथी आयुषी। तो आइए प्रथम पुष्प अर्पित करते हैं विघ्नहर्ता मंगल मूर्ति श्री गणेश की वंदना में।

नीलकंठ महादेव जिनकी जटाओं के विस्तार में आदिशक्ति गंगा का वेग समाया है और जिनके मस्तक से ही इस धरा को मुक्ति की शीतल धारा मिली है। शांत कैलाश के स्वामी महादेव की करुणा मात्र से ही जीवन का हर संताप धुल जाता है।

काल के भी काल महाकाल, जिनके मस्तक पर चंद्रमा की शीतलता है और जिनके डमरू की नाद ही सृष्टि का संगीत है। तो चलिए मृत्युंजय शिव के चरणों में हम मिलकर शांति की प्रार्थना करते हैं।

मन में शिव, हृदय में राम, सकल गुण निधान और मर्यादा के साक्षात विग्रह प्रभु श्री राम, जिनका शांत मुखमंडल और हाथ में सुशोभित कोदंड धनुष अधर्म के विनाश का प्रतीक है, जो राजा होकर भी तपस्वी की भांति धर्म की रक्षा हेतु वनों में विचरे, उन्हीं रघुकुल शिरोमणि की चरणों में वंदना करते हैं।

अंजनि पुत्र और राम के परम दूत, जिनके रोम रोम में भक्ति का वास है और जिनकी अटूट शक्ति के आगे पर्वत भी शीश झुकाते हैं,

ज्ञान और गुणों के सागर, जिनका मुखमंडल बाल सूर्य की आभा से दमकता है और जिनकी कृपा बुद्धि और बल का अनोखा संगम कराती है। बजरंगबली की यही जागृत ऊर्जा हमें अजय होने का साहस देती है।

ने क्या स्वरूप है और जिनकी कृपा ही इस जीवन का अंतिम सत्य है। हरि का सानिध्य उस अमृत धारा के समान है जिसकी लय में ढलते ही जीवन का हर संघर्ष एक उत्सव बन जाता है।

अब पुष्पांजलि कार्यक्रम को यही विराम देने का समय है। इन भक्ति भरे स्वरों की मधुरता आपके साथ बनी रहे, माँ अम्बे की कृपा आपके साथ बनी रहे, इसी कामना के साथ मुझे यानी अपनी साथी आयुषी को पुष्पांजलि से अनुमति दीजिए। पर आप कहीं मत जाइए, क्योंकि 100.7 FM रेनबो पर शुरू की ये यात्रा निरंतर चलती रहेगी। न्यूज ब्रेक के उस पार सदाबहार गीतों के नगमे लेकर मैं आयुषी फिर जुड़ूंगी आपके साथ। अभी महिमावान अंबे का स्मरण करते हैं और पुष्पांजलि से आपकी साथी आयुषी अनुमति लेती है।

वैसे सही बात है, जब हम अपने काम में गुम हो जाते हैं, छू मंतर हो जाते हैं, यानी कि इतनी शिद्दत से काम करते हैं तो टाइम का पता ही नहीं चलता, और तभी सक्सेस हाथ आती है। जैसे कि मेलोडियस वॉइस ऑफ आर सिनेमा भारत रत्न लता मंगेशकर जी का कहना है, सच्ची सफलता आपके काम को प्यार करने में ही है। वैसे दोस्तों, जब हम किसी चीज़ को प्यार करते हैं तो उसे पूरी लगन और मेहनत से ताउम्र निभाते भी हैं। तो अपने काम में वही कमिटमेंट दिखाइए, वादा कीजिए अपने आप से कि हर काम को पूरी लगन और मेहनत के साथ करेंगे, जैसा कि लता जी करती थी, अपने काम से प्यार, अपने संगीत से प्यार।

सोशल मीडिया की दास्तां बताने भी हम हाजिर हो चुके हैं सोशल मीडिया न्यूज लेकर। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने एक्स हैंडल पर लोगों को डिहाइड्रेशन के प्रति जागरूक करते हुए कहा है कि ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं, चाहे प्यास ना भी हो। घर से बाहर जाते टाइम पानी की बॉटल साथ रखें और अपने पानी की बॉडी में बिल्कुल भी कमी ना होने दें। पता लगने पर अपने डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें और इसको पता लगाने के लिए आप घर पर अपना यूरिन का कलर चेक कर सकते हैं। नदन रेलवेज ने फेसबुक पर जानकारी दी है कि मिशन लाइफ के तहत अयोध्या धाम जंक्शन पर सभी ऑफिसर्स और कर्मचारियों ने पर्यावरण सुरक्षा और सभी यात्रियों को ग्रीन लाइफस्टाइल अपनाने के लिए प्रेरित करने की शपथ ली है। पर्यावरण के साथ खड़े रहना ही हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है, ये है इनका ध्येय वाक्य। और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने सोशल मीडिया के जरिए बताया है कि स्कूल प्रबंधन समिति SMC ने 2026 सेशन के लिए शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए कई कदम उठाए हैं, जो कि NEP 2020 के दृष्टिकोण के अनुरूप हर बच्चे के लिए बेहतर शिक्षा और शिक्षण वातावरण तैयार करने में सक्रिय भागीदारी निभाएगा। तो चलिए हम भी गुड मॉर्निंग कानपुर प्रोग्राम में एक अपनी अहम भागीदारी निभाते हैं। जी हाँ, हमारे गुड मॉर्निंग कानपुर प्रोग्राम में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अब वक्त है एक बढ़िया से ब्यूटीफुल से सॉन्ग का। तो चलिए एंजॉय कीजिए, गुड मॉर्निंग कानपुर प्रोग्राम में वृंदा है आप सभी के साथ।

धुंधली यादों में आपकी आज की जो तारीख है उसमें क्या है खास, चलिए पलटते हैं इतिहास का पन्ना और डालते हैं एक नजर अतीत के आईने में। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2017 में शांति, सहिष्णुता, समावेश, समझ और एकजुटता को बढ़ावा देने के लिए हर साल 16 मई यानी आज के दिन को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे फॉर लिविंग टुगेदर इन पीस। भौतिक विज्ञानी थियोडोर मेमन ने 1960 में लेजर का पहला संचालन 16 मई यानी आज ही के दिन किया था और इसी दिन को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस के रूप में दुनिया भर में मनाया जाता है। भारत में 2010 से हर साल आज के दिन मनाया जाता है राष्ट्रीय डेंगू दिवस, ताकि लोगों को एडीज मच्छरों द्वारा प्रसारित होने वाले डेंगू वायरस के प्रसार को रोकने और कम करने के बारे में जागरूक किया जा सके। और इस साल यानी कि 2026 की थीम है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन फॉर डेंगू कंट्रोल, चेक, क्लीन एंड कवर। सोलह मई 1975 के उस ऐतिहासिक दिन की याद दिलाता है जब सिक्किम आधिकारिक तौर पर भारतीय संघ का 22वां राज्य बना और राजशाही से लोकतांत्रिक राज्य में परिवर्तित हुआ। जी हाँ, इस दिन को हम सिक्किम राज्य स्थापना दिवस के रूप में भी मनाते हैं। साथ ही आपको बता दें कि दुनिया का सबसे बड़ा ओवरहेड वाटर टैंक तल्लाह वाटर टैंक कलकत्ता में 1911 को बना था आज ही के दिन। और साथ ही भारत और ब्रिटेन के बीच अंतर्राष्ट्रीय टेलेक्स सेवा की शुरुआत 1960 में आज के दिन हुई थी और अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत के 10वें प्रधानमंत्री के रूप में आज ही के दिन शपथ ली थी। आज होती है जन्म जयंती मंगलेश डबराल, जो हिंदी की आधुनिक कविता के सम्माननीय और शीर्ष रचनाकारों में से एक हैं। साथ ही गुलशेर खां शानी, जाने माने साहित्यकार, और कर्मशी जेठा भाई सुमैया, एक एजुकेटर यानी कि एक शिक्षाविद हैं, उनकी भी आज होती है जन्म जयंती। भारतीय सेना के जाबांज सैनिक कर्नल धर्मवीर सिंह की पुण्यतिथि आज ही के दिन होती है। और साथ ही उड़िया भाषा के जाने माने साहित्यकार गोपाल चंद्र पहराज को भी आज ही के दिन हम याद कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग कानपुर प्रोग्राम आप एंजॉय कर रहे हैं ओनली ऑन 102.2 FM रेनबो कानपुर।

जन्नत फिल्म का ये गाना अभी जो आपने एंजॉय किया गुड मॉर्निंग कानपुर प्रोग्राम में, वैसे जन्नत फिल्म के गाने को तो आपने एंजॉय किया और जितना खूबसूरत ये गाना था उतनी ही उम्दा है इस फिल्म की लीड रोल एक्ट्रेस सोनल चौहान। जी हाँ, आज है सोनल चौहान का हैप्पी वाला बर्थडे। सोनल चौहान के साथ बर्थडे शेयर कर रहे हैं हिंदी फिल्म डायरेक्टर धर्मेश दर्शन और हिंदी और पंजाबी एक्ट्रेस कुलराज रंधावा। वैसे सेलिब्रेशन का नाम सुनकर हाउस द जोश। एनीवेज गाइस, इस लिस्ट में अभी एक जाना पहचाना नाम और बाकी है जो आज सेलिब्रेट करने वाले हैं हैप्पी हैप्पी बर्थडे। ही इज नन अदर देन साडा पंजाबी मुंडा विकी कौशल। एक नेशनल फिल्म अवार्ड और 3 फिल्म फेयर अवार्ड्स के साथ 2019 में फोर्ब्स इंडिया 100 सेलिब्रिटी लिस्ट

0: हमारे इन सारे सेलिब्रिटीज को और आज जो हमारे लिसनर्स अपना स्पेशल डे सेलिब्रेट करने वाले हैं उन सभी को एफएम रेनबो फैमिली की ओर से हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिए एफएम रेनबो कानपुर।
1: मेहरबान कदरदान बच्चे बूढ़े और जवान, 100 बात की एक बात है सही, सिर्फ पैसे भेजने के लिए QR स्कैन करते हैं या पिन डालते हैं, पैसे मिलने के लिए नहीं।
2: RBI कहता है QR कोड स्कैन करते समय या पिन डालते समय थोड़ा ध्यान से।

नमस्ते कानपुर, मैं हूं मनोज मुंतशिर शुक्ला और आप सुन रहे हैं 102.2 FM रेनबो कानपुर, कानपुर शहर की म्यूजिकल हार्टबीट।

वैसे हमारे लिसनर्स हमारे साथ हैं तो हमें फिर और क्या चाहिए, ये साथ 90 वर्षों का है और होप सालों साल तक हमारा साथ यूं ही बना रहेगा। गुड मॉर्निंग कानपुर प्रोग्राम में बढ़ते हैं आगे और रूबरू करवाते हैं आपको देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों से। आज राष्ट्रीय डेंगू दिवस पर देश भर में डेंगू जन जागरूकता के लिए प्रचार रथ रवाना किए जा रहे हैं, जो देखें साफ करें ढकें डेंगू को हराने के उपाय करें का संदेश फैलाएंगे। साथ ही सामुदायिक स्वच्छता रैली, स्कूलों में जागरूकता सत्र, जगह जगह वर्कशॉप आयोजित किए जा रहे हैं और इस साल की थीम है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन फॉर डेंगू कंट्रोल, चेक क्लीन एंड कवर। आज अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस पर IIT हैदराबाद में फोटोनिक्स 2026 का आयोजन किया जा रहा है और इसमें पैनल चर्चा और साथ ही साथ नेटवर्किंग सेशंस भी शामिल होंगे। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग आज सिक्किम राज्य के 91वें स्थापना दिवस पर विशेष संबोधन करेंगे। आज से दिल्ली सरकार ने मेरा भारत मेरा योगदान कैंपेन शुरू कर दिया है और इसमें सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए 2 दिन का वर्क फ्रॉम होम, सभी ऑफिसर्स के लिए हर मंडे मेट्रो डे, रेसिडेंट्स के लिए नो व्हीकल डे वंस अ वीक जैसे नियम लागू किए गए हैं। कल माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली से रवाना होकर UAE पहुंचे, जहां उन्होंने UAE प्रेसिडेंट HH शेख मोहम्मद बिन जायेद अल नयान से की मुलाकात, द्विपक्षीय संबंधों और ऊर्जा सहयोग पर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय 5 देशों की यात्रा पर हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा को मिला नया स्पीकर, भाजपा विधायक रथींद्र बोस बने आजादी के बाद

कर बनने वाले पहले विधायक। देश में पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के बड़े दाम। पेट्रोल डीजल के दाम 3 रुपये प्रति लीटर बढ़े और साथ ही साथ 2 रुपये प्रति लीटर बढ़े हैं सीएनजी के दाम। नीट पेपर लीक को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बड़ा बयान। कहा, छात्रों की परीक्षा फीस की जाएगी वापस और साथ ही 21 जून को वापस से होगी नीट परीक्षा। 14 जून को जारी होंगे एडमिट कार्ड्स। दो हजार 26-27 के लिए इनकम टैक्स फाइलिंग प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आयकर विभाग ने जारी की ITR 1 और ITR 4 के लिए यूटिलिटी। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में मंच पर ईरान विदेश मंत्रियों द्वारा भारत की सक्रिय भूमिका और प्रयासों की सराहना की गई। इस साल केरलम में 6 दिन पहले पहुंचेगा मॉनसून। दक्षिण पश्चिम मॉनसून का आगमन 26 मई को होने की है संभावना। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में स्वच्छ और आधुनिक परिवहन की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। पहली बार दिल्ली की सड़कों पर हाइड्रोजन गैस से चलने वाली बसों का संचालन शुरू हो गया है। और साथ ही आपको बता दें कि गंगा एक्सप्रेस वे पर पेट्रोल और ईवी चार्जिंग की सुविधा शुरू कर दी गई है। गुड मॉर्निंग कानपुर प्रोग्राम आप एंजॉय कर रहे हैं वृंदा के साथ।

नमस्कार, मैं हूं सिंगर अभय जोधपुरकर एंड यू आर लिसनिंग टू 102.2 FM रेनबो कानपुर। सुनते रहिए और म्यूजिकली बने रहिए FM रेनबो कानपुर के साथ। थैंक यू।

म्यूजिकली कनेक्टेड हैं आप एफएम रेनबो कानपुर के साथ और इस टाइम एंजॉय कर रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कानपुर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की ओर और आपको बताते हैं हमारे कानपुर शहर से जुड़ी कुछ खास अपडेट्स। केस्को स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं की समस्याओं के लिए शहर भर में मेगा कैंप आयोजित किया जा रहा है। 15 मई से 23 मई तक चलने वाला ये कैंप 18 और 19 को नौबस्ता में, 20 और 21 मई को देहली सुजानपुर में, 22 मई को जाजमऊ में और 23 मई को दबौली में आयोजित किया जाएगा। और साथ ही आपको बता दें इस समय ये अभियान 17 तारीख तक मेन स्टेशन पर आयोजित किया जा रहा है। रानीघाट से होकर ट्रांस गंगा गेट नंबर 2 तक अब जल्द ही बनेगा पुल। प्रदेश में पहली बार स्नातक स्तर पर आयोजित शैक्षणिक सम्मेलन इशे लॉन का आयोजन कल से जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में शुरू कर दिया गया है। व्यावहारिक दक्षता, करियर गाइडेंस जैसे विषयों को मंच देने वाला ये सम्मेलन 17 मई तक आयोजित किया जा रहा है। आईआईटी कानपुर ने शुरू किए 4 नए एमटेक ऑनलाइन प्रोग्राम्स, AIML, कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, स्मार्ट ग्रिड एंड सस्टेनेबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज। आज शहर की महिलाएं वट सावित्री व्रत में करेंगी बरगद के पेड़ की परिक्रमा और रखेंगी निर्जला उपवास। और साथ ही साथ जनगणना 2027 के तहत स्वगणना अभियान में तेजी लाने के लिए जिलाधिकारी कानपुर नगर ने अधिकारियों को जन भागीदारी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। 21 मई तक स्वगणना की जा सकती है और 22 मई को प्रगणन घर घर जाएंगे। गुड मॉर्निंग कानपुर प्रोग्राम आप एंजॉय कर रहे हैं ओनली ऑन 102.2 FM रेनबो कानपुर।

गुड मॉर्निंग कानपुर प्रोग्राम में इस खूबसूरत से गाने के बाद अब वक्त है खेल से जुड़ी खबरों का। आईपीएल में कल लखनऊ के इकाना स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच हुई कड़ी टक्कर में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को शिकस्त दी। आपको बता दें कि आज कोलकाता के ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स और गुजरात टाइटंस के बीच होगा कड़ा मुकाबला। आईपीएल के बाद अब आपको बताते हैं एक बहुत बड़ी खुशखबरी। जी हां, भारत की वुशु खिलाड़ी अपर्णा दहिया ने मकाओ में हुए 11वें सांडा वर्ल्ड कप 2026 में महिलाओं के 52 किलो वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। बांदा के यशवर्धन 50 देशों के एथलीट्स के बीच खेली जाने वाली इंटरनेशनल हैंड टू हैंड फाइटिंग स्पोर्ट्स चैंपियनशिप मकाओ में 60 किलो वर्ग भार में भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और आपको बता दें कि 16 और 17 मई को होने वाले इस टूर्नामेंट में ये हिस्सा लेने वाले हैं। हमारी बेस्ट विशेज हैं यश के साथ। हमारे शहर कानपुर के ग्रीन पार्क में 24 मई से शुरू होने वाली है बॉक्स

दोस्तों वैसे लिटरली हम भी यही चाहते हैं कि बादल बनकर यहाँ भी बरस जाए, क्योंकि जिस तरह गर्मी ने कहर ढा रखा है ना, हाल बेहाल हो गया है। वैसे क्या कहता है कानपुर के मौसम का हाल, तो चलिए जानते हैं। चंद्रशेखर आजाद कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर और भारत मौसम विज्ञान विभाग से प्राप्त मौसम पूर्वानुमान के अनुसार आने वाली 20 मई तक आसमान साफ रहने के कारण बारिश की कोई संभावना नहीं है, लेकिन लू यानी हीट वेव का प्रकोप जारी रहेगा। आपको बता दें कि मैक्सिमम टेम्परेचर रहने वाला है 39.1 डिग्री सेल्सियस, मिनिमम टेम्परेचर रहेगा 26.8 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम सापेक्षित आर्द्रता रहेगी 75%, न्यूनतम सापेक्षित आर्द्रता 36%। हवा की औसत गति रहेगी 4.4 किलोमीटर पर आर और हवा की दिशा उत्तर पश्चिम। तो दोस्तों ऐसे में दोपहर के टाइम जरूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकले, अगर निकले भी तो कपड़ा लपेट कर घर से जाएं, पानी पी कर निकलें और खाली पेट बिल्कुल भी ना रहें। और हमारे किसान भाइयों के लिए भी फसलों की सिंचाई करते रहना बहुत ही

ज़्यादा ज़रूरी है। फिलहाल अभी ज़रूरी है आपके रेडियो सेट तक जाते जाते ये खूबसूरत सा ट्रैक पहुंचाना, और गुड मॉर्निंग प्राणपुर प्रोग्राम से दीजिए अब वृंदा को इजाज़त। मैं आपसे मिलूंगी 8:30 से अपने प्रोग्राम्स के साथ।

राकेश कुमार। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने भारत में रणनीतिक पेट्रोलियम और गैस भंडार स्थापित करने की सहित कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंचे। प्रधानमंत्री ने विदेश यात्रा पर कर लगाने की खबर का खंडन किया। CBSE ने कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन की सुविधा शुरू करने की घोषणा की। इसराइल और लेबनान युद्ध विराम को 45 दिन बढ़ाने पर सहमत हुए। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स सेमीफाइनल में भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का सामना मलेशियाई जोड़ी से। भारत और संयुक्त अरब अमीरात UAE ने पेट्रोलियम भंडार, दीर्घकालिक LPG आपूर्ति और रक्षा सहयोग से संबंधित कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौते पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के बीच अबू धाबी में उच्च स्तरीय वार्ता के बाद हुए। UAE ने भारत में 5 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश का भी वादा किया। प्रधानमंत्री मोदी कल 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में UAE गए थे। इन समझौतों में इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड और अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के बीच भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए रणनीतिक सहयोग समझौता शामिल हैं। पेट्रोलियम भंडार में सहयोग और तरल प्राकृतिक गैस और LPG भंडारण सुविधाओं पर सहयोग के लिए समझौता किया गया। इस समझौते से भारत के रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार में UAE की हिस्सेदारी बढ़कर 3 करोड़ बैरल हो जाएगी और भारत में रणनीतिक गैस भंडार स्थापित किए जाएंगे। दोनों पक्षों ने LPG पर रणनीतिक सहयोग समझौते पर भी हस्ताक्षर किए। इससे भारत में व्यापक रूप से ईंधन की दीर्घकालिक आपूर्ति सुनिश्चित होने की संभावना है। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने रणनीतिक रक्षा साझेदारी के ढांचे पर भी हस्ताक्षर किए, जो रक्षा औद्योगिक सहयोग, प्रौद्योगिकी साझाकरण, नवाचार और क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग पर केंद्रित हैं। वार्ता के दौरान

0: प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति जायद अल नहयान ने पश्चिम एशिया संकट पर भी चर्चा की। श्री मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के नेतृत्व और लोगों के साथ भारत की एकजुटता की पुष्टि की।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का प्राथमिकता दी है। ओर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना यह हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अपने 5 देशों के दौरे के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंचे। इस दौरे का उद्देश्य यूरोपीय देशों के साथ भारत के रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को और मजबूत करना है। एम्स्टर्डम हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत नीदरलैंड्स के विदेश मंत्री टॉम बेरेंसन ने किया।
2: इससे भारत यूरोप मुक्त व्यापार समझौते के बाद भारत यूरोपीय संबंधों को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। आज प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और नीदरलैंड्स की प्रमुख कंपनियों के सीईओ से मुलाकात करेंगे। कहीं अहम समझौतों पर हस्ताक्षर होने की भी उम्मीद है, खासकर सेमीकंडक्टर चिप्स और एआई के क्षेत्रों में जहां नीदरलैंड्स वैश्विक लीडर है। नीदरलैंड्स भारत का अहम आर्थिक साझेदार है। ये भारत के लिए सबसे बड़े निर्यात स्थलों में से एक होने के साथ साथ भारत में निवेश करने वाला प्रमुख देश भी है। दोनों देशों के बीच जल प्रबंधन, नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, अर्थव्यवस्था, कृषि तकनीकों और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में मजबूत साझेदारी और सहयोग है। हेग नीदरलैंड से सुश्रत शर्मा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पूजा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देशवासियों के लिए व्यापार में आसानी और जीवन सुगम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विदेश यात्रा पर उपकर, कर या अधिभार लगाने से संबंधित रिपोर्ट खारिज कर दी। उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट पूरी तरह से झूठी और निराधार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विदेश यात्रा पर इस तरह के प्रतिबंध लगाने का कोई प्रश्न ही नहीं है। सरकार ने तेल निर्यात पर उत्पाद शुल्क में परिवर्तन किया है। पेट्रोल के निर्यात पर 3 रुपए प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। डीजल के निर्यात पर यह शुल्क 23 रुपए से घटाकर 16.50 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। विमानन ईंधन पर भी इसे 33 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 16 रुपए कर दिया गया। संशोधित दरें आज से 15 दिन तक लागू रहेंगी। घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए परिणाम घोषित होने के बाद उपलब्ध सुविधाओं के बारे में नोटिस जारी किया है। इसमें निष्पक्ष, पारदर्शी और समान मूल्यांकन प्रक्रिया के लिए प्रतिबद्धता को दोहराया गया है। बोर्ड ने कहा कि जो विद्यार्थी अपने परिणामों से संतुष्ट नहीं है वो 2 चरणों वाली समीक्षा प्रणाली का लाभ उठा सकते हैं। इसके पहले चरण में विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां मांग सकते हैं। नीट यूजी परीक्षा 21 जून को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवार बृहस्पतिवार तक अपना वर्तमान पता और प्रथम तथा दूसरी वरीयता के शहर का नाम अपडेट कर सकते हैं। परीक्षा दोपहर बाद 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। पेपर लीक होने के कारण 3 मई को आयोजित परीक्षा रद्द कर दी गई थी। सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल वर्चुअल माध्यम से राजस्थान के पहले सेमीकंडक्टर प्लांट का शुभारंभ किया।
5: भिवाड़ी के सालारपुर में यह प्लांट इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण और सेमीकंडक्टर के लिए वैश्विक केंद्र बनने की दिशा में भारत की यात्रा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। सहस्रा सेमीकंडक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड का यह प्लांट भारत का पहला लघु और मध्यम उद्यम है।

0: जिसने सेमीकंडक्टर चिप्स का वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया है। यह प्लांट 150 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से स्थापित किया गया है। यहाँ प्रतिवर्ष 60 मिलियन सेमीकंडक्टर यूनिट्स बनाई जा सकेंगी। अगले 2 से 3 वर्ष में इसकी वार्षिक क्षमता बढ़ाकर 400 से 600 मिलियन यूनिट्स तक करने की योजना है। यह प्लांट अपने उत्पादन का 60% से अधिक हिस्सा अमरीका, जर्मनी, फ्रांस, पूर्वी यूरोप, चीन और नेपाल जैसे वैश्विक बाजारों में निर्यात कर रहा है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत में कोई भी गरीब व्यक्ति स्थायी घर के बिना नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि सभी को पक्के मकान उपलब्ध कराना केंद्र सरकार की प्रमुख प्रतिबद्धता है। श्री चौहान महाराष्ट्र के सतारा में आयोजित महा आवास अभियान के अंतर्गत नए घरों के उद्घाटन और राज्य स्तरीय पुरस्कार समारोह के बाद सभा को संबोधित कर रहे थे।
2: भारत की धरती पर कोई भी गरीब कच्चे मकान में नहीं रहेगा। हर एक गरीब को पक्की छत मुहैया कराई जाएगी। फिर से हमारी सरकार बनी, देवेंद्र जी मुख्यमंत्री बने तो उन्हें कहा कि बैकलॉग बहुत है शिवराज, हमें तो बहुत मकान चाहिए। और मुझे कहते हुए गर्व है कि प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से उनकी पहल पर लगभग 1 साल के अंतराल में 30 लाख मकान महाराष्ट्र

0: केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत में कोई भी गरीब व्यक्ति स्थायी घर के बिना नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि सभी को पक्के मकान उपलब्ध कराना केंद्र सरकार की प्रमुख प्रतिबद्धता है। श्री चौहान महाराष्ट्र के सतारा में आयोजित महा आवास अभियान के अंतर्गत नए घरों के उद्घाटन और राज्य स्तरीय पुरस्कार समारोह के बाद सभा को संबोधित कर रहे थे।
1: भारत की धरती पर कोई भी गरीब कच्चे मकान में नहीं रहेगा, हर एक गरीब को पक्की छत मुहैया कराई जाएगी। फिर से हमारी सरकार बनी, देवेंद्र जी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने कहा कि बैकलॉग बहुत है शिवराज, हमें तो बहुत मकान चाहिए। और मुझे कहते हुए गर्व है कि प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से उनकी पहल पर लगभग एक साल के अंतराल में 30 लाख मकान महाराष्ट्र को मिले, इतिहास में आज तक नहीं हुआ है।
0: सिक्किम आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। राज्य 16 मई 1975 को आधिकारिक रूप से भारत में शामिल हुआ था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन गंगटोक के मनन केंद्र में राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उपराष्ट्रपति की ये पहली सिक्किम यात्रा है। इस कार्यक्रम में राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग और पूर्वोत्तर विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी भाग लेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सिक्किम के राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि विश्व का पहला पूर्णतः जैविक राज्य बनने से लेकर पर्वतीय पर्यटन को नई परिभाषा देने तक सिक्किम की उपलब्धियां पूरे देश को प्रेरित करती हैं। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के नेता और सांसद अभिषेक बैनर्जी के खिलाफ पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान कथित भड़काऊ टिप्पणियों के संबंध में FIR दर्ज की गई है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि गृहमंत्री अमित शाह को लक्षित करके की गई टिप्पणियां सांसद अभिषेक बैनर्जी के आधिकारिक फेसबुक पेज सहित सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से प्रसारित की गईं। इजराइल और लेबनान युद्ध विराम को 45 दिन के लिए बढ़ाने पर सहमत हो गए हैं। अमरीकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता टॉमी पिगोट ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने बताया कि वॉशिंगटन में 2 दिन की वार्ता के बाद यह समझौता हुआ है। 2 या 3 जून को बातचीत करने पर भी सहमति बनी है। इजराइल और लेबनान के हिजबुल्ला आतंकी समूह के बीच युद्ध विराम कल समाप्त हो रहा था। बैडमिंटन में भारतीय पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी आज बैंकॉक में थाईलैंड ओपन के सेमीफाइनल में मलेशियाई शटलर नूर इज्जुद्दीन और गोह श्रीफेई से भिड़ेंगे। इस बीच पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन सहित अन्य भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी टूर्नामेंट से बाहर हो गए। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया। चेन्नई सुपर किंग्स ने निर्धारित 20 ओवर में 187 रन बनाए। लखनऊ सुपर जायंट्स ने 17वें ओवर में ही जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। मिचेल मार्श ने शानदार 90 रन बनाए। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज शाम कोलकाता के ईडन गार्डन्स में 7:30 बजे से गुजरात टाइटंस का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। आज अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस प्रत्येक वर्ष 16 मई को भौतिकी विज्ञानी और अभियंता थियोडोर मेमन द्वारा 1960 में लेजर के पहले सफल संचालन की स्मृति में मनाया जाता है। आज राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जा रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आधिकारिक रूप से घोषित इस दिवस का उद्देश्य डेंगू के प्रति जागरूकता बढ़ाना और मानसून से पहले इसके खिलाफ निवारक उपायों को मजबूत करना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
2: धन्यवाद मुकेश। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच ऊर्जा आपूर्ति समझौते की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, भारत और यूएई के बीच एलपीजी की आपूर्ति समेत कई अहम समझौते। जनसत्ता के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, पश्चिम एशिया में शांति के लिए हर संभव सहयोग को तैयार। पंजाब केसरी की सुर्खी है, खत्म होगा एलपीजी संकट, यूएई से डील पत्र के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हमलों की निंदा की। लोकसत्य का कहना है कि भारत में $5 अरब का निवेश करेगा यूएई। दैनिक जागरण ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय देते हुए लिखा है, मंदिर ही है भोजशाला, नमाज की अनुमति का आदेश निरस्त। हिंदुस्तान की सुर्खी है, धार भोजशाला मस्जिद नहीं वाग्देवी का मंदिर। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, नीट यूजी की रद्द हो चुकी परीक्षा अब 21 जून को होगी, लेकिन अगले साल से कंप्यूटर आधारित होगी यह परीक्षा। इसी खबर पर हिंदुस्तान ने परीक्षा सुधार का समय शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, भारत में

0: परीक्षाओं को 16 आना चाक चौबंद बनाने की कोशिश सराहनीय है। सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं को भी अब ऑनलाइन कराने का फैसला लिया है। परीक्षा की कमियों को दूर करने के प्रयास प्रशंसनीय है। साथ ही पेपर लीक की जांच कर रही सीबीआई दोषियों को कड़ी सजा दिला पाए तो पूरी शिक्षा का भला होगा। अमर उजाला की सुर्खी है, पेट्रोल डीजल 3 रुपए महंगे, सीएनजी के दाम 2 रुपए बढ़े, पत्र के अनुसार 4 साल बाद वृद्धि। दैनिक भास्कर ने सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के हवाले से लिखा है, बेरोजगार युवा कॉकरोच की तरह एक्टिविस्ट बनकर सिस्टम पर हमला करते हैं, वकीलों की प्रामाणिकता पर गंभीर संदेह जताया। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, ईरान युद्ध पर मतभेद, ब्रिक्स का संयुक्त बयान नहीं हो सका जारी। ईरान का आरोप, नाम लिए बिना यूएई पर रोड़ा लगाने का आरोप जड़ा। पत्र के अनुसार ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा, शांति में भारत निभाए भूमिका। पंजाब केसरी का शीर्षक है, 26 मई को केरल तट पर दस्तक देगा मॉनसून, समय से 4 दिन पहले आएंगी बौछारें।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने भारत में रणनीतिक पेट्रोलियम और गैस भंडार स्थापित करने सहित कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंचे। प्रधानमंत्री ने विदेश यात्रा पर कर लगाने की खबर का खंडन किया। CBSE ने कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन की सुविधा शुरू करने की घोषणा की। इजराइल और लेबनान युद्ध विराम को 45 दिन बढ़ाने पर सहमत हुए। और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल सेमीफाइनल में भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का सामना मलेशियाई जोड़ी से होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

कानपुर शहर के म्यूजिकल हार्टबीट से एक बार फिर जुड़ चुके हैं आप और हम लेकर हाजिर हो चुके हैं प्रोग्राम सुरों की पुरानी महफिल। आज सुरों की पुरानी महफिल सजेगी 1990s से लेकर 2000s तक के फेमस बॉलीवुड सॉन्ग्स के साथ जो आपको थिरकने पर कर देंगे मजबूर। तो सुनते रहिए आज का सुरों की पुरानी महफिल प्रोग्राम वृंदा के साथ।

और 1990s की थानेदार फिल्म के इस डांसिंग ट्रैक के बाद बढ़ते हैं साल 1992 की ओर और लेकर चलते हैं आपको सात समुंदर पार। जी हाँ, साधना सरगम की खूबसूरत आवाज में विश्वात्मा फिल्म से आ रहा है आप सभी के लिए खूबसूरत नगमा, विजू शाह का संगीत और गीत के बोल लिखे आनंद बख्शी ने।

विश्वात्मा के इस गाने के बाद 90s की एवरग्रीन सॉन्ग्स की फेहरिस्त में अगला गाना है। ये जो गाना है ना, ये 30 साल से ज्यादा सालों पुराना जरूर है, लेकिन आज भी इसका चार्म बरकरार है। सैफ अली खान के हुक स्टेप को आज भी लोग फॉलो करते हैं, तो चलिए हम भी फॉलो करते हैं अपना ट्रेंडिंग और सुनवाते हैं 1994 का ब्यूटीफुल डांसिंग नंबर। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जिस फिल्म की, उस फिल्म का नाम है ये दिल लगी। अभिजीत भट्टाचार्य की आवाज में ये खूबसूरत सा डांसिंग ट्रैक पहुंच रहा है आप सभी के रेडियो सेट तक।

0: आवश्यक सूचना सुनिए। कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा और अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए दिए जाने वाले पद्म पुरस्कार, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण के लिए भारत सरकार द्वारा आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। इच्छुक व्यक्ति या संस्थाएं अपने नामांकन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in पर ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। नामांकन करते समय संबंधित व्यक्ति की उपलब्धियों और सेवाओं का स्पष्ट और विस्तृत विवरण सही प्रारूप में अंकित होना सुनिश्चित करें। पद्म पुरस्कारों से संबंधित नियम और विनियम padmaawards.gov.in पर देखे जा सकेंगे। एक बार फिर हम बताना चाहेंगे, padmaawards.gov.in पर आप नियम और विनियम इस अवार्ड से संबंधित देख सकते हैं। नामांकन करने की अंतिम तिथि है 31 जुलाई 2026। सूचना समाप्त हुई।
1: Hi, this is Udit Narayan. You are listening 102.2 FM Rainbow शहर की म्यूजिकल हार्टबीट। दिल से जुड़े रहे और सुनते रहे शहर की म्यूजिकल हार्टबीट को।
0: शहर के म्यूजिकल हार्टबीट से कनेक्टेड हैं आप और इस टाइम एंजॉय कर रहे हैं प्रोग्राम सुरों की पुरानी महफिल। तो आइए प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और आप सभी को सुनवाते हैं राजा हिंदुस्तानी फिल्म से ये अगला गाना। अलका याग्निक और कुमार सानू की हैं आवाजें। 1996 का ये सॉन्ग पहुंच रहा है आप सभी के रेडियो सेट तक। नदीम श्रवण ने संगीत से सजाया और गीत के बोल लिखे समीर ने।

1996 के इस सॉन्ग के बाद पहुंचते हैं नेक्स्ट 1990s से लेकर 2000s तक के इवन एरा की ओर, यानी कि 1998 के पॉपुलर सॉन्ग की तरफ। जी हाँ, अब आपको हम सुनवाने जा रहे हैं दूल्हे राजा फिल्म से ये खूबसूरत सा गाना सोनू निगम और जसपिंदर नरूला की आवाजों में। आनंद मिलिंद का संगीत है और गीत के बोल लिखे हैं समीर ने। एंजॉय कीजिए ये डांसिंग ट्रैक विद वृंदा।

लास्ट बट नॉट द लीस्ट फ्रॉम ईयर 2000. जी हाँ, एक ऐसा ट्रैक पहुंच रहा है आप सभी के रेडियो सेट तक जो दोनों लीड एक्टर्स की डेब्यू फिल्म थी और पहली ही फिल्म में इन्होंने धमाल मचा दिया. जी हाँ, कहूँ ना प्यार है फिल्म से लकी अली की आवाज़ में पहुंच रहा है आप सभी के रेडियो सेट तक ये सॉन्ग. राजेश रोशन का संगीत और गीत के बोल लिखे विजय अकेला ने.

अपने दिल को यूं ही गाते हंसते मुस्कुराते रखिएगा। अभी एफएम रेनबो कानपुर पर एंटरटेनमेंट का खजाना और भी है बाकी जो। जी हाँ, मैं मिलूंगी थोड़ी ही देर में आपसे रसबहार प्रोग्राम के साथ। सुरों की पुरानी महफिल का सफर बस यहीं तक।

102.2 की फ्रीक्वेंसी पर आप हैं एफएम रेनबो कानपुर के साथ एंड नाउ इट्स टाइम फॉर प्रोग्राम रस बहार। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब। मैं हूँ वृंदा और आज के प्रोग्राम में हम लेकर आए हैं एक सिनेमैटिक सेलिब्रेशन। जी हाँ, सिल्वर जुबली स्पेक्टेक्युलर यानी कि एक सिनेमैटिक सेलिब्रेशन आज होने वाला है। आज क्या है खास, चलिए बताते हैं आपको। एक्चुअली आज के रस बहार में हम सेलिब्रेट कर रहे हैं उन बॉलीवुड मूवीज़ को जिन्होंने साल 2001 में धमाका किया और 25 साल बाद भी लोगों के दिलों में ज़िंदा हैं। जी हाँ, यस, बिल्कुल सही सुना आपने। ये 25 साल का सफ़र है नॉस्टैल्जिया से लेकर इंस्पिरेशन तक। तो चलिए टाइम मशीन ऑन करते हैं और रीविजिट करते हैं 2001 की टॉप फेमस बॉलीवुड मूवीज की ओर।

प्यार भरे गीत और कहानी लेकर आई 15 जून 2001 को सनी देओल और अमीषा पटेल की ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म गदर एक प्रेम कथा और बनी उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक। और वहीं गदर के साथ क्लैश करने वाली एक फिल्म जिसने बॉलीवुड को दुनिया के सिनेमा मैप पर एकदम से हाईलाइट कर दिया। जी हाँ, दिस फिल्म इज मिस्टर परफेक्शनिस्ट मास्टरपीस लगान। एंड यू नो गेस व्हाट, ये फिल्म सर रिचर्ड एंटरबोरो के लिए एक ड्रीम प्रोजेक्ट भी थी। लगान को जब ऑस्कर नॉमिनेशन मिली तो ये बनी इंडिया की पहली स्पोर्ट्स एंड पीरियोडिक ड्रामा जिसे वर्ल्ड स्टेज पर इतना रिस्पेक्ट मिला था। फिल्म सिर्फ क्रिकेट की नहीं, एक ऑब्सेस्ड कम्युनिटी की होप, करेज और यूनिटी की भी स्टोरी थी। इस फिल्म की शूटिंग एक रियल गांव में हुई थी जहां लोकल विलेजर्स को भी बैकग्राउंड एक्स्ट्रास की तरह इन्वॉल्व भी किया गया था।

तो दोस्तों नेक्स्ट मूवी है 2001 की फैमिली ब्लॉकबस्टर, जो 2001 की टॉप रेटेड मूवीज में नंबर वन पर थी और आज भी है ऑडियंस की पसंद। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कभी खुशी कभी गम मूवी की। ये फिल्म सिर्फ बॉक्स ऑफिस हिट नहीं थी, एक कल्चरल फिनोमिना भी बन गई थी। एक ऐसी फिल्म जो मल्टी जनरेशन फैमिली स्टोरी को आइकॉनिक बना गई और इसके डायलॉग्स हर दिवाली, शादी और गैदरिंग में आज भी रिपीट किए जाते हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात थी कि मूवी में अमिताभ, शाहरुख, काजोल और ऋतिक का कॉम्बो, ये कास्ट आज भी फैन फेवरेट है और कई आइकॉनिक मोमेंट्स आज भी लोगों के जहन में हैं और इसके गाने, वाह क्या बात है, एक अलग ही कहानी कह जाते हैं। और इसका जो स्टाइल है मूवी का, वो करण जौहर का स्टाइल भी बता जाते हैं।

0: से बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, यात्रा के दौरान अगर TC टिकट मांगे तो दिखा दीजिए, लेकिन कोई भी OTP पिन या पासवर्ड मांगे तो उसे तुरंत भगा दीजिए।
3: RBI कहता है OTP या पिन के लिए कॉल या मैसेज आए तो थोड़ा ध्यान से।

जी हाँ, 2001 में यूथ एरा का रेवोल्यूशन लेकर आई वो फिल्म जिसके बाद बॉलीवुड की यूथ मूवीज ही बदल गई। वो मूवी थी जिसे हर युवा दिल ने चाहा। जी हाँ, दिल चाहता है। वैसे किसने सोचा था कि एक फिल्म जो फ्रेंड्स की रियल केमिस्ट्री और सिटी लाइफ को हाईलाइट करेगी, वो फिल्म एक ट्रेंड सेटर भी बन जाएगी। डायरेक्टर फरहान अख्तर ने स्क्रिप्ट लिखने के लिए 2000 से ज़्यादा यूथ के कैजुअल लैंग्वेज और रियल डायलॉग स्टाइल को अडॉप्ट किया था। ये एक जो गाना था ना इसमें, वो बहुत ही फेमस हुआ था, जो अभी आपने इन्जॉय किया। और ये एक नया स्टोरी टेलिंग वेव जो थी वो इस मूवी से स्टार्ट हो गई थी। फिल्म अर्बन फ्रेंडशिप को सेलिब्रेट करती है और हर जनरेशन के फ्रेंड ग्रुप्स के प्लेलिस्ट की टॉप लिस्ट में इसका नाम तो होता ही है। चलिए अगले जिस टॉप फिल्म यानी कि फेमस 25 इयर्स कंप्लीट करने वाली मूवी की हम बात करने जा रहे हैं, उसका ये गाना आप पहले एंजॉय कीजिए, उसके बाद करेंगे इस मूवी से रिलेटेड बात।

तो चलिए हम भी बढ़ते हैं नायक मूवी की तरफ। जी हाँ, जिसका अभी आपने गाना एंजॉय किया। नायक द रियल हीरो अनिल कपूर, रानी मुखर्जी और अमरीश पुरी की एक पॉलिटिकल थ्रिलर फिल्म थी ये, और अपने टाइम से आगे की फिल्म मानी जाती है ये। हाल ही में हुए एक इवेंट में फरहान अख्तर ने दिल चाहता है और अनिल कपूर ने नायक द रियल हीरो के लिए 25 ईयर्स सेलिब्रेशन का जिक्र भी किया था। वैसे इस फहरिस्त में अकली जिस फिल्म का नाम आता है वो भले ही बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही, लेकिन आज ये एक कल्ट क्लासिक बन चुकी है, यूथ की वन ऑफ द फेवरेट फिल्म्स ऑफ दैट टाइम, रहना है तेरे दिल में। वाकई ये फिल्म दिल में बस गई थी, और बॉलीवुड में आर माधवन की पहली फिल्म ही आर एस टी डी एम यानी कि रहना है तेरे दिल में ने ऑडियंस को उनकी एक्टिंग का कायल बना दिया।

0: पहला खुमार।
1: हाय, दिस इज उदित नारायण, यू आर लिसनिंग 102.2 FM रेनबो, शहर की म्यूजिकल हार्टबीट। दिल से जुड़े रहे और सुनते रहे शहर की म्यूजिकल हार्टबीट को।
2: शहर की म्यूजिकल हार्टबीट से कनेक्टेड हैं आप और एंजॉय कर रहे हैं प्रोग्राम रसबहार वृंदा के साथ। दोस्तों, वैसे साल 2001 एक ऐसा एरा था जब छोटी फिल्मों ने भी बड़ा इम्पैक्ट छोड़ा था। जैसे अगर हम बात करें मधुर भंडारकर डायरेक्टेड चांदनी बार की, तो उसमें तब्बू की एक्टिंग से बॉलीवुड में रियलिस्टिक सिनेमा को नई ऊंचाइयां मिली थी। वहीं शाहरुख खान और करीना कपूर के लीड रोल वाली फिल्म अशोका, याद है आपको, एक हिस्टोरिक मोमेंट क्रिएट कर दिया था इस फिल्म ने। और फिर आई अक्षय कुमार, बॉबी देओल, करीना कपूर और बिपाशा बसु की थ्रिलर क्लासिक फिल्म अजनबी। एक्शन, सस्पेंस और मिस्ट्री से भरपूर इस फिल्म ने पूरे मल्टीप्लेक्स ऑडियंस टेस्ट को सेटिस्फाई कर दिया। रसबहार प्रोग्राम में ऐसी और भी बातें हैं आपसे शेयर करने के लिए, उससे पहले एंजॉय कीजिए अजनबी फिल्म का, ये अजनबी नहीं बट आपका जाना पहचाना गाना है, एंजॉय कीजिए।

साल 2001 एक ऐसा एरा जिसकी मूवीज के हिट होने का एक बहुत बड़ा रीजन था उसका म्यूजिक। जी हाँ, टॉप सॉन्ग्स जैसे वो ट्रेंड ही कर गए और आज भी ट्रेंडिंग है, और उनमें से बहुत ही ज़्यादा इमोशनल सॉन्ग्स भी हैं, पार्टीफुल सॉन्ग्स भी हैं। जैसे अगर हम बात करें कभी खुशी गम के सॉन्ग्स की, तो उनके इमोशंस का एक अलग ही रोमांटिक एंगल भी है, इमोशंस भी हैं, सैडनेस भी है, सब कुछ लगता है। बोले चूड़िया, याद है आपको, ये गाना एक पार्टी एंथम बन चुका है। मितवा सॉन्ग सोलफुल और रिफ्लेक्टिव है लगान फिल्म से, और साथ ही साथ दिल चाहता है, मूड लिफ्टिंग वाइब देता है ये सॉन्ग। एक रिश्ता द बॉन्ड ऑफ लव और तुम बिन 2001 की उन मूवीज में से आती है जो अपने म्यूजिकल ट्रैक्स के लिए फेमस हुई थी, और एक ऐसा म्यूजिक दैट लिव्ड फॉर एवर। तो ऐसा ही म्यूजिक आपके लिए प्ले कर रही हूँ तुम बिन फिल्म से।

0: तो दोस्तों ऐसी क्या बात है 2001 की एरा में जो 25 साल बाद भी लोगों की प्लेलिस्ट और दिलों में जिंदा है। ये डाइवर्सिटी स्टोरीज विद इमोशंस, रियल फ्रेंडशिप्स, फैमिली बॉन्ड्स एंड म्यूजिक दैट हील्ड, इंस्पायर्ड एंड सेलिब्रेटेड। जी हाँ, ये हैं वो खास बातें जो 2001 की मूवीज में देखने को मिल जाती थी। वैसे आज के टाइम में भी जब स्टोरीज वर्ल्ड वाइड डिजिटली पहुंचती हैं तो वो फ्लेवर कहीं ना कहीं देखने को मिल ही जाता है, जो यूनिक ही रहता है। ये 25 साल की जो जर्नी है ना, वो सिर्फ फिल्म की नहीं, हमारी यादों की, हमारी इमोशंस की और हमारी ग्रोथ की जर्नी है। तो याद रखिए, स्टोरीज मेमोरेबल नहीं, फीलिंग्स मेमोरेबल होती हैं। वृंदा लेती है इजाजत आपसे रजबहार प्रोग्राम से, और थोड़ी ही देर में आपको सुनवाऊंगी महफिले कव्वाली। कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिए एफएम रेनबो कानपुर।
1: कम प्रीमियम, ज्यादा बोनस, अपनों के लिए सबसे सही आरटीएलआई, इससे बेहतर कुछ नहीं।
2: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस आरटीएलआई की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या इंडिया पोस्ट डॉट जीओवी डॉट इन पर लॉग ऑन करें।

एफएम रेनबो कानपुर से वक्त हो गया है विविधा प्रोग्राम का और विविधा के अंतर्गत आज सजेगी कव्वाली की महफिल। महफिले कव्वाली प्रोग्राम लेकर मैं हूं वृंदा आप सभी के साथ। रजिया सुल्तान फिल्म से आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की खूबसूरत आवाज में ये कव्वाली।

0: निशुल्क कानूनी सहायता टेली लॉ के ऐप वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: नए जमाने की नई तस्वीर, अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें, ले आएं आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें हैं आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स, इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और, सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।
2: डियर रेनबो लिसनर्स, आपका और हमारा रिश्ता है बड़ा पुराना, पर इसे और भी गहरा बनाने आ रहा है एक खास बहाना।
3: जी हाँ, FM रेनबो कानपुर के कार्यक्रमों पर अब आपकी राय, आपकी पसंद और आपके सुझावों का रहेगा हमें इंतजार। लेकर आ रहे हैं हम अपना फीडबैक शो मेल मिलाप।
2: हमें बताइए आपको हमारे प्रोग्राम्स कैसे लगते हैं, क्या और सुनना चाहते हैं आप। तो नोट कीजिए, हर महीने के चौथे बुधवार दोपहर 3:45 पर होगा हमारा आपका मेल मिलाप।
3: अपनी प्रतिक्रियाएं हमें लिखकर भेजें इस पते पर, कार्यक्रम मेल मिलाप, विज्ञापन प्रसारण सेवा, आकाशवाणी कानपुर, बेना झाबर रोड, कानपुर, पिन कोड है 208002।
2: हमें ईमेल करें, हमारा ईमेल एड्रेस है fmmelmilaap@gmail.com पर, यानी कि fmmelmilaap@gmail.com। भूलिएगा मत, हर महीने का चौथा बुधवार दोपहर 3:45 सिर्फ FM रेनबो कानपुर पर मेल मिलाप।
4: FM रेनबो कानपुर से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम महफिले गजल, और महफिले गजल प्रोग्राम में आखिरी गजल जगजीत सिंह की खूबसूरत आवाज में, और इस गजल के उस पार मैं आपसे मिलूंगी 11 बजे से अपनी हमनवा कौसर के साथ हमनवा प्रोग्राम में। और इस गजल के उस पार हम आपको लेकर चलेंगे लखनऊ केंद्र। कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार और अभी एंजॉय कीजिए ये गजल।

नमस्कार, सुबह के 10 बजे हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने पेट्रोलियम भंडार, दीर्घकालिक एलपीजी आपूर्ति और रक्षा सहयोग से संबंधित कई महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौते पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूएई की राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के बीच अबुधाबी में उच्च स्तरीय वार्ता के बाद हुए। यूएई ने भारत में 5 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश का भी वादा किया है। प्रधानमंत्री मोदी कल 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में यूएई गए थे। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जायद अल नाहयान ने पश्चिम एशिया संकट पर भी चर्चा की। प्रधानमंत्री कल अपने 5 देशों के दौरे के दूसरे चरण में नीदरलैंड पहुंचे हैं। नीट यूजी परीक्षा अब 21 जून को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवार बृहस्पतिवार तक अपना वर्तमान पते के साथ ही परीक्षा केंद्र के चयन के लिए पहली और दूसरी वरीयता के शहर का नाम अपडेट कर सकते हैं। परीक्षा दोपहर बाद 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। पेपर लीक होने के कारण 3 मई को आयोजित परीक्षा रद्द कर दी गई थी। सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। आज राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जा रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आधिकारिक रूप से घोषित इस दिवस का उद्देश्य डेंगू के प्रति जागरूक बढ़ाना और मानसून के पहले इसके खिलाफ निवारक उपायों को मजबूत करना है। यह दिन मच्छरों को प्रजनन को रोकने के उद्देश्य से सरल नियंत्रण रणनीतियों को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि सावधानी, स्वच्छता, सजगता और समय पर उपचार से डेंगू के प्रभावी नियंत्रण संभव है। उन्होंने प्रदेशवासियों से अपने घर, आसपास और समाज को स्वच्छ रखने का संकल्प लेने का आह्वान किया है। वट सावित्री का पर्व आज प्रदेश भर में आस्था और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। प्रयागराज में महिलाएं संगम में पवित्र स्नान कर बरगद के पेड़ के नीचे पूजा कर अपने सुहाग की सलामती और लंबी उम्र की प्रार्थना कर रही हैं। महिलाओं ने आज निर्जला व्रत भी रखा है। उन्नाव में भी सुबह से सुहागिनें पारंपरिक श्रृंगार कर वट सावित्री का व्रत और पूजा अर्चना कर अखंड सौभाग्य की प्रार्थना कर रही हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 11 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से।

0: से देवभूमि उत्तराखंड से केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
1: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए पांच यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
0: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in।
1: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।

0: भैया सब जनन का राम राम प्रणाम। कार्यक्रम शुरू हो गया है आपका सबसे पसंदीदा सुगंध माटी की। हम आपके साथ हैं ना, आपके साथी, आपके संगाती विनय यादव। 10 के 5 मिनट और 20 सेकंड का समय हो गया है और ये समय कह रहा है कि जो हमारे साथ है आए हैं ओम भैया। अरे कहाँ हो दादा, इसी आगे आवा हो।
1: आए गेन भैया, सब श्रोता पंचन राम जवाहर प्रणाम नमस्ते। और भैया भुलभुला खेरे ते आए हैं।
0: भुलभुला खेरे ते आए हो?
1: हाँ।
0: तो पानी वानी व्यवस्था करी तुमने खाते?
1: पानी देखो ये अम्मा देखो पूरा झोरा भेजा है ना, पानी बोतल चबियानो भेजा है। कहन जो विनय भैया है सवेरे तेरे कार्यक्रम कर रहे हैं, भैया के यहाँ तनिक चबियाना चबुआ दे हो, भैया पानी ही पिया दे हो।
0: अरे अम्मा का राम राम, लेकिन जो है ओम तुमका ऐसे ना बताई नहीं है कि जो है चबियाना चबुआ पानी पिया दो। तुम तो यार हमका लगा पेट पिरवा दे भैया हमार। महाराज ऐसे नहीं होते
1: है। हाँ, तो खुदे रखे।
0: हाँ यही मारे तो बताए। देखो ओम एक बात बते, तुम्हार एक बात हमका बहुत नीक लाग है। वो मालूम है का?
1: हाँ बताए दो भैया।
0: जो तुम सबका देखो हिया तो ठीक है, लेकिन जब मिलत हो कहूँ मिली हो गाँव गिराव में यहाँ मिली हो तो भैया जो तुम नमस्ते प्रणाम करते हो यह चीज हमका बहुत नीक लागत है। और नमस्ते करब दूसरे के प्रणाम करब और जो है अपन मुड़ तुम झुका कर यहाँ जब
1: सम्मान करे भैया।
0: हाँ, बहुत अच्छी लागत है।
1: अरे भैया बड़े बूढ़े में देखो सम्मान करे चाहिए, सब देखो इतना ध्यान रखते हैं। अब जैसे अम्मा जब आना भेज दिन तो भैया भी ध्यान रखती हैं, तो हम पंचन पूरी या जिम्मेदारी बनते हैं भैया की सब क्या सम्मान करे है भैया।
0: हाँ ओम भैया सम्मान जो है सबका करे है, चाहे वो बड़ा हो चाहे वो बराबर के हो और चाहे वो छोट हो।
1: हाँ
0: तो हम बताए ना कि तुम्हारे जो है बात हमका बहुत नीक
1: भैया, सम्मान करी हो तो सम्मान मिली सीधी बात।
0: एक गवनी बिल्कुल तैयार है, सुन लीन जाए।
1: हाँ भैया
0: लौटा जाए।
1: हाँ,
0: तो बात नहीं है।
1: अरे भैया बिल्कुल

0: 100.7। मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा, NECC द्वारा जनहित में जारी।
2: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से। केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
3: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए 5 यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं। यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
2: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registration.tourist.uk.gov.in।
3: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी। 100.7।
4: हाँ भैया, 100.7 FM रेनबो पर आप
5: आए गए हो।
4: हाँ
5: ओम भैया।
4: हाँ
5: हाँ, आनंद कह रहे हो है, मजा ले रहे हो है कार्यक्रम सुगंध माटी के।
4: भैया इस गौने सुना एकदम झूम गए, एकदम नाचे ला गए। हाँ
5: तो नचियो नचियो का।
4: अरे नाचक तो है पूरा एकदम झमाझम।
5: मैं कहो तो हम नचवाई फिर तुमका।
4: हाँ अब तो भैया पहले
5: नहीं देखो, नाचब गौब खाब सोब बहुत जरूरी है।
4: अरे भैया ये सब काम करे चाहिए।
5: वही तन ज्यादा जरूरी ओम होत है आशीर्वाद ले। कैसे बताओ
4: अब आशीर्वाद? भैया सम्मान करियो तो आशीर्वाद मिली।
5: हाँ।
4: आशीर्वाद नहीं मिला भैया, बड़े बूढ़े का अगर परेशान करियो तो समझ लो कहा तो नहीं है। पहले कहा कर रहे हैं कि भैया सीधे शराब लाग जाये।
5: हाँ यह दम है आशीर्वाद भैया कि अगर कोनो शराब है ना तो वो कहीं हाँ पलट सकते है,
4: काट देते है।
5: हाँ, जैसे जो ना ये तो देखो तो पहले पिचरन मैया और पिचरन नहीं जो नहीं सीरियल आवत रहे ना, मुझे रामायण देखित रहा टीवी पर यहाँ और तमाम चीजें देखी था टीवी पर यहाँ, ऐसी बाढ़ आ रही ससर वैसी बाढ़ आ रही और लड़ी और जीत गए। हाँ, भगवान वाली
4: वो कह देता है भैया कि ब्रह्मास्त्र मार देने।
5: हाँ वह ब्रह्मास्त्र जो आशीर्वाद है ना वो ब्रह्मास्त्र आशीर्वाद जो है सम्मान करे मिलत है। एक तुमका हम यहाँ बात बतवाइया अपने जो है हमारी जिंदगी में यहाँ बहुत वो बात छुके नहीं करी।
4: अरे भैया बिल्कुल जल्दी बताओ।
5: देखो पहले जो हम यहाँ आयत रहन पूरे आकाशवाणी में।
4: अरे
5: शर्मा रहे हो?
4: अरे शर्मा का है
5: नहीं लागत है तुम का लगा शर्मा रहे हो।
4: बताओ भैया अपने घर में आए के कोनो शर्मा
5: तो देखो जब हम पहले यहाँ आकाशवाणी आयत रहन है तो यहाँ के ऊपर भैया बैठे थे तो उनके लगे जाई तो बातें हुए और अपन जो जब हम पंचे बैठे रहन तो वह कहे कि भैया यो बता दो ऐसे कैसे हुई, यो बता दो ऐसे कैसे हुई, तो वही बतावे। लेकिन जब हम बैठे रही तो देखी कि जब उनते को बड़ा आवे या उनते ओहदा में जब कोई बड़ा आवे ऊंचे वाला आदमी जब उनते मिले आवे तो अपन कुर्सी तिनी तिरछा कर ले।
4: कहे भैया
5: अब वह तो बताई तो वह बात है ना, तो जब तिरछा कह ले एक बार होगा, दुई बार होगा, चार बार होगा, हम बड़ा परेशान, हम बहुत परेशान, हम कहें कि यार ये कौन भाई आफती हमारे सामने ऐसे सामने बैठ रही है, जो हमारे भैया लोग और जो आवत रहा है उनके सामने बैठे रहा, लेकिन जब कोई बड़ा आवती है या इनते जब कोई ऊंच आवती है
4: तो
5: नहीं अपन कुर्सी तिरछा ले दी।
4: अच्छा
5: जो, लेकिन हम पूछू नहीं सके थे, पूछो काहे नहीं पूछ सके।
4: अरे हाँ भैया काहे नहीं पूछो,
5: ई मारे नहीं पूछ सके कि दादा हम पूछ ले पता लगे कोनो अंदर की बात हो, तुमते का मतलब है।
4: हाँ,
5: तो लेकिन जब थोड़ा समय बीता उनते तीनों व्यवहार बाबा
4: हेल मेल हो गया।

0: हमारे भैया, हम कहा भैया याक दिन है हम पुचकार दिखाए, हम कहें भैया पनामा नाम खीन हाँ। बात है भवन ओ वत्ते है समय एक जने आए उनते बड़े और उनते जो है जैसे आए तो वे उठे नमस्ते किए अपन कुर्सी तिरछा ले जब वे गए तो हमते रहा लेगा। हम कहा भैया यहाँ बात बताओ हम बहुत दिन से परेशान हैं,
1: तड़पाओ तुम भैया जैसे बिना पानी मछली
0: पानी मछली हम सोची थी आए का सबसे बड़ी बात है ना तो कहीं कहा होगा। हम कहा देवता यो बताओ कि जब हम पंचे बैठे थे हम हमारा साथी जब अच्छे हाँ। तुम सामने है बैठे रहते हो बतावा करते हो यह बात वह बात दुनिया की दिशा निर्देश दिन करते हो हाँ। ओ और जुने आवत हो सामने बैठ रहा हो लेकिन जब तुमते को बड़ा आवत है तुमते जो को ऊंचा आवत है तो अपन कुर्सी काहे मारे टेढ़ के ले थे महाराज इमा का है तो भी हंसे कहीं बिना देखो यह बात है यही सम्मान है।
1: अच्छा
0: हाँ कि जो हमसे बड़ा है हाँ, जो हमसे ऊंच है वही के सामने हम सीधा कुर्सी पर कैसे बैठ सके थे। उन देखो कितने अंदर की बात है ना
1: भैया।
0: देखो तमाम लोग ऐसे ऐसे लोग हैं जो इतना सम्मान करते हैं लोगन के यहाँ तो हम लोग जब मिले थे बातें करे थे हम दूसरे से जब हेल हेल होती है अपन बड़े हैं लड़का है चाची है बुआ है सब जनी है तो उनका भी जो है सम्मान हमका हर तना से करे।
1: तो भैया यो बताओ इस कौन सम्मान रहा है तिरछा करके कौन सम्मान दे रहा है।
0: वो यही जो बात है ना कि जब हमसे कोई बड़ा आवा जब हमसे कोई ऊंच है ओहदा में है तो उनके सामने बैठना जो है ना वो थोड़ा सा
1: भैया खड़े हो
0: लागत है हाँ। अंदर जो है ना वो अच्छा नहीं लागत है तो मारे वह कुर्सी अपन जो है तिरछा लेते हैं।
1: अच्छा
0: ये उनके मन की उनके सम्मान की जो है ना बात है। यही तना हम कहें ना कि यही तना लोग सम्मान देते हैं छोटी छोटी तना। तो चलो एक गवनई और है तैयार है बिल्कुल सुना जाए।
1: हाँ भैया बिल्कुल।

0: सच के 20 मिनट और 35 सेकंड का समय हुई गवाह है। आप है विनय यादव और ओम के साथ है और बिल्कुल मजा ले रहे हैं कार्यक्रम सुगंध माटी की मई। हाँ ओम भैया।
1: हाँ भैया।
0: का ऐसी आग तुम ऐसी वैसी तिरछा देख रहे हो
1: भैया? बताओ कौवा कार्यक्रम चल रहा हो है और एकदम श्रोता पंच आनंद ले रहे हैं। एकदम
0: श्रोता पंच आनंद ले रहे हैं और आप जो है जुड़ सकते थे वो हमारे साथ है।
1: अरे बिल्कुल,
0: ऐसा नहीं कि हम ही तुम आगे आगे भाग जो रेल गाड़ी का डिब्बा आए आगे हम पंचे बैठे इंजन बने।
1: हाँ।
0: और तमाम डिब्बा है और डिब्बा की शुरुआत कैसे हुई बताई, बैठे कैसे मालूम है डिब्बा में? यहाँ एफ एम आकाशवाणी लखनऊ @gmail.com पर यहाँ मेल करके
1: हाँ अपन संदेश भैया भेज दो।
0: हाँ संदेश भेजियो तो पता चली कि हाँ भाई हमारी गाड़ी मैया बिल्कुल सवारी बैठे टन टन टन टन चली जा रही है ठटक ठटक ठटक ठटक।
1: अब भैया रेलगाड़ी का नाम लेनो तो तुमका बताई अपने यहाँ जो मैको चचा नहीं है।
0: हाँ हाँ
1: मैको भैया का मैको चचा कहला कि ओम भैया यू बताओ तुम तो चुप्पे चुप्पे घूम आओ थे जाए के शहरे, लेकिन आग बात बताओ जो यहाँ गाड़ी चला थे रेलगाड़ी अहिमा हिचको लागत है का?
0: रेलगाड़ी में हिचका
1: हाँ
0: लागत ही है, अगर पकड़ के ना बैठे हो
1: हाँ
0: तो तुरंत जो ना सीट देने दम दी से हुई।
1: हाँ तो मैको चाचा का हम यू बताए की हिचका लागत हम कहा यू तुम पूछ का है रहे हो तो कहा भैया कबो अब हम बैठे ना यहाँ रेलगाड़ी पर
0: ले अब हम कहा बताए इनका वैसे कहो रेलगाड़ी लाइन वो जो ना पटरी खुदवा दी जाए का अब जो तो हम पंचे तो जोन कराए वह करवाए।
1: हाँ
0: मैको चाचा देखो मिले उनका हम कहा बताई काहे बेती कराए सबकी है बताओ गाँव में रह के उ लगे है ते रेलगाड़ी निकलते हो भाई बैठवा नहीं भाई।
1: हाँ टिकट कटा लेन करे और चले जावा करे, लेकिन भैया देखो अब गर्मी ही गए है एकदम चरम सीमा पर यहाँ है, मौसम तो बदल रहा कबो बरखा हो लागत कबो पाथर पर लागत कबो मार एकदम गमसी हो लागत है कुछ कहे नहीं। अब तो ऐसे कबो कबो भैया लागत है कि भुरार बहन सीधा दोपहरी हो गए
0: जी ठुक महीना भुरहार यो संजा दोपहरिया रात ये रुके रहो बयाना डोलावट डोलावट ना पता हाँ। चली यह है जेठ का महीना है और कहा जाए देखो जेठ का महीना है गर्मी तो हुई है और अगर गर्मी ना हुई देखो प्रकृति जो है अपने हिसाब से चलती है। अब जो बहुत गर्मी हो रही है गर्मी लागत है पंखा नहीं चला जो यू सब नहीं हुई भैया
1: करे तो कोनो काम चली है नहीं।
0: जेठ बैसाख है आषाढ़ अब देखो आषाढ़ में तो भाई तीनों तीनों पानी शुरुआत हो जाते हैं पर से लागत है पानी लेकिन
1: अब कबो कबो भैया ये सोजात कबो कबो कहो आषाढ़ सूखे नहीं कर जाए है तो भैया दो जात है
0: तो अब की दुगुना ज्यादा तपी है देखो बहुत जरूरी है लेकिन ऐसा नहीं है ओम की गर्मी पड़ रही है तो हम पंचे परेशान तो है होते है हन लेकिन वही जो है ना जागरूक जब रहे अपन खान पीन का ध्यान रखब लड़का बच्चन का ध्यान रखब महतारी बप्पा का ध्यान रखब तो गर्मी से निपट जाए। गर्मी तो हर साल पड़ी थी तो गर्मी अब की परी अगले साल फिर परी पिछले साल परी रहा है तो गर्मी तो का है टेरू।
1: और भैया एक बयाना लेके साथ है चला करो जब नई मान लो बत्ती नहीं आ रही तो भैया बयाना हकावे लागो साथ है साथ है और वही के साथ देखो अब गर्मी क्या जैसे मौसम चल ही रहा है तो भैया छुट्टी हो जाते है और भैया अपने गाँव घर में घूमे जाओ हम भी आ जाओ आम क्या बाग हो ना वही खटिया परी है पानी भरा हुआ बाग में मतलब सगरे सुख मिल जाते हैं
0: तुम ये पकड़े उनका लागत बागिया में।
1: हाँ हाँ लेकिन भैया एक काम हो जाते है गर्मी जैसे जैसे बढ़त है वैसे वैसे भैया मसा आज डेंगू दिवस मना रहे हो?
0: हाँ मनावा तो है।
1: हाँ
0: अब इन्हें मनाया
1: हाँ तो भैया जो है मसन तेरे बचे के

0: मसंत तुमका ओम यहाँ बात हम बताई आदमी कहा थी मसंत बचो अरे दादा मसा अबे कहो तुम पैंट उठाओ तो कहो नीचे तेने निकले चे अपन गाना सुना कहीं
1: इस लागत कि भैया कुछ बतावे चाहते हैं तो हम हैं
0: हाँ तो जैसे जो है जागरूकता जो एक खातिर बहुत जरूरी है कि साफ सफाई रख है और जो चीजें हैं
1: पानी ना भरन दो
0: पानी ना भरो जिससे मच्छर नहीं आवे पनपे ना वो काम करे
1: और मच्छरदानी भैया लगा लियो
0: मच्छरदानी लगा लियो ओढ़ लियो चदरा दादा वो का बताई है चलो अच्छा एक गवलाई तुमका और सुना दे हम
1: हाँ हाँ हाँ भैया
0: तो भाई आनंद ले रहे हैं ओम भैया हमारे साथ है और 10:25 25 सेकंड का समय हुई गवाह है
1: विनय भैया है

0: या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
1: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से, केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
2: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए पांच यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
1: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in।
2: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
3: ओम भैया।
4: हाँ विनय भैया।
3: पूरे 10:30 बज गए।
4: हाँ
3: पूरे 10:30 बजे हैं और आप सब जने सुगंध माटी की मैया हो। और भाई कुछ कहा चेहरो का बात है बताओ।
4: हम देख रहे हैं इतनी देर से भैया, यू बताओ तुम फोन मका देख रहे हो।
3: अरे फोन हम तुमका का बताए, का देखे थे महाराज, आजकल तो फोन ना बताओ, हम देखे थे कि कोको फोन देख रहा। ओम याक बात है।
4: हाँ
3: याक बात है, याक समस्या है।
4: समस्या जरूर बता दो भैया, समाधान तो वही निकली।
3: समाधान तो वही निकली दादा, समस्या यह है कि ये फोन चली गया है, चली नहीं गवा है,
4: चली नहीं गवा,
3: दौड़ रहा है।
4: अरे दौड़ रहा है, जैसे देखो वैसे सब फोन ही फोन दिखा रहा है,
3: फोन ही फोन दिखा रहा है। लेकिन देखो जितने में फायदा है नुकसानों हर चीज की है, कहना कि अगर अति करी हो तो क्षति हो जरी।
4: हाँ तो
3: भाई लेकिन अब जो फोन ऐसी चीज है कि भाई 24 घंटा साथ है रहा, जब मनुभवा जतने खन मनुभवा तो फोन देखा शुरू होगा। ओ एक बात और बताई तुमका।
4: हाँ।
3: फोन देखा तो ठीक था, अब तक का फोन है टे टे टे चल रहा। अब वही मां जो उन वीडियो बनावती है भैया, हो रील। समझ रहे हैं ना तुम, जो है कहाँ पहुँच रहे हो। रील
4: हाँ भैया, रील देखो देखो।
3: रील की आप बात बताए।
4: हाँ बताए दे,
3: जल्दी तेने
4: जल्दी जल्दी बताओ।
3: हम जो है ना परसों गए ना काकोरी, काकोरी जाना था ना
4: ससुरारी,
3: काकोरी मौसिया रहते हैं यार, तुमको हुआ है ससुरारी। अच्छा। पीछे पर
4: भैया आज कल लोग मनाई है ना, वो सीधा घर से छुटाते हैं तो सीधा ससुरारी।
3: नहीं ऐसी बात नहीं है। अब मौसिया कुआ गए, मौसिया गए जगन्नाथन। कहीं की जो है प्रसाद ले जावा, हमका फोन करी मौसी, फोन करी सा कहीं की जो है विनय आयो प्रसाद ले जावा, तो हम कहा चलो ठीक अच्छा भाई प्रसाद ले आई चले। तो घर गए तो मौसिया मिले, मौसी मिली पे लगाई भाई बातें भाई, ओ भाई चाय पानी बाबा।
4: हाँ?
3: उनके दुई बहुरिया हैं, बड़काई वाली पानी शरबत सब लेके आई, पाए लगी करें मारे आशीर्वाद देनी हमका। और जानो फिर कब हुआ,
4: कब हुआ,
3: हम कहा अच्छा मौसी आप चली, मौसी चला जाए भाई अब दोपहर हो रही, कहे नहीं बिना खाए तुमका जाए का नहीं है। तो हम कहा देखो अब हमारे भूख नहीं ला, खाना वाना ना खाओ दादा।
4: हाँ।
3: पता लगा गर्मी हो
4: गर्मी नुकसान कर
3: नुकसान लग गया। तुमका बताई रास्ता में जब हम जाते रहन तो खास तक दुकान देखे रहन
4: तो मन नहीं वाना
3: है। कि जो है लौटप तो कसता होता कस दिन जाइए, वह मन में बसा रहा है। लेकिन मौसी मौसी या तो भाई मौसी जानो महतारी तना।
4: हाँ भैया, और नए जमाने जो नमरत हुआ भैया, वही ते तो स्वागत होते हैं चाय तेरे।
3: नहीं तो हम कहा नहीं हम खाना ना खा, वही खस्ता बसेरा है मन में हमारे।
4: हाँ।
3: तो मौसी कहे नहीं अगर खाना ना खाइयो तो देखो सेतुआ रखे हुई, तो तुम सेतुआ खा लो तीनों थोड़े से, और मौसिया खाना खा ले। तो हम कहा चलो ठीक है अच्छा भाई, अब ना मनियो ज्यादा चिरौरी कह रहे तो ठीक नहीं लागत भाई, मना कर रहा है तो ज्यादा नौटंकी दिखाओ। तो भाई मौसी हमार गए पता नहीं कहा बताए सी, तो अब आई छुटकई बहुरी वा उनकी खाना लेके और ड्याल हाथ घूंघट, और हमते तो बड़ी हम मन्नत गौरवम पहुंच हुआ। हाँ गौरवम पहुंच हुआ।
4: अच्छा
3: हाँ तो आशीर्वाद दी, तो खाना धरिन और सतुआ धरिन, और जब चली गई तो मौसिया जाने का कहा मौसी तेने
4: का कहना,
3: यह तो काली मैके गए रहे अपने। तो मौसी कहती तो मैके गए रहे तो तुम्हारे का होगा।

0: का परेशानी हो तुम? सबसे बड़ी बात, तुम तो काल रेल पर रहो, आवती रहो, तुमका कैसे पता चला कि या मैके गए रहे, आई है गई है नहीं, कब हुआ? तो कहते हम
1: इतना संस्कार भैया घूंघट
0: फोन हम कहा थे, हम फोन हम देखें जो तुम नाम ले हो रील में। अरे दादा तुमका बताई ओम, हम ना हमारे हंसे हंसाई ना रोए रोआई। देखो हम बंचे कहा है, अबे भी गावन में, या गाँव का है, शहर की बात करे, हर जगह की बात करे, जो बहुरिया है, बिटिया है, इस सब लोग जो है अपने घर में सबका सम्मान करते हैं, हर तरह से सम्मान, सास ससुर का, चचिया ससुर, फुफुआ ससुर, मौसिया ससुर, चाहे जो सम्मान करते हैं,
1: हाँ
0: और हर तना तेने जो है अपने घर का चलाते हैं। लेकिन जो जो रील बनावे वाली जो बात कहे हो ना, प्रथा चली गए, तो अब देखो तुम रील बनाओ घर में ढाड़ हाथ घूंघट काले हो, आए उमा चचियो ससुर देख रहे, वो देख रहे, फूफू कहे फलनवक बहुरिया दिया, देखो रील चल रही है,
1: तो सगरा सम्मान धरक धरे रही।
0: हाँ, तो देखो इतना सम्मान तुम्हारे जीवन में आप जो है बना रही हो, चारों तरफ सब चीजें चल रही है, तो वही का देखो फोनों में बहुत सारी चीजें होती
1: हैं।
0: अगर तुम नहीं समझ पा रहे हो है, नहीं चला पा रहे हो है, तो कोनो अपने दोस्त को यहाँ बुलाए, साथी बुला लो, उनसे कह दो कि भैया माँ इनका जो है, इनका मौसिया का हटाओ, पापा का हटाओ, चाचा का हटाओ, इनका जो है ऐसी कुछ बना दो सिस्टम कि भाई माँ जो है उन तक तुम्हार फोटो रील इस अपना पहुंच।
1: अब विनय भैया यह हो गाना कि मैंने कहूँ जात है तीन को गवाह कहूँ, तो भैया पहले कुछ ना करी लेकिन पहले रील बना दन दिडा दी।
0: हाँ।
1: तो अब कुछ पूछे जरूरत नहीं है, बस देख लो कहाँ घूम रहे।
0: देखो अब बड़ा मंगर है।
1: हाँ।
0: चल रहे जय जय बजरंग बली तो चल ही रहा।
1: हाँ।
0: लेकिन फोनो साथ हम चल रहा बजरंग बली कह रहे आओ आओ चले आओ दादा तुमका हम
1: भंडारो चल रहा आ खाते भैया वो पकड़े है प्रसाद और भैया बना रहे वीडियो।
0: तो अच्छा चलो ठीक है ओम, एक गवनई और बिल्कुल तैयार है सुना दे तुमका।
1: हाँ भैया बिल्कुल
0: नचियो।
1: अरे बिल्कुल देखो खड़े हो गए हैं पहले
0: ले, ले, ले, ले, ले, ले, ले, ले।

0: भैया 10:41 का समय हो चुका है और आप सब जने बने हो सुगंध माटी की मैया कार्यक्रम मैया और ओम भैया।
1: हाँ अभिनय भैया।
0: तुम यार लागत है कि ऐसी वैसी तिरछा वर्छा देखा करते हो
1: भैया। देखो चारों तरफ निगाह रखे चाहिए और आपका बताए ना।
0: बहुत गजब की बात कहे हो चारों तरफ निगाह रखे।
1: अरे भैया
0: देखो जब हम पंचे चले रहन ही आते हैं जब चले रहन तो का कह रहन।
1: अरे रेल गाड़ी वाली
0: इंजन बबाईते है ना वो डब्बा लाग है वो हमारे पंचन साथ है हमार जो दोस्त है साथी है हाथी है यार है देवता है दयाओं है पीतर है ये सब जो ने रेलगाड़ी में बैठ नहीं बैठ और देखा जाए।
1: हाँ।
0: देखो मेल के हम कह रहे हैं कि तो पचे जो है अपन संदेश भेजो मेल भेजो तो भेजिन है जग्गर राम साहू भैया नागर कोहरा जिला छत्तीसगढ़ से बबलू साहू जामुन प्रेम दुष्यंत प्रांजल। अरे बहुत जने मेल करीन है बहुत बहुत धन्यवाद भैया।
1: भैया ये देखो इंद्रपाल मिश्रा भैया भेजिन है अमृता मोहली सीतापुर से लिखा है नोम भैया विनय भैया राम राम और लिखा है सगरे जो ग्रामीण श्रोता है उनका सबका बहुत बहुत धन्यवाद और कार्यक्रम बहुत पसंद आ रहा है।
0: अच्छा
1: हाँ।
0: अशोक कुमार भैया लिखिन है रायपुर ओडारा मितौली लखीमपुर खीरी से झक्कास लागे रहा है इनका।
1: हाँ।
0: अच्छी बात है। और सिमरन मेल करी ने लिखती है कि नमस्ते ओम भैया और विनय भैया आज तो आते ही धमाल मच गया। अरे दादा यही मारे तो हम आए थे कोशिश करी थी है कि भाई आई तुमका पंजन के नीक ला गए।
1: हाँ।
0: के अलावा देखो
1: धर्मेंद्र विश्वकर्मा भैया लिखा है दोनों जनन का राम राम कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है तो भैया इसे सुने रहो।
0: राजेश कुमार जी भैया के लिखे थे कि आपका स्वागत है और जुताई करके आए अच्छा खेत को
1: पानी आने भैया पी लो गुड़ खा लो
0: आराम तेने जो है और खरीफ की फसल की बुआई में धान की फसल की नर्सरी। हाँ देखो ये सब चीजन की जरूरत है और हमका करेक्ट चाहिए। अमित यादव का मेल है कहा लिखते है राम राम लिखते है भैया राम राम और कहाँ से मेल किए भाइयों ने लिखो
1: ये भैया बारह बंकी शायद गेम है ना
0: पता नहीं कहा लेकिन यहाँ बताए नहीं कुछ बात लिखते हैं यू नहीं बतावत कहाँ ते नयन आसिफ भैया मेल करीने लिखते हैं आसिफ अंसारी हैदराबाद तेलंगाना से सुन रहे हैं। हाँ। अच्छा लग रहा है अच्छा लग रहा है तो नाचो मेरे साथ।
1: है? हम तो नाच रहे हैं भैया है
0: नौका
1: झूमे जा रहे हैं। और घनश्याम भैया लिखा है इनकी जो है फैजाबाद रोड लखनऊ तेरे लिखा है और कह रहे हैं कि भैया कार्यक्रम अच्छा लग रहा है और भैया साफ सफाई रखो।
0: हाँ और देखो रोशनी मेल कह रही है कितनी राम राम विनय भैया राम राम ओम पर ओम भैया की जो है राम राम लिखी ने आप
1: भैया चंडीगढ़ तेरे कार्यक्रम सुन रही है
0: दीदी नीलू शर्मा और बबीता सब जने हैं और इसके अलावा शैलेश कुमार भैया क्या कहते हैं बताओ
1: भैया शैलेश कुमार भैया के अंदर है नीलू शर्मा।

0: रूप चंदेला तरह भेजा है और ये लिखा है कि जो उन कार्यक्रम हुए माटी के सुगंध बहुत अच्छा लग रहा है, जो उन जोड़ी है ओम भैया और विनय भैया के वही राम राम और बहुत निक लग रहा है।
1: और भाई के अलावा देखो बहुत सारे मेल हमारे पास और है और 10:44 का हुई है समय हुई चला है। पवन पाल, शैलेश, अनुज मेल करी ने कहा लिखे ने गुड मॉर्निंग और कार्यक्रम इनका अच्छा लग रहा है मुझे गाना रे दादा हिया हम पंचे मार सोची तेन की भैया लोगन के ठीक लागे नीक लागे गाना बजाए ई मार अपने हम घर खेत जोते डाले गाना। अब बताओ हम फरमाइश बजाई तुम्हार की हिया हम तुमका बढ़िया बढ़िया अरे ऐसा बढ़िया गाना
0: बना बढ़िया हमारे झूमे जा रहे हैं भैया देखो सब श्रोता मुंह पंचे मार
1: नहीं ठीक करो। हाँ नहीं ठीक करो बताओ देखो जुड़े हो भाई फिर 2 बजे हमारा कार्यक्रम होते हुआ जो है गाना पठाओ अपन। पवन पाल का लिख रहे हैं
0: हाँ भैया बताओ
1: बाजार सुकुल अमेठी से मेल करी ने राम राम लिखे ने भाई राम अच्छा। राम और विनीत कुमार लिखते हैं कि अर्थापुर पोस्ट रामगढ़ चीनी मिल जिला सीतापुर से मेल करी ने जिला सीतापुर से हाँ अच्छा और सुगंध कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है और धन्यवाद दीन ये भैया धन्यवाद
0: भैया ये वकील अहमद भैया भेजा है ये लिखा है की भैया अरबी की गुड़ाए हुए चले अरबी तो जानते हो भैया
1: अरे काहे नहीं
0: अरे भैया अरे भैया भैया गुड़ाई चल रही है और ये कटका हथूरी सीतापुर से भेजा है भैया।
1: और भाई के अलावा सुनील सिंह इटाउआ कैसरगंज बहराइच से मेल करी ने और सुगंध माटी कार्यक्रम सुन रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़े खातिर सुनील सिंह भैया। और गीत बिल्कुल झमकौआ
0: बिल्कुल
1: आइस है कि तुमका यू न कहा पड़ी कि हमका यू वाला गाना सुनवा दे वो वाला गाना सुनवा बस बस बस शुरू हो जाओ लगाओ
0: भैया
1: लगाओ

0: देखो ओम।
1: हाँ बेना भैया।
0: जब गाँव नहीं सुना चाहे ना गाना एम देखो जो दीदी हैं भौजी हैं का भैया तेने मंगाओ की हमका यो चाहिए हमका वो चाहिए हमका यो चाहिए
1: करकटी वाली साड़ी जो है केलाई।
0: तुम बहुत ध्यान से सुनत है।
1: हाँ और भैया देखो खींचातानी तो होने करत है।
0: हाँ खींचातानी नहीं देखो खींचातानी वो तो अच्छी बात है अलग बात है। आज जो है वट सावे

0: मैत्री का बढ़ते रही हैं सब जने। तो तमाम तना तेने सिंगार करीन है, साड़ी पहनी है और हम कहा बताई टिपली बिंदिया और बिछिया सब चीजें जो है पहने हैं और तना तना ते सिंगार कर। जो त्योहार है हमारे पंचांग के, जैसे आज का त्योहार है तो यो पति की जो है लंबी उम्र खातिर रखा जावत है। और जो त्योहार है अपने देश में जो त्योहार मनाए जाते हैं तना तना के, ऐसे तो अच्छे लागत यार ये दादा त्योहार वारा यो आई अब यो करब यो आ रही यो करब। लेकिन अब देखो पांच महीना पांचवे महीना में पंचे हन मही चल रहा। अब देखो पहले खिचड़ी भाई शिवरात्रि भव होली आई नवरता भय आए वही के बाद ही फिर जो है निवर्तन के बाद जगन्नाथन की पूजा भय
1: बड़ा मंगल चली
0: बड़ा मंगल चली ना। देखो आज बड़ सावित्री को बड़ तो है देखो अहिमा जो है ऐसे तो ठीक है कि भाई त्योहार आए आपका पंजन सबका जोड़े रहते हैं लेकिन अम्मा वार खैंस करे रहती हैं। जहाँ चार दिन बीते अब यो सामान लावा है फोन करिए हेलो कहाँ कह रहे हो अरे हम कहा बताई दूंगा अच्छा ठीक है तुनुक जो है रवा लेते आओ अब कहा होगा अरे पंजीरी भूजे गए तो तो देखो त्योहार हमका सबका जोड़े रहा थे।
1: और यहाँ चीज देखो पंजीरी मैया जब भैया पंजीरी फाको महिमा और वही के बाद जब फा बोलो तो वह पंजीरी सगरी आ जाते बाहर
0: नहीं देखो प्रसाद है बाहर न करो तो जो है अच्छी बात है। और त्योहार की देखो त्योहार की बात करें जैसे सब जने आज बढ़ते रही हैं और भाई हमारी तरफ से आकाशवाणी परिवार की तरफ से सबका बहुत बहुत शुभकामना और सब जने बढ़ते रही है और भाई सबकी मनोकामना पूरी
1: हो। भैया सब जने जो पति है उनकी लंबी उम्र होए आयु होए।
0: हाँ वो हम याद चीज बताई तुमका जैसे मैंने बताई थे इनकी म्याले जाते हैं मंदिर जावत हैं सब जने रील बनावत तो आज जाने बहुत जगह यो होती बहुत जगह नहीं लगभग हर जगह होती है मालूम है जो तमाम बहुरिया होती हैं तो वी घर में इसे अपने चाचा कुआं वी चाचा वी चाचा वी चाचा वी चाचा आए तो सासू जो है ना जो सास होती अम्मा होती दबाए रखते हैं कि बताए ऐसा करो उनकी बहुरियत ना बतलाओ उनकी बहुरियत ना बताओ बहुत तुम बातें करती हो तुम
1: अच्छा
0: ऐसा कहीं। लेकिन जब इतना मौका आवत ब्याह हो या इतना के बवा अरे दीदी तो हम तो जानी तुम नहरिया वाले बरगद के तरफ गए तुम तो ऐसी है और दीदी खुश की आज तो जो है भैया
1: आज मिल गए अम्मा रोज भैया टोक देते
0: यही देखो यही जो है प्रेम है यही व्यवहार है और यह है आपस में यहाँ सबका थमका सबका ज्वाला था त्योहारन के माध्यम से।
1: हाँ भैया
0: एक गाना
1: हो भैया देखो घड़ी कितनी तेज चल रही है।
0: अरे घड़ी घड़ी चले तो गाना सुने तो पहले हुआ इतना मजा आवत तुमका हुआ घड़ी देखा तो है कहाँ जाए तुमका
1: जाए कहाँ
0: गाना सुनो गाना, गाना, गाना सुना हो तुम कहाँ परेशान हो

0: ओम देखो 10:55 हो गए हैं और जो भैया हमारे पंजन साथ है रेलगाड़ी मैया है ना
1: वही
0: पंचे इंतजार कर रहे हैं कि उनका नाम नहीं ले रहे टिकट कटाए ने और नाम नहीं ले हो तो फिर गुस्सा जी है
1: तो यही गाड़ी मैया देखो बबीता राव बहनी अपन जो है ईमेल भेजा है नी गोसाईगंज लखनऊ तेरे और लिखा है ना आपके प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है और जो है पापा भाई रजनीश बहन विनीता रोशनी रावत नीलू सब जने बड़े सिद्धत तेरे सुनने हैं।
0: आकाश कुमार भैया मेल करीन है लिखते हैं मुरारपुर दरियाबाद बाराबंकी से और जो है आप तारीफें लिखो भैया बहुत अच्छी बात है। आकाश कुमार ब्रजेश भैया मेल करीन है अजय सिंह भैया मेल करीन है प्रिंसी मेल करीन है कहा लिखती हैं विजय लक्ष्मी कुशवाहा सांडी जनपद हरदोई से मेल करीन है नमस्ते लिखीन है और कार्यक्रम इनका अच्छा लग रहा है अच्छी बात है। और अजय सिंह सोनकर भैया मेल करीन है कहाँ से करीन है और सीतापुर से मेल करीन है हमका बहुत बहुत आभार। लेकिन भैया जो देखो एमके राज का नाम है इनका मुनेश कुमार सीतापुर से वो मेल लिखी है
1: और भैया ये सोनू परवाना भैया लिखे हैं अंजू बहनी के यहाँ याद कर रहे हैं तो भैया संजक सुनो
0: आई हैं बतल आई हैं चार बातें करी है चार बातें सुनाई है। चलो 10:56 का समय हो गया है और भैया जो है अब ओम तुमका चलत पड़ी
1: भैया देखो मन तो बिल्कुल नहीं कर रहा चले क्या है आई एकदम आनंद आए जाते अपने श्रोता पंजन से मिलके आई लागत है कि बस बैठे रहो
0: लेकिन भैया जो है समय है ना समय के साथ हमका सबका चले
1: तो भैया सब जने अपन ध्यान रखो है फिर बहुत जल्दी मिला जी
0: 10:57:12 का समय हो चुका है कार्यक्रम
1: का भैया राम जोहार
0: सुगंध माटी से हम अब विदा ले अब लेकिन न्यूज पढ़ के फिर वैसी मुलाकात करी थी अच्छे अच्छे गाने के साथ।

0: नमस्कार अभिनंदन, मैं वृंदा लेकर हाजिर हो चुकी हूँ आपका अपना फेवरेट प्रोग्राम हमनवा। और आज मेरे साथ है हमनवा प्रोग्राम में मेरी दोस्त, मेरी हमनवा कौसर।
1: हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, और आप सभी को कौसर का प्यार भरा नमस्कार। और आपको क्या ही बोलूं कि बस जब हम लोग स्टूडियो में आते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारे जो श्रोता हैं वृंदा, वो हमारा बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं ना।
0: जी बिल्कुल, कर रहे हैं इंतज़ार। और हमारे लिसनर्स जो है ना, वो आज के हमनवा प्रोग्राम में बहुत कुछ खास जो होने वाला है ना, वो जानने के लिए भी एक्साइटेड हैं कि आज क्या लेकर आए हैं हम उनके लिए।
1: तो बिल्कुल, आज कुछ दिवस हैं जो हम लोग साथ में मिलकर मनाएंगे, जैसे आज है सिक्किम दिवस, है ना।
0: जी, साथ ही इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस और इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट,
1: और हिंदी भाषा के रत्न मुहावरे और लोकोक्तियों को करेंगे, मतलब उन पर कुछ बातें करेंगे क्योंकि हम लोग ने बचपन में बहुत इनको पढ़ा हुआ है। साथ ही साथ शेयर करेंगे एक बढ़िया सी रेसिपी, क्योंकि जब खाने पीने की बात ना हो तो फिर तो अधूरा सा लगता है प्रोग्राम।
0: तो आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं, आपके मन में जो कुछ भी ऐसे थॉट्स चल रहे हैं, कुछ मुहावरे लोकोक्तियां चल रही हैं, या फिर इन डेज के ऊपर अगर आप कोई बात करना चाहते हैं तो वो भी हमसे शेयर कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है,
1: बिल्कुल आप अपने विचार हमसे शेयर करिए, हमारी ईमेल आईडी है airkansomedia@gmail.com।
0: बिल्कुल कौसर, अभी जहां हमारे लिसनर्स हमें इस टाइम ईमेल करने की तैयारी में जुटे होंगे, और वहीं हमारे देश में बहुत सारे ऐसे बदलाव हो रहे हैं जिसकी तैयारी हम भी करने में, हम सभी देशवासी करने में लगे हुए हैं, जुट गए हैं एक तरीके से कह सकते हैं। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री की अपील पर अब अमल करते हुए दिल्ली में आज से मेरा भारत मेरा योगदान कैंपेन भी तो शुरू हो चुका है।
1: बिल्कुल शुरू हो चुका है, तो हमारा उत्तर प्रदेश भी कहां पीछे रहने वाला है वृंदा। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रियों और अधिकारियों के काफिले में 50% वाहनों की कटौती के निर्देश भी दिए हैं।
0: बिल्कुल, और साथ ही सरकारी विभागों में सप्ताह में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा देने और 50% मीटिंग्स को ऑनलाइन करने की योजना पर भी अमल शुरू हो गया है कौशल।
1: बिल्कुल, और साथ ही प्रदेशवासियों से बिना जरूरत सोने की खरीदारी ना करने और पेट्रोल डीजल की खपत कम करने को भी कहा गया है।
0: अच्छा, ज्यादातर पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो होता है उसको यूज करने के लिए कहा गया, जैसे आप मेट्रो या बस का इस्तेमाल ज्यादा करें, इसकी भी अपील की गई है।
1: अच्छा, यहाँ पे वृंदा मुझे याद आया कि इस टाइम पे लोग अपना साइकिलिंग वाला शौक भी पूरा कर रहे हैं, इससे शौक भी पूरा हो जाएगा। और जो ये आह्वान किया गया है पेट्रोल डीजल दोनों की खपत कम करने को, वो भी पूरा हो जाएगा, है ना।
0: बिल्कुल होगा, और हेल्थ भी अच्छी रहेगी,
1: हेल्थ भी अच्छी रहेगी। साथ ही सरकारी दफ्तरों में बिजली कम खर्च करने और सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए भी कहा गया है।
0: तो देश को आगे बढ़ाने में हम सबका योगदान कितना जरूरी है, हम सभी जानते हैं, तो आइए हम सब मिलकर इसमें भागीदारी निभाएं।
1: और सभी इस बात का ध्यान रखेंगे और एक जागरूक नागरिक होने का फर्ज निभाएंगे इन बातों को ध्यान में रखकर।
0: तो कौसर, अब हमारे लिसनर्स ने ये सब बातें तो सुन ली हैं और कहीं ना कहीं इसको वो ध्यान रखेंगे, तो हम भी एक बढ़िया से गाने के साथ हम नवा प्रोग्राम की शुरुआत क्यों ना कर दें,
1: और हम भी अपने श्रोताओं का ध्यान रखकर ही ये सॉन्ग प्ले कर रहे हैं ना, क्योंकि हमें पता है कि वो इंतजार कर रहे हैं एक सॉन्ग का भी।
0: जी

0: वृंदा अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, ये जो सॉन्ग है ये कहीं ना कहीं एक संदेश भी देता है ना।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि जिंदगी बहुत कीमती है, तो अगर छोटी है या बड़ी ये जिंदगी कोई देख के नहीं आया, लेकिन हाँ जितनी भी जिंदगी मिली है उसे क्यों ना हंस गा के बोल के मुस्कुरा के और बहुत ही अपनेपन से गुजारा जाए
1: और अपनों के साथ गुजारा
0: जाए। अपनों के साथ गुजारा जाए। और वृंदा यहाँ पर अच्छा ये पूछना चाहेंगे तुमसे,
1: क्या
0: कि हर लड़की के दो घर होते हैं,
1: हाँ,
0: है ना। अभी तो ठीक है अपने, जब तक लड़की थोड़ा सा उसकी शादी नहीं होती है, मैरिज नहीं होती, तब तक वो अपने घर में गुजारती है, लेकिन उस आफ्टर मैरिज उसके दो घर हो जाते हैं और दोनों घर को देखना पड़ता है।
1: हाँ,
0: अच्छा चलो एक बात और बताओ, आज सवाल पे सवाल पूछ रही हूँ कि जो उसका दूसरा घर होता है यानी कि उसके जो इन-लॉज का घर होता है, उसके पति का घर होता है, तो सबसे ज्यादा उस घर में उसे अपनापन किससे चाहिए होता है?
1: वैसे तो सभी फैमिली मेंबर्स के साथ, लेकिन अपनी जो सारी बातें हैं वो शेयर कर सकती हैं अपने पति के साथ,
0: मतलब सबसे ज्यादा अगर पति सही है तो फिर सबके साथ बहुत अच्छे से मिक्सअप वो लड़की हो सकती है ना। और पति से बात की है तो पति के नाम पे कुछ याद आ रहा है
1: जी, और आज है वट सावित्री व्रत, जो आज हमारी महिलाएं जो हैं अपने पतियों की लंबी उम्र के लिए आज ये सेलिब्रेट कर रही हैं। और हम बताना चाहेंगे कि सावित्री ने अपने पति को यमराज से बचाने के लिए जब ये व्रत रखा था, 16 श्रृंगार करके ये व्रत में उन्होंने जो है वट यानी कि बरगद के पेड़ की पूजा की थी, और उसी के बाद से यमराज से वो अपने पति को बचा पाई थी, और तब से ये चली आ रही है प्रथा इस व्रत को रखने की।
0: अच्छा मतलब यही हुआ ना कि

0: कि अगर पत्नी के प्यार में और उसको अपने विश्वास में इतनी ताकत उसके अगर हो तो वो यमराज से भी अपने पति के प्राण छीनकर वापस ला सकता है ना। और उसी अमर प्रेम और समर्पण की याद में ये व्रत भी किया जाता है ना वृंदा?
1: बिल्कुल किया जाता है। और देखो कौसर, महिलाएं जो हैं वो देखो कितनी ज्यादा कहना चाहिए कि अपने काम के प्रति और अपने प्यार के प्रति डिटर्मिंड होती हैं। अब निर्जला व्रत रखना आसान होता है?
0: बिल्कुल भी नहीं होता है। अच्छा ये बताओ वृंदा, तुमने निर्जला व्रत की बात करी, तो जैसे आज जो पत्नियां हैं उन्होंने व्रत रखा होगा तो ये इसको खोलेंगी कब?
1: हाँ, बरगद के पेड़ की परिक्रमा की जाएगी, उसकी पूजा की जाएगी, कलश बांधा जाएगा।
0: अच्छा।
1: और उसके बाद कल ये व्रत खोला जाएगा। अब आप सोचिए कि कितना ज्यादा ये अहम और कितना ज्यादा कठिन है ये व्रत।
0: अच्छा, मैंने भी एक आध बार देखा है ये, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड है, जब वो जाती थी तो हमें बड़ा इस चीज की क्यूरियोसिटी होती है कि क्या क्या होता है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है सब चीजों के बारे में जानने।
1: बिल्कुल, है ना, अपने प्यार के प्रति डिटर्मिंड होती है। अब निर्जला व्रत रखना आसान होता है?
0: बिल्कुल नहीं होता है। अच्छा ये बताओ वृंदा, तुमने निर्जला व्रत की बात करी, तो जैसे आज जो पत्नियां हैं उन्होंने व्रत रखा होगा तो ये इसको खोलेंगी कब?
1: हाँ, बरगद के पेड़ की परिक्रमा की जाएगी, उसकी पूजा की जाएगी, कलश बांधा जाएगा।
0: अच्छा।
1: और उसके बाद कल ये व्रत खोला जाएगा। अब आप सोचिए कि कितना ज्यादा ये अहम और कितना ज्यादा कठिन है ये व्रत।
0: अच्छा, मैंने भी एक आध बार देखा है ये, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड है, जब वो जाती थी तो हमें बड़ा इस चीज की क्यूरियोसिटी होती है कि क्या क्या होता है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है सब चीजों के बारे में जानने।
1: बिल्कुल,
0: है ना। तो मैं उसके साथ गई तो मैंने देखा कि महिलाएं खूब 16 श्रृंगार एकदम दुल्हन की तरीके सजती हैं और जो बरगद का जो पेड़ होता है उसमें जल चढ़ाती हैं, फिर फल और मिठाई भी अर्पित करती हैं और उसमें रोली और मोली जो होती है वो बांधती हैं और फिर पेड़ की परिक्रमा करती। मुझे वो देख के बड़ा ही अच्छा लगता है। और सही बात है कि इस दौरान मैंने देखा कि जो सावित्री और सत्यवान की जो कथा है ना वो भी सुनी जाती है।
1: हाँ, बिल्कुल सुनी जाती है, ताकि एक मतलब कहते हैं ना, कोई भी कथा जो है उसके पीछे एक कुछ ना कुछ स्टोरी छुपी होती है, एक इंस्पिरेशन छुपा होता है।
0: बिल्कुल,
1: तो वो भी कहीं ना कहीं हमारी महिलाओं को अपने प्यार के प्रति और ज्यादा गहन, मतलब कहते हैं कि रिश्ता निभाने की जो है प्रेरणा देती है।
0: पति पत्नी का रिश्ता होता ही ऐसा है कि उसको अपने प्यार से ही गहरा किया जा सकता है।
1: बिल्कुल किया जा सकता है। तो अभी हम अपना रिलेशन अपने लिसनर्स के साथ और गहरा कर दें।
0: हाँ बिल्कुल कर दे, और हमें पता है तुम्हारा इशारा किस तरफ जा रहा है, तो एक बढ़िया सा सॉन्ग सुनवा कर ये रिश्ता गहरा बिल्कुल कर रहे हैं हम, और बहुत ही खूबसूरत सा ये सॉन्ग है
1: जी। एंजॉय कीजिए हमारे साथ हम नवा प्रोग्राम में।

0: तो फिर अपना ही कैसा।
1: हाँ, और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सिर्फ हस्बैंड्स की नहीं, आपके जो बहुत ही क्लोज वंस हैं वो भी आपकी बात को समझेंगे अगर वो आपके अपने हैं। और मुझे लगता है कि आज का दिन वही हमें कहीं ना कहीं याद दिलाता है,
0: बिल्कुल,
1: एक इंसानियत का सबसे खूबसूरत सीख दे जाने वाला दिन है आज, जिसे आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, और वो है इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस, यानी कि शांतिपूर्वक एक साथ रहने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस।
0: बिल्कुल, और देखो ना वृंदा, हम सभी जानते हैं कि आज दुनिया बहुत आगे बढ़ गई है, मोबाइल स्मार्ट हो गए हैं, शहर बड़े हो गए हैं, लेकिन जो दिल है ना वो कहीं ना कहीं छोटे पड़ते जा रहे हैं। दिलों में एक दूसरे के लिए जगह कम होती जा रही है, लोग एक ही घर में रहते हुए भी बात नहीं करते हैं। अब इसमें कोई भी रीज़न हो सकता है कि टाइम की कमी है, लोग बिजी हो गए हैं,
1: हाँ,
0: है ना, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें हो सकती हैं। तो बस समाज का यही हाल हो गया है।
1: सही कह रही है कौसर, और शायद इसी कमी को महसूस करते हुए यूनाइटेड नेशंस ने ये खास दिन दुनिया को दिया, 16 मई इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस, ताकि जो ये दुनिया है ना वो उसको याद दिलाया जा सके कि शांति सिर्फ युद्ध या लड़ाई ना होने का नाम नहीं, बल्कि एक दूसरे को दिल से अपनाने का नाम है।
0: बिल्कुल, कहीं लड़ाई हो रही हो और वो लड़ाई बंद हो जाए ऐसा नहीं है कि खाली लड़ाई ना हो, ऐसा नहीं है। जब तक किसी को दिल से ना अपनाओ, ऊपरी दिखावा करते रहो, तो वो शांति नहीं हो सकती है मेरे हिसाब से।
1: हाँ, अंदर से प्यार जो है किसी के लिए, अपनापन जो है वो अंदर से आता है।
0: तो बस वैसे ही फीलिंग अपने साथ हमेशा ही रखो ना। मेरी तो तुम्हारे साथ ऐसे ही फीलिंग है ना।
1: बिल्कुल है,
0: और सबसे ज्यादा हमारे श्रोताओं के साथ जो हमारी फीलिंग है ना, वो उसमें बहुत अपनापन है।
1: अभी तो 90 वर्षों का साथ है।
0: बिल्कुल, और आज जब दुनिया इतना आगे बढ़ रही है वृंदा, तकनीकी जो हमारी तकनीक है, जो नई नई तकनीक्स आ रही हैं, लोगों को जोड़ रही हैं, जो हमारा देश है विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है, तो ऐसे वक्त में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है दिलों के बीच अपनापन और आपसी सम्मान बनाए रखना। और सच में हम अलग अलग भाषाएँ बोल सकते हैं, हमारी परंपराएँ अलग हो सकती हैं, लेकिन इंसानियत भावना हमें हमेशा एक सूत्र में बांधती है। जो इंसानियत की भावना हमारे अंदर जो है ना, हमेशा एक सूत्र में बांध के रखती है, और यही संदेश देता है ये दिवस जो कि आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं।
1: एग्जैक्टली कौसर, और दुनिया की खूबसूरती उसकी विविधता में है, हम सभी जानते हैं, और अलग अलग संस्कृतियां, अलग अलग विचार, और इन्हीं रंगों से मिलकर बनती है मानवता की सुंदर तस्वीर।
0: क्या बात
1: है, ह्यूमैनिटी जो आज के जमाने में बहुत जरूरी है दिखाना। जब लोग एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हैं, एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं, तभी समाज और भी मजबूत और खुशहाल तो बनता है।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात तुमने कही है। और पता है वृंदा, दुनिया को सबसे ज्यादा नुकसान जो होता है ना, वो हथियारों से नहीं होता है, बल्कि जो आजकल जो रिश्ते काफी टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं, सबसे ज्यादा नुकसान उसको होता है। और बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि शांति का मतलब चुप रहना, झगड़ा ना करना, लेकिन असली शांति उन्हें नहीं मालूम कि असली शांति उससे भी कहीं बड़ी चीज़ है। और ये जो असली शांति है ना, वो तभी होती है जब किसी दूसरे की सक्सेस को देखकर कोई जलन ना हो, जलस की फीलिंग ना आए, मतलब मन में अच्छी फीलिंग आए दूसरे की सक्सेस में, उन्हें अपनी सक्सेस दिखे, है ना।
1: बिल्कुल,
0: और किसी की अलग राय से नफरत ना हो, और जब जहाँ पर कोई कमजोर हो तो हम उसका सहारा बने, या ये नहीं कि उसका, बल्कि उसकी कमजोरी का हम या तो फायदा उठाएं और या तो उसकी कमजोरी का मजाक बनाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए।
1: बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कौसर कि शांति बाहर से नहीं आती, वो अंदर से आती है, यही हम शुरू से कह रहे हैं। और मन में गुस्सा या बैर भरा हो तो दुनिया की कोई भी जगह आपको शांत बिल्कुल नहीं कर सकती।
0: बिल्कुल, और जो हमारा देश है भारत देश, ये तो सदियों से यही सिखाता आया है, वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि पूरी दुनिया एक परिवार है। हमारे देश की विविधता में एकता ही तो असली खूबसूरती है, तुमने ये अभी बताया भी था वृंदा। तो अलग अलग भाषाएं से बोली जाती हैं, अलग अलग लोग वेशभूषा धारण करते हैं, अलग अलग त्यौहार भी होते हैं, फिर भी एक साथ धड़कता है हिंदुस्तान का दिल, भारत का दिल।
1: अच्छा, पर कौसर, आज सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये है कि आखिर लोग एक दूसरे से दूर होते क्यों चले जा रहे हैं।
0: सही बात है, ये सवाल
1: अच्छा
0: होता
1: शायद
0: है।
1: ये जो सवाल है मुझे ऐसा लगता है इसलिए है, या ये क्वेश्चन इसलिए दिमाग में आया होगा क्योंकि अब लोग सुनते कम हैं, जज ज्यादा करते हैं। पहले क्या होता था कि मोहल्लों में लोग एक दूसरे के घर

0: बिना बुलाए चले जाते थे। अब क्या है, ऑनलाइन जमाना आ गया है।
1: बिल्कुल,
0: ऑनलाइन हजार दोस्त मिल जाते हैं मगर दिल की बात दिल तक पहुंचाने वाला कोई नहीं मिलता।
1: वो हजार दोस्त मिल जाते हैं वृंदा, लेकिन वो जो एक सच्चा दोस्त होता है वो ऑनलाइन नहीं मिलता है।
0: हाँ,
1: है ना।
0: एक मुस्कान, एक हालचाल लेना, सिर्फ इतना कह देना तुम ठीक हो ना, कई बार किसी की जिंदगी बदल सकता है।
1: जरूर बदल सकता है। ये एक छोटा सा शब्द है लेकिन इसका असर बहुत बड़ा होता है। और तुमने बहुत अच्छी बात कही है वृंदा। वैसे भी शांति लाने के लिए कोई बड़ा काम करना जरूरी नहीं है। बस घर में अपने बड़ों को सम्मान दीजिए, उनसे प्यार से बात कर लीजिए, वो आपके प्यार के भूखे हैं। और छोटों को भी आप वैसा ही सम्मान दीजिए, उनके साथ प्यार से रहिए, अपनापन उनको जताइए। और सबसे बड़ी बात, अगर आपके कोई दोस्त हैं, कोई गलती करते हैं, तो भाई उनकी गलती को माफ़ कर दीजिए। और अगर कोई अनजान भी है आपके लिए, अननोन पर्सन है, तो उसकी भी हेल्प कर दीजिए। उससे मतलब ना रखिए कि ये शायद बाद में हमारा इससे काम बनेगा नहीं बनेगा, बिना मतलब कि आप उसकी हेल्प कर दीजिए, यही आपकी इंसानियत है।
0: जी, सेल्फलेस होकर काम करना चाहिए।
1: बिल्कुल
0: हमें। जी,
1: तो यहाँ पर हम लोग भी सेल्फलेस होकर काम करें। और वो काम क्या है बता दो,
0: एक बढ़िया सा गाना सुनवा।
1: हाँ बिल्कुल।

0: बहुत ही अच्छा गाना था ना वृंदा, हम साथ साथ हैं और सच में हम हमेशा ही साथ साथ हैं, और इसीलिए तो कहा जाता है ना भारत देश वैसे भी विविधता में एकता को हमेशा ही दर्शाता आया है और दर्शाता आएगा,
1: बिल्कुल दर्शाता रहेगा। और अभी
0: और जन्मों के साथी तो नहीं कह सकते हैं क्योंकि जन्म कोई देख के नहीं आया, लेकिन हाँ हम अपने श्रोताओं के साथी हमेशा से जरूर है और 90 वर्षों से आकाशवाणी उनका साथ निभा रहा है, बार बार यही बात हम लोग को जहन में आ रही है,
1: बिल्कुल आ रही है।
0: और हमारे साथ कुछ लोग जुड़ भी चुके हैं इसी के साथ साथ।
1: हाँ, और हमारा ईमेल हमें दर्शा रहा है कुछ, हाँ बता दें,
0: वो ईमेल भी कह रहा है कि हम साथ साथ हैं। और ये ईमेल हमें आया है काशीपुर अमेठी से, ये भेजा है मोनू सेठ ने। इन्होंने लिखा है, मुहावरा छलनी में दूध दूहे और कर्म को टटोवे, जिसका मतलब है व्यर्थ का काम करना, मूर्खतापूर्ण प्रयास करना या बिना सोचे समझे गलत तरीके से मेहनत करना। और एक और उन्होंने मुहावरा भी डाला हुआ है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, कि खुद तो कर नहीं पाते और दोषी दूसरों को बनाते हैं। और ये ऐसे मुहावरे वृंदा याद आया, हम लोग अपने हिंदी के जो हम लोग का सब्जेक्ट जो अनिवार्य हुआ करता था और अभी भी अनिवार्य है, उसमें हम लोग बहुत सारे ऐसे मुहावरे पढ़ते आए हैं ना,
1: पढ़ते आए हैं। और कहीं ना कहीं ये मुहावरे, लोकोक्तियाँ, ये ऐसे दो अनमोल रत्न होते हैं हिंदी के, कौसर कहना चाहिए, कि कई बार लोग इसमें फर्क नहीं पहचान पाते हैं, दोनों को अलग अलग समझ लेते हैं कि हाँ, ये मतलब दोनों एक ही हैं,
0: बिल्कुल सही,
1: अलग अलग उनका मीनिंग नहीं समझ पाते हैं। और साथ ही साथ देखा जाए तो हमारी मातृभाषा है हिंदी, हमारी वर्तनी, हमारा जो व्याकरण है उसमें बहुत ज़्यादा, अगर उसको अच्छा करना है तो हमें और लोकोक्तियों को समझना होगा।
0: अच्छा, समझना होगा तो यहाँ थोड़ा सा समझा भी देते हैं अपने लिसनर्स को भी, क्योंकि हमारा काम है उन्हें समझा समझा कर हर चीज को बताना। तो मुहावरा वो होता है जिसका मतलब शब्दों से अलग निकलता है, छोटा और चटपटा, यानी कि जिसको सुन के एकदम मजा आ जाए। चटपटे का मतलब ये है, यहाँ टेस्ट की बात नहीं कर रहे हैं
1: जी।
0: तो जिसे सुनते ही लगता है कि वाह क्या लाइन बोली है, यानी एक वाक्य में इस्तेमाल करना उसका।
1: हाँ, और अगर हम यहाँ पर कौसर लोकोक्तियों की बात करें तो वो भी हम बता दें कि लोकोक्तियाँ वो होती हैं जो किसी अनुभव या सीख को कहावत की तरह बताती हैं, यानी ज्ञान वाली बात जिसे सुनते ही लगता है अरे ये तो सच्चाई है। कहने का मतलब ये हो गया कि पूरा वाक्य ही होती है लोकोक्ति।
0: हाँ, और मुहावरे का जो एग्जाम्पल है वो अभी भैया मोनू सेठ जो हैं उनके मुहावरे पढ़ के हो ही गया है कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा, इस तरीके के जो मुहावरे थे, नाक में दम करना है ना, मतलब नाक में दम करना मतलब किसी को इतना परेशान कर देना कि वो बोले अरे बस कर भाई, ये बहुत हो गया है, नाक में दम मत कर।
1: वही जैसे मतलब मेरे मोहल्ले में जो है सामने वाला बच्चा क्या करता है, घंटी बजा के चला जाता है,
0: अच्छा
1: मेरी नाक में दम करके रखता है।
0: हाँ, नाक में दम ऐसे ही किया जाता है। तुमने भी कुछ किया होगा तभी तुमको परेशान कर रहा है वो।
1: तो मतलब ऐसे ही अगर देखा जाए तो हम अपने बच्चों को ऐसे रियल लाइफ एग्जांपल्स देकर सिखा सकते हैं।
0: हाँ, बिल्कुल।
1: उनकी जो व्याकरण है, उनकी जो वर्तनी है, उसको हम लोग और भी ज्यादा अच्छा कर सकते हैं।
0: हिंदी भाषा इतनी खूबसूरत है कि ये छोटी छोटी जो बातें हैं ये एग्जाम्पल देकर हम बहुत कुछ सिखा सकते हैं ना।
1: हाँ,
0: और ऐसे ही कुछ हमारे एक एक्सपर्ट हमारे साथ है
1: जी। आज हमारे साथ जुड़ी हुई है पूनम भदौरिया, और हिंदी की ये एक वक्ता और शिक्षिका है। तो ये क्या कह रही है हिंदी भाषा के बारे में, आइए इन्हीं से जानते हैं।
0: बिल्कुल।
2: आकाशवाणी सुनने वाले सभी प्यारे श्रोताओं को पूनम भदौरिया की ओर से प्यार भरा नमस्कार। मैं वर्तमान में मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत शासकीय विद्यालय में व्याख्याता के पद पर कार्यरत हूँ। इसके पूर्व भी मैंने कानपुर नगर में प्रतिष्ठित निजी संस्थानों में हिंदी शिक्षिका के रूप में कार्य किया है। आज मैं आपके समक्ष हिंदी शिक्षिका के रूप में हिंदी भाषा के महत्व और उसके वर्तमान स्वरूप पर अपने विचार रखना चाहती हूँ। हिंदी केवल संवाद का माध्यम नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति की वह धारा है जिसने सदियों से हमारे विचारों, परंपराओं और मूल्यों को एक सूत्र में बांध रखा है। किंतु आज देखते हैं कि दिखावे की संस्कृति के कारण हिंदी का वह अपनापन जो कभी लोगों की बोली में सहजता से झलकता था, धीरे धीरे कम होता जा रहा है। लोग हिंदी बोलते तो हैं, पर उसमें आत्मीयता और गर्व का भाव कम दिखाई देता है। ऐसे समय में हिंदी के मुहावरे और लोकोक्तियां हमारी भाषा को पुनः जीवित बनाने का सबसे प्रभावी माध्यम बन सकती हैं। आज हम घरों में बात करते हैं तो हमारे बच्चे मुहावरों के अर्थ

0: नहीं समझ पाते हैं। वही जबकि अगर हम साधारण शब्द केवल बात कहते हैं, मुहावरे और लोकोक्तियां उसी बात में भाव व्यंग या जीवन का अनुभव घोल देती हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए ऊंची दुकान फीका पकवान, सुनते ही दिखावे पर एक करारा व्यंग स्पष्ट हो जाता है। एक अनार 100 बीमार प्रतिस्पर्धा की स्थिति को सहज ही सामने रख देता है। या फिर हम कहें कि आज के समय में यदि हम हिंदी के लिए बात करें तो घर की मुर्गी दाल बराबर, ये आज की पीढ़ी की अपनी भाषा के प्रति उदासीनता पर बिल्कुल सटीक प्रतीत होती है। ऐसा नहीं है कि हिंदी कहीं पर भी पूरी तरह से उपेक्षित है, बल्कि आज के युवा हिंदी को आगे बढ़ा चढ़ाकर ले जाने में पीछे नहीं है। विद्यालयों में, सोशल मीडिया में और फिल्मी दुनिया में हिंदी का बोलबाला है। गैर हिंदी भाषी प्रदेशों में भी हिंदी फिल्में बड़े शौक से देखी जाती हैं। बल्कि अब तो मैं गर्व के साथ कह सकती हूँ कि जिस प्रदेश में मैं कार्यरत हूँ, मध्य प्रदेश शासन ने पिछले 2 वर्षों से नीट और जेई की परीक्षाओं के लिए भी हिंदी विषय को महत्व दिया है। हिंदी माध्यम के बच्चे भी उसमें परीक्षा दे सकते हैं। साथ ही हम कह सकते हैं कि हिंदी हमारी पहचान की संवाहक है। हमारे संतों की वाणी, कवियों की संवेदनाएं, लोकगीतों की मिठास, भारतीय मूल्यों की गरिमा हिंदी के माध्यम से ही आने वाली पीढ़ियों तक। हम कितनी भी अन्य भाषाएं सीख लें, पर अगर हमें अपना दर्द अनुभव करना होता है, दर्द हमें बांटना होता है, किसी से अभिव्यक्त करना होता है, तो अपनी मातृभाषा में ही एक अपने मन की बात हम कह पाते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी कहा था कि निज भाषा उन्नत यह सब उन्नति को मूल। तो आज आवश्यकता इस बात की है, हिंदी को केवल एक विषय या औपचारिक भाषा ना समझे, बल्कि उसे अपने जीवन व्यवहार और अभिव्यक्ति का हिस्सा बनाए। क्योंकि वास्तव में हिंदी को लुप्त होने से बचाने का मार्ग उसकी जड़ों से होकर गुजरता है, और मुहावरे लोकोक्तियां उन्हीं जड़ों की सबसे सजीव पहचान है। तो आइए हम सब मिलकर संकल्प लें, हिंदी को केवल बोलेंगे ही नहीं, बल्कि गर्व और आत्मीयता के साथ अपनाएंगे भी। धन्यवाद।
1: तो कौशल, कितनी सही बात कही है इन्होंने कि जिंदगी का सार होती है हमारी संस्कृति, हमारा अनुभव होती है ये मुहावरे लोकोक्तियां, हमारी भाषा की पहचान होती है।
2: बिल्कुल, और हिंदी भाषा को जिंदा रखना हमारा सच में हमारा कर्तव्य है। इसे रोज़मर्रा में बोली जाने वाली भाषा बनाइए, हिंदी है हम के नारे को सार्थक कीजिए। और वृंदा, हमारे आकाशवाणी का ध्येय वाक्य भी हिंदी में ही है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, यानी कि जन कल्याण की भावना। और हिंदी भाषा से ज़्यादा मीठी बोली कोई भी नहीं हो सकती। और हमारा आकाशवाणी हिंदी का राष्ट्रव्यापी प्रसारण केंद्र है, 470 से ज़्यादा केंद्रों के माध्यम से देश भर में हिंदी भाषा का प्रचार हो रहा है। और ये तो हमारे देश की बात हुई, विदेशों में भी बहुत प्रचार हो रहा है इसका, विदेशों में बहुत पसंद की जाती है हिंदी भाषा।
1: जी, और तो हमारे लिसनर्स अभी जो सुन रहे हैं ये प्रोग्राम, वो ज़रूर हिंदी को अपने जीवन में, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ज़रूर अपनाएंगे। और फिलहाल अभी आपके लिए हम लेकर आए हैं एक बढ़िया सा गाना, आप सभी के रेडियो सेट तक पहुंच रहा है।

0: वैसे कौसर, हम इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं आज के दिन और हमारे लिसनर्स भी कनेक्ट हो रहे हैं, तो हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास एक और मैसेज आया है, हमारे पास ईमेल पहुंचा है इन लिसनर का, उनके बारे में भी हम बताना चाहेंगे। ये लिखकर भेज रही हैं आंचल, आंचल सेठ लिख रही हैं कि गर्मियों में ऐसे खाद्य पदार्थों का सेवन करें जो शरीर को ठंडक और ऊर्जा दें तथा पानी की कमी पूरी करें।
1: बिल्कुल, हल्का और आसानी से पचने वाला भोजन जो है वो हमें करना चाहिए तथा ताज़े मौसमी फल, नींबू पानी और छाछ जैसी चीज़ों को अपने दैनिक डाइट में शामिल करें और तली भुनी चीज़ों से दूरी बनाए रखें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। तो आंचल जी ने बड़ी ही अच्छी बात लिखी है जो आजकल सभी को अपनाने के लिए है।
0: और एक चीज़ से और बच कर रहें, मच्छरों से।
1: हाँ, अरे
0: भाई ऐसे मौसम में क्या होता है, कूलर वगैरह का पानी कहीं इकट्ठा हो जाता है तो ऐसे में मच्छर पनपने लगते हैं। और हम बताना चाहेंगे कि आज राष्ट्रीय डेंगू दिवस है, तो डेंगू की रोकथाम करना बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जो ये मनाया जाता है इस दिवस को, और इसका जो वैसे हर दिवस का कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है ना मनाने का,
0: वृंदा,
1: तो बस इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है कि आम जनता को डेंगू बुखार के लक्षणों, मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम और मानसून से पहले जो बरती जाने वाली सावधानियां होती हैं कुछ, बस उनके लिए जागरूक करना।
0: अच्छा, और इसीलिए इस साल की थीम भी कुछ ऐसा ही इंडिकेट करती है। इस साल की थीम हम बताना चाहेंगे, ये है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन फॉर डेंगू कंट्रोल, चेक, क्लीन एंड कवर। यानी कि एकजुट हो, कार्य करें, उन्मूलन करें, यानी कि साथ रहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा।
1: बिल्कुल, ये एक तरीके का नारा भी है जिसपे जोर दिया जा रहा है।
0: बिल्कुल,
1: तो वृंदा यहाँ पर ये हम लोग ने थोड़ी सी डेंगू वाली, थोड़ी सी हमने जो आजकल किस तरीके का भोजन करें, क्या खाएं, क्या ना, ये तो बातें कर ली हैं, लेकिन पता नहीं मेरा मन ऐसे ही बीच में पता नहीं कहाँ चला गया।
0: हंसी वादियों में खो गया है।
1: हंसी वादियों में खो गया। अच्छा, मेरा बड़ा मन कर रहा है कि मैं कहीं खूबसूरत वादियों में सैर करके आऊँ इस वक्त, तो बस शायद मेरे माइंड, असल में होता क्या, जो माइंड में चलता है वही बार बार आता है, बार बार आता है ना, तो रात में मैं ये सोच कर सोई थी तो बस अभी भी मेरे माइंड में वही आ गया है। और वैसे भी अभी तो इस मौसम में ज्यादातर लोग जो है वो हिल स्टेशंस पर जाते हैं, एंजॉय करते हैं। अच्छा तुम बताओ, तुम्हें पसंद है ऐसी जगहों पर जाना वृंदा, जहाँ पर हसीन वादियां हो, पहाड़ हो?
0: बिल्कुल बिल्कुल, खूबसूरत जगहों पर जाना किसे पसंद नहीं होता।
1: हाँ, सच में।
0: इस वक्त जब हम हमनवा प्रोग्राम कर रहे हैं तो तुम्हें कैसे याद आ गई ऐसी हसीन वादियां?
1: अब आ गई, वो तो मैंने बताया ही कि रात से दिमाग में कुछ चल रहा है कि कुछ ऐसी जगह पर जाए।
0: मैं समझ गई हूँ।
1: हाँ?
0: क्योंकि हमने टॉपिक्स में बात की थी सिक्किम डे की।
1: हाँ? और बिल्कुल बता देती हूँ कि पहाड़ों की ठंडी हवाओं, बादलों की नरम चादरों और प्रकृति की अनमोल खूबसूरती के बीच बसे भारत के एक खूबसूरत राज्य का जो तुमने नाम लिया है ना, उसका है आज खास दिन।
0: जी, आज है सिक्किम का स्थापना दिवस, यानी कि 16 मई को हम मनाते हैं सिक्किम स्थापना दिवस।

0: एक ऐसा राज्य जहाँ हर मोड़ पर प्रकृति कविता लिखती है, जहाँ झीले आईने जैसी साफ लगती हैं
1: और जहाँ की वादियों में सुकून मिलता है। वही सुकून तो हम रात से ढूंढ रहे हैं। सिक्किम भारत का दूसरा सबसे छोटा राज्य है वृंदा, लेकिन खूबसूरती में किसी से छोटा नहीं है। कंचनजंगा की बर्फीली चोटियाँ, गुरु डोंगमार झील, नाथुला पास और रंग बिरंगे मठ, सच में ये सब ऐसा है जैसे धरती पर किसी ने स्वर्ग की पेंटिंग बना दी है।
0: और एक बात हम बताना चाहेंगे कि ये जो खास बात इन्होंने बताई है सिक्किम के बारे में, एक चीज और मैं ऐड ऑन करूंगी कि फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट भी कहते हैं इसको।
1: yes, yes.
0: और यहाँ की मिट्टी भी बहुत ज्यादा उपजाऊ और साफ होती है। 16 मई 1975 को सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था और तभी से हर साल 16 मई को सिक्किम दिवस मनाया जाता है। और पिछले साल ही हमने इसके 50 वर्ष पूरे किए थे, आज 51 वर्ष हो गए।
1: बिल्कुल। और वंदा यहाँ पर मैं ये जरूर बोलना चाहूंगी कि सिक्किम सिर्फ एक राज्य नहीं है, ये प्रकृति और इंसानियत के बीच खूबसूरत रिश्ता है, जहां विकास भी है, संस्कृति भी है, आधुनिकता भी है और अपनी जड़ों से जुड़ाव भी है।

0: जो कायम रहते हैं, तो कायम तो हम भी हैं अपनी बात पर कि भाई एक घंटे में जितने भी टॉपिक्स हम अपने लिसनर्स को अभी बोले हैं कि आज ये बात करेंगे, तो सभी को करेंगे भी, है ना?
1: बिल्कुल, कोशिश रहती है हमारी
0: जो कि आप तक कहते हैं उस पर कायम रहते हैं हम भी। और वृंदा, आज एक ऐसा खास दिन भी है जो ज्ञान की रोशनी, विज्ञान की रोशनी, सूरज की रोशनी और जिंदगी में उम्मीद की रोशनी को जगाता है।
1: काफी जगमगाता हुआ दिन है, यानी आज बल्ब भी बोलेगा मेरी तो आज छुट्टी।

0: यानी जोक्स अपार्ट, वैसे कौशल हम बता दें अपने लिसनर्स को कि आज हम मना रहे हैं इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट।
1: जी हाँ, 16 मई 1960 को पहली बार लेजर टेक्नोलॉजी का सफल प्रयोग हुआ था, जिसे सफलतापूर्वक किया थियोडोर मैमन ने। तब से हर साल यूनेस्को 16 मई को इस दिन को मनाने का जो फैसला लिया था और मनाता भी है।
0: सोचो कौशल, अगर सूरज की रोशनी ना हो तो हमारा क्या होगा?
1: क्या होगा?
0: देखा जाए तो हर चीज में लाइट ही लाइट है।
1: बिल्कुल,
0: मोबाइल के अंदर भी लाइट टेक्नोलॉजी है, कैमरा सेंसर है, स्क्रीन डिस्प्ले है, फाइबर ऑप्टिक्स है, मतलब हर जगह लाइट है।
1: और इंटरनेट बंदा,
0: हाँ उसको हम कैसे भूल गए।
1: हाँ, इंटरनेट भी तो काफी हद तक फाइबर ऑप्टिक केबल पर ही चलता है, जिसमें डेटा लाइट के जरिए ट्रेवल करता है। मतलब जो हमारे लिसनर्स मैसेज भेज रहे हैं, अभी भी भेज रहे हैं, लगातार भेज रहे हैं, वो भी हम कंप्यूटर लाइट से ही तो देखकर पढ़ पा रहे हैं।
0: बट अगर हम पावरफुल एनर्जी सोर्स की बात करें यहाँ पर कौशल, तो वो एक ही है, वो है सनलाइट, उसका कोई सानी नहीं है।
1: एग्जैक्टली
0: आज लोग सोलर एनर्जी को अपना रहे हैं और भारत देखा जाए तो इसमें काफी आगे बढ़ चुका है।
1: बिल्कुल, एकदम सही कहा है तुमने। घर, स्कूल, हॉस्पिटल, स्ट्रीट लाइट्स तक सोलर एनर्जी, ये सभी कुछ जो है वो सोलर एनर्जी से ही चल रहे हैं।
0: बिल्कुल चल रहे हैं। और अच्छा, इसमें सबसे बड़ी भागीदारी हमारी भारत सरकार भी तो निभा रही है।
1: बिल्कुल,
0: एनर्जी एफिशिएंसी और सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए ऐसे ऐसे कदम, ऐसे ऐसे इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। जैसे हम बताना चाहेंगे यहाँ पर कि उजाला स्कीम, जिससे एलईडी बल्ब को सस्ते दामों पर लोगों को उपलब्ध कराया जा रहा है।
1: और स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम यानी कि SLNP, शहरों में एलईडी स्ट्रीट लाइट्स जो लगाई जा रही हैं।
0: नेशनल सोलर मिशन जो है, जिसके तहत लोगों को उनके घरों तक सोलर एनर्जी, सोलर पैनल्स लगाने का काम किया जा रहा है। और साथ ही पीएम कुसुम योजना किसानों के लिए कितनी अच्छी योजना है।
1: बिल्कुल,
0: किसानों के लिए सोलर पंप्स और सोलर पावर सपोर्ट मिलता है इससे।
1: बिल्कुल, और अगर भारत में देखा जाए वृंदा, तो लाइट सिर्फ साइंस नहीं है, कल्चर भी है। दीपावली हो, आरती हो रही हो, शादी में रोशनी हो, हर जगह तो लाइट है।
0: हाँ, ये बिल्कुल सही कहा आपने। हमारा देश जो है वो कहते हैं ना, विभिन्न संस्कृतियों के साथ साथ जगमगाता हुआ देश है।
1: बिल्कुल।
0: और अच्छा, रोशनी जो है वो तो जरूरी है ही,
1: जरूरी है।
0: और रोशनी के साथ साथ उसकी सेफ्टी करना भी बहुत जरूरी है। और सेफ्टी करने के लिए हमें कुछ चीजों का बहुत ज्यादा जरूरी है ध्यान देना।
1: हम ही तो सेफ्टी कर सकते हैं।
0: हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे कौशल, अगर ओवरलोडेड एक्सटेंशन बोर्ड है तो उसका इस्तेमाल आप ना करें। अगर खराब वायरिंग है तो तुरंत उसे ठीक करवाएं।
1: बिल्कुल। और बच्चों को इलेक्ट्रिक स्विच से दूर रखें। एलईडी और एनर्जी सेविंग जो जितने भी अप्लायंसेस हैं उन्हें अपनाएं। बारिश में खुले तारों से दूरी बनाकर रखें।
0: और अगर कहीं इलेक्ट्रिक फायर हो जाए तो आप ये गलती बिल्कुल भी ना करें कि आप पानी डाल रहे हैं। पानी बिल्कुल भी ना डालें। पहले जो मेन स्विच है उसको ऑफ कर दें।
1: बिल्कुल। तो हम बस यही कहना चाहते हैं वृंदा कि अंधेरा कितना भी बड़ा हो, एक छोटी सी रोशनी रास्ता दिखा ही देती है जो हमारे जो है विचारों में होती है।
0: तो आज से एक प्रॉमिस हम सभी करते हैं, खुद सीखेंगे, दूसरों को सिखाएंगे और अपने अंदर की रोशनी को कभी बुझने नहीं देंगे।
1: बिल्कुल बुझने नहीं देंगे। और फिलहाल अभी क्या करेंगे?
0: एक बढ़िया सा गाना प्ले करेंगे।
1: मेरे मन की बात कह दी।

0: बनाया।
1: वैसे कौसर, हमें तारीफ तो अपनी महिलाओं की करनी चाहिए। अभी हमने स्टार्टिंग में भी वट सावित्री व्रत की बात की थी, अपनी महिलाओं की तारीफ की थी, और कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो आज आत्मनिर्भर बन रही हैं, उनकी तारीफ करना भी तो बनता है।
2: बिल्कुल, तारीफ करने लायक है वो
1: जी,
2: तो उनकी बात करते भी बहुत अच्छा लगता है हम लोग को, है ना।
1: बिल्कुल।
2: तो वृंदा, जैसे हमारी महिलाएं आज खुद अपनी पहचान बनाने में विश्वास रखती हैं और इसमें उनकी मदद करते हैं स्वयं सहायता समूह, है ना
1: जी।
2: आज हम ऐसी ही महिलाओं की कहानी लेकर आए हैं
1: जी, और हम बात कर रहे हैं फरुखाबाद में महिलाओं की उस कहानी की जिन्होंने राष्ट्रीय ग्रामीण एवं शहरी आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूह बनाया, और इस समूह को बनाकर वो आज न केवल अपनी आजीविका सुनिश्चित कर रही हैं बल्कि दलिया और बेसन का व्यवसाय भी शुरू कर दिया है। अपने आसपास के जिलों में और आसपास के क्षेत्रों में एक अलग ही पहचान बना रही हैं।
2: और महिलाओं ने बाजार से गेहूं और चने की दाल खरीद कर घर पर चक्की में पीस कर, अच्छा चक्की में पीस कर, मुझे पहले वाली वो चक्की याद आ गई, वो गोल गोल होती थी, उसमें ऐसे लकड़ी का लगा होता था, उसको घुमा के पीसा जाता था। आजकल तो खैर वो बहुत ही कम दिखाई देंगी, गांव में दिखाई देती हैं
1: जी।
2: साफ सफाई और पैकेजिंग के बाद ये करती कहें कि अपने गांव व उसके आसपास बेचने का काम इन्होंने शुरू किया उसे।
1: और इससे क्या हुआ ना कौसर, न केवल उन्हें रोज की कमाई मिली, साथ ही साथ जो है उनके समूह ने एक ब्रांड पहचान भी बना ली अपनी,
2: और आज उन्हें 6,000 से लेकर 10,000 तक मासिक आमदनी भी हो रही है।
1: क्या बात है, हमने अभी कहा भी था हमारी महिलाएं जो हैं वो आत्मनिर्भर हैं। और अब यहाँ की जो महिलाएं आत्मनिर्भर जो हो गई हैं और घर को संभालने के साथ साथ अब व्यापार में भी कुशल हो गई हैं, तो मुझे ये कहना चाहिए कि हमारी महिलाएं जो हैं वो किसी से कम नहीं है।
2: बिल्कुल, वो एक डायलॉग भी आया था ना, अपनी छोरी किसी से कम है के, तो वही याद आ गया। और यहाँ पर एक मेल वृंदा हमें जो है वो ब्लिंक करती हुई दिखाई दे रही है अपने स्क्रीन पर, ये है सोनू परवाना और हाँ अरजीत सेठ की, ये है खालिसपुर ऊंच गांव अमेठी से, और इन्होंने लिखा है सुबह गुनगुना पानी पीते हैं ये बहुत ही अच्छी बात है, उसके बाद चाय को पीना छोड़ दिया ये उससे भी अच्छी बात है, सादा भोजन दाल चावल रोटी सब्जी सलाद दही घी और कभी कभी बेसन की रोटी जब मिल जाती है ना, तो नानी के हाथ की बनी हुई रोटी और चटनी का बिल्कुल आनंद ही आनंद होता है, उसकी बात ही अलग होती है। और बड़ी अच्छी इन्होंने एक संतुलित आहार पूरा हमारे सामने उसका चार्ट ला के रख दिया है, और
1: अच्छी बात है,
2: बहुत ही अच्छी बात इन्होंने लिखी है, और थैंक यू सो मच हमारे हमनवा प्रोग्राम में शामिल होने के लिए और इतनी अच्छी अच्छी बातों को हमसे शेयर

0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ,
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे?
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424।
0: ओ 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर।

0: इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. धड़कन लखनऊ की।

और आज की जो पार्टी है फन वाली वो मेरी तरफ से है, क्योंकि प्रोग्राम शुरू हो चुका है शत्रु पर, जिसमें शालिनी आ चुकी है लेकर फैमिली फन, है ना। इसीलिए सोचा इस प्यारे से गाने से शुरू किया जाए और बाद में कोई बात की जाए। तो आज हम क्या कर रहे हैं घर पर, स्माइल के साथ रेडियो सुन रहे हैं। कितने आसानी से बताते हैं ना, रेडियो सुन रहे हैं भाई। और रेडियो सुनने के साथ क्या कर रहे हैं, हाँ बहुत सारे लोगों की आज छुट्टी होती है, छुट्टी करनी नहीं है किसी की छुट्टी का कोई एंजॉय करना है ना। तो आज क्या किया जाए, अगर आप अपने मम्मी पापा के साथ बैठे हैं, अपने भाई बहनों के साथ बैठे हैं, बच्चे हैं घर पे, तो उनसे आज चलिए बचपन की जो फनी शरारतें थी हमारी उनको शेयर किया जाए और अपने बचपन में वापस लौटा जाए। करेंगे ना ऐसा हमारे साथ, और करते करते आपको हमसे जुड़ना है, अपनी बात को हमसे शेयर करना है। कहां पर, fmakashwani@gmail.com पे। तो देखते हैं होता है कितना ढेर सारा फन। अगर हम चाहेंगे तो हम फन करेंगे, अगर हम चाहेंगे तो उदास हो जाएंगे, तो हम क्यों ही चाहेंगे उदास हो, है ना। तो चलिए एक घंटा मिलकर करते हैं फन मस्त मस्त प्यारे से गीतों के साथ। और सबसे बढ़िया वाली ये जो शरारत होती थी, अच्छा बचपन वाली शरारतों के आगे शालिनी ने फनी क्यों लगाया, क्योंकि वो जो शरारतें होती थी ना वो रियल में फनी होती थी। और अगर वो शैतानियां अगर हम जब बड़े हो गए हैं करें ना, तो क्या कहा जाएगा, सोचिए सोचिए। वो वर्ड नहीं हम बोलने वाले, लेकिन उसके लिए क्या कहा जाएगा आपको तो बस फनी शरारतों की होने वाली है बात। और मेरी तरफ से शुरुआत हम करते हैं, सबसे पहले तो अक्सर और हमेशा बच्चे जब स्कूल जाने का मन नहीं होता है तो बुखार का बहाना कम बनाते, पेट में दर्द हो रहा है ये ज्यादा कहते हैं। शायद इसलिए अब समझ में आया कि वो दर्द दिखाई तो देता नहीं है पेट के अंदर का, बुखार बताएंगे तो भाई मम्मी टच करेंगी, देखेंगी, थर्मामीटर लगा देंगे, लेकिन पेट के दर्द के लिए कोई ऐसा इक्विपमेंट नहीं बना है जो पता चल सके कि दर्द हो रहा है या नहीं। तो चलिए कुछ इस तरह की शरारतें भी आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं, हमारा साथ दीजिए प्रोग्राम फैमिली फन में।

तो शुरुआत कर दी है ना आपने अपने घर पे, शरारतों की लड़ी लग गई है ना। एक नहीं होती थी, दो नहीं होती थी, तीन नहीं, हर वक्त बच्चों के दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता था। और आज जब हमारे बच्चे हैं, हमारे आसपास हैं, जब वो कुछ करते हैं तो कभी कभी तो हम बहुत खुश होते हैं और कभी कभी तो इतना नाराज होते हैं उन पर कि पूछिए मत, कि इसको कुछ पता नहीं है, इसको कुछ समझ नहीं आता है, ये कैसे कर दिया तुमने। बहुत सारे तो ऐसे लोग होते हैं, उन्हें प्यार से झप्पी दे देते हैं, यानी कि गले लगा लेते हैं बच्चे को। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो बच्चों को डांटते मारते भी हैं, पनिशमेंट भी दे देते हैं। भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, अपने दिन उन्हें याद रखने चाहिए, है ना। और याद है आपको, चुपके से फ्रिज से मिठाई या चॉकलेट निकाल कर खा लेना, और अगर जब पूछी जाती थी तो फिर क्या कहना, नहीं नहीं हमने तो नहीं लिया, अरे हमने देखा ही नहीं मम्मा, बिल्कुल, अरे पापा ने तो नहीं खा लिया, और अपना इल्जाम किसी और के सर पर मढ़ देना। याद आ रहा है ना आपको।

0: झुमका।
1: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से। केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
2: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए पांच यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं। यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
1: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in।
2: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
3: लखनऊ है तो महज गुंबदों मीनार नहीं,
4: सिर्फ एक शहर नहीं, कूचाओ बाजार नहीं,
3: इसके दामन में मोहब्बत के फूल खिलते हैं,
4: इसकी गलियों में फरिश्तों के पते मिलते हैं।
5: धड़कन लखनऊ की
4: 100.7 FM रेनबो।

अच्छा दोस्तों, जब सैटरडे संडे होता है तो बड़ी खुशी होती है ना। लेकिन जैसे ही संडे बीतता है यानी कि रात होती है, तो थोड़ा सा दुख भी होता है कि नेक्स्ट डे से उसी काम में फिर से लग जाना है, भाग दौड़ की जिंदगी में फंस जाना है। लेकिन ये जो भाग दौड़ की जिंदगी है ना, इसे किसने चुना? हमने ही ना। अपनी जरूरतों को पूरा करना, करते करते हाँ ये कह सकते हैं कि अपनी नहीं, अपने परिवार की, अपने बच्चों की, अपनों की जरूरतों को पूरा करने में हम सभी दिन रात लगे पड़े हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, कहाँ जाएं, क्या करें। लेकिन लेकिन जी हाँ, हम भूल चुके हैं खुद को कि हम कहाँ हैं। कभी तो अपने लिए समय निकालें। और ये जो हम कहते हैं ना कि इतनी थकान हो जाती है, पता ही नहीं चलता कब चैन मिलेगा, तो मिलेगा। खुद से आपको इसके लिए कुछ करना पड़ेगा, थोड़ा सा समय निकालना पड़ेगा। चाहे वो समय आप अपनी पुरानी बचपन की यादों को ताज़ा कर लीजिए, अपनों के साथ बैठ जाइए, बच्चों के साथ बच्चा बन के देखिए, कहीं उस जगह पर जाइए जो आपको जगह बहुत अच्छी लगती थी लेकिन आपने बहुत समय से उस जगह को देखा क्या, मतलब उस जगह पर गए नहीं लेकिन उस जगह के बारे में सोचा भी नहीं क्योंकि आपके पास समय नहीं है। ये सारी चीजें जब दोस्तों आप करेंगे ना, तो सुकून जरूर मिलेगा। और यही सुकून जो है ना, आज के समय में बहुत बड़ी दौलत है, जिससे कि आप रिलैक्स होते हैं, आपकी बॉडी रिलैक्स होती है, आपका माइंड रिलैक्स होता है। और उस रिलैक्स होने के बाद जब आप काम करते हैं, जब काम करने के लिए सोचते हैं, तो वो काम बहुत से भी बहुत अच्छा होता है। चलिए, ये तो बचपन की बातों को याद दिलाने के लिए आपको वहां तक लाए थे। और नेक्स्ट वाली कौन सी आपकी फनी आदत रही होगी, बताइए तो जरा। जब हमारी पसंद की चीजें टीवी पे नहीं लगती हैं तो हम क्या करते थे? बहुत आसान सा काम था, रिमोट ही कहीं छुपा देते थे और खुद ही ढूंढने का नाटक करते थे। ऐसा किया है आपने? सोचिए जरा।

12:30 हो चले हैं। आप सभी लोग सुन रहे हैं प्रोग्राम फैमिली फन, जिसमें शालिनी है आपके साथ।

रिलेट कर पा रहे हैं ना अपने बच्चों से, जिन पर हम कहीं ना कहीं अब बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं। और देखिए गर्मी की छुट्टियां हो रही हैं और बच्चों की भी स्कूल की गर्मी की छुट्टियां हो रही हैं, समर वेकेशन हो रहे हैं, साथ ही साथ ढेर सारा होमवर्क भी दिया जा रहा है ना। और अब जब आप सोचेंगे ना बच्चों को काम कराने के लिए, तो जैसा आप किया करते थे, होमवर्क पूरा ना होने पर अक्सर क्या होता था, हमारी कॉपियां ही गुम हो जाती थी, है ना। और न जाने उस गुम होने की कॉपियों की क्या क्या कहानी बनाते थे कि स्कूल ले गए वहां मिली नहीं, और मिली तो कैसे मिली, किसी को दिया भी नहीं और हमें घर पर भी नहीं मिली, और जब ज्यादा पूछताछ होती थी तो हम चुप हो जाते थे, और लास्ट में जब मम्मा हमारी बैग खोलती थी, सारी बुक्स कॉपियां बाहर निकालती थी, तो किसी बुक के ही बीच में वो कॉपी छुपी होती थी ना। हम सभी को बचपन में ये काम भी नहीं आता था, ना सही से झूठ बोल पाते थे, ना सही से कोई भी चीज छुपा पाते थे, और अपनी ही बातों में पकड़े जाते थे। और पकड़े भी क्यों ना जाएं, क्योंकि जो हमारे बड़े होते हैं, जो हमारी माँ होती है, खास तौर पे हमारी हरकतों से ही भाप जाती है कि इसने सही किया है या गलत, है ना।

दोस्तों 12:40 और 3 सेकंड हो चले हैं प्रोग्राम शत्रुपा में। आज हम फैमिली फन की बात कर रहे हैं और उस फन से याद आ गई हमें बचपन की सबसे फनी शरारतें, जिनकी आज हम बात कर

रहे हैं। अच्छा, शहर की बात हो या गांव की, सारे बच्चे शरारती होते हैं, बस शरारतें उनकी अलग अलग होती हैं। जो गांव के बच्चे शरारतें कर पाते हैं वो शहर के बच्चे नहीं कर पाते हैं। जैसे कि जब गांव में खेतों में पानी लगाया जाता है ना, सिंचाई की जाती है जिसे पानी लगाना कहते हैं, तो वो ट्यूबवेल चलता है और वहाँ पर एक बड़ा सा गहरा गड्ढा भी होता है, बहुत गहरा नहीं, लेकिन उसमें बच्चे गर्मियों में बहुत इंजॉय करते हैं। उस पानी में खूब सारा नहाते हैं, कई गांव में नहर भी होती है, तालाब भी होती है, लेकिन उन्हें ऐसा करने पर डांट भी बहुत पड़ती है। जब वो शरारत बहुत ज़्यादा वाली शैतानी में बदल जाती है, क्योंकि उससे खतरा होता है कि बच्चा छोटा है और जगह ज़्यादा गहरी है, और जस्ट उसके धार के नीचे अगर आके आप नहा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये हमें नुकसान पहुँचाता है। इसीलिए हमारे मम्मी पापा बहुत नाराज़ होते हैं। बाग में जाना, आम तोड़ के लाना, कुछ ना कुछ तोड़ के लाना और वहां से भगाए जाना, ये सारी जो शैतानी है ना दोस्तों, वो शहर में नहीं कर पाएंगे आप चाह कर भी। और शहर वाले बच्चे कैसे करते, जब गर्मियों की छुट्टी में वो अपने नाना नानी के घर या बहुत सारे बच्चों के दादा दादी का भी घर होता था गाँव में, और वो शहर में रहते थे अपने मम्मी पापा के पास, तो जब हम जाते हैं मिलते हैं तो इस तरह की ढेर सारी शैतानियां करते है ना। सबकी अलग अलग सोच, सबकी अलग अलग खुशी।

0: पुरानी हवेलियों की दीवारें सुनाती हैं नवाबों की दास्तान। चिकनकारी के बूटों से खिलते गलियारे, गिलोरियों की खुशबू से बहकते पानदान, यहाँ हर कोना एक शायरी, हर गली गजल। ये लखनऊ है जनाब।
1: हाईटेक मॉल्स, स्ट्रीट फूड, 10.90 पर गुलजार होती शामें, चाय की चुस्कियों से कॉफी के उठते धुएं तक, ये भी लखनऊ ही है जनाब।
2: समझे जनाब यारी।
1: जहां हर घर में बचता है 100.7 FM रेनबो। धड़कन लखनऊ की।
3: कम प्रीमियम, ज्यादा बोनस, अपनों के लिए सबसे सही RBLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
4: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RBLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
5: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
6: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
5: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
6: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
5: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
6: 8700001-4242।
1: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: करियर पर है ध्यान,
1: स्पोर्ट्स में करना है नाम,
0: पॉजिटिव है फैशन,
1: क्रिएटिव है पैशन,
0: टेक्नोलॉजी में रुचि,
1: बने पर्सनालिटी ऊंची,
0: फॉलो करें ट्रेंड्स,
1: आइए मिलिए युवा फ्रेंड्स,
0: ओनली ऑन यूथ वेव,
1: यूथ की बात यूथ के साथ,
0: शाम 4 बजे 100.7 FM रेनबो पर,
1: धड़कन लखनऊ की।
2: हर रोज सफर की हमारी यूं शुरुआत होती है, सुबह 6 बजे पुष्पांजलि से पहली मुलाकात होती है, दिन भर का समय कैसे बीत जाता है, रेनबो अपना हर रंग मानो बिखेरता जाता है,
3: रंग दे तुम
2: रात में तब सुकून आता है जब सदाबहार गीत कोई हमारे कानों में गुनगुनाता है,
4: मन क्यों बहकारी बहका आधी रात को,
2: तमाम सारी जानकारी मनोरंजन के संग सिर्फ और सिर्फ FM रेनबो पर, सुनना ना भूलें सुबह 6 से रात 12 बजे तक।
5: सात रंग का इंद्रधनुष है,
6: सात सुरों की सरगम है,
7: सात जन्म है सात समंदर,
5: साथ हमारा हरदम है,
7: जिंदगी के सतरंगी रंग
6: FM रेनबो के संग।

दोस्तों 12:54 और 44 सेकंड हो चले हैं और ये वक्त कह रहा है कि शत्रुपा को यहीं पर करते हैं वाइंड अप। नेक्स्ट प्रोग्राम हो चुके तेरी बात में, आज हम बात करेंगे आपके वीकेंड का प्लान। भाई सैटरडे संडे आप क्या कर रहे हैं बस बता डालिए, हमसे जुड़ जाइए fmakashwani@gmail.com के जरिए और सुनते रहें क्या FM रेनबो शालिनी के साथ।

नमस्कार, दोपहर के 1 बजे हैं, आप सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। शिलान्यास समारोह में केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस

मंत्री हरदीप सिंह पुरी और प्रदेश के खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव भी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रेरणा से देश में कई खेल संस्कृति आगे बढ़ी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भी खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए हर गांव में खेल का मैदान बनाया जा रहा है, जबकि हर जिले में स्टेडियम बनाने का भी काम किया जा रहा है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश विकास, सुशासन और निवेश और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जाना जाता है। राज्य में कानून व्यवस्था में आए सुधार ने आम नागरिकों से लेकर उद्योग जगत तक नया विश्वास पैदा किया है। उन्होंने विश्वास जताया कि इस स्टेडियम से प्रशिक्षण लेकर ऐसे खिलाड़ी निकलेंगे जो देश का नाम दुनिया भर में रोशन करेंगे। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारत में कोई भी गरीब व्यक्ति स्थायी घर के बिना नहीं रहेगा। श्री चौहान ने महाराष्ट्र में आयोजित महाआवास अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम में कहा कि सभी को पक्के मकान उपलब्ध कराना केंद्र सरकार की प्रमुख प्रतिबद्धता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ईंधन बचत को लेकर किए गए आह्वान के मद्देनजर वाराणसी में बनारस रेल इंजन कारखाना में आज पूल्ड वाहन दिवस का आयोजन किया गया। इस पहल का उद्देश्य ऊर्जा संरक्षण, पर्यावरण सुरक्षा, ईंधन बचत और उपलब्ध संसाधनों के जिम्मेदारीपूर्ण उपयोग का को बढ़ावा देना रहा। कार्यक्रम के तहत बरेका में विभागाध्यक्षों और अधिकारियों ने साझा वाहन व्यवस्था अपनाई। कई अधिकारियों ने पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताते हुए साइकिल से कार्यालय पहुंचे। अलीगढ़ में नगर मजिस्ट्रेट अतुल गुप्ता साइकिल से कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचे। हापुड़ की तीर्थ नगरी गढ़मुक्तेश्वर ब्रिज घाट में आज वट सावित्री और शनिचरी अमावस्या के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। महिलाओं का भी गंगा स्नान कर वट वृक्ष की पूजा अर्चना करने का सिलसिला जारी है। व्रती महिलाएं अपने परिवार की खुशहाली और समृद्धि के साथ पति की लंबी आयु की कामना भी कर रही हैं। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन 2 बजे प्रसारित होगा।

0: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से, केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
1: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए पांच यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
0: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in।
1: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: मुस्कुराइए, क्या आप लखनऊ में हैं और सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।
3: और दोस्तों साथ ही साथ ईमेल भी करना है आपको, बताना है आपने वीकेंड का प्लान, आप क्या करने वाले हैं संडे, सैटरडे या नेक्स्ट, क्या प्लान है आपका कहीं घूमने जाने का, कहां पर बताना है fmakashwani@gmail.com पर। और सुनते रहना है 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: अब आप शाइस्ता बानों से इलाकाई खबरें सुनिए। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में बैनुल अक्वामी क्रिकेट स्टेडियम का संग बुनियाद और भूमि पूजन प्रोग्राम को खिताब करते हुए कहा कि जब पूरी दुनिया में हलचल है, इन हालात में भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी की कयादत में बेहतरीन मैनेजमेंट किया गया है।
1: बहनों और भाइयों, जब पूरा देश और पूरी दुनिया वर्तमान में पश्चिम एशिया संकट से जूझ रहा है, पूरी दुनिया में उथल पुथल है, पेट्रोलियम पदार्थों का दाम आसमान छू रहा है, अनिश्चितता की स्थिति है, उन स्थितियों में भारत के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके सस्सी नेतृत्व में, भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री के रूप में माननीय श्री हरदीप सिंह पुरी जी ने जिस बेहतरीन प्रबंध का परिचय देकर के, भले ही प्राकृतिक और पेट्रोलियम मंत्रालय के ऊपर तेल कंपनियों पर बोझ आ जाए, लेकिन आम जनता को राहत मिलेगी।
0: मरकजी पेट्रोलियम और कुदरती गैस के वजीर हरदीप सिंह पुरी ने प्रोग्राम को खिताब करते हुए कहा कि 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदली है।
2: विशेष रूप में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को बधाई देना चाहता हूं। वर्ष 2017 से लेकर आज तक लगभग एक दशक में उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने जिस प्रकार अपनी नई पहचान बनाई है, वह पूरे देश के लिए एक बढ़िया उदाहरण है।
0: प्रोग्राम में रियासती वजीर खेल गिरीश चंद यादव, गोरखपुर के रुकने असेंबली रवि किशन और दीगर मुअज्जिज अफराद भी मौजूद थे। ताल नादा और गोरखपुर में वाकई ये बैनुल अक्वामी स्टेडियम 392.94 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किया जाएगा। तामीर के लिए 633.9 मिलियन रुपए की पहली किस्त जारी कर दी गई है। 46 एकड़ रकबे में बने इस इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में 30,000 अफराद की गुंजाइश होगी। स्टेडियम की तामीर 23 दिसंबर 2027 तक मुकम्मल करने का हदफ है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर में दानिश्वरों की कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। उन्होंने गोड धुईया नाला प्रोजेक्ट के पेशरफ्त का जायजा लेने के बाद सड़क को चौड़ा करने के मंसूबे का मुआयना किया और जरूरी हिदायत जारी की। दानिश्वरों की कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजीर आला ने मुआशे की तश्कील और दानिश्वरों के अहम किरदार पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि रियासत की डबल इंजन वाली हुकूमत ने सिर्फ तरक्की को तेज कर रही है बल्कि नौजवानों की एक बड़ी तादाद को रोजगार की जमानत भी दे रही है। वजीर ज़राअत सूर्य प्रताप शाही ने कल कानपुर के चंद्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी मुनक्कदा मुश्तरका डिवीजनल खरीफ पैदावारी सेमिनार का इफ्तिताह किया। मीडिया से बात करते हुए जनाब शाही ने कहा कि खरीफ सीजन शुरू होने को है, रियासती हुकूमत की तरजीह किसानों को बेहतर बीज फराहम करना है। मेरठ से प्रयागराज तक चलने वाले गंगा एक्सप्रेसवे पर टोल फ्री सफर सहूलत कल खत्म हो गई। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 29 अप्रैल को गंगा एक्सप्रेसवे का इफ्तिताह किया, जिसके बाद वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने इस रूट पर 15 दिन की टोल फ्री सफर की मुद्दत का ऐलान किया था। कल लखनऊ मुनक्कदा AI ट्रांसफॉर्मेशन कॉन्क्लेव 2026 में मुल्क भर से 50 से ज्यादा सीनियर इंतजामी अहदेदारों ने हिस्सा लिया। उत्तर प्रदेश हुकूमत के महत्वाकांक्षी AI पॉलिसी और टेक्नोलॉजी के विजन पर कॉन्फ्रेंस के दौरान तफसील से तबादला ख्याल किया गया। रियासती तब्दीली कमीशन के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर मनोज कुमार सिंह ने कहा कि रियासत सरकारी कामकाज में AI की तब्दीली के लिए कौमी मॉडल बनने की तरफ बढ़ रही है और इससे रियासत के $1 ट्रिलियन की मईशत बनने के हदफ को नई तहरीक मिलेगी। आज रोशनी का आलमी दिन मनाया जा रहा है। यह दिन हर साल 16 मई को माहिर फिजिस्ट और इंजीनियर थियोडोर मेमन के 1960 में लेजर के पहले कामयाब ऑपरेशन की याद में मनाया जाता है। वहीं आज डेंगू का कौमी दिन मनाया जा रहा है। सेहत और खानदानी बहबूद की वजारत के जरिए सरकारी तौर पर इस दिन का ऐलान किया गया। इस दिन का मकसद डेंगू के बारे में बेदारी पैदा करना और मानसून से कबल इसके खिलाफ हिफाजती इकदामात को मजबूत बनाना है। यह दिन मच्छरों की अफजाइश को रोकने के लिए सादा कंट्रोल हिकमत अमली को फरोग देने के लिए मनाया जाता है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने इस मौके पर एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि एहतियात, सफाई, चौकसी और बरवक्त इलाज के जरिए डेंगू पर मौसर तरीके से काबू पाया जा सकता है। उन्होंने रियासत के लोगों से मुतालबा किया कि वो अपने घरों, इर्द गिर्द और मुआशे को साफ सुथरा रखने का अहद करें। रियासत भर में आज वट सावित्री का त्यौहार अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। प्रयागराज में खवातीन संगम मुकद्दस गुस्ल कर रही हैं और बरगद की पूजा कर अपने शौहरों की सलामती और लंबी उम्र के लिए दुआ कर रही हैं। खवातीन ने भी आज निर्जला जल व्रत रखा है। उन्नाव में भी सुबह से ही शादीशुदा खवातीन रवायती मेकअप कर रही हैं और वट सावित्री का व्रत रख रही हैं और दुआएं मांग रही हैं दायमी खुशी के लिए। लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकाना स्टेडियम में कल खेले गए IPL मैच में लखनऊ सुपर जॉइंट्स ने कामयाबी हासिल की। रात गए तक जारी रहने वाले मैच में लखनऊ ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेटों से शिकस्त दी। पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ को जीत के लिए

0: 1:09 हो चले हैं दोस्तों, और आप सभी लोग सुन रहे हैं FM रेनबो 100.7। और अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे इलाकाई खबरें।
1: ये आकाशवाणी लखनऊ है।

0: 188 रन का हदफ रखा, जिसे लखनऊ के सिर्फ 16.4 ओवर में 3 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। मिचेल मार्शल ने लखनऊ की जानिब से 38 गेंदों में 90 रन की शानदार इनिंग्स खेली और मैन ऑफ द मैच करार पाए। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाके की खबरें खत्म हुई। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नशर किया जाएगा।
1: पुरानी हवेलियों की दीवारें सुनाती हैं नवाबों की दास्तां। चिकनकारी के बूटों से खिलते गलियारे, गिलोरियों की खुशबू से बहकते पानदान, यहाँ हर कोना एक शायरी, हर गली गजल। ये लखनऊ है जनाब।
2: हाईटेक मॉल्स, स्ट्रीट फूड, 10.90 पर गुलजार होती शामें, चाय की चुस्कियों से कॉफी के उठते धुएं तक, ये भी लखनऊ ही है जनाब।
3: समझे जनाब यारी।
2: जहां हर घर में बचता है 100.7 FM रेनबो। धड़कन लखनऊ की।
4: मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं और सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

1:22 और ये देखिए 23 मिनट हो चले हैं और प्रोग्राम ओठों पे तेरी बात की हो चुकी है शुरुआत। और हमारे बीच में मेल आ चुका है सुधाकर राधे जाधव का और प्रशांत संचित प्रथमेश प्रणाली सर्वद सानवी, शायद आपने नाम में सभी के नाम लिख के लगाए हैं, बात आप अपनी बता रहे हैं। जाफराबाद से ये हमें मेल कर रहे हैं और ये लिख रहे हैं कि धूप ज्यादा होने की वजह से आज घूमने जाने का कोई प्लान नहीं है, घर वालों के साथ घर में काम की अच्छा घर के काम में हाथ बटाने वाले हैं। ये तो बड़ी अच्छी सोच है आपकी भाई। और वकील अहमद का भी मेल आ चुका है, इन्होंने लिखा है लखीमपुर से जाना है टहलने, इस समय आम के बाग में आराम कर रहे हैं और समोसे कोल्ड ड्रिंक चल रही है, भाई क्या बात है। वकील के ये कहाँ से ये अच्छा ये लखीमपुर जाना है इनको, लेकिन अभी आम के बाग में है। और जिला सीतापुर से हमें लिखकर भेज रहे हैं साइबा साजिया शमा और सभी के साथ में इन्होंने नाम लिखकर भेजा है। और आपके भी मेल का हम इंतजार कर रहे हैं कि आप क्या करने वाले हैं, तो फटाफट बता डालिए। तब तक सुनिए ये प्यारा सा ट्रैक।

0: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से। केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
1: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए पांच यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
0: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें, विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in।
1: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: ये है 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

दोस्तों, आप सभी लोग सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो शालिनी के साथ प्रोग्राम ओठो पे तेरी बात। और बसंत कुमार सिन्हा जी का मेल आ चुका है, रेखा देवी, अजय कुमार, रिम्मी, तनुश्री, अभय के साथ में। और इन्होंने हमें कहां से मेल लिखा है, दमदर एयरपोर्ट कलकत्ता से इन्होंने हमें भेजा है। अच्छा, और भी नाम इन्होंने झारखंड से भी लिखकर भेज दी हैं, शिवानी, प्रियंका, देवी, जयप्रकाश, रिया, जिया, टीसु, आयुषी, अनिरुद्ध। भाई, इतने लोगों के नाम आपने लिखे हैं, लेकिन जो बात पूछी वो तो सिर्फ आपकी ही है ना। आज इनको बाजार खरीदारी करने जाना है और जैसे ही प्रोग्राम खत्म होगा वैसे ही ये निकल पड़ेंगे। और साथ ही साथ वट सावित्री पूजा की सभी को बधाई दी है, डेंगू दिवस पर सावधानी बरतनी जरूरी है, ऐसा इन्होंने कहा है। पानी टंकी साफ करने के ढक्कन बंद करें और साथ ही साथ नाली की भी सफाई जरूर करें, ऐसा इन्होंने लिखा है। इसके अलावा हमारे बीच में मेल आ चुका है, अनवर अंसारी जी का है। और कहां पर से इन्होंने, पंजाब से इन्होंने हमें मेल किया है। और खाली इन्होंने बहुत सारे लोगों के नाम लिखकर भेजे और फरमाइश लिखकर भेजी है। भाई, ऐसा नहीं होता है, ये प्रोग्राम आपसे और हमारी बातचीत का होता है। नेक्स्ट प्रोग्राम हॉटमेल में हम जरूर लेंगे फरमाइश आपकी। और ये कहां से मेल आ गया है, एक और रायबरेली गांव पहाड़ीपुर से, रामराज, राजू, भानु और रामशंकर हैं और कई सारे लोगों के नाम लिखे हैं। और इन्होंने लिखा है, कल कार्यक्रम के विषय में लिखूंगा, हमारी तरफ से आपको प्यार भरा नमस्ते। आपका मेल तो शामिल कर लिया, लेकिन कल अगर आप लिखेंगे तो कैसे आपका मेल शामिल किया जाएगा आज के विषय पर। भाई, ऐसा मत किया करिए। और किसका मेल आया है, एक और मेल है, लेकिन उसके पहले ये गाना सुन लेते हैं और उसके बाद उस मेल को लेते हैं।

सच में सभी से प्यार करना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, पशु पक्षियों से भी प्यार करना चाहिए, है ना। और ये आप अब अपने दिल वाले प्यार की

सोच ले तो वो तो किसी एक खास से होना चाहिए जिसके लिए आप पूरी जिंदगी दांव पर लगाने को तैयार होते हैं, है ना। तो चलिए वापस आते हैं अपने प्रोग्राम में। और रामेश्वर जी का मेल आ चुका है और इन्होंने हमें मुंगीसापुर कानपुर देहात से मेल भेजा है। और उमा कांति, कमलेश और निशा, प्रज्ञा, प्रतिमा, वेद बाबू के साथ में है ये। और इनका कहना है कि ये अपने घर पर ही रहते हैं, कुछ प्रॉब्लम की वजह से शायद इनके एक हाथ और पैर में कुछ परेशानी है। और महेंद्र दीपेन का भी मेल आ चुका है और इन्होंने लिखा है कि आज दांडी बीच पर घूमने के लिए निकला हूँ, अभी मैं रास्ते में हूँ, लेकिन प्रोग्राम से जुड़ना और आपको मेल करना मेरा इतना ज़रूरी था कि मैंने बीच सफ़र में अपनी गाड़ी सुरक्षित रूप से किनारे रोकी ताकि मैं आपको मेल कर सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दीपेन जी। और ये आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, आप अपने सफ़र में हमें साथ लेकर चल रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और एंजॉय कीजिए अपना सफ़र और बहुत ही सावधानी से ये काम आपने किया है, गाड़ी को किनारे रोक कर आप हमें ईमेल कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। आलोक झा का मेल आया है, गांव में मेला लगेगा तो ये मेला देखने जाएंगे। हीरामणि वर्मा का भी मेल आ चुका है और ये शायद प्रोग्राम का नाम भूल जाते हैं। हीरामणि जी अगर आप हमें सुन रहे हैं, इन्होंने छत्तीसगढ़ से हमें मेल किया है। और हीरामणि जी अगर आप सुन रहे हैं तो आपको बता दें कि प्रोग्राम हॉटमेल नहीं है। बाबू अंसारी देवकली अहमदपुर बाजार बाराबंकी से हमें मेल कर रहे हैं। और अच्छा, ये हमें सुन नहीं पाए इसीलिए केवल मेल किया है इन्होंने कि आपका टॉपिक नहीं सुन पाए। बाबू अंसारी जी, आपको बताएं कि अगर सैटरडे हम आते हैं तो हम आपसे आपका वीकेंड प्लान ही पूछते हैं और उसे एक दूसरे से साझा करते हैं। और किसका मेल आया है, बसंत कुमार जी आपका मेल शामिल किया जा चुका है। और रजक मोहम्मद का मेल आया है, शमीम, इमरान, इरफान और जिशान के साथ में राजस्थान से यहाँ में मेल कर रहे हैं। लेकिन प्रोग्राम कोई होता है, मेल आप कोई कर देते हैं, बातें हम कहीं की करें, गाने कहीं के सुनाएं तो आपको पसंद आएगा, नहीं आएगा ना। तो बस ऐसे ही आप जिस प्रोग्राम की हम बात करें उस प्रोग्राम में जुड़िए, देखिए आपको बहुत पसंद आएगा। और जुड़ना क्या है, आप फिर हट भी नहीं पाएंगे और वैसे ही नेक्स्ट प्रोग्राम हॉटमेल भी आ जाएगा, तो उसमें आप क्या करें, आप हमें अपनी फरमाइश, अपनी पसंद मेल कर दें बस।

1:54 और 18 सेकंड का वक्त, और ये वक्त क्या कह रहा है? वही जो हर रोज कहता है कि प्रोग्राम को वाइंड अप करने का समय आ गया है, और हर्षित वर्मा का मेल आ गया है जस्ट जाते जाते इस प्रोग्राम के, और इन्होंने सीतापुर से हमें लिखकर भेजा है। और अच्छा, वर्षा सावित्री की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं, और जो लोग पुड़िया खाते हैं वो थोड़ा कम खाएं क्योंकि गर्मी ज्यादा पड़ रही है। ये कुछ बात नहीं समझ में आई भाई, जिसे समझ में आई वो समझ जाएं, जिन्हें नहीं आई तो कोई बात नहीं। और इस प्रोग्राम का ये लास्ट ट्रैक सुनिए, एंजॉय कीजिए, बने रहिए हमारे यानी कि 100.7 एफएम रेनबो के साथ। नेक्स्ट प्रोग्राम हॉटमेल, जिसका आप सभी को रहता है ढेर सारा इंतजार। ईमेल आप टाइप कर चुके हैं, बस सेंड का बटन दबाना है, भेजिए अपनी फरमाइश फटाफट। एफएम

नमस्कार। दोपहर के 2 बजे आप सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने आधिकारिक यात्रा के दौरान नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री का राजा विलियम

0: प्रेजेंटर और महारानी मैक्सिमा से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। यह दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें भारत यूरोप मुक्त व्यापार समझौते के बाद भारत यूरोपीय संघ के व्यापक संबंधों को आकार देने की संभावना है। प्रधानमंत्री अपने प्रवास के दौरान भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और वहां के प्रमुख व्यापारिक नेताओं से बातचीत करेंगे। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी आज गोरखपुर में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के भूमि पूजन और शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश विकास, सुशासन और निवेश और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जाना जाता है। राज्य में कानून व्यवस्था में आए सुधार ने आम नागरिकों से लेकर उद्योग जगत तक नया विश्वास पैदा किया है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रेरणा से देश में नए खेल संस्कृति आगे बढ़ी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भी खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए हर गांव में खेल का मैदान बनाया जा रहा है, जबकि हर जिले में स्टेडियम बनाने पर भी काम किया जा रहा है।
1: एंड क्वीन मैक्सिमा दिस आफ्टरनून द विजिट कैरीज सिग्निफिकेंस बियॉन्ड बायलैटरल टाइज एंड इज एक्सपेक्टेड टू शेप ब्रॉडर इंडिया ईयू रिलेशंस फॉलोइंग द रिसेंटली कंक्लूडेड इंडिया यूरोप फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। Earlier, when the Prime Minister arrived in the Netherlands late last night, he was received by the Dutch Foreign Minister. He was accorded a grand welcome through cultural and musical performances by the diaspora and Dutch troops. Members of the Indian community representing different age groups, regions and faiths gathered to welcome him with traditional dance and musical performances. The venue echoed with chants of Modi Modi and Vande Mataram as he arrived.
2: Modi, Modi, Modi, Modi.
1: In a social media post, Mr. Modi said the welcome was remarkable as it included a dance performance covering Kathak, Odissi, Bharatanatyam, Kuchipudi and Mohiniyattam and also included a Garba performance. The Prime Minister is addressing the Indian community and will interact with leading business leaders from the Netherlands. The community event is expected to focus on India-Netherlands ties, the role of the diaspora and India's global outreach. We now go live to The Hague in the Netherlands where the Prime Minister is addressing the Indian community.
3: Aaj ka din hai. Koti koti Bharatvasiyon ka vishwas mujhe na rukne deta hai aur na thakne deta hai. ये नॉन स्टॉप चले ही जा रहा है। साथियों, बहुत छोटी आयु से ही मैं देशभक्ति के रंग में रंग गया। आप ही मेरा परिवार बन गया। स्वर्ग से समष्टि की ओर चल पड़ा, अहम से वयम का रास्ता चुन लिया। और फिर तो आपका सुख ही मेरा सुख बन गया, आपका कल्याण ही मेरा कर्तव्य बन गया।
1: After concluding his visit to the Netherlands, Prime Minister Modi will travel to Sweden tomorrow on the third leg of his five-nation tour. The focus is squarely on the robust economic engine driving this partnership. With bilateral trade reaching record highs, Swedish industrial giants are not just observing the Indian market, they are thriving on it. A report.
4: Several reforms brought by the government in the last 12 years are being reflected not just among the thriving Indian businesses but also with the success and satisfaction of the international investors. During a talk with Akashvani, Sri Kamal Bali, Managing Director of Volvo India, explained how the reforms of the last decade have transformed the business landscape for international investors.
5: Things like Make in India, the PLI scheme, the GST reforms, I mean initial challenges, all these reforms, whenever anything changes, you have to go through a change mechanism. But I I think those things are really, really bearing fruit, and we can clearly see that the level of, and this is manifesting itself in the satisfaction level which we conduct among Swedish companies. So it's very, very clearly big, big benefit, and therefore the fourth

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। श्री मोदी का राजा विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से भी मुलाकात का कार्यक्रम। सेमीकंडक्टर चिप्स एआई द्विपक्षीय व्यापार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की पाकिस्तान को चेतावनी, कहा पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों को बंद करे। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वर्ष 2011 से जारी सभी जाति प्रमाण पत्रों की जांच के आदेश दिए। सीबीएसई ने कक्षा 12वीं के छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं के दो चरणों में पुनर्मूल्यांकन की

0: प्रक्रिया की घोषणा की। और बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने थाईलैंड ओपन के फाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय नीदरलैंड्स में द हेग में एक सामुदायिक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
1: केवल भारत में हो रहे और स्टार्टअप तो आज भारत के युवाओं का मिजाज बन चुका है। 12 साल पहले देश में 500 से भी कम स्टार्टअप थे, आज ये संख्या बढ़कर 2 लाख से ज्यादा हो गई है। और स्टार्टअप की दुनिया में भी 2014 में भारत में सिर्फ 4 यूनिकॉर्न थे, आज भारत में करीब 125 एक्टिव यूनिकॉर्न है। पच्चीस में ही करीब 44,000 और नए स्टार्टअप रजिस्टर हुए हैं। आज एआई, डिफेंस और स्पेस सेक्टर में हमारे स्टार्टअप बहुत शानदार काम कर रहे हैं। समय के साथ रिसर्च और इनोवेशन का एक कल्चर और विराट होता जा रहा है।
0: श्री मोदी ने हेग को भारत नीदरलैंड मित्रता का जीवंत प्रतीक बताया और कहा कि डच नेता भारतीय प्रवासी भारतीयों के योगदान की लगातार सराहना करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नीदरलैंड के समाज और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में प्रवासी भारतीयों की भूमिका पर प्रत्येक भारतीय को गर्व है। प्रधानमंत्री का आज नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटेन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री का राजा विलियम अलेक्जेंडर तथा महारानी मैक्सिका में से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें भारत यूरोप मुक्त व्यापार समझौते के बाद भारत यूरोपीय संघ के व्यापक संबंधों को आकार देने की संभावना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी आधिकारिक नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान शनिवार को भारतीय समुदाय को संबोधित कर रहे हैं। नीदरलैंड्स में रहने वाले भारतीय समुदाय के हजारों लोग इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और इसे एक ऐतिहासिक क्षण बता रहे हैं। इस कार्यक्रम से भारत और नीदरलैंड के रिश्तों, प्रवासी भारतीयों की भूमिका और दुनिया में भारत की बढ़ती पहचान को भी बल मिलेगा। इस यात्रा का एक और महत्वपूर्ण पड़ाव है चोल काल की ताम्र पत्रों की ऐतिहासिक वापसी। ये 11वीं शताब्दी के दुर्लभ चोल ताम्र पत्र नीदरलैंड्स में प्रधानमंत्री मोदी को सौंपे जाएंगे। ये कदम सिर्फ साझा धरोहर की वापसी नहीं बल्कि भारत और नीदरलैंड के रिश्तों को और मजबूत करने वाला पहल है। यह भारत की सभ्यतागत विरासत को सहेजने और उसके अध्ययन के प्रति नई प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए सुश्रुत शर्मा, द हेग, नीदरलैंड।
0: भारत और नीदरलैंड के बीच सेमीकंडक्टर चिप्स, एआई और व्यापार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर भी हस्ताक्षर होने की संभावना है। इससे पहले प्रधानमंत्री के नीदरलैंड पहुंचने पर डच विदेश मंत्री ने उनका स्वागत किया। प्रवासी भारतीयों और डच सैनिकों द्वारा सांस्कृतिक और संगीतमय प्रस्तुतियों के साथ उनका भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद पूरा स्थल मोदी मोदी और वंदे मातरम के नारों से गूंज उठा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि स्वागत समारोह उल्लेखनीय था जिसमें कथक, ओडिसी, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और मोहिनी अट्टम नृत्य प्रस्तुतियां शामिल थीं, साथ ही गरबा नृत्य भी था। प्रधानमंत्री मोदी कल दौरे के तीसरे चरण के लिए स्वीडन के गोथेनबर्ग जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस यात्रा का उद्देश्य द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करना है।
3: पिछले 12 वर्षों में भारत सरकार द्वारा किए गए अनेक सुधारों का प्रभाव आज न केवल भारतीय उद्योगों की प्रगति में दिखाई दे रहा है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों की सफलता में भी साफ नजर आ रहा है। आकाशवाणी से बात में वॉल्वो इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री कमल बाली ने बताया कि पिछले एक दशक में हुए सुधारों ने अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के लिए भारत के कारोबारी माहौल को किस तरह सकारात्मक तौर पर बदला है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री की स्वीडन यात्रा के दौरान वह स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंसन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इस दौरान दोनों नेता भारत स्वीडन संबंधों के सगरम

0: आयामों की समीक्षा करेंगे और द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के साथ साथ हरित परिवर्तन, एआई, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप, मजबूत सप्लाई चेन, पीपल टू पीपल संबंधों जैसे क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसरों पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के गोथेनबर्ग पहुंचने से पहले ये सकारात्मक माहौल भारत स्वीडन संबंधों के लिए नई दिशा तय करता दिख रहा है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
1: इस मौके पर स्वीडन में भारत के राजदूत अनुराग भूषण ने कहा कि मेक इन इंडिया जैसी पहलों ने उद्योग जगत में आए विश्वास को मजबूत किया है और दीर्घकालिक रणनीतिक सहयोग के नए रास्ते खोले हैं।
2: We have a very long-standing partnership with Sweden on defense.
3: रक्षा क्षेत्र में स्वीडन के साथ हमारी साझेदारी बहुत पुरानी है, लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता के संबंध से आगे बढ़कर रक्षा साझेदार के रिश्ते में बदल गया है। अब दोनों देश और दोनों देशों की कंपनियां मिलकर रक्षा उपकरण बनाने और उनके उत्पादन करने की दिशा में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और साथ ही देश में हुए बुनियादी ढांचे के विकास से इस प्रयास को और भी अधिक गति मिली है।
2: एंड ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दैट हैज हैपेंड।
1: सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि उसे आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ गतिविधियां चलाना बंद करना होगा। नई दिल्ली में सेना संवाद कार्यक्रम में श्री द्विवेदी ने कहा कि अगर पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां जारी रखता है तो उसे एक बड़ा फैसला लेना होगा।
4: If you heard me earlier,
3: अगर आपने मुझे पहले सुना है तो मैंने यही कहा था कि अगर पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां जारी रखता है तो उसे ये खुद तय करना होगा कि वो भूगोल का हिस्सा बना रहना चाहता है या इतिहास का या किसी का भी नहीं।
1: सेना प्रमुख की टिप्पणी भारत की आतंकवाद के खिलाफ सख्त नीति को दर्शाती है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वर्ष 2011 से जारी सभी जाति प्रमाण पत्रों की जांच का आदेश दिया है। अधिकारियों ने कहा है कि पिछले 14 वर्ष में इन दस्तावेजों की प्रामाणिकता और वैधता पर सवाल उठाए गए हैं। इस अवधि के दौरान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लगभग 1,69,00,000 जाति प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। इनमें से कई प्रमाण पत्र द्वारे सरकार योजना के अंतर्गत बनाए गए थे। राजस्थान में जनगणना 2027 के अंतर्गत घर घर जाकर डेटा संग्रह का कार्य आज से शुरू हो गया है। ये चरण 14 जून तक चलेगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 की कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम घोषित होने के बाद छात्रों के लिए विभिन्न सुविधाओं की घोषणा की है। बोर्ड ने इस बार मूल्यांकन प्रक्रिया को और अधिक सटीक और पारदर्शी बनाने के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली का उपयोग किया है। एक रिपोर्ट।
5: पहले चरण में छात्र अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां मांग सकते हैं। ये ऑनलाइन लॉगिंग के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएंगी और समीक्षा के लिए डाउनलोड की जा सकती हैं। जबकि दूसरे चरण में छात्र विसंगतियों के सत्यापन के लिए आवेदन कर सकते हैं या अंकन योजना के आधार पर विशिष्ट उत्तरों के पुनः मूल्यांकन का अनुरोध भी कर सकते हैं। बोर्ड ने कहा है कि सभी आवेदन निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन जमा किए जाने चाहिए और प्रत्येक चरण के लिए केवल एक आवेदन स्वीकार किया जाएगा। छात्र 19 से 22 मई के बीच मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रति प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसका शुल्क प्रति विषय ₹700 है। अनुपम और शिवांग की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। असम, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत के बाद वो पहली बार गुजरात गए हैं। एक रिपोर्ट।
6: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 दिन गुजरात के दौरे पर है। आज सुबह अहमदाबाद में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन साउथ वेस्ट जोन ऑफिस में श्री शाह की अध्यक्षता में एक हाई लेवल रिव्यू मीटिंग हुई। श्री शाह ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर और सीनियर अधिकारियों के साथ हरियाली लोकसभा के तहत पेड़ लगाने, विकास के कामों, इंटरलिंकिंग और जिलों के रिनोवेशन पर चर्चा की। आज दोपहर तक होने वाली मीटिंग में श्री शाह सरखेज गांधीनगर हाईवे के मॉडर्नाइजेशन के कामों की प्रोग्रेस का रिव्यू करेंगे। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री जीयूडीसी और गांधीनगर लोकसभा के कामकाज में हुई प्रोग्रेस के साथ साथ मानसा म्यूनिसिपलिटी से जुड़े दूसरे विकास कामों, गांधीनगर लोकसभा इलाके में पब्लिक हॉस्पिटल के कामकाज में हुई प्रोग्रेस, अखंडानंद और सस्तु साहित्य मुद्रणालय ट्रस्ट के कामकाज का रिव्यू करेंगे। प्रवेश अड़ियचा, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: भारत की मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने से जुड़ी एजेंसियों ने पहली बार ऑपरेशन रेड स्पिल के अंतर्गत 182 करोड़ रुपए मूल्य की कैप्टागन ड्रग्स जब्त की हैं।

0: गृहमंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पश्चिम एशियाई देशों में जा रही ड्रग्स की खेप की जब्ती और एक विदेशी नागरिक की गिरफ्तारी इस दिशा में भारत की कड़ी नीति को दर्शाती है। सिक्किम आज अपना 51वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन मुख्य अतिथि के रूप में गंगटोक में मनन केंद्र में आयोजित होने वाले मुख्य समारोह में शामिल हो रहे हैं। एक रिपोर्ट।
1: अब से कुछ देर में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन सिक्किम राज्य स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर गंगटोक स्थित मनन केंद्र में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। समारोह के दौरान उपराष्ट्रपति पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए कई परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। गौरतलब है कि सिक्किम राज्य स्थापना दिवस प्रतिवर्ष 16 मई को मनाया जाता है। आज ही के दिन 1975 में सिक्किम भारत संघ के साथ औपचारिक रूप से विलय हुआ था। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गंगटोक।
0: दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने व्यापारी रॉबर्ट वाड्रा को गुरुग्राम के शिखोपुर गांव में वर्ष 2008 के जमीन खरीदने से जुड़े धन शोधन मामले में जमानत दे दी है। अगली सुनवाई 10 जुलाई को होगी। ये मामला लगभग 3.5 एकड़ भूमि से जुड़े सौदे में कथित अनियमितताओं से संबंधित है। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जिले में आज सुबह एक तेज रफ्तार टिपरी लॉरी के टक्कर से 6 महिला मजदूरों की मौत हो गई। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामला दर्ज कर दिया है। उप मुख्यमंत्री के पवन कल्याण ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। बैडमिंटन में भारतीय सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी थाईलैंड ओपन के फाइनल में पहुंच गई है। सेमीफाइनल में सात्विक और चिराग की जोड़ी ने मलेशिया के नूरजुद्दीन और गो से फेई को हराया। पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन सहित अन्य भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी टूर्नामेंट से पहले ही बाहर हो गए हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से कोलकाता के ईडन गार्डन्स में होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। सरकार ने पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार के एक एडिट हुए वीडियो का खंडन किया है। इस वीडियो में दावा किया गया था कि अफगान तालिबान को पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पैसे दिए गए हैं और वो भारत की तरफ से लड़ रहे हैं। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने यह स्पष्ट किया है कि श्री कटियार ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। इकाई ने बताया कि वीडियो गलत जानकारी फैलाने और भारतीय सेना पर लोगों का भरोसा कम करने के लिए एआई के इस्तेमाल करके बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलीफ अली कादिम अल जैदी को इराक के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण करने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत इराक के साथ अपने लंबे समय से चले आ रहे मैत्रीपूर्ण संबंधों को बहुत महत्व देता है और सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। श्री मोदी का राजा विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से भी मिलने का कार्यक्रम। सेमीकंडक्टर चिप्स, एआई और द्विपक्षीय व्यापार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की पाकिस्तान को चेतावनी, कहा पाकिस्तान आतंकियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां बंद करे। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वर्ष 2011 से जारी सभी जाति प्रमाण पत्रों की जांच के आदेश दिए। सीबीएसई ने कक्षा 12वीं के छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं के 2 चरणों में पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया की घोषणा की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

2:37 और 22 सेकंड हो चले हैं दोस्तों, और एम के राज भान का मेल आ चुका है। मुकेश कुमार राज हैं, भानपुर हरौरा लखीमपुर से हमें ये मेल कर रहे हैं। और सुन लो एफएम रेडियो के सभी श्रोता, बार बार ईमेल करने से कुछ नहीं होता। क्या बात है। रविंद्र मोहनदास आशा देवी के साथ में किशनगंज बिहार से मेल कर रहे हैं। ताज मोहम्मद अंसारी गुलाम साबिर मेहरा जहां आजाद नगर लक्षर हरिद्वार से मेल कर रहे हैं। दिग्दर्शन कौर मेरठ से कविता के साथ में मेल कर रहे हैं। और किसका मेल है ये? नरेश मल्होत्रा नीटू खैल बाजार पानीपत से लक्ष लाठो पापा जी नानक चंद्र के साथ में मेल कर रहे हैं। और अकरम हुसैन जी का भी मेल आ चुका है। कहां से ये हमें करते हैं? नूर महल महसौल सीतामढ़ी बिहार से। और बहुत सारे लोगों के साथ मेल किया है आपने हमें। दीपेश वर्मा का भी मेल आया है पिपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से। पूनम ज्योति शिवांश के साथ में आपने हमें मेल किया है। मोहम्मद रिजवान का भी मेल आ चुका है। और मोहम्मद रिजवान संजीला हरदोई से हमें मेल कर रहे हैं। कमलकांत गुप्ता जी का भी मेल है दीपा डिमझिम के साथ पिपिरिया से। और समडील नवापारा से मुकेश श्रद्धा अदिति राधे दीपक के साथ अंकुरा घोल के साथ इन्होंने मेल किया है। सुरेश नारंग का भी मेल है आशा के साथ सहारनपुर से ये हमें मेल कर रहे हैं। शहनाज खान का मेल राजा जी पुरम लखनऊ से है और गाने की फरमाइश की है। शहनाज बड़ा मुश्किल होता है कि सभी के गाने सब तक पहुंचाए जाए। कोई नहीं, आप मेल करिए, आपका गाना जरूर प्ले होगा। और छत्रपति सामाजी महानगर औरंगाबाद से प्रकाश बोरगांवकर और सुषमा प्रांजलि सोहम सदानंद विराज स्वीटी अंशुमन बेबी ओनी के साथ में मेल आया है। अनवर अंसारी ने पंजाब से मेल किया है। रवीना अलीफा जावेद अंसारी अख्तर सना हिना बहुत सारे लोगों के नाम है। और गाना प्ले हो चुका है, इसको सुन लेते हैं और उसके बाद आगे बात करते हैं।

तो 2:44 और 20 सेकंड हो चले हैं, लेकिन गाने इतने ज्यादा होते हैं पसंद के तो कुछ ही जाते हैं, लेकिन मेल हम सबके ले पाते हैं। और जाफराबाद से सुधाकर, राजे जाधव, प्रशांत, संचित, प्रथमेश, प्रणाली, सरवद और सानवी का मेल आ चुका है। और इसके अलावा हमारे बीच में मेल आया है सिटी मुंबई से अहमद भाई फूल वाले दुखनी, सफद आरजू और इकबाल जी का, और पूरा नाम लिखा है इमरान अहमद, आमना, आसमा, राबिया, मंतशा, अंशु, पूरे सभी लोगों ने मेल किया है। और राम सेवक जी का मेल रेनु, आयुषी, उषा, नीतू, आशुतोष के साथ में है, ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, इन्हें अच्छा लग रहा है। और आज उन्नाव से ये हमें मेल कर रहे हैं। डिंपल त्रिवेदी जी का भी मेल आ चुका है, और बड़े कहां से ये आशी और पलक भी हैं, इनके साथ में गाने की फरमाइश की है, बिल्कुल आपका गाना आप तक जरूर पहुंचाया जाएगा। और मेल आया है निसार अली जी का भी मेल, नौशा सलमानी, बेबी आलिया के साथ में, तेलीवाला उत्तराखंड से आ चुका है। अशोक कुमार का भी मेल आया हुआ है लखीमपुर खीरी से, ये हमें अशोक राज जी मेल कर रहे हैं। और जोन रिकॉस्टो, रोजी पर्ल्स, फिलिस का भी जनकपुरी सहारनपुर से मेल है। शशि निगम ने भी हमें मेल किया है, और कहां से किया, लखनऊ से इन्होंने हमें मेल किया है। संजय साहू पोठिया कला से हमें मेल कर रहे हैं। उदय भान पाल का भी मेल, दीक्षा जय हिंद, प्रतीक्षा, विमलेश, दिव्यांश के साथ में, बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से आया। आप सुनिए प्यारा सा ट्रैक।

और दोस्तों मनोज बंसल जी का भी मेल आ चुका है, हरियाणा से मेल कर रहे हैं। और अजमत अंसारी का भी मेल आया है। और किसका किसका मेल है आप फटाफट मेल पढ़ देते हैं, नहीं तो समय खत्म हो जाएगा। शंभू दयाल जी का भी मेल आ चुका है और इन्होंने हमें जाखोद राजस्थान से विमला अमरजीत योगेश दीपक और पूजा के साथ मेल किया है। शाहरुख नूर अंसारी, शकील, मोइन, तस्लीन, फरियाद हुसैन मचकली जिला बरेली से फोन मेल कर रहे हैं। और किसका मेल आया हुआ है, यशोदा नगर कानपुर से कौशल प्रजापति जी हमें मेल कर रहे हैं। वारिस अली खान जी का भी मेल आ चुका है, इन्होंने ऐशबाग लखनऊ से हमें मेल किया है। और सुनील पाठक जी का भी मेल आ चुका है, दीपिका गायक और सुच्चा सिंह के साथ में कमल पाठक अनारकली बाजार जगराओ पंजाब से मेल कर रहे हैं। स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत, राजदीप, गुरनूर, गुरलाल, अविराज के साथ में हमें ठाकुरावाला से मेल कर रहे हैं। और अब बारी है इस प्यारे से ट्रैक की।

बजकर 55 मिनट हो चले और ये वक्त कह रहा है कि शालिनी अब इस प्रोग्राम को करना होगा यहीं पर वाइंड अप। लेकिन गांधी नगर गुजरात से सुरेश, मंजुला, विशाल, निशा का भी मेल आ चुका है, कुछ मेल बचे हैं उन्हें हम आप तक पहुंचा दें। विनीत कुमार का भी मेल आया हुआ है और चीनी मिल जिला सीतापुर से हमें मेल कर रहे हैं। इतने ज्यादा आप मेल बराबर करते हैं कि आपका ही मेल खो जाता है। नबी हसन अम्बासी, शानाज, नावेद हसन, सुहेल, रसीद, अमन, यशफ के साथ में एटा से इन्होंने हमें मेल किया है। हीरामणि वर्मा का पुष्पेंद्र नोखेलाल के साथ भाटपारा छत्तीसगढ़ से मेल आया हुआ है। जाकिर का भी मेल आ चुका है और किसका किसका मेल है फटाफट नाम पहुंचा देते हैं। तालिब अंसारी है, सुधान बाबा है और शमशुल कमर राही है, कौशिक, वंदना, विराज मौर्या, टीटी

मल्होत्रा, दारा सिंह, अंतरा, अनंत राम मिश्रा, नरेश और रणधीर गुप्ता, गुरमीत सिंह, सैफ अंसारी, शाहजी बोखड़े, मुस्कान रियान का है, दिनेश वर्मा है, हर्षित वर्मा, रमाकांत सिंह, राजेश वर्मा, सिद्धार्थ कुठानी, इतने लोगों ने मेल किया है भाई, जिनका नाम हम नहीं ले पाए। सीताराम कांगड़ा भी है, पूना जी नहाकर है, भाई मूसा शेख है, सफरुद्दीन अंसारी और मोहसिन रजा, परवीन रानपारा, आर कुमार, राधेश्याम शर्मा, गगनदीप तांदी और दीपेश वर्मा और पंकज शर्मा, शंभु दयाल, इतने लोगों ने मेल किया। और अब बारी है इस प्रोग्राम को वाइंड अप करने की। ये प्यारा सा ट्रैक इस प्रोग्राम के लास्ट का, सुनते रहे, बने रहे हमारे साथ 100.7 FM रेनबो।

0: इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

गुड आफ्टरनून डियर फ्रेंड्स, 102.2 की फ्रीक्वेंसी पर एक बार फिर कनेक्ट हो चुके हैं आप और एफएम रेनबो कानपुर के स्टूडियो से एक बार फिर आपसे कनेक्ट हूँ मैं आपकी अपनी रेडियो हम सफर कौसर।

दोस्तों स्वागत है, वेलकम है आपका म्यूजिक आर प्रोग्राम में। वैसे गाइज, रोशनी या प्रकाश सिर्फ आंखों से दिखाई देने वाला उजाला नहीं होता, ये वो एहसास भी होता है जो थके हुए मन को सुकून देता है। सुबह जब सूरज की वो पहली किरण और उसकी रोशनी जब खिड़की से होकर चेहरे पर पड़ती है तो ऐसा लगता है जैसे जिंदगी फिर से मुस्कुरा उठी हो। और आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस, और हम म्यूजिक आर प्रोग्राम में बात करेंगे आज उस रोशनी की जो सिर्फ दुनिया को नहीं इंसान को अंदर से भर देती है, प्रकाश से, रोशनी से। जी, आज की थीम है रोशनी के रंग, उम्मीदों के संग।

जहाँ रूबरू रोशनी है। वैसे दोस्तों ज़रा सोच कर देखिए, अगर इस दुनिया में रोशनी ना होती तो ना रंगों की कोई पहचान होती हमें, ना चेहरे की मुस्कान इतनी खूबसूरत लगती। ना बारिश के बाद जो इंद्रधनुष बनता है ना, वो दिल जीत पाता, ना शाम का ढलता हुआ सूरज इतना सुकून देता। जी हाँ, प्रकाश यानी कि रोशनी वो पावर है, वो शक्ति है जो धरती पर जिंदगी की हर धड़कन को चलाए रखती है। पौधे, नदियां, मौसम और इंसान, जी हाँ, ये सब कुछ कहीं ना कहीं सूरज की उसी रोशनी से जुड़े हुए हैं। वैसे सच कहूँ तो ये उजाला सिर्फ प्रकृति में नहीं बल्कि हमारी सोच और हमारे सपनों में भी होना चाहिए।

जी हाँ, आप सुन रहे हैं म्यूजिक आर प्रोग्राम अपने रेडियो हम सफर आरजे कौसर के साथ। इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट आज सेलिब्रेट किया जा रहा है और बस इसी पर बेस्ड हमारा आज ये प्रोग्राम है म्यूजिक आर, और जिसकी थीम है आई सर्जरी हो, मोबाइल और इंटरनेट की तेज रफ्तार हो या फिर अंतरिक्ष में होने वाली खोजें हो, हर जगह प्रकाश विज्ञान चुपचाप से इंसान की जिंदगी को इजी बना रहा है। सिर्फ इजी ही नहीं, वेरी इजी बना रहा है। आप भी मानते हैं ना इस बात को? कितना अमेजिंग लगता है ना कि एक साधारण सी रोशनी भी पूरी दुनिया बदलने की ताकत रखती है।

सूरज की बहों में रोशनी तो है ही, लेकिन आजकल तो तकनीक इतनी इतनी तरीके से रोशनी दे रही है कि बस क्या ही बताया जाए, क्योंकि तकनीक इतने आगे पहुंच चुकी है। फिलहाल आपको बता दें कि आप सुन रहे हैं म्यूजिक आर प्रोग्राम, आपके साथ मैं कनेक्ट हूँ आज आपकी अपनी रेडियो हम सफर आरजे कौसर। और दोस्तों, इस गीत से पहले मैंने एक सवाल पूछा था आप सभी श्रोताओं से कि त्योहारों की रोशनी में आपको सबसे ज़्यादा खूबसूरत क्या लगता है, दियों की चमक, घरों की सजावट या फिर अपनों का साथ। और इसी के साथ हमारे पास ये ईमेल आ गई है, ये हैं भैया मोनू सेठ, और इन्होंने लिखा है कि त्योहारों की चमक का मतलब अपनों का साथ। और आपने बहुत ही सोच समझ कर ये जवाब दिया है। सच में त्योहारों की रोशनी तो तभी दिखाई पड़ती है जो आंखों को सुकून देती है, जब अपनों का साथ होता है। अगर अपनों का साथ ना हो तो ये त्योहारों की रोशनी बिल्कुल फीकी पड़ जाएगी। थैंक यू सो मच, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है भैया मोनू सेठ। वैसे दोस्तों, हमारे त्योहारों और परंपराओं में भी रोशनी का बहुत गहरा रिश्ता रहा है। फिर वो दीपावली में जलते दीपक हो, ईद की चांद रात की चमक हो, गुरुद्वारों की जगमगाहट हो या फिर क्रिसमस की रोशनी हो, हर जगह उजाला सिर्फ सजावट नहीं होता, वो खुशी, प्यार और अपनापन लेकर आता है। एक छोटा सा दीपक भी ये भरोसा देता है कि अंधेरा चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, रोशनी अपना रास्ता बना ही लेती है। और शायद ज़िंदगी भी हमें यही सिखाती है ना कि उम्मीद का चिराग जो है ना, वो हमेशा जलाते रहना चाहिए, उसे कभी भी बुझने नहीं देना चाहिए।

अच्छा गाना शुरू हो रहा है, तब तक हम आपसे पूछते हैं कि ये बताइए कि ऐसी कौन सी आधुनिक तकनीक है जिसके बिना आप अपना दिन भी नहीं सोच सकते। जी हाँ, ऐसी कौन सी आधुनिक तकनीक है जिसके बिना आप अपना दिन भी नहीं सोच सकते। अपने जवाब जल्दी से जल्दी मुझे भेजिए, मैं पढ़ूंगी आपके नाम जवाब के साथ।

जी हाँ, म्यूजिक आर प्रोग्राम में चल रही है रोशनी की बात, क्योंकि आज है अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस और इस प्रोग्राम में आपके साथ मैं हूँ आपकी अपनी रेडियो हम सफ़र। जी हाँ, अरिजीत कौशल। वैसे दोस्तों, ज़िंदगी में कई बार ऐसे पल आते हैं जब इंसान खुद को बिल्कुल अकेला महसूस करने लगता है। चारों तरफ उसे ऐसा लगता है कि बस अंधेरा ही अंधेरा हो, लेकिन तभी किसी अपने की एक आवाज़, किसी दोस्त का साथ या किसी का सिर्फ इतना कह देना कि मैं हूँ ना, बिल्कुल घबराने की कोई बात नहीं है। तो ये जो एक बस मैं हूँ ना, जो तीन शब्दों का ये जो मेल है ना, ये क्या कर जाता है असर, बस इसको कुछ शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता। दिल के अंदर बस एक लौ फिर से जगा देता है ये शब्द मैं हूँ ना। असली रोशनी वही होती है जो इंसान के मन के अंधेरे को दूर कर दे। और सच तो ये है कि कई बार एक अच्छा इंसान सूरज से भी ज़्यादा उजाला दे जाता है।

जी हाँ, मैं हूँ ना। इन्हीं शब्दों की बात तो अभी मैं कर रही थी कि बस ये जो तीन शब्द होते हैं ना, ये किसी के दिल को भी बहुत तसल्ली देते हैं। और ये तसल्ली क्या असर करती है, बस उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। फिलहाल मैंने कुछ देर पहले एक सवाल पूछा था कि ये बताइए कि ऐसी कौन सी आधुनिक तकनीक है जिसके बिना आप अपना दिन सोच भी नहीं सकते। और एक बार फिर से भैया मोनू से

0: इट का जवाब आया है कि मोबाइल ही एक ऐसा आधुनिक युग है जिसे दूर नहीं रहा जा सकता। जी बिल्कुल सही है कि मोबाइल और इंटरनेट के बिना बिल्कुल दूर नहीं रहा जा सकता है, लेकिन बस इसमें एक बात ये भी कहना चाहूँगी कि मोबाइल कभी कभी ज़्यादा इसका यूज़ नुकसान भी देता है और हमारी आँखों पर भी जो इसकी लाइट पड़ती है उसके लिए भी बहुत नुकसानदेह, हमारा वक्त भी काफ़ी ख़राब होता है कि अगर सोशल मीडिया पर हम लग गए कुछ रील्स वगैरह देखने के लिए तो फिर वो उसका एक मिनट कब एक घंटा हो जाता है वो पता नहीं चलता। तो इसका बस यूज़ करिए, मोबाइल के बिना ज़िंदगी तो आप कोई सोच भी नहीं सकता है, लेकिन इसका यूज़ करिए, लेकिन थोड़ा सा सोच समझ कर करिए क्योंकि आपका वक्त भी बहुत कीमती है, आपकी बॉडी के जितने पार्ट्स हैं वो भी बहुत कीमती हैं, है ना। साथ ही हमने एक सवाल इससे पहले भी पूछा था कि त्योहारों की रोशनी में आपको सबसे ज़्यादा खूबसूरत क्या लगता है, तो सोनू परवाना जी ने भी ये एक ईमेल भेजा है हमें, उसका जवाब भेजा है। इन्होंने लिखा है कि अपनों को साथ हो तो त्योहारों में रौनक बढ़ जाती है। जी बिल्कुल सही है, आपका जवाब एकदम सही है। बस ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे साथ 102.2 FM रेनबो कानपुर के साथ, ऐसे ही बहुत ही और भी खूबसूरत और रोचक सवाल हैं हमारे पास। फिलहाल प्रोग्राम चल रहा है म्यूज़िक कार। तो दोस्तों आपको बता दें कि पुराने दौर की वो जो शामें थी ना वो भी बड़ी ही खूबसूरत हुआ करती थी, इसको तो मानते हैं ना आप। जी हाँ, उस वक्त जब घरों में मिट्टी के दिए जलते थे, लालटेन आपको याद ही होगा कि लालटेन की वो पीली रोशनी जिसमें पूरा परिवार एक साथ बैठता था, बिजली कम थी उस वक्त लेकिन रिश्तों में उजाला बहुत ज़्यादा था। लोग घंटों बातें किया करते थे, छतों पर बैठकर चांद देखा करते थे कि आज चांद कितना बड़ा निकला है ना, आज इतना गोल निकला है, आज इतना निकला है, चांद की कितनी रोशनी, बहुत सारी बातें छतों के नीचे बैठकर चांद को देखकर किया करते थे और छोटी छोटी खुशियां जो होती थी ना उसमें ज़िंदगी ढूंढ लिया करते थे। आज क्या है, आज रोशनी तो बहुत है लेकिन कहीं ना कहीं वो अपनापन थोड़ा सा कम हो गया है, शायद इसीलिए वही पुरानी यादें आज भी दिल को इतना सुकून देती हैं और याद आ जाते हैं कुछ यादगार पल।
1: ओरिजिनल हाई क्वालिटी सॉन्ग्स।

जी हाँ, गली में आज चांद निकला, ऐसे ही तो था, वो पुरानी यादों को याद करिए, ऐसे ही कुछ माहौल था। और सच में वो चांद भी तब बिल्कुल एक खिलौना सा लगता था कि हम लोग दौड़ दौड़ कर घर में बोलते थे कि अरे चांद निकल आया, अरे चांद निकल आया। और जब त्यौहार हो तो उसकी रोशनी तो फिर क्या ही कहने, वल्लाह वल्लाह। तो चलिए यहाँ पर एक सवाल और पूछ लेते हैं, अगर आपको मौका मिले तो आप पर्यावरण को बचाने के लिए कौन सी छोटी सी बात अपनाना चाहेंगे? जी हाँ, अगर आपको मौका मिले तो आप पर्यावरण को बचाने के लिए कौन सी छोटी सी बात अपनाना चाहेंगे? प्रकृति और प्रकाश का रिश्ता भी कितना अद्भुत है ना दोस्तों। सुबह की रोशनी और वो सुनहरी धूप, वो आसमान में बारिश के बाद बनता हुआ इंद्रधनुष, पहाड़ों पर गिरती सूरज की किरणें, या चांदनी रात में चमकते पेड़, ये सब किसी मैजिक से कम नहीं लगता है। ऐसा महसूस होता है जैसे कुदरत का हर दिन अपने हाथों से एक नई तस्वीर बनाता हो। और शायद इसी वजह से इंसान चाहे कितना भी बिजी हो जाए, सूरज की रोशनी और चांद की चांदनी उसके दिल को छू ही लेते हैं।

चंदा की चांदनी को देखा है। जी हाँ, रोशनी, चांद, सितारे, सूरज, सबकी बातें हो रही हैं। और तो बस इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना ऐसी ही एक थीम पर प्रोग्राम किया जाए, रोशनी के रंग उम्मीदों के संग। इस प्रोग्राम की थीम है आज की, मौका भी है, दस्तूर भी है। मैंने कहा आज अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस है, तो बस रोशनी, चांद, सितारे, सबकी बातें लेकर आ गई आपके सामने। और मुझे तो आप जानते ही, मैं हूँ आपकी अपनी रेडियो हमसफर कौसर म्यूजिक आर प्रोग्राम के साथ, अपने आप से कनेक्ट हूँ। दोस्तों देखिए ना, आज पूरी दुनिया सोलर एनर्जी यानी सूर्य ऊर्जा की तरफ अपने कदम बढ़ा रही है, क्योंकि सूरज सिर्फ रोशनी नहीं देता, वो आने वाले कल की उम्मीद भी देता है। छतों पर लगते सोलर पैनल, गांवों में जगमगाती सोलर लाइट्स अब सिर्फ तकनीक नहीं, बदलाव की कहानी बन चुके हैं। धरती को सुरक्षित रखने के लिए प्रकृति के साथ चलना अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, ये सब आप भी जानते हैं। और शायद आने वाला भविष्य उसी का होगा जो रोशनी तो ले, लेकिन प्रकृति को नुकसान पहुंचाए बिना।

ये हम आ गए हैं कहाँ। जी हाँ, आप आ चुके हैं एफएम रेनबो के स्टूडियो पर। इस वक्त मौजूद हैं 102.2 की फ्रिक्वेंसी को सुन रहे हैं आप, और साथ ही अपनी रेडियो हम सफर आरजे कौशल को भी सुन रहे हैं ना। दोस्तों, देखा जाए तो आज का भारत सचमुच रोशनी के साथ आगे बढ़ता हुआ भारत है। और आपको बता दें कि एक ईमेल हमारे पास आई है, इस्तेहा सोनी की है ये। इन्होंने लिखा है, कौशल मैम मेरा नमस्कार। जी आपको भी मेरा नमस्कार। प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है, पुरानी यादें ताज़ा कर दी हैं आपने। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही हमने एक प्रश्न पूछा था कि अगर आपको मौका मिले तो पर्यावरण बचाने के लिए आप एक कौन सा छोटा सा काम कर सकते हैं। तो ये भैया मोनू सेठ की एक बार फिर से ईमेल आ गई है। बड़े ही एक्टिव हमारे लिसनर हैं ये। इन्होंने लिखा है, एक छोटा सा कार्य जीवन से पॉलीथीन को ना कर देना है। जूट के झोला, अच्छा पॉलीथीन को ना कर देना है जीवन से और जूट के झोले को हाँ कर देना है। थोड़ा दुखी हूँ क्योंकि आपने पर्यावरण की बात कर दी। लोग इस तरह से जल बहा रहे हैं जैसे लगता है गांव में नदी बह रही है। बोल दो तो लड़ने को कोई तैयार है तो बोल भी नहीं सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि हर इंसान एक सा नहीं होता। आप पर्यावरण के प्रति इतना जागरूक हैं, हम जागरूक हैं, लेकिन हर इंसान एक सा नहीं होता। और जो आपने ये संदेश दिया है कि पॉलीथीन को ना कर दें और जूट के झोले को हाँ कर दें, तो अगर सारे लोग ऐसे हो जाएं तो शायद पर्यावरण बहुत साफ सुथरा हो सकता है हमारा। तो थैंक यू सो मच भैया मोनू सेठ, आपने हमें ईमेल करी। इसके साथ ही एक और ईमेल है, ये है कुलदीप गुप्ता बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। इन्होंने मेल करी है कि मैं भी आपका कार्यक्रम सुन रहा हूँ और ईमेल आईडी ऑनलाइन निकाली है। गानों का सिलेक्शन बहुत ही खूबसूरत और ज़बरदस्त थे और बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम चल रहा है। जी थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, आज का भारत सचमुच रोशनी के साथ आगे बढ़ता हुआ भारत है। अब गांव को गलियों से लेकर दूर दराज के इलाकों तक बिजली और सोलर लाइट ने जिंदगी को नई चमक दे दी है। जहां कभी रातें जल्दी ठहर जाया करती थी, आज वहीं रातें कब बीत जाती हैं पता ही नहीं चलता। बच्चे रोशनी में आराम से पढ़ते हैं और लगातार ऑनलाइन की दुनिया से कनेक्ट होते जा रहे हैं और तकनीक की रोशनी हर घर तक पहुंचती जा रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, लेजर तकनीक ने आज दुनिया को बिल्कुल नया रूप दिया है और उद्योग और सुरक्षा की फील्ड में भी लेजर आज इंसान की सबसे बड़ी ताकतों में से एक बन चुका है। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत बात थी और इसी खूबसूरत बात के बाद एक बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग भी आपके लिए प्ले कर रही हूँ। बस सुनते जाइए 102.2 FM रेनबो कानपुर।

और इस गाने से पहले आपको एक सवाल और पूछ रही हूँ कि आपके अकॉर्डिंग इंसान की सबसे खूबसूरत बात क्या होती है? उसकी मुस्कान, उसका व्यवहार या दूसरों की मदद करने की आदत? आपके अकॉर्डिंग इंसान की सबसे खूबसूरत बात क्या होती है? उसकी मुस्कान, उसका व्यवहार या दूसरों की मदद करने की आदत? जवाब जल्दी से भेजिए, मैं इंतज़ार कर रही हूँ आपकी ईमेल्स का।

दोस्तों, सबसे खूबसूरत और चमकदार रोशनी इंसान के व्यवहार में होती है। अच्छे शब्द, सच्चा साथ और किसी के दर्द को समझ लेना, ये वो उजाले हैं जो कभी भी बुझते नहीं हैं, जिनकी रोशनी कभी भी कम नहीं होती। आज कई लोग लाइफ में बहुत रिच होते हैं, लेकिन उनके शब्दों में अंधेरा होता है, उनके शब्द बड़े ही गरीब होते हैं। और कुछ लोग साधारण से होकर भी दूसरों की ज़िंदगी में उम्मीद की किरण बन जाते हैं। इसलिए ज़िंदगी में अगर कुछ फैलाना ही है तो मोहब्बत फैलाइए, इंसानियत फैलाइए और अपनेपन की रोशनी फैलाइए।

जी हाँ, ये था आज का म्यूजिकल प्रोग्राम और आपको ज़रूर बहुत पसंद आया होगा रोशनी के रंग उम्मीदों के संग। ये अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस पर मैं ये विशेष प्रोग्राम मैं यानी कि आपके अपनी रेडियो हम सफ़र कौसर आपके लिए लेकर आई थी और इस प्रोग्राम से इजाज़त चाहूँ। उसके पहले मैं एक और ईमेल पढ़ती हूँ। ये लिखा है ये है मोगीसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी ने लिखा है, उम्मीदों के रंग रोशनी के संग कार्यक्रम बेहद रोचक लगा है, गीत भी बहुत ही खूबसूरत से लगे और प्रस्तुति बहुत ही खूबसूरत थी आपकी, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद जी। आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद और बस यहीं पे हमें दीजिए म्यूज़िक आर प्रोग्राम को ख़त्म करने की इजाज़त। मिलती हूँ आपसे बस अगले प्रोग्राम, जी हाँ, आपकी पसंद के साथ।

जी हाँ, ये था आज का म्यूजिकल प्रोग्राम और आपको ज़रूर बहुत पसंद आया होगा। रोशनी के रंग उम्मीदों के संग ये अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस पर मैं ये विशेष प्रोग्राम मैं यानी कि आपकी अपनी रेडियो हम सफ़र कौसर आपके लिए लेकर आई थी। और इस प्रोग्राम से इजाज़त चाहूँ उसके पहले मैं एक और ईमेल पढ़ती हूँ। ये लिखा है ये है मोगीसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी ने लिखा है, उम्मीदों के रंग रोशनी के संग कार्यक्रम बेहद रोचक लगा है, गीत भी बहुत ही खूबसूरत से लगे और प्रस्तुति बहुत ही खूबसूरत थी आपकी, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद जी। आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद और बस यहीं पे हमें दीजिए म्यूज़िक आर प्रोग्राम को ख़त्म करने की इजाज़त। मिलती हूँ आपसे बस अगले प्रोग्राम, जी हाँ, आपकी पसंद के साथ।

यूँ ही तू मुझसे बात करती हो या कोई प्यार का इरादा है भाई? हम तो बिल्कुल भी ऐसे बात नहीं करते, क्योंकि हमारा जो प्यार, हमारा जो साथ है श्रोताओं से, वो आज से नहीं, वो बहुत पुराना है। जी हाँ, और एक ईमेल मेरे पास आई है, ये है सनावद मध्य प्रदेश से।

हम तो बिल्कुल भी ऐसे बात नहीं करते, क्योंकि हमारा जो प्यार, हमारा जो साथ है श्रोताओं से, वो आज से नहीं, वो बहुत पुराना है। जी हाँ, और एक ईमेल मेरे पास आई है, ये है सनावद मध्य प्रदेश से शेख मूसा मोहसिन, और इन्होंने जो लिखा है वो ये है कि आज इनकी शादी की सालगिरह है, तो बस इन्होंने बोला है कि मैं जो उनकी वाइफ है, जो उनकी शरीके हयात हैं, उनको बहुत प्यार करते हैं ये, और उन्होंने कहा है कि कोई भी अपनी पसंद का आप गाना उनको सुनवा दीजिए। ये शेख मूसा की तरफ से डेडिकेट होगा अपनी पत्नी, अपनी शरीके हयात के लिए। तो भाई, इस खूबसूरत घड़ी में हम दिल से मुबारकबाद देना चाहेंगे शेख मूसा जी आपको और आपकी जो शरीके हयात हैं बानो बी उनको, और ये हमारे बहुत ही अज़ीज़ लिसनर हैं जिनकी आज शादी की सालगिरह है। दुआ है कि मोहब्बत का ये रिश्ता यूं ही मुस्कुराहटों, भरोसे और ख़ूबसूरत यादों से महकता रहे। ज़िंदगी का हर आने वाला दिन आप दोनों के लिए नई खुशियां, नया सुकून और ढेर सारी मोहब्बत लेकर आए, और हमारी पूरी FM रेनबो आकाशवाणी टीम की तरफ से आप दोनों को शादी की सालगिरह की ढेरों शुभकामनाएं। और साथ में बस यही कहना चाहेंगे कि रिश्ता वो नहीं होता जो दुनिया को दिखाया जाए, रिश्ता तो वो होता है जो दिल से निभाया जाए। आप दोनों की जोड़ी यूं ही सलामत रहे और हर साल ये जश्न बस यूं ही प्यार से मनाया जाए। और इन्हें जो मैं गाना सुनवाऊंगी वो भी बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन उसके पहले मैं कुछ और नाम भी लेना चाहूंगी। ये है ज़िला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज, आयुषी, रमेश, शेख मूसा भाईजान, राजकुमार बुड़ाना सुदामा नगर खंडवा से, लक्ष्मी, नंदिनी, रोहित, ऋतु और मुकेश जगताप हैं। साथ ही ये हैं ज़िला मुरादाबाद ग्राम दुलापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, सलमान, इरफान, इसरार और नरगिस खातून, और ये हैं एयरपोर्ट रोड वंदरा नगर इंदौर मध्य प्रदेश से नारायण खर्चे, ललिता और गणेश खर्चे, साथ में कार्तिक और परी खर्चे, स्वाति प्रयाग चौधरी, देविका चौधरी, और इन्होंने लिखा है कोई भी गाना आप अपनी पसंद का सुनवा दीजिए, तो बिल्कुल सुनवा देंगे। मुंगीसापुर कानपुर देहात से रामेश्वर कठोरिया, उमा कांति कठेरिया, कमलेश इनकी पुत्रवधू है, निशा, प्रज्ञा, प्रतिमा कठेरिया, वेद बाबू कठेरिया और इनका पूरा परिवार, हमको जो ईमेल मिल रही है उनके नाम पढ़ रही हूँ मैं और शामिल भी कर रही हूँ। ये हैं जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकैस्ट्रो, रोजी डिकैस्ट्रो, पर्ल और विलिस डिकैस्ट्रो, एक ईमेल और लेंगे। और ये हैं मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवहाणकर, सरिता गवहाणकर, प्रिंस एकांश बदलापुर मुंबई से, प्रणीता सिद्धांत टुक टुक आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से, वैशाली शैलेश, श्वेता सुमित गवहाणकर और कुमारी ध्वनि गवहाणकर, और शेख मूसा जी और आपकी जो शरीके हयात हैं उनके लिए जो गाना मैंने सोच के रखा है ना वो बहुत ही खूबसूरत है, और ये सच में आपको पसंद आएगा। बस आप सुनिए और इन्जॉय करिए, आप और आपकी जो मिसेज हैं वो दोनों।

जी हाँ, चांद से अगर आप किसी अपने के लिए पूछेंगे तो सच में चांद तो बस यही बोलेगा ना कि मैंने अपनी चांदनी के सिवा उतना खूबसूरत किसी को नहीं देखा। और सच में चांद और चांदनी की तरह ही जो दुनिया की जोड़ी होती है, जो बहुत प्यार करने वालों की जोड़ी होती है, वो भी होती है, और उनको अपने उस महबूब के सिवा कोई भी अच्छा नहीं लगता। प्रोग्राम चल रहा है आपकी पसंद, और आपकी पसंद के साथ मैं हूँ आपके साथ, आपकी अपनी रेडियो हमसफर आरजी कौसर। देविन तालाब लालपुर शिवराजपुर से ये हमें ईमेल आई है। टीएस चंदेल, खुशबू सिंह चंदेल, निष्ठा सिंह चंदेल, और इन्होंने कुछ लाइंस भी लिखी हैं। भाई की अदा उनकी और दीवाने हम बने, वफा होना कर ना सके और बेवफा हम बने, यूं तो हजारों में भीड़ हजारों की भीड़ में शुक्रिया है उनका, जो उनकी नज़रों के निशाने हम बन ना सके। अरे भाई, ये थोड़ा सा एक ही में मिले जुले जो शब्द थे वो

इसलिए ये मिला जुला ही बोल गए मैं। और इन्होंने लिखा है कि कौसर मैडम को मेरा नमस्कार जी, आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। इन्होंने लिखा है आपके आते ही स्टूडियो में गुलशन की तरह बहार आ जाती है। जी तहे दिल से शुक्रिया आपके इतने प्यार के लिए, बस यूं ही अपना प्यार बनाए रखिए हमारे साथ। एक और ईमेल ऐसे ही आई है हमारे पास, ये है नीलू शर्मा रूपपुर चंदेला से। इन्होंने लिखा है पास नहीं हो फिर भी प्यार तुम्हें करती हूँ, देखकर तस्वीर तुम्हारी याद तुम्हें करती हूँ, दिल में इतनी चाहत है आपके नाम की, हर वक्त तुमसे मिलने की फरियाद करती हूँ। भाई वाह वाह, आप तो बहुत बड़ी शायरा भी हैं। इन्होंने लिखा है कौसर मैडम को मेरा सलाम आदाब जी, बहुत बहुत आपको भी सलाम आदाब। इन्होंने लिखा है कि आप कितनी प्यारी हो और आपकी आवाज़ भी कितनी प्यारी है, क्या खाकर आती हो आप जी, वही खाते हैं जो आप खाती हैं, बस आपको मेरी आवाज़ अच्छी लगती है और शायद आपको मैं सुनूं तो मुझे आपकी आवाज़ अच्छी लगने लगी। यही तो होता है ना एक दूसरे का प्यार, एक दूसरे से रिश्ता, तो बस अपना रिश्ता ऐसे ही बनाए रखिए। और इन्होंने जो गाना सुनने के लिए कहा है दिलवाले फिल्म का, वो मैं सुनवाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं कुछ नाम और लेना चाहूंगी यहाँ पर। ये है रहाटगांव कैंप अमरावती महाराष्ट्र से हर्षा रामेकर, दिलीप रामेकर, अक्षय रुद्रा और रुचिका रामेकर और पूरा रामेकर परिवार है जो हमारे साथ जुड़ चुका है। इसके साथ ही ये है भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान छीपा और पूजा परिहार। एक और ईमेल लेते हैं। और ये है सहारनपुर से आयशा नारंग, सुरेश नारंग और सोनाली नारंग, हरजिंदर सिंह भाटिया जी, इनकी जगह का नाम नहीं लिखा है लेकिन इनकी ईमेल मैंने शामिल कर ली है। और ये है दमदम एयरपोर्ट कलकत्ता से बसंत कुमार सिन्हा, रेखा देवी शाह, अजय कुमार गुप्ता, रिमी, तनुश्री गुप्ता, अभय कुमार, पिहरा बाजार, झुमरी तलैया, गिरिडीह झारखंड से शिवानी, प्रियंका, मुन्नी देवी, जयप्रकाश, रिया जिया, टूसी, आयुषी और अनिरुद्ध बाबू। और इन्होंने साथ में लिखा है वट सावित्री पूजा की बधाई आपको हो जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई। इन्होंने लिखा है डेंगू दिवस पर सावधानी ज़रूर बरतें, पानी की टंकी साफ करना और ढक्कन बंद करना ना भूलें, साथ ही नाले की सफाई ज़रूर करें जी। बहुत ही अच्छा आपका मैसेज है जो मैंने पढ़ दिया है। फिलहाल तो गाना आ रहा है और ये गाना है कर्तव्य फिल्म का दूरी न रहे कोई। और गंज डुंडवारा से शमशुल कमर राही और शाहीन फातिमा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। फिलहाल तो आपके लिए ये गाना

वैसे दोस्तों ये जो कर्तव्य फिल्म का गीत अभी आपने सुना, लता मंगेशकर की आवाज़ थी ये, और एक तो आवाज़ इतनी दिलकश और दूसरा ये जो गाना था ना, इसका अंदाज़ बड़ा ही खूबसूरत था और सच में मुझे ही बड़ा पसंद है ये गाना। मैं अक्सर इस गाने को गुनगुनाती हूँ, इसके शब्द क्या है उस पर ध्यान नहीं देती हूँ, लेकिन इस गाने की जो एक जो धुन है, जो इस गाने की का एक सुकून है, वो ज़रूर मैं महसूस करती हूँ। चलिए अब नाम लेती हूँ, ये है मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा बैरडी नाना जी लाम से, मीना लाम से, तेजस जय लाम से, हर्षिता लाम से, और इन्होंने लिखा है कि कोई भी गीत सुनवा दे तो बिल्कुल सुनवा देंगे। साथ ही ये है धड़कन के सुपर स्टार, इन्होंने लिखा है कि मैं भी कार्यक्रम सुन रहा हूँ मगर ईमेल आईडी का पता ना होने की वजह से मैं जवाब अभी तक नहीं दे सका। आप पता चला है तो हमारी ईमेल आईडी है AIRKANSOMEDIA@gmail.com। यह है कुलदीप गुप्ता उथौली बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। जिला औरैया उत्तर प्रदेश से केशव नंदन कुशवाहा, रीना कुशवाहा, सोनम कुशवाहा, और इन्होंने लिखा है कि पहली मेल है इनकी, शामिल कर लीजिए। बिल्कुल शामिल कर ली हमने। साथ ही ये एक और ईमेल है मजनू कटिल्ला से, कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा और सतना एमपी से उमंग मलिक और आकांक्षा मलिक, साथ में इनके माही मलिक। और ये जो हमारे पास ईमेल आई है ये है अशरफ एम खान कानपुर नगर से, साथ ही भाई मजनू का टिल्ला से ये एक बार फिर से ईमेल आ गई है, कई कई बार शायद भेज देते

है, ये है गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से, खिल्लू परवेज बेगम, इमराना नाज, नवाजिश शेख, दानिश शेख और अमन आफरीदी। साथ ही ये है प्रीति मिश्रा कानपुर नगर से, और शमशुल कमर है ये गंज डुंडवारा से। इसके बाद है शान वारसी, मुकेश कश्यप है ज़िला मुरादाबाद ग्राम दूलापुर उत्तर प्रदेश से, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलवीर सिंह हैं। नीलम जायसवाल हैं दिल्ली से, रियासत हुसैन सिद्दीकी साहब हैं जयपुर उत्तराखंड से, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज, रिफाकत, मोहम्मद रेहान, समरीन, परवीन और माहनूर। और बस गाना आ रहा है अब दिलवाले फिल्म से, और बहुत ही अच्छा सा ये गाना है, इसको भी आप फील करिए, महसूस करिए और साथ ही इंजॉय करिए।

जी हाँ, बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। जो दिल से आपको चाह रहा हो तो उसको सताना क्यों भाई, उसको परेशान क्यों करना। उसकी चाहत तो एकदम सच्ची है, इसलिए उसको प्यार से सहेज कर रखिए, बिल्कुल उसको कहीं दूर ना जाने दीजिए। और बिल्कुल भी अब ऐसा काम नहीं करिएगा, हमें यही उम्मीद है आपसे। फिलहाल हंसी मजाक के साथ ही ये कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है जो कि आपकी पसंद है, और आज आपके साथ मैं हूँ आपकी अपनी रेडियो हम सफर आरजे कौसर। ये हमारे पास एक ईमेल आई है, ये है छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से मोहम्मद इसहाक, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन कौसर, मोहम्मद अल्ताफ और नीलोफर फातिमा की है, और इन्होंने गाना सुनना चाहा है लव इट

सिक्स फिल्म का, जिसे गाया है मोहम्मद अजीज और कविता कृष्णामूर्ति ने, तो बिल्कुल हम आपको गाना सुनवा देंगे, आपने हमें ईमेल करी, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। लेकिन इसके साथ पहले कुछ और नाम भी लेंगे। तो ये हैं शेरवानी स्कूल गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से आफ्ताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी और आलिया अंसारी। साथ में हैं कानपुर नगर से नल्ली अस्थाना और ये हैं बनिया पारा धमतरी छत्तीसगढ़ से हैं ये रामचंद्र माखीजा, और कानपुर नगर से दीपक श्रीवास्तव और इसके साथ हैं अमित कुमार, ये भी कानपुर नगर से ही हैं, और नई बस्ती गंज डुडवारा से मोहम्मद यासीन हाशमी, नाजमा बेगम, मोहम्मद तौसीफ हाशमी, मोहम्मद तैमूर और मोहम्मद कलीम अंसारी, और इसी के साथ ये हैं राजेश कुमार, ये हैं संडीला से। साथ ही उत्तम नगर दिल्ली से कमला रानी, बौद्धराज खोरवाल, भानु खोरवाल और गीतिका खोरवाल, और ये भाई ये कहाँ से, ये फाजिलका पंजाब भूषण खेड़ा से, ये फाजिलका पंजाब से हैं ये, और इनका नाम है भूषण खेड़ा। विशु खेड़ा, विशाल लाडी, शालनी टिवांशी वाड़ी और आरबी खेड़ा, जीवन सिंह और समस्त खेड़ा परिवार है ये, इनको भी हमने शामिल कर लिया है। हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम सबको ही शामिल करें। और ये हैं इंद्रप्रस्थ सदन रुद्री, जिला धमतरी छत्तीसगढ़ से चंद्रकांत, सीमा साहू, सूर्यकांत, राकेश साहू, शुभम, शिफा, शिखा, शैफाली हैं ये। और ये हमारे पास ये भैया मोनू सेठ की भी एक ईमेल आई है, और इन्होंने लिखा है आरजे कौसर मैम जी को नमस्ते, कैसन हैं आप जी? हम बहुत ही अच्छे हैं। उम्मीद है कि आप बहुत नीक हुई हैं जी, बहुत ही नीक हैं, और आप हमारी आवाज़ सुनकर एकदम पहचान ही गए होंगे कि हम कितना नीक हैं। और इन्होंने लिखा है कि आपके द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रोग्राम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था, जानकारी से भरा हुआ था। तो बस ये भी हमारे साथ शामिल हो चुके हैं, और अब बारी आ गई है लव 86 फिल्म के उस गीत की, जिसे गाया है मोहम्मद अजीज़ और कविता कृष्णामूर्ति ने।

दोस्तों, कुछ आवाज़ें दिल को सुकून देती हैं और कुछ गीत पुरानी यादों को जगा देते हैं। आपके भेजे इन प्यारे प्यारे संदेशों और ईमेल्स के साथ आज की ये महफिल और भी ख़ास बनती चली जा रही है। जी हाँ, रेडियो की यही तो खूबसूरती है, यहाँ दूरियाँ नहीं, सिर्फ दिलों के रिश्ते होते हैं। कोई कानपुर से लिखता है, तो कोई लखनऊ से, तो कोई दिल्ली से, और जितने भी हमारे राज्य हैं, यहाँ तक कि राज्य नहीं, हमारा देश, और हमारे यहाँ ईमेल्स देश के भी बाहर से आती हैं, तो बस किसी और शहर से आती हैं, किसी और देश से आती हैं, अपनी मोहब्बत भेजती हैं ये ईमेल्स। और अब वक्त है एक और खूबसूरत नगमे का, लेकिन उससे पहले हम नाम लेना चाहेंगे अपने कुछ लिसनर्स के। तो ये हमारे लिसनर हैं लहोडडा ज़िला बागपत से, जगमोहन सिंह प्रजापत, अर्जुन भारती, इनकी बिटिया हैं अंजलि, नितिन जगमोहन, सुधीर और नूतन, और इनकी पोती हैं भुवनेश्वरी देवी। साथ ही ये ईमेल आया है अजीत कसाना का, लदावली ज़िला मुरादाबाद से। ये लिखते हैं कि आरजे कौसर सिस्टर जी, आप मेहनत बहुत करती हैं, उस मेहनत का रंग दिखता है, आपकी मेहनत को बिग सैल्यूट, आप जैसे मेहनत करने वाले बहुत कम होते हैं जी। थैंक यू सो मच अजीत कसाना जी, इस जो आपने ये ज़रा नवाजी की है, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया आपका। बस ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे साथ और ऐसे ही प्यार देते रहिए। और ये है टोरोवाल नवाशहर पंजाब से, ये गगनदीप थांदी, तृप्ता कुमारी थांदी, प्रियंका थांदी, प्रशांत, प्रियम, वामिका और वाणी थांदी जी, आपका ईमेल भी शामिल हो चुका है। साथ ही ये हैं पेताप रेडियो लिसनर्स क्लब पटना बिहार से, वसीम अकरम, सालेहा खातून और गुड़िया खातून।

खंडवा रोड सनावत से शहबाज अरबाज फरहाज फरदीन समीर मोइन शेख और खंडवा से ही योगेश गुजराती आनंद जोशी और दुर्गा प्रसाद सैनी। आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी गुलाम साबिर राही और मेहरा जहां। चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा, इन्होंने लिखा है पुरखलूस सलाम कौसर बहन को जी, आपको भी बहुत बहुत सलाम, प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल करते हैं। किसी से सिर्फ इतना ही दूर होना कि उसे आपकी अहमियत का एहसास हो जाए, लेकिन कभी इतना भी दूर ना होना कि वो आपके बिना जीना सीख जाए। जी बहुत खूब, आपने बहुत ही अच्छी बात कही है ये। होली चौक उत्तम नगर से जयराम खोरवाल, सचिन खोरवाल, अमन और दीपांशु खोरवाल। और इस गाने के लिए एक ईमेल और ले रही हूँ, ये है राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा और कार्तिक आर्यन वर्मा। और गाना बहुत ही खूबसूरत सा आ रहा है, मेरा गांव मेरा देश फिल्म का, सुनिए और एंजॉय करिए।

भाई अपनी प्रेम कहानियां सुनाइए। प्रेम करना कोई भी पाप नहीं है, कोई भी गुनाह नहीं है, लेकिन आप शेयर अपनी प्रेम कहानियों को उससे करिए जो आपका बहुत करीबी हो, आपका बहुत विश्वसनीय हो, है ना। क्योंकि कोई ऐसा होना हो कि आपकी प्रेम कहानियों को पूरे पूरे जगत में फैला दे तो बिल्कुल भी नहीं ये होना चाहिए। इसलिए अपने जो बहुत ही विश्वसनीय लोग हैं उनको बताइए और उनसे शेयर करिए। अपनी बातों को शेयर करने से ही दिल को सुकून मिलता है ना।

और चलिए कुछ और नाम ले लेते हैं इसी के साथ। मारा रहा दरवाजा एटा से नबी हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी, नवेद हसन, सुहेल हसन, रशीद वारसी, अनम वारसी, यशफ अब्बासी, और साथ ही ये हैं गंज डुंडवारा से मोहम्मद कलीम, जहीरा बेगम, मोहम्मद अयान, मोहम्मद उस्मान, यासीन हाशमी, शमशुल कमर राही, साथ ही कानपुर से कविता गुप्ता, और ये हैं ग्राम लसूड़िया पाता तहसील नरसिंहगढ़ जिला रायगढ़ मध्य प्रदेश से गोविंद वैष्णव, दिव्या, सुमन, कोमल परी, कृतिका, रमेश चंद्र डांगी। भाई जबान बड़ी ही फिसल जाती है क्योंकि जल्दी जल्दी नाम पढ़ने होते हैं, सभी के नाम सुनने को सब बेताब हैं, इसलिए मुझे भी सबके नाम लेने की जल्दी रहती है। और ये हैं आष्टी ज़िला जालना मराठवाड़ा से सैयद यूनुस। इसके साथ ही ये ईमेल आई है सप्तरंग श्रोता परिवार कुंभार गली श्रीरामपुर से अशोक दले, सविता दले, अनिकेत, रोहिणी, ऋषिकेश और जीविका दले। साथ ही पुनावड़े पुणे से अजय सोनवड़े, करिश्मा अविका और विशाखा सोनवड़े, ये हैं चरडोगरी पिपरिया जिला कबीर धाम छत्तीसगढ़ से दुर्गाराम साहू, अजय कुमार, जयकिशन और श्रीमती कुमारी साहू, श्रीमती इंद्राणी माया साहू, और इसके साथ ही ये आ गए हैं ये पद्मा टॉकीज नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल, नीति, सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन और राजेंद्र जी शाह, और ये आ गए हैं जाकिर मंसूरी जी, साथ में अमीन सरवर जी और उत्तम कुमार भगत जी। और इसके साथ एक आध ईमेल और ले लेती हूँ। ये है मदीना मस्जिद जाजमऊ से कौसर परवीन और हिना परवीन, साथ ही मेहर रोड वेस्ट बंगाल से अभिजीत प्रसाद मेहरा, मिथुन सांगा, राधिका डोडिया खेड़ा से देवशंकर डोम और प्रभा डोमन, और

ये हैं वीरमगाम सिटी से, ये हैं उस्मान वोहरा और शहनाज वोहरा राजकोट गुजरात से, सुखदेव जाटव, प्रभा जाटव, तुषार जाटव और राजेश जाटव। नाज मंजिल महसौल सीतामढ़ी से, अक्रम हुसैन बेगम, इशरत अक्रम, वसीम, रुबीना, आरिज, नदीम, शमीम, ममता रानी, पूनम कुमारी, कुआत बिहार से, शेख जफर हसन और नरगिस जफर। गांव लोहगढ़ ठाकुरा वाला जिला फिरोजपुर पंजाब से, स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरलाल सिंह, अविराज और पोत्रे गुरनूर सिंह, साथ में शुभदीप सिंह। कुलदीप गुप्ता जी हैं, इनका एड्रेस नहीं लिखा हुआ है, इन्होंने लिखा है बहुत बड़ा सा, इन्होंने लिखा है वाह, बहुत लंबा सा, इतना लंबा वाह मैं बोल भी नहीं सकती। इन्होंने लिखा है दिल खुश कर दिया और मेरा सलाम आप तक पहुंचे। जी बिल्कुल, आपका सलाम पहुंच चुका है और मैंने कबूल भी कर लिया है। आपको भी नमस्ते, सलाम, आदाब। छोटी बलिया करजत मुंबई से, अहमद भाई दुखनी सदफ, आरजू जूही इकबाल, इमरान कापासेड़ा बॉर्डर न्यू दिल्ली से, आमना नसरी नासमा परी, राविया मंतशा, आशु अहमद और इनका समस्त परिवार। और बस एक दो मेल और लूँगी और बस आखिरी गाना मैं प्ले करूँगी, ये है दंतरेगी। भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोखेलाल वर्मा, और ये है गोराया जालंधर पंजाब से, ज्योति मक्कर, मन्नत मक्कर, भारत कमल सहानी, और इनका ये जो इन्होंने भेजी है ईमेल, पिंगावाला चौक गोराया जालंधर से। तो बस अब गाना आ रहा है और बहुत ही खूबसूरत सा ये गाना है और सच में मुझे भी बहुत पसंद है, कश्मीर की कली फिल्म का ये गाना है। तो बस ये आखिरी गाना आप इन्जॉय करिए और जिनकी ईमेल शामिल आज नहीं हो पाई है, मैंने कोशिश तो पूरी करी है, वो फिर कल ट्राई करें और आपकी ईमेल ज़रूर से ज़रूर शामिल होगी। फ़िलहाल तो अभी आपके लिए गाना है बहुत ही खूबसूरत सा।

दीवाना हुआ बादल। और सच में हमारे जो प्रोग्राम्स हैं इसके लिए भी हमारे लिसनर्स बड़े ही दीवाने हैं, उनकी दीवानगी दिखती है कि प्रोग्राम का मैंने एंड भी कर दिया लेकिन उनकी ईमेल्स बराबर लगातार आ रही हैं, इसी उम्मीद में कि शायद अब मेरे नाम ले लिए जाए, लेकिन वक्त बिल्कुल भी इजाज़त नहीं दे रहा है। और जाने से पहले ये एक ईमेल ज़रूर लेना चाहूँगी क्योंकि ये हमारे पहली बार शामिल हो रहे हैं, ये हमारे जो लिसनर हैं ये हैं गोरखपुर से सलीम सिद्दीकी, और इन्होंने बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट करी है कि पहली बार शामिल हो रहे हैं प्लीज़ मेरा मेल शामिल कर लीजिए। तो आपका ईमेल शामिल हो चुका है और इसी के बाद मैं आपसे लेना चाहूँगी इजाज़त आज के आपकी पसंद प्रोग्राम से। मैं यानी कि आपकी अपनी रेडियो हम सफ़र कौसर आपसे फिर मिलूँगी और तब तक के लिए लेती हूँ इजाज़त। फिलहाल तो अभी ये गीत आपके लिए बिल्कुल चालू है और इसके बाद आप सुनेंगे समाचार हमारे लखनऊ केंद्र से। तो आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, टेक केयर एंड बाय।

नमस्कार, शाम के 5 बज चुके हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य के लिए तैयार आपूर्ति व्यवस्था बनाने पर मिलकर काम कर रही है। अपने 5 देशों के दौरे के तहत आज हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा है कि दुनिया इस समय कोविड महामारी, जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि इन चुनौतियों का जल्द समाधान नहीं किया गया तो वैश्विक विकास प्रभावित हो सकता है और बड़ी आबादी गरीबी की ओर बढ़ सकती है। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में आए शानदार बदलाव का श्रेय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देते हुए कहा है कि बीते 9-10 वर्षों में मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश ने पूरे देश के अंदर एक नई और मजबूत पहचान बनाई है। श्री पुरी आज गोरखपुर में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के भूमि पूजन और शिलान्यास समारोह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का भूमि पूजन और शिलान्यास करने के साथ ही खेल और खिलाड़ियों के हित में एक नई और बड़ी घोषणा कर दी है। उन्होंने ऐलान किया है कि इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के बगल में रिजर्व कराई गई 60 एकड़ भूमि पर विश्व स्तरीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सरकार के पास भूमि होगी तो उसका उपयोग लोक कल्याण के लिए होगा। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान की 8 वैज्ञानिक टीमें पूर्वांचल के गांवों में पहुंचकर किसानों को रासायनिक उर्वरकों के संतुलित उपयोग के लिए जागरूक कर रही है और राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत वैज्ञानिक किसानों को सूक्ष्मजीव जैव उर्वरक कीट वितरित कर रही है। साथ ही खेतों में लाइव डेमो और मृदा स्वास्थ्य संबंधी जानकारी भी दे रही है। वाराणसी स्थित IIVR के निदेशक डॉ. राजेश कुमार के मुताबिक अभियान के अंतर्गत अब तक 2500 से अधिक किसानों तक पहुंच बनाई जा चुकी है। ये कार्यक्रम 30 जून तक चलेगा। बस्ती के राजकीय इंटर कॉलेज में आज हाई स्कूल व इंटर के मेधावी 10 छात्रों व गृह परीक्षा के मेधावी छात्रों के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान सभी छात्रों को प्रशस्ति पत्र व मेडल देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला विद्यालय निरीक्षक संजय सिंह ने छात्रों को एकाग्रचित्र होकर पढ़ने तथा मोबाइल से दूरी बनाकर पुस्तकों से जुड़ने हेतु प्रेरित किया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए अपने सतरंगी चैनल 100.7 FM रेनबो के साथ। धड़कन लखनऊ की।

0: के स्टूडियो क्लॉक में 5:04 और 10 सेकंड हो रहे हैं। आप जुड़े हुए अपने सतरंगी चैनल 100.7 एफएम रेनबो के साथ और अब सुनिए हमारा विशेष कार्यक्रम।
1: विशेष कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे कृषि के क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सरकार के प्रयासों पर केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान के प्रधान वैज्ञानिक मनीष मिश्रा से खास बातचीत। वार्ताकार हैं आकाशवाणी संवाददाता तनवीर फातिमा।
2: विकसित भारत के विजन को साकार करने की दिशा में केंद्र सरकार विभिन्न क्षेत्रों को बढ़ावा दे रही है। इनमें कृषि की खास भूमिका है। ऐसे में देश का सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश भी कृषि क्षेत्र में योगदान देकर देश में अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित हो रहा है। प्रदेश गेहूं, दूध, गन्ना, आलू, आम, अमरूद, मटर, मशरूम, तरबूज और शहद के उत्पादन में देश में पहले स्थान पर है। औद्यानिकी के क्षेत्र में भी देश के कुल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का अग्रणी स्थान है। प्रदेश की इस उपलब्धि ने युवा पीढ़ी को भी बागवानी को करियर के रूप में चुनने के लिए प्रेरित किया है। आज काफी संख्या ऐसे युवाओं की है जो उच्च शिक्षा हासिल करने के बाद स्टार्टअप के तौर पर कृषि क्षेत्र में भविष्य तलाश रहे हैं। कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़ने की इच्छा रखने वाले लोगों की मदद के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है और कैसे वो इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, इन सभी बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान के प्रधान वैज्ञानिक मनीष मिश्रा। मनीष जी, सरकार कृषि में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठा रही है?
3: सबसे पहले ऑल इंडिया रेडियो के सभी श्रोताओं को मैं बहुत धन्यवाद देता हूं, नमस्कार करता हूं। जो आपने प्रश्न उठाया बड़ा ही प्रासंगिक प्रश्न है। पूरे देश में न सिर्फ कृषि में बल्कि बहुत सारे क्षेत्रों में जो विज्ञान के क्षेत्र हैं, जैसे कि मेडिकल रिसर्च जिसमें ICMR, इंडस्ट्रियल रिसर्च जिसमें CSIR और जो कृषि का शोध है जिसमें कि ICAR जैसे संस्थान रोज नवाचार कर रहे हैं और नई नई तकनीक का विकास कर रहे हैं। इन तकनीकियों के माध्यम से स्टार्टअप का बहुत सारा सृजन हो रहा है। अब भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप का देश है और लगभग समय 5,000 स्टार्टअप एग्री स्टार्टअप काम कर रहे हैं, बहुत बड़े जैसे कि देहात है, निंजा कार्ट है, ऐसे तमाम स्टार्टअप आज इस देश में विकसित हैं। और ये तब संभव है जबकि कृषि तकनीकी नवाचार के माध्यम से विकसित हो गई हैं और इनके माध्यम से लोगों तक पहुंचने का, डिजिटाइजेशन का, एग्रीकल्चर मार्केटिंग का, AI लेड प्रिसीजन फार्मिंग का एक बहुत बड़ा बाजार उपलब्ध हो गया है।
2: जी मनीष जी, एक खास रुझान जो देखने को मिल रहा है कि जो आजकल के युवा हैं वो पढ़ाई करके हायर स्टडीज करने के बाद भी जॉब करने के बजाय कृषि की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, तो कोई युवा अगर स्टार्टअप के तौर पर कृषि को अपनाना चाहता है तो वो कहाँ से शुरुआत कर सकता है?
3: कृषि आज भी इस देश का सबसे बड़ा

इम्प्लॉयर है और जो स्टार्टअप की संभावनाएं हैं जो वो सबसे बड़ी कृषि में है। तो मुझे लगता है कि कोई भी युवा जो निकलते हैं पढ़ करके उनको कृषि एक बहुत ही आकर्षक माध्यम दिखाई पड़ता है और इसमें संभावनाएं इसलिए बहुत हैं क्योंकि बाकी सारे जो व्यवसाय हैं उनका एक डिक्लाइनिंग पॉइंट होता है, कृषि का कभी नहीं हो सकता है क्योंकि हमेशा हमको खाद्यान्न की, हमेशा में उद्यान फसलों की, हमें सब्जियों की हमको हमेशा जरूरत पड़ने वाली। तो इस नाते से कोई भी अगर युवा एक कृषि व्यवसाय शुरू करना चाहता है तो पूरे देश में एक बहुत ही परंपरागत ढांचा है इन लोगों को प्रोत्साहन देने के लिए। इनको बोलते हैं एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर, जो पूरे देश में खाली भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में 50 के करीब पूरे देश में है। इसके अलावा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT में बहुत सारे हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट यानी कि IIM में बहुत सारे हैं। ऐसे देश में बहुत सारे इंक्यूबेटर्स हैं जो आपको तकनीक के माध्यम से, आपको फंडिंग के जरिए, आपको तकनीकी कौशल के माध्यम से ये आपको प्रोत्साहित करते हैं और आप एक स्टार्टअप अपना शुरू कर सकते हैं। तो कोई भी युवा

0: हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट यानी कि IIM में बहुत सारे हैं। ऐसे देश में बहुत सारे इंक्यूबेटर्स हैं जो आपको तकनीक के माध्यम से, आपको फंडिंग के जरिए, आपको तकनीकी कौशल के माध्यम से ये आपको प्रोत्साहित करते हैं और आप एक स्टार्टअप अपना शुरू कर सकते हैं। तो कोई भी युवा किसी भी जगह जहां भी रहता हो पूरे देश में, वो अपने पास का जो एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर है उसको संपर्क कर सकता है, उसके माध्यम से एक अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है।
1: जी, खास तौर से अगर फसलों की बात करें कि एक रूटीन जो हमारी जो पारंपरिक फसलें हैं उनके अलावा भी बहुत तरह की फसलें इंट्रोड्यूस हुई हैं जो आमदनी को बढ़ाती हैं, तो आप एज एन एक्सपर्ट क्या सलाह देते हैं कि ऐसी कौन सी फसलें हैं जिनसे आय बढ़ाने में मदद मिल सकती है और उनकी ज्यादा डिमांड है मार्केट में?
0: मुझे लगता है कि सारी फसलें आपकी अच्छी होती हैं, उसमें कोई फसलों में कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन क्या है डिमांड और सप्लाई का जो गैप होता है उसका अध्ययन करना जरूरी है। किसी भी जगह में आप ऑफ सीजन वेजिटेबल्स को अगर आप उत्पादन करते हैं तो आपको ज्यादा लाभ होता है। कहीं भी बहुत बड़ा देश है तो उसकी जो जियोग्राफिकल कंडीशन है, उसकी जो क्लाइमेटिक कंडीशन है अलग अलग होती है, तो एक जवाब तो इसके लिए मुफीद नहीं हो सकता, लेकिन आप बहुत सारी ऐसी फसलों को नेट हाउस कंडीशन में उगा सकते हैं जबकि वो सामान्य दशाओं में उगाई नहीं जा सकती, तो उनमें आपको बहुत लाभ होता है। बहुत सारे किसान खीरे की खेती करते हैं एक प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, टमाटर की खेती करते हैं, अन्य सब्जियों की खेती करते हैं जिनको उनको अतिशय लाभ होता है। तो ऐसी फसलों के चुनाव के लिए क्या करना होगा कि आपको वहाँ के जो किसानों का जो भी वहाँ पर एक इंक्यूबेशन सेंटर होगा, चाहे वो ICR का हो या स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का हो, उनसे संपर्क करना पड़ेगा और उनसे एक पूरी जानकारी लेनी पड़ेगी कि इस समय में इस वातावरण में मैं कौन सी ऐसी खेती कर सकता हूँ कि मुझे अधिक लाभ हो। तो इसके लिए जो है एक मतलब एक सामान्य उत्तर नहीं हो सकता कि पूरे देश में कौन सी फसल फायदेमंद होगी, लेकिन ये अलग अलग क्षेत्रों पे निर्भर करेगी।
1: जिस तरह से आपने कहा कि इंक्यूबेशन सेंटर से मदद मिल सकती है, इसके अलावा किस तरह का टेक्निकल सपोर्ट या किस तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है किसानों को जिससे वो अपनी आमदनी को बढ़ा सके?
0: मतलब कौशल विकास भारत सरकार का एक बहुत ही प्रमुख मुद्दा है। हम लोग कौशल विकास पे बहुत काम करते हैं, जितने भी भारत सरकार के ऑर्गेनाइजेशन है सारे के सारे कौशल विकास पे काम करते हैं। उनमें हम युवाओं को, महिलाओं को, अनुसूचित जाति के किसानों को के अलावा बहुत सारे अलग लोगों को विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम चला करके इन लोगों को हम कैपेसिटी बिल्डिंग, और ये बहुत विविध क्षेत्रों में है। इसमें चाहे आप ले लीजिए कि प्रेसिजन से जुड़ी हुई खेती है या फाइबर से बने हुए उत्पाद हैं, ज्वेलरीज हैं, चाहे महिलाओं के लिए हों या पुरुषों के लिए हों, युवाओं के लिए, तो बहुत सारे ट्रेनिंग मॉड्यूल हैं जिनमें वे आकर के यहाँ पर अपनी प्रशिक्षण लेकर के अपनी कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं और इस ट्रेनिंग के माध्यम से वे बहुत सारे ऐसे कार्यक्रमों में जुड़ सकते हैं जहाँ पर कि वे एक स्टार्टअप के रूप में अपने आप को स्थापित कर सकते हैं।
1: जी, एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि युवाओं को क्या संदेश देंगे आप जो मन बना रहे हैं कृषि के तरफ आने के लिए और वो चाहते हैं कि कृषि के माध्यम से वो आगे बढ़े और अपनी आय को बढ़ाएं, उनके लिए आप क्या संदेश देंगे?
0: युवाओं के लिए कृषि एक बहुत ही सशक्त माध्यम है। कृषि आपकी से उपजे हुए जो उत्पाद होते हैं आपकी जिंदगी का हिस्सा होते हैं, आपको रोज खाना चाहिए होता है, आपको रोज फल चाहिए होते हैं, आपको रोज सब्जियां चाहिए होती हैं, और इसमें अगर आप युवा आगे आते हैं तो उनके पास बेहद बड़े अवसर हैं। बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिसमें वो खासतौर पे प्रोसेसिंग में आते हैं जहाँ पर कि फलों को या अनाज को या सब्जियों को प्रोसेस करके और एक प्रोडक्ट फॉर्म में लाते हैं, तो वो एक बहुत बड़ा मार्केट इस देश में भी है और जो कि बहुत तेजी से विकसित हो रहा है, तो उसमें अपार संभावनाएं हैं किसी भी स्टार्टअप के लिए। मैं सारे युवाओं का आह्वान करता हूं कि इस क्षेत्र में आएं और देखें कि किस तरह से आपका विकास हो सकता है।
1: जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
0: थैंक यू, धन्यवाद।
2: विशेष कार्यक्रम में आज आपने सुना कृषि के क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सरकार के प्रयासों पर केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान के प्रधान वैज्ञानिक मनीष मिश्रा से खास बातचीत। वार्ताकार थी आकाशवाणी संवाददाता तनवीर फातिमा।
3: अभी आप सुन रहे थे क्षेत्रीय समाचार एकांश की प्रस्तुति विशेष कार्यक्रम।
4: ये है 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
5: दिल दस्तरखान बिछाया, दावत इश्क है।
6: बोरियत को करिए गॉन, म्यूजिक को करिए ऑन।

ऑलराइट, तो भाई 5:13 का वक्त हो लीजिए, इसी वक्त के साथ शुरू हो गया है आपका अपना प्रोग्राम जिसका नाम है FM Top 10। जी हाँ, एक ऐसा प्रोग्राम जहाँ पर हम किसी एरा या किसी सेलिब्रिटी या कोई ऐसी बात होती है जिससे जुड़े हुए टॉप 10 ऐसे सॉन्ग्स लेकर आते हैं जो आपको करते हैं एंटरटेन और बहुत सारी मजेदार सी बातें भी होती हैं। एंड आज का दिन तो भाई बहुत ही खास है क्योंकि आज है 16 मई। यस, आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं ऑलराउंडर स्टार विकी कौशल का हैप्पी हैप्पी वाला बर्थडे, और इनके बारे में बहुत सारी बातें और भी करेंगे शेयर इस ट्रैक के बाद। और वैसे भी जब प्रोग्राम FM टॉप 10 है, विकी कौशल है, गाने तो लाजवाब हो गए, तो चलिए इंजॉय करते हैं इसी ट्रैक के साथ, स्टार्ट करते हैं आज का प्रोग्राम। वेरी गुड इवनिंग, आज मोना है आपके साथ।

0: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न

0: डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
1: शरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
3: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाए अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
4: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
5: Alright, so Bollywood star Vicky Kaushal apni damdar acting aur shandar screen presence ke liye jane jaate hain. We all know that solo hit se all time blockbuster tak Vicky ne apni mehnat se Bollywood ka wo safar tay kiya jisse aaj wo har dil par kar rahe hain raaj. Ji haan, comedy se lekar action filmon tak Vicky ka jo safar tha na wo kafi mehnat bhara aur interesting bhi raha hai. To jo wo interesting baatein hain wo mere paas hai lekin wo usse rakh kar main apne paas karungi kya bhai, aapke saath hi to share karungi. And as you know ki program chal raha hai FM Top 10 and aaj hum celebrate kar rahe hain Vicky Kaushal ka happy wala birthday. To aaj ke top 10 songs hai inhi ke naam. वेल, आपको बता दें कि विकी जो है ना मल्टी टैलेंटेड एक्टर कहलाते हैं, क्योंकि एक्टिंग से पहले विकी एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर भी काम कर चुके हैं. आपको बता दें कि फिल्म गैंग्स ऑफ वसीपुर में अनुराग कश्यप के साथ बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर इन्होंने बिहाइंड द सीन्स भी काम किया है एंड कई ऑडिशंस भी दिए हैं जहाँ इन्हें काफी रिजेक्शंस का भी सामना करना पड़ा है. बट स्टिल उन्होंने हार कभी नहीं मानी एंड फिर विकी को ऐसी फिल्म में काम करने का मौका मिला जहां उन्हें ऑडियंस के साथ साथ क्रिटिक्स ने भी किया नोटिस एंड उसके बाद पता चला कि भाई कोई ना कोई सुपरस्टार हमारे बॉलीवुड में आ चुका है. फिलहाल मैं उनकी मनमर्जिया का एक ट्रैक बहुत ही खूबसूरत जो मुझे बहुत पसंद है वो प्ले कर रही हूँ. और आपको ये भी बता दूं इंटरेस्टिंग फैक्ट कि इस मूवी में एक सॉन्ग है F for प्यार. जी हाँ, ये सॉन्ग का नाम है और इसे खुद विक्की ने गाया है. यानी आप उनका एक और टैलेंट जान सकते हैं जो कि है सिंगिंग का. लेकिन फिलहाल मैंने वो सॉन्ग नहीं प्ले किया, मैंने किया है दूसरा सॉन्ग प्ले जो कि बहुत ही प्यारा है और जो खुद इन्हें यानी कि विक्की को बहुत पसंद है, इसीलिए मैंने इस सॉन्ग को प्ले किया है. करिए आप इंजॉय. 5:20 का वक्त, मोना है आपके साथ, प्रोग्राम चल रहा है FM Top 10.

What a beautiful song, भाई मुझे ये song बहुत पसंद है and I know and I wish कि आपको भी पसंद हो, wish इसलिए क्योंकि भाई जब इस तरह के खूबसूरत जो songs होते हैं ना music directors बनाते हैं या lyricist लिखते हैं और singers गाते हैं तो उसमें बहुत सारी मेहनत बहुत सारा प्यार होता है और इसलिए वो भी उम्मीद करते हैं कि एटलीस्ट ऑडियंस इसे पसंद तो ज़रूर करें। फिलहाल आज हम बात कर रहे हैं विकी कौशल की क्योंकि आज उनका हैप्पी वाला बर्थडे और ये तो बनता है कि भाई उनका बर्थडे तो सेलिब्रेट करें ही हम, साथ ही बहुत सारे जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं उनके लाइफ से जुड़ी हुई वो जरूर आपके साथ शेयर करें। और आपको बता दूं कि एक इंटरव्यू में विकी ने बताया था कि वो काफ़ी इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी के हैं, शाय पर्सनालिटी के हैं और इन्हें ऑडिशंस में बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती थी, काफ़ी ज़्यादा इन्हें रिजेक्शंस भी मिलता था, खास करके इनके बॉडी टाइप को लेकर लोग इन्हें हीरो मटेरियल मानते ही नहीं थे। फिर भी इन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया और बहुत सारी मेहनत भी की एंड फाइनली फिल्म लव शव ते चिकन खुराना, ये मूवी का नाम है लव शव ते चिकन खुराना, इस मूवी से बी टाउन में कदम रखा विकी कौशल ने। और अभी कुछ देर पहले मैंने आपसे बात किया था ना कि इन्होंने बहुत मेहनत करी है लेकिन फाइनली एक मूवी ऐसी थी जिसके बाद ऑडियंस ने और साथ ही क्रिटिक्स ने भी नोटिस किया कि भाई कोई एक एक्टर ऐसा आया है जो फाइनली हमारे जो बीच और में ना वो स्टार बनने की कगार पे है। और हम बात कर रहे हैं उस फिल्म की जिसका नाम है मसान। जी हाँ, लो बजट होने के बावजूद ये फिल्म एक कल्ट मूवी साबित हुई है जिसे कांस फिल्म फेस्टिवल में भी बहुत ज़्यादा पसंद किया गया। तो अब ज़्यादा लेट ना करते हुए इसी फिल्म का ये खूबसूरत सा गीत मैं प्ले कर रही हूँ, सॉन्ग प्ले कर रही हूँ, इसे करिए आप एंजॉय। 5:25 का वक्त और ये हो गए 26 मिनट, प्रोग्राम चल रहा है FM Top 10, मोना है आज आपके साथ।

0: इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की।
3: अच्छा होता है ना कि जब आप लीड रोल में काम कर लेते हैं तो अक्सर आप छोटे मोटे रोल्स बिल्कुल नहीं करते हैं, लेकिन कुछ एक्टर्स ऐसे हैं जिनके लिए एक्चुअली एक्टिंग ना उनके लिए काम है, उनकी वो पूजा है, और इसीलिए वो रोल कैसा भी हो वो जरूर करते हैं। हाँ, बस उन्हें पसंद आना चाहिए। और उन्हीं में से एक एक्टर्स है विकी कौशल भी। जी हाँ, विकी कौशल जो है हमेशा ही रोल देखते हैं, उस कैरेक्टर की डिमांड देखते हैं और उसे अपना लेते हैं, और चाहे वो जैसा भी रोल हो, चाहे वो छोटा रोल हो, चाहे वो कैमियो रोल है। मैं इसलिए ये बात कर रही हूँ क्योंकि लीड एक्टिंग में काम करने के बावजूद भी संजू मूवी हो या फिर हो डंकी, इसमें इन्होंने कैमियो रोल अपनाया और जो कि बहुत ही बेहतरीन रोल निभाया है। इसलिए इसी मूवी का यानी डंकी मूवी का ये खूबसूरत सा ट्रैक मैं प्ले कर रही हूँ, इसे करिए आप एंजॉय। 5:31 का वक्त, FM रेनबो आप एंजॉय कर रहे हैं, मोना के साथ प्रोग्राम है आपका FM टॉप 10।

विकी कौशल की मूवी थी जी हाँ भूत, आपने इनकेस देखी हो, ये थोड़ा हॉरर मूवी थी। लेकिन आपको बेस्ट पार्ट बताऊं इस मूवी का, बेस्ट और इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि विकी कौशल एक्चुअली बहुत ज्यादा भूत वगैरह से डरते हैं। जी हाँ, एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने खुद ये बात मेंशन की थी कि वो भूत से बहुत ज़्यादा डरते हैं और अंधेरे वगैरह से वो बहुत ज़्यादा डरते हैं, और इस मूवी के शूट के दौरान उन्हें बहुत ज़्यादा डर का सामना करना पड़ा। फिर भी जो उनकी को एक्ट्रेस थी और उसके अलावा जो टीम थी उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया, और जिसकी वजह से इतनी बेहतरीन एक्टिंग और बेहतरीन काम वो इस मूवी में कर पाए। So it's 5:38 in my studio clock, and as you know, today we are celebrating Vicky Kaushal's happy happy birthday. और अगर उनके साथ आपका भी birthday आज आप share कर रहे हैं तो भाई आपको भी जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। एंड FM टॉप 10 में हम 10 सॉन्ग्स आज विकी कौशल के ही प्ले कर रहे हैं, और बड़ी ही इंटरेस्टिंग बातें उनकी बता रहे हैं। और जैसे मैंने आपसे कहा था कि इन्हें मल्टी टैलेंटेड एक्टर और पर्सनालिटी कहा जाता है जी हाँ, क्योंकि ये एक्टिंग करते ही है, ये तो आपको पता ही है। उसके अलावा असिस्टेंट डायरेक्टर भी ये रह चुके हैं, ये बहुत ही अच्छे स्पोर्ट्स प्लेयर हैं, एंड ही इज़ अ वेरी गुड यू नो म्यूजिक प्लेयर ऑल्सो। जी हाँ, जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना उससे बड़ी ही अच्छी अच्छी म्यूजिक निकालते हैं, और सबसे अच्छी बात ये है कि उन्होंने खुद ये बात मेंशन करी और सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उन्होंने ये बात हर किसी को बताई। अच्छा हुआ क्या ना, जब राजी मूवी रिलीज हुई थी तो उस दौरान विकी ने एक बहुत ही सिंपल सा कुर्ता पैजामा पहना था वाइट कलर का, और उसमें वीणा इन्होंने ली थी, और वीणा पे इन्होंने जो पेट्रियोटिक सॉन्ग था जिसका नाम था ए वतन, उसको इन्होंने प्ले किया था और बहुत ही खूबसूरत म्यूजिक प्ले करी थी, और उसी म्यूजिक के जरिए फिर उन्होंने बताया कि हमारी ये मूवी आ रही है। और जो ये म्यूजिक प्ले किया था, जो इंस्ट्रूमेंट प्ले किया था भाई, इससे का एक और टैलेंट उभर के आया कि ये बहुत ही अच्छी वीणा भी प्ले करते हैं। हालांकि इस मूवी में फोकस जरूर आलिया भट्ट पे था, ये एक पेट्रियोटिक मूवी थी, लेकिन जो किरदार विकी कौशल ने निभाया था वो भी हम कभी नहीं भूल सकते हैं। और म्यूजिक के जरिए जब इन्होंने इस सॉन्ग को ट्रिब्यूट किया था, ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा पेट्रियोटिक सॉन्ग है, तो मैंने सोचा भाई इसे क्यों कर लेती हूँ और ये जरूर प्ले करती हूँ, तो चलिए मैंने प्ले कर दिया। इसे करिए आप इंजॉय। 5:40 का वक्त, आप सुन रहे 100.7 FM रेनबो, मुना है आज आपके साथ।

0: जी हाँ, तो बहुत ही खूबसूरत सा ये पैट्रियोटिक सॉन्ग आपने सुना फ्रॉम द फिल्म राजी। और आज हम बात कर रहे हैं अपने प्रोग्राम में विकी कौशल की। वैसे वतन तो आबाद रहे ही, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो शरीर है ना वो भी स्वस्थ रहे, अच्छा रहे और आबाद रहे, वरना बहुत सारी टेंशन हो जाती है। और यही रीज़न है कि हर संडे हम हमारा बहुत ही स्पेशल प्रोग्राम आपके लिए लेकर आते हैं जिसका नाम है हेल्थ एंड फिटनेस। जी हाँ, और हर बार हर हफ्ते हम एक नया टॉपिक लेकर आते हैं ताकि जो नई नई कोई परेशानियां हो या आपसे रिलेटेड कोई बीमारी हो तो आप उसका एक अच्छा सोल्यूशन यहाँ से हमारे जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं उनसे जान सके। और इस बार यानी इस संडे यानी कि कल हेल्थ एंड फिटनेस में हमारे साथ मौजूद रहेंगी डॉक्टर कोमल अग्रवाल, MBBS MD आंतरिक चिकित्सा विभाग। और आपको बता दें कि कल का हमारा जो विषय होगा वो होगा हाइपरटेंशन यानी कि उच्च रक्तचाप। सो ये हाइपरटेंशन क्या होता है यानी उच्च रक्तचाप क्या होता है, इसके कारण क्या है, लक्षण क्या है, नियंत्रण क्या है और कैसे आप इसका उपाय पाके उक्त जो उच्च रक्तचाप है इससे बच सकते हैं यानी हाइपरटेंशन से बच सकते हैं, इस बारे में कल हमारे डॉक्टर से बात होगी। तो अगर आप भी चाहते हैं कि इसका कोई सोल्यूशन निकले या आपको या आपके कोई घर वाले हैं या कोई ऐसे रिलेटिव्स हैं जिन्हें आप जानते हैं जो हाइपरटेंशन से ग्रसित हैं, तो आप इसका सारा सोल्यूशन हमारे प्रोग्राम हेल्थ एंड फिटनेस से जान सकते हैं। कल 12 बजे हमारे साथ जुड़ना ना भूलिएगा। आप कॉल कर सकते हैं हमारे 49 नंबर पे जो कि है 0522-2238-845। हमारा दूसरा नंबर है 0522-2238-852। उसके अलावा आप हमें अपनी जो समस्या है वो मेल भी कर सकते हैं जो कि है akashwanilakhnow@gmail.com। तो कल हमारे साथ 12 बजे जुड़ना मत भूलिएगा प्रोग्राम हेल्थ एंड फिटनेस में।
1: मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं और सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।
2: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से, केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
3: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए 5 यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
2: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें, विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in।
3: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।

0: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से। केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
1: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए पांच यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं। यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
0: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in।
1: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।

जी हाँ, तो भाई 5:54 का वक्त, और ये वक्त अब कह रहा है कि हमें यहाँ पे प्रोग्राम है फिल्म टॉप 10 को वाइंड अप करना होगा। एंड आई एम श्योर कि विकी कौशल से जुड़ी जितनी भी बातें थी भाई, अगर आप उनके फैन है तो आपको बड़ी ही मजा आई होगी। सो उरी, सरदार उधम, सैम बहादुर, छावा, ये सारी विकी की वो फिल्म्स रही जिसके बाद क्रिटिक्स ने ये कह दिया कि बॉलीवुड का उसको नया सुपरस्टार मिल गया है। एंड एक्शन हो, बायोपिक हो, पेट्रियोटिक जॉनर हो, कॉमेडी हो या हो इंटेंस इमोशनल रोल, अपनी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस की वजह से आज विकी हर डायरेक्टर की पहली पसंद बन चुके हैं। अपनी मेहनत, लगन और बेहतरीन अदाकारी के लिए फिल्म उरी के लिए इन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड से भी नवाजा गया था, जिसके बाद विकी बन गए नेशनल हीरो। तो मुझे लगता है कि इसी मूवी का आपको ये बेहतरीन सा ट्रैक जरूर सुनवा दूं।

ऑल राइट, तो बस अब एक ब्यूटीफुल सा ट्रैक के साथ आज के प्रोग्राम को यहीं पर ही वाइंड अप करती हूँ। बहुत ही ये ब्यूटीफुल सा ट्रैक इसलिए भी है क्योंकि आज बहुत सारे जो हमारे दोस्त हैं ना, वो वट सावित्री का व्रत सेलिब्रेट कर रहे होंगे अपने पार्टनर्स के साथ, तो उन्हें बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं। और मुझे लगता है कि एक पार्टनर को डेडिकेट करने के लिए अगर ये सॉन्ग हमने नहीं प्ले किया तो भाई क्या प्ले किया। और ये जो एक एक शब्द है ना, बस अपने पार्टनर को डेडिकेट करिए और साथ ही विकी को एक बार फिर से जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं, यानी सारे काम आज निपटा दिए। तो आप बस इस ट्रैक को करिए एंजॉय और नेक्स्ट प्रोग्राम न्यूज ब्रेक के उस पार जो कि है शाम में, अवध लेके दोबारा हाजिर होती हूँ, तो कहीं जाइए नहीं क्योंकि आप

नमस्कार, शाम के 6 बज चुके हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य के लिए तैयार आपूर्ति व्यवस्था बनाने पर मिलकर काम कर रहे हैं। अपने 5 देशों के दौरे के तहत आज हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा है कि दुनिया इस समय कोविड महामारी, जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि इन चुनौतियों का जल्द समाधान नहीं किया गया तो वैश्विक विकास प्रभावित हो सकता है और बड़ी आबादी गरीबी की ओर बढ़ सकती है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि क्वांटम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आत्मनिर्भरता भारत की अगली पीढ़ी की विकास यात्रा तय करेगी। नई दिल्ली में प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा कि देश क्वांटम तकनीक, डीप टेक फाइनेंसिंग और उद्योग आधारित शोध के जरिए नवाचार आधारित विकास के नए दौर की ओर बढ़ रहा है। प्रदेश सरकार अंशकालिक अनुदेशकों के सम्मान और उनके बढ़े हुए मानदेय वितरण को लेकर कल पूरे प्रदेश में भव्य कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है। लखनऊ स्थित लोक भवन सभागार में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अंशकालिक अनुदेशकों के सम्मान एवं बढ़े हुए मानदेय वितरण कार्यक्रम को शुभारंभ करेंगे। कार्यक्रम शाम 7 बजे से आयोजित किया जाएगा। सरकार द्वारा पूर्व में जारी शासनादेश के तहत अंशकालिक अनुदेशकों के मानदेय में वृद्धि का निर्णय लिया गया था। लखनऊ में इंस्टीट्यूट ऑफ वुमेन एंड जेंडर स्टडीज के द्वारा कुलपति प्रोफेसर साइनी के नेतृत्व में नो बायस अ सेंसिटिव शिफ्ट सिनेसिटिव शिफ्ट शीर्षक के जेंडर सेंसिटाइजेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम उद्देश्य विद्यार्थियों में लैंगिक समानता, संवेदनशीलता, गरिमा एवं समावेशी दृष्टिकोण के प्रति जागरूकता विकास करना था। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर अमित कनौजिया ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि हमें प्रत्येक व्यक्ति के साथ हर स्तर और हर स्थान पर समानता एवं सम्मान का व्यवहार करना चाहिए। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI

ने लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान ऋषभ पंत पर धीमी ओवर गति के लिए 12 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। आपको बता दें कि लखनऊ सुपर जायंट्स का कल चेन्नई सुपर किंग्स CSK से मैच था। इकाना स्टेडियम में खेले गए इस मैच में लखनऊ ने CSK को हराया था। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए अपने सतरंगी चैनल 100.7 FM रेनबो के साथ। अगला कार्यक्रम आप सुनेंगे शामे अवध।

0: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से। केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
3: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए पांच यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
2: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in।
3: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
4: सात रंग का इंद्रधनुष है,
5: सात सुरों की सरगम है,
6: सात जन्म है सात समंदर,
4: साथ हमारा हरदम है,
6: जिंदगी के सतरंगी रंग
5: FM रेनबो के संग।

यह लखनऊ की शाम थी और तेरा ख्याल उतर आया, गोमती की लहरों पर जैसे इश्क ठहराया। हवा में घुली थी तेरी बातों की नरमी, हर मोड़ पर लगा जैसे तेरा ही शहर आया। चाय की महक, धुंधली सी वो रोशन गलियां, तेरे साथ चलूं तो हर रास्ता गजल बन जाए। लखनऊ की इस शाम में कुछ ऐसा जादू है, दिल तुझ में खो जाए और वक्त यूं ही ठहर जाए। जी हाँ भाई, लखनऊ की जो शाम है ना, कुछ ऐसी ही है कि मतलब आप जितनी बात करें, जितनी ही आप इसकी चर्चा करें ना, वो कम ही है। बस ख्यालों में ऐसे उतर जाती है कि मानो लगता है इसी शहर में ही बस जाओ और कहीं कोई और शहर नजर ही ना आए। वेरी वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक। 6:12 का वक्त, और लीजिए इसी वक्त के साथ शुरू हो चुका है आपका अपना प्रोग्राम जिसका नाम है शाम अवर। जी हाँ, 6 बजे तो स्टार्ट हो ही गया था। बहुत ही खूबसूरत से ट्रैक के साथ हमने इस प्रोग्राम की शुरुआत करी थी, हरिहरन की आवाज में एआर रहमान की म्यूजिक फिल्म थी ताल, और ये सॉन्ग मेरा फेवरेट जैसा कि आप जानते ही हैं। जी हाँ, क्योंकि मैं ये मौका नहीं छोड़ती, जब भी मौका लगता है मैं इस सॉन्ग को प्ले

करती हूँ, खुद तो एंजॉय करती हूँ और आपको भी कोशिश करती हूँ कि पूरा एंजॉय करवाऊँ। फिलहाल जब बात प्रोग्राम शाम अवध की होती है तो आप जानती हैं कि एक ऐसा प्रोग्राम है जहां पर हम ये जानते हैं कि भाई हमारे लखनऊ में आखिर चल क्या रहा है। जी हाँ, कहाँ कुछ क्या हो रहा है, ट्रैफिक अपडेट्स भी आपको देते हैं। उसके अलावा हमारे स्टूडेंट्स या हमारे जॉब सीकर्स के लिए भी बहुत सारी यूजफुल खबरें होती हैं हमारे पास, और वो सारी खबरें हम शेयर करते हैं आपके साथ और होते हैं बेहतरीन से नगमे। और आज भी वो सारा एक एक पिटारा है हमारे पास जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। इन्फॉर्मेशन भी होगी, एंटरटेनमेंट भी होगी, और एंटरटेनमेंट का डोज तो बिल्कुल कम नहीं होने वाला है। जमुना है आपके साथ। सो एक बेहतरीन सा ट्रैक और भेज रही हूँ कि आवाज में इसे करिए एंजॉय, और जब लौट कर आएंगे तो क्या खास है जानकारी हमारे पास शेयर करेंगे आपके साथ। कहीं जाए नहीं, एंजॉय करते रहिए, जुड़े रहिए आपके अपने सतरंगी चैनल 100.7 FM रेनबो के साथ, धड़कन लखनऊ की।

0: इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेन धड़कन लखनऊ की।
3: जी हाँ, और आज उस धड़कन में धड़क रही है आपकी अपनी मिसमराइजिंग आरजे मोना। सो 6:21 का वक्त और 25 सेकंड हो रहे हैं हमारे स्टूडियो के क्लॉक जो है ना हमारी बड़ा ही बढ़िया टाइम बताती है, और वो जब टाइम बताती है ना तो हम आपको भी अवेयर करते हैं। और अब ये टाइम हो रहा है कि कुछ जो जानकारियां है ना वो हम अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। वैसे आज हमारे पास इन्फॉर्मेशन है वो हमारे स्टूडेंट्स के लिए भी है, जॉब सीकर्स के लिए भी है, और उनके लिए भी जो कहीं आ रहे हैं या जा रहे हैं। और एक्चुअली ये एक गुड न्यूज़ है। जी हाँ, आपको बता दूं कि गर्मी को देखते हुए यात्रियों की सुविधाओं के लिए, यानी उन्हें बहुत सारी सुविधाएं थ्रू रोडवेज दी जाए या थ्रू ट्रेन दी जाए, ऐसी सुविधाएं आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। तो गर्मियों को देखते हुए, जो काफ़ी गर्मी हो रही है, यात्रियों की सुविधा के लिए कई स्पेशल ट्रेन भी चलाई जा रही हैं। ऐसे में गुड न्यूज़ ये है कि हैदराबाद गोरखपुर हैदराबाद जो कि एक वीकली स्पेशल ट्रेन है, इसका संचालन अवधि जो है ना उसे और बढ़ा दिया गया है जून तक। जी हाँ, ये एक वीकली स्पेशल ट्रेन है जो वीकली जाया करती थी हैदराबाद गोरखपुर, और हैदराबाद की ये ट्रेन है। और आपको बता दूं कि अब ये जून तक बढ़ा दी गई है इसकी डेट, यानी ये जून तक आपके साथ चलेगी, आप इसमें ट्रैवल कर सकते हैं। तो अगर आप भी इस रूट पर कहीं आते जाते हैं, गर्मियों को देखते हुए मैं स्पेशल ट्रेन चलाई गई हैं, लेकिन उसके अलावा भी आप भी अपना ध्यान रखिए, अगर ज़रूरी हो तभी कहीं आइए, तभी कहीं जाइए, वरना घर में ही रहिए क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है। आपको बता दूं कि यूपी में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है, इसीलिए अगर कहीं आप गर्मी में बाहर निकलते तो अपने पास एक वाटर बॉटल जरूर रखें, बहुत ही ठंडा पानी या चिल्ड पानी बिल्कुल धूप से आकर या कहीं धूप में आप हो तो बिल्कुल भी नहीं पीजिएगा। उसके अलावा ग्लूकोज या इलेक्ट्रोल वाटर जो है वो इनटेक करिए। आप इधर जो बाहर के फ्रूट्स होते हैं ना,

जो ऑलरेडी कट होते हैं उसको थोड़ा सा अवॉइड करिएगा, क्योंकि उसकी वजह से आपको कई सारे हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं, या स्ट्रीट फूड्स जो होते हैं। हाँ, अगर आपको बहुत भूख लगती है तो आप पूरा फ्रूट लीजिए और उसे ही कट करके खाइए, अच्छे से वॉश करके खाइए। और जितने भी वाटर कंटेनिंग फ्रूट्स हैं, जैसे वाटरमेलन हुए या मस्कमेलन हुए, जिसमें वाटर बहुत ज्यादा रहता है, पानी बहुत ज्यादा रहता है, खीरा हुआ, ये सब खाइए, ताकि आपके अंदर डिहाइड्रेशन बिल्कुल भी ना हो, यानी पानी की कमी बिल्कुल ना हो। तो इन सारी चीजों का रखिए ख्याल, और अब से कुछ देर में बताएंगे हमारे जॉब सीकर्स के लिए एक खास खबर, हमारे पास शेयर करेंगे आपके साथ एक बढ़िया सा ट्रैक, और भेज रही हूँ, इसे करिए एंजॉय, कहीं जाए नहीं, छोड़ रही आपके अपने सतरंगी चैनल 100.7 FM रेनबो के साथ धड़कन लखनऊ की।

कोई एहसास जो महकता है लफ्जों में कभी, कतरा बनके पिघल जाता है आंखों से कभी। कहीं तन्हाइयों का शोर तो कभी मुलाकात की

0: गीतों में सिमटते अल्फाज सहलाते हैं दिल को, तो महक उठती है नगमों की महफिल रजनी गंधा। हर रात 10 बजे 100.7 FM रेनबो पर, धड़कन लखनऊ की।
1: शरीर में हार्मोन्स की कमी या अधिकता गंभीर रोगों का कारण बन सकती है, जैसे डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2, बच्चों में विकास की रुकावट, महिलाओं में PCOD और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी।
2: थायराइड इम्बैलेंस, दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन, एडिसन्स डिजीज, पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज, PCOD या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल समस्याओं का बेहतरीन इलाज चरक हॉस्पिटल में अनुभवी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में एट हरदोई रोड दुबग्गा।
3: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. Dhadkan, Lucknow ki.

जी हाँ, देखिए जब जिससे प्यार होना होता है ना उससे हो ही जाता है। फिर आप लाख कोशिशें करें, लाख अपने आप को रोकने की कोशिश करें, ना ये दिल रुकता है ना आप रुक पाते हैं, और बस प्यार हो जाता है। इस प्यार में ना कोई इफ है ना बट, बस प्यार है, प्यार है और बेशुमार प्यार है। 6:34 का वक्त और यही प्यार आपका हमारे साथ है और हमारा आपके साथ है। समोना है आपके साथ, प्रोग्राम चल रहा है शाम में, जहाँ पर भाई हमारे यात्रियों के लिए जो सुविधा थी वो तो हमने आपके साथ शेयर कर ली है। अब एक खबर है उनके लिए जो कहीं ना कहीं जॉब ढूंढ रहे हैं, और खास करके अगर आप ड्राइविंग करते हैं तो ये न्यूज़ फॉर श्योर है आपके लिए। जी हाँ, खबर ये है कि रोडवेज में संविदा बस चालकों की भर्ती के लिए 18 मई को आलमबाग बस टर्मिनल पर रोजगार मेला लगाया जाएगा। जी हाँ, आपके लिए इसमें अगर क्वालिफिकेशन की बात करूं तो क्लास 8 पास होना यानी 8वीं पास होना जरूरी है, और साथ ही 2 साल पुराने भारी व्हीकल लाइसेंस वाले आवेदन ही इसमें लिए जाएंगे। यानी जो लाइसेंस है वो 2 साल पुराने भारी व्हीकल के होने चाहिए। आवेदन स्वीकार होने पर आपका ट्रायल भी कराया जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं और आपके पास ये लाइसेंस अवेलेबल है, आप 8वीं पास हैं और ट्राई करना चाहते हैं आप बस चालक की इस पोस्ट के लिए, तो डेफिनेटली 18 मई को आलमबाग बस टर्मिनल पर ये जो रोजगार मेला लगेगा आप वहां जा सकते हैं। आपको बता दूं रोडवेज में संविदा बस चालकों की ये भर्ती हो रही है। 18 मई का जो ये दिन है, जो ये तारीख है, इसे भूलिएगा नहीं, और वहां जल्दी से पहुंच के अगर इंटरेस्टेड है तो इस मेले में आप भी रोजगार जो है वो प्राप्त कर लीजिएगा। फिलहाल एक बहुत ही प्यारा सा सूथिंग सा ट्रैक भेज रही हूँ आपके लिए, इसे करिए एंजॉय। कहीं जाइए नहीं, जुड़े रहिए आपके अपने सतरंगी चैनल 100.7 FM रेनबो के साथ।

अच्छा, बहुत सारे जो हमारे लिसनर्स हैं ना, हमारे दोस्त हैं, वो हमारे साथ ईमेल के जरिए भी कनेक्ट हो रहे हैं। तालिब अंसारी जी लिखते हैं, आरजे मोना मैम जी वेलकम, और ये राजा कटरा बाराबंकी से मेल कर रहे हैं और बहुत देर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही हमारे एक पुराना प्रोग्राम जो अभी मैंने किया था, पुराना यानी कि अब से 1 घंटे पहले, Top 10, उसका भी मेल आया है। श्री गणेशाय नमो नमः, ये मेल है रामराज जी ने किया है। लिखते हैं, Top 10 कार्यक्रम बहुत ही बेहतरीन लगा, जिला रायबरेली गांव पहाड़ीपुर से रामराज, राजू भानु, रामशंकर भैया, पीर मोहम्मद वाले, पप्पू पासी, मनीष, नीरज, मधु, मिर्जा, इमरान बेग, आपका कार्यक्रम सुन रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है, यानी उस वक्त सुन रहे थे। एंड थैंक यू सो मच, और प्यार भरा नमस्कार भी हमें मेल कर रहे हैं। और उसके अलावा मोनू सेठ जी एज यूजुअल हमें मेल कर रहे हैं और कह रहे हैं, मोना जी गाने बहुत सुंदर लाती हैं आप, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और सिर्फ गाने ही नहीं भाई, हम कार्यक्रम में जो जानकारी लाए हैं ना, वो भी बड़ी ही सुंदर है, आप ध्यान से सुनिए, आपको अच्छा लगेगा। जी हाँ, बड़ी ही काम की जानकारियां होती

ती हैं आप सभी के लिए। और जैसे कि कार्यक्रम हेल्थ एंड फिटनेस आप सुनेंगे प्रत्येक रविवार को दोपहर 12 बजे से 1 बजे, जिसके प्रायोजक होंगे चरक हॉस्पिटल दुबग्गा लखनऊ। और खास जानकारी ये है जो आपको बता दूं कि कल यानी संडे को प्रोग्राम हेल्थ एंड फिटनेस आएगा, जो कि 12 से 1 आपके साथ प्रोग्राम हमारा ब्रॉडकास्ट होगा। और कल हमारा बड़ा ही खास विषय होगा जिसका नाम है हाइपरटेंशन यानी उच्च रक्तचाप। और जो उच्च रक्तचाप है यानी हाइपरटेंशन, वो होता क्या है, इसके अलावा इसके कारण क्या है, लक्षण क्या है, इसे नियंत्रण कैसे किया जा सकता है, उसके उपाय क्या है, इन सभी के बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहेंगी डॉक्टर कोमल अग्रवाल, MBBS MD आंतरिक चिकित्सा विभाग। सो अगर आपसे भी या कोई आपका रिलेटिव है या आपसे रिलेटेड कोई इशू है आपको, या हाइपरटेंशन से रिलेटेड कोई इशू है, उच्च रक्तचाप है आपको, तो आप सारी डिटेल्स कर 12 बजे से 1 बजे के बीच जुड़कर हमारे प्रोग्राम हेल्थ एंड फिटनेस में ले सकते हैं। आप कॉल कर सकते हैं हमारे हेल्थ नंबर 0522223885 और हमारा दूसरा हेल्थ नंबर होगा 0522223852। उसके अलावा अगर आपकी कोई समस्या और कॉल के जरिए आप हमसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं, जो कि है fmakashwanilakhnow@gmail.com। तो हमारे साथ कल 12 से 1 जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिलहाल तो आप हमारे साथ जुड़े हुए, तो एक बेहतरीन सा और ब्यूटीफुल सा ट्रैक शेयर कर रही हूँ आपके साथ, इसे करिए एंजॉय और लौट कर आते हैं तो कुछ और जानकारियां आपसे साझा करती हूँ। 6:44 का वक्त, और लीजिए बात करते करते 45 हो गया है, प्रोग्राम चल रहा है आपका अपना शाम है वक्त, मोना है आपके साथ।

0: अपने बच्चे की सेहत से कोई समझौता नहीं, इसीलिए मैं भरोसा करता हूँ सिर्फ चरक हॉस्पिटल पर।
1: चरक हॉस्पिटल में है हाईली एडवांस्ड पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी सर्विसेज, एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स और पर्सनलाइज्ड केयर।
0: पाए पीडियाट्रिक ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी, PICU, EEG, MRI, जेनेटिक टेस्ट, फिजियो और स्पीच थेरेपी जैसी सुविधाएं, ताकि आपके बच्चे के मानसिक विकास में कोई रुकावट ना आए।
1: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल 666-444-444।
2: अपनी छत को सजाना चाहते हैं रंग बिरंगे फूलों से,
3: या उगाना चाहते हैं फल और सब्जियाँ, पर हर बार एक सवाल अटक जाता है, कैसे?
2: तो अपने हर सवालों का जवाब जानने के लिए जुड़िए कार्यक्रम गुड मॉर्निंग लखनऊ में
3: हर रविवार सुबह 9 बजे हमारे बागवानी स्पेशल सेगमेंट में,
2: जहाँ आपके हर सवालों का जवाब देंगे हमारे एक्सपर्ट।
3: तो अपने हर सवाल हमें लिख भेजिए हमारी ईमेल आईडी पर
2: fmrainbowhelpline@gmail.com।
3: याद रखिए, हर रविवार सुबह 9 बजे सिर्फ 100.7 FM रेनबो पर।
4: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
5: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज, एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज डाइट प्लान और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट का लाभ।
4: चरक हॉस्पिटल, @ हरदोई रोड, दुबग्गा।

अच्छा, जिससे आप प्यार करते हैं ना, खास करके जो आपका लाइफ पार्टनर होता है, उसको अगर ये आप बात कह दे कि तुम हो पास मेरे साथ मेरे, बस इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो देखिए भाई आपका पार्टनर कितने ज्यादा खुश हो जाएंगे। और आज तो खुश करना बनता ही है, क्योंकि आज बड़े ही हर्षोल्लास के साथ वट सावित्री का जो व्रत है उसे पूरा किया गया, इस त्योहार को मनाया गया है। तो आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं हैं वट सावित्री व्रत की। इसके अलावा भाई अब एक खास जानकारी, चलिए वो भी जल्दी से शेयर कर देते हैं, क्योंकि 6:56 हमारे स्टूडियो क्लॉक में हो चुका है, प्रोग्राम वाइंड अप करने की बारी आ चुकी है। लेकिन इससे पहले वाइंड अप करें भाई, जानकारी जरूर दे के जाएंगे। सो खबर ये है कि पॉलिटेक्निक 2026 यानी पॉलिटेक्निक 2026 के दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन की जो लास्ट डेट थी ना, उसे एक बार फिर से बढ़ा दी गई है जी। तो अभी तक ये लास्ट डेट 14 मई थी, जिसे बढ़ाकर 17 मई कर दी गई है। तो अगर आपने अभी तक दाखिला नहीं लिया या किसी भी रीजन से मिस हो गया था और आपको लगा लास्ट डेट चली गई, तो बिल्कुल भी नहीं गई, 17 मई तक डेट बढ़ गई है, आप भी चाहें तो एडमिशन ले सकते हैं। उसके अलावा एक न्यूज और है कि CBSE ने क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए री इवेलुएशन के जो रिजल्ट्स थे वो मतलब अनाउंस कर दिए हैं। अगर आप अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं हैं तो आप एक संरचित समीक्षा प्रणाली का उपयोग कर सकते हैं, यानी कि स्टूडेंट्स 19 से 22 मई यानी 19 से 22 मई के बीच अपने जो आंसर शीट्स हैं ना, उसे स्कैन करा के उसकी कॉपी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, और फिर आप अपनी वो जो कॉपी है वो देख सकते हैं और री इवेलुएशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। याद रखिएगा कि 19 से 22 मई के बीच ही आपको करना है। और कहां पर आप कर सकते हैं जी, CBSEIT.in पर, ये इसकी वेबसाइट है। उसके अलावा आप CBSE.gov.in पर भी सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो बहुत सारी जानकारी है आज प्रोग्राम शामेवद में हमने आपके साथ शेयर कर दी। फिलहाल अब इसी खूबसूरत से ट्रैक के साथ आज के प्रोग्राम को यहीं पर वाइंड अप करते हैं, और नेक्स्ट प्रोग्राम जो कि आपका बहुत फेवरेट है एंड आई नो दैट हेलो FM, उसमें दोबारा मिलते हैं। तो कहीं जाइए नहीं, बस फोन कॉल पे रेडी रहिए बात करने के लिए, और इंजॉय करिए इस ट्रैक को। टिल देन बस इस प्रोग्राम को करते हैं बाय।

नमस्कार, शाम के 7 बज चुके हैं। अब सुनिए टॉप 10 समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य के लिए तैयार आपूर्ति व्यवस्था बनाने पर मिलकर काम कर रहे हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि क्वांटम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आत्मनिर्भरता भारत की अगली पीढ़ी की विकास यात्रा तय करेगी। वो नई दिल्ली में प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड के एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। भारत के मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने से जुड़ी एजेंसियों ने पहली बार ऑपरेशन रेजपिल के अंतर्गत 182 करोड़ रुपए मूल्य की कैप्टागन ड्रग्स जब्त की है। गृह मंत्री अमित शाह ने इसके लिए एजेंसियों की सराहना की है। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने नई दिल्ली में सेना संवाद कार्यक्रम में पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां जारी रखता है तो उसे ये खुद तय करना होगा कि वह भूगोल और इतिहास का हिस्सा बना रहना चाहता है या नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का भूमि पूजन और शिलान्यास के दौरान घोषणा की है कि स्टेडियम के बगल में रिजर्व 60 एकड़ भूमि पर विश्व स्तरीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। बस्ती में आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान के अंतर्गत 2 दिवसीय जिला प्रशिक्षण वर्ग एवं प्रदर्शनी का शुभारम्भ हुआ। प्रशिक्षण वर्ग में कुल 11 सत्र आयोजित किए जाएंगे। आजमगढ़ जिले के कंदरापुर थाना क्षेत्र में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के माइलस्टोन 238 पर भीषण सड़क हादसे में 5 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। पुलिस राहत एवं विधिक कार्रवाई में लगी है। बनारस रेल इंजन कारखाना में आज प्रधानमंत्री के मितव्यय ऊर्जा संरक्षण एवं प्रयक कार्यक संस्कृति विकसित करने के आह्वान के क्रम में पूर्ण वाहन दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान तमाम अधिकारी साझा वाहन से कार्यालय पहुंचे। बीसीसीआई ने लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान ऋषभ पंत पर 12 लाख का जुर्माना लगाया। ये कार्रवाई कल लखनऊ में सीएसके के साथ खेले गए मैच के दौरान धीमी ओवर गति की

वजह से की गई। और अंत में प्रदेश भर में आज वट सावित्री पूजा का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। व्रती महिलाओं ने वट वृक्ष के नीचे पूजा कर अपने पति की लंबी आयु की कामना की। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 8 बजे प्रसारित होगा। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए अपने सतरंगी चैनल 100.7 FM रेनबो के साथ।

0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
1: 8700001-4242।
2: हेलो FM, जरा मेरी फरमाइश का गाना सुना दीजिए।
3: व्हाट इज मोबाइल नंबर, व्हाट इज योर स्माइल नंबर, व्हाट इज योर स्टाइल नंबर, करो क्या डायल नंबर।
4: हेलो, आप अटल रेडियो से बोल रहे हैं?
2: जी हाँ, अपनी फरमाइश का गाना बताएं। अगर आप भी चाहते हैं FM रेनबो से बात करना फरमाइशी गानों के साथ, तो सुनना ना भूलें कार्यक्रम हेलो FM हर रोज शाम 7 बजे।
5: जी हाँ, तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जो फरमाइशी गीत है ना वो हम यहाँ पर प्ले करें, तो आप हर रोज यहाँ पर कॉल करते हैं प्रोग्राम हेलो FM में। जी हाँ, ये मुझे पता है क्योंकि आपका बहुत ही पसंदीदा प्रोग्राम है और अक्सर कॉल्स या ईमेल के जरिए आप हमें बताते हैं, जहाँ आप हमसे बातें करते हैं, चिट चैट होती है, और उसके अलावा आप जो गाना प्ले करवाते हैं वो हम प्ले करते हैं और आप जिसे पसंद करते हैं उसे डेडिकेट भी करते हैं। तो 7:06 का वक्त हो चला है और ये प्रोग्राम शुरू हो गया, और अगर आप भी हमसे बात करना चाहते हैं आप हमें कॉल कर सकते हैं 0522-23-8845। साथ ही आप हमारे दूसरे नंबर जो कि है 0522-23-8852 इस पर भी कॉल कर सकते हैं। तो चलिए, अब ज्यादा वक्त जाया नहीं करते हैं और आइए जानते हैं कौन है हमारे साथ फोन लाइन पे। हेलो हेलो हेलो, ओ, मुझे लग रहा है कि शायद उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही। हेलो हेलो हेलो, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हेलो हेलो, आई आई आई आवाज, आई आई आई, हेलो
6: हेलो।
5: हाँ जी, किससे बात हो रही है हमारी?
6: दीदी की आवाज आई?
5: हाँ जी आ गई, आपको हमारी आवाज आ रही है?
6: जी दीदी, आ रही है आपकी आवाज।
5: जी जी जी सर, अपना नाम बताइए।
6: जी दीदी, मैं बोल रहा हूँ मोहम्मद फैज, रामपुर कटरा, फुलवारी बाजार, जिला बाराबंकी से बात कर रहा हूँ दीदी।
5: जी, हमारे वही पुराने छोटे भाई ये कहना भूल गए। जी कैसे हैं आप फैज जी?
6: जी दीदी, मैं बहुत ही बढ़िया हूँ। आपका प्रोग्राम सुन रहे थे दीदी, बहुत आपको याद कर रहे थे कि कब आप प्रोग्राम में आएंगे दीदी।
5: जी जी,
6: तो आज आप आ भी गए तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है प्रोग्राम सुन के। गाने बहुत ही अच्छे आपने जो है प्ले किए 4 बजे से हैं।
5: जी,
6: बहुत ही अच्छा लगा मुझे गाने सभी, सब मतलब सॉन्ग सिलेक्शन बहुत ही अच्छा लगा, और आपका प्रोग्राम खास करके तो अच्छा लगता है, ये सभी RJ का लगता है।
5: जी जी जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। बताइए आप कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
6: गाना सुना दीजिएगा फूल मांग।

0: मैं तो सनम तेरा प्यार मांगू। ये वाला सॉन्ग है दीदी।
1: ये वाला सॉन्ग आप किसे डेडिकेट करेंगे?
0: सबसे पहले मेरी क्यूट सी प्यारी वाली आरजे मोना दीदी को
1: जी,
0: और उसके बाद हम मोहम्मद आसिफ भाई हैदराबाद तेलंगाना से हैं
1: जी,
0: और रंगी पिंकी है, गुलाब भी है, साहिब अंसारी है, सादिया अंसारी है, समा परवीन आपा है
1: जी,
0: और मोहम्मद सद्दाम भाई है, बाबू अंसारी भाई, और वो सुरभी सिंह है। एक और बचे सर।
1: हाँ हाँ बिल्कुल, नाम लीजिए।
0: फकीर अली सिद्दीकी
1: जी।
0: फकीर अली सिद्दीकी
1: जी जी जी।
0: थैंक यू।
1: चलिए थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। ऑल राइट, सो भाई ये थे फैज जी जिन्होंने हमसे की बात, और जो इनका सॉन्ग था वो तो इन्होंने हमसे रिक्वेस्ट कर ली है। अब जानते हैं कि फोन लाइन पे कौन है नेक्स्ट हमारे साथ कॉलर, और वो कौन सा गाना करेंगे रिक्वेस्ट। हेलो
2: जी, नमस्कार।
1: हाँ जी नमस्कार।

0: क्विज कर लिए। अब जानते हैं कि फोन लाइन पे कौन है नेक्स्ट हमारे साथ कॉलर, और वो कौन सा गाना करेंगे रिक्वेस्ट। हेलो,
1: जी नमस्कार।
0: हाँ जी नमस्कार, किससे बात हो रही है?
1: आगरा उत्तर प्रदेश से राजू लवानिया बोल रहा हूँ दीदी।
0: राजू
1: जी।
0: जी राजू जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
1: बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। फोन लगता है लेकिन आप लाइन पे लेके फिर डिस्कनेक्ट हो रहा है फोन कुछ।
0: हाँ, हो सकता है कोई टेक्निकल इशू है, लेकिन देखिए आपकी कॉल फिर से कनेक्ट हो गई।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, बड़े दिनों के बाद आज मेरी कॉल कनेक्ट हुई है, क्योंकि आपके नंबर है, कई सारे नंबर है, तो किस पे रिंग जाती है, किस पे उठा लेते हैं आप। तो
0: यही तो गेम है, ताकि आप कहीं ना कहीं कॉल करेंगे, हम लोग कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। देखिए जितने ज्यादा ऑप्शन उतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी कि आप हमसे कनेक्ट करें, है ना?
1: जी जी। गाना है कुमार सानू की आवाज है जी। अब फिल्म का नाम तो मेरे को याद नहीं आ रहा है इस समय।
0: कोई बात नहीं, आप गाना बता दीजिए।
1: गाने के बोल हैं मार कटारी मर जाऊं।
0: अच्छा, ऐसे ऐसे गाने जब आप सुनते हैं तो डेडिकेट किसे करते हैं? अगर डेडिकेट करेंगे तो कहेंगे लो मुझे ऐसा गाना डेडिकेट किया है।
1: कोई बात नहीं, गीत तो गीत है, गीतकार ने गीत बनाया तो सुनना तो ठहरा उसको।
0: अच्छा चलिए, अगर ये गाना नहीं मिला मुझे तो मैं कौन सा गाना नेक्स्ट बजा दूं?
1: तो फिर आप कोई सा भी गीत बढ़िया सा सुना दीजिए, नया हो तो ज्यादा नया ना हो, लेकिन पुराना हो तो ज्यादा पुराना भी।
0: चलिए 90s का ही कोई ट्रैक कुमार सानू की आवाज में प्ले कर दूंगी, ठीक है ना? ये सही रहेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग।
1: थैंक यू
0: जी। तो भाई ये थे राजू जी, आगरा से हमारे साथ जुड़े हुए थे, और बड़े ही मजेदार सा एक गाना इन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की है, और वो गाना अगर मुझे मिल गया तो मैं प्ले जरूर करूंगी। फिलहाल आइए जानते हैं नेक्स्ट कॉलर कौन है हमारे साथ। हेलो।
2: हेलो, गुड इवनिंग मैम।
0: वेरी गुड इवनिंग जी, किससे बात हो रही है?
2: जी हम गुलशन सिद्दीकी बोल रहे हैं, संडीला से।
0: गुलशन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, कैसी हैं आप?
2: जी मैम हम ऑनियर
0: भैया है। हेलो। हाँ जी, आप ऑन एयर हैं, आपको हर कोई सुन रहा है।
2: नहीं, दरअसल हम आज सुन नहीं पा रहे ना, हम आज छतोई में हैं।
0: जी जी जी, तो अभी आवाज आ रही है आपको?
2: जी मैम, आप कैसी हैं?
0: जी बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए गुलफशा कैसी हैं आप?
2: जी हम बहुत अच्छे, हमें पता चला मोना मैम आई है तो हमने कहा बात करेंगे, सुन तो नहीं पा रहे हैं। खैर
0: चलिए कोई नहीं, बात भी हो गई और अब तो आपका जो सॉन्ग है मैं वो भी प्ले करूंगी।
2: जी मैम, गाना किसी और का पसंद का सुना दीजिए, हमारी आपसे बात हो गई, हमारे लिए यही बहुत है।
0: ओह दैट्स रियली स्वीट ऑफ यू, थैंक यू सो मच गुलशा।
2: चलेगा जी, हम तो आज सुन नहीं पा रहे हैं।
0: जी जी जी
2: जी जी मैम, नाम ले लें थोड़ा?
0: हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, नाम लीजिए।
2: जी मैम, क्षमा परवीन है, साहिब अंसारी है, साजिया अंसारी है, निशा अंसारी है, ममता गौतम है, महक अंसारी, जितने मैं सबको मेरा प्यार भरा नमस्ते, प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम।
0: चलिए थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग गुलशो, और नेक्स्ट टाइम आप जब जुड़ेंगे और जो सॉन्ग आप कहेंगे वो मैं जरूर प्ले करूंगी। जी चलिए, बहुत अच्छा किया आपने बात करके, आप जहाँ भी हैं बस इंजॉय करिए। जी जी जी, ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। तो भाई फैज जी ने हमसे रिक्वेस्ट की थी सॉन्ग की और ये मैंने कर दी है प्ले, इसे करिए आप इंजॉय।

0: जीवन का अलौकिक अनुभव।
1: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए 5 यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देवधामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
0: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में 4 धाम यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in।
1: 4 धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: और राइट, वेलकम बैक। 7:17 का वक्त हो चला है और बहुत कम टाइम बचा है, तो मैं सोच रही हूँ एक कॉलर और ले लूँ और उसके बाद एक बढ़िया सा बेहतरीन सा गाना प्ले कर दूँ। हेलो। हेलो जी, गुड इवनिंग।
3: नमस्ते मैम
2: जी। नमस्कार, किससे बात हो रही है?
3: मैम रिंकी पिंकी बात कर रहे हैं, जगदीशपुर दीवानों के शहर जिला रायबरेली से।
2: आए है, इस दीवानों का शहर क्यों कहते हैं रायबरेली को?
3: हेलो मोना मैम, नमस्ते, गुड इवनिंग।
2: वेरी गुड इवनिंग पिंकी जी और रिंकी जी, कैसी हैं आप?
3: कैसी हैं मैम? आप बहुत अच्छे हैं, एकदम मस्त है, झटका हुआ। आप बताइए कैसी हैं? और
2: झटका हुआ हम बिल्कुल ठीक है, बस आप लोग के कॉल का इंतजार कर रहे थे और आप इधर से झटका हुआ कह रही है तो हम इधर से मटका हुआ हो गए।
3: के लिए मैम आपको बहुत बहुत दिल से शुक्रिया और थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: थैंक यू सो मच रिंकी जी। और बताइए कैसी हैं
3: आप? मैम बहुत अच्छे हैं, आप पूछिए मत कि आपसे बात हो गई तो हम इतने अच्छे हो गए कि मैम बता नहीं सकते।
2: अच्छा अच्छा, और कौन सा सॉन्ग सुनना चाहती है जल्दी से बता दीजिए, टाइम बहुत कम बचा है।
3: जी मैम मूवी का नाम तो नहीं पता है, गीत के बोल है आज मिले हो कल फिर मिलना।
2: अच्छा चलिए, किसकी आवाज में ये पता है?
3: नहीं मैम ये तो नहीं पता, बस सॉन्ग सुना है, मुझे सॉन्ग बहुत अच्छा लगता है, जेकी श्रॉफ पर फिल्म आया गया है।
2: चलिए इतना बता दिया है आपने, अब मैं ढूंढ के निकालूंगी और ये गाना जरूर प्ले करूंगी।
3: नाम ले, जी मैम जल्दी से नाम
2: ले लीजिए, ले लीजिए।
3: तो मेरी प्यारी सी क्यूट सी मोना मैम और अंजू मैम,
2: थैंक यू।
3: समा परवीन, साहिब अंसारी और ममता दीदी और मेरे भाई है दिलीप राजमाही, राजमाही मोहम्मद फैज भाई और धीरपाल भाई और तिवारी अंकल।
2: चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, और सबको ये गाना मैं प्ले करूंगी अब से कुछ देर बाद।
3: अहमद भाई हो जी और उनका जावेद अख्तर सर, बस।
2: चलिए चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, और अब से कुछ देर में प्रादेशिक समाचार आएगा।
3: बाय
2: बाय बाय बाय बाय।
4: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही आरबीएल लाइफ, इससे बेहतर कुछ नहीं।
5: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस आरबीएलआई की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

0: तो अब से कुछ देर में यानी 7:20 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक हिंदी समाचार और उसके बाद आप अपने कार्यक्रम हेलो एफएम में यानी के 100.7 FM रेनबो में दोबारा जुड़ेंगे। तो कहीं जाए नहीं, बस यूं ही एंजॉय करते रहिए। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का किया भूमि पूजन और शिलान्यास। कहा, प्रदेश में विश्व स्तरीय स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित कर रही है सरकार। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, पिछले 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश ने विकास और निवेश सहित विभिन्न क्षेत्रों में बनाई है मजबूत पहचान। सीबीएसई के कक्षा 12वीं के विद्यार्थी उत्तर पुस्तिकाओं का करा सकेंगे पुनर्मूल्यांकन। ऑनलाइन आवेदन के बाद 2 चरणों में पूरी होगी प्रक्रिया। और प्रदेश में 18 जून को गोरखपुर के रास्ते मॉनसून देगा दस्तक। सिंचाई और जल संसाधन विभाग ने सभी 18 मंडलों में 31 मई तक बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित करने का दिया निर्देश। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मोनिका चौहान और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में बेली पार्क क्षेत्र स्थित ताल नदौर में करीब 393 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। शिलान्यास कार्यक्रम में केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी और प्रदेश के खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव भी मौजूद रहे। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से देश में नई खेल संस्कृति आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भी खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए हर गांव में खेल का मैदान बनाया जा रहा है।
1: हर गांव में हम खेल का मैदान बना रहे हैं, हर विकास खंड स्तर पर मिनी स्टेडियम और हर जिले में एक स्टेडियम बने, इस पर कार्य प्रारंभ हुआ है। 18 कमिश्नरी हैं, हर कमिश्नरी स्तर पर एक स्पोर्ट्स कॉलेज बने। प्रदेश में अपना एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हो, इसके लिए मेजर ध्यानचंद के नाम पे मेरठ में हम लोग स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का निर्माण कर रहे हैं। इसी सत्र में हम उसका उद्घाटन भी करने जा रहे हैं। वाराणसी में BCCI की मदद से आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है। और आज उत्तर प्रदेश सरकार और भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सहयोग से गोरखपुर में भी एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है।
0: मुख्यमंत्री ने कहा कि गोरखपुर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनने से पूर्वी उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए खेलकूद गतिविधियों को आगे बढ़ाने में सहायता मिलेगी।
1: आज का दिन हम सब के लिए, पूर्वी उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए खेल और खेलकूद की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। प्रधानमंत्री जी ने 2014 में देशवासियों से एक बात कही थी, खेलो इंडिया खेलो के एक स्लोगन दिया था। फिर उन्होंने फिट इंडिया मूवमेंट की बात कही थी, सांसद खेलकूद प्रतियोगिता को आगे बढ़ाने की बात कही थी। देश के अंदर इनके माध्यम से एक नई खेल संस्कृति आगे बढ़ी।
0: श्री योगी ने कहा कि ओलंपिक, एशियाड, कॉमनवेल्थ गेम्स, वर्ल्ड चैंपियनशिप तथा नेशनल चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्ति पत्र प्रदान किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम निर्माण के लिए CSR फंड से 100 करोड़ रुपए देने के लिए पेट्रोलियम मंत्री, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिन्दुस्तान पेट्रोलियम के प्रति आभार व्यक्त किया है। शिलान्यास कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश सुशासन, निवेश और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जाना जाता है। राज्य में कानून व्यवस्था में आए सुधार ने आम नागरिकों से लेकर उद्योग जगत तक नया विश्वास पैदा किया है। उन्होंने विश्वास जताया कि इस स्टेडियम से प्रशिक्षण लेकर ऐसे खिलाड़ी निकलेंगे जो देश का नाम दुनिया भर में रोशन करेंगे। 46 एकड़ में बनने वाले इस स्टेडियम की दर्शक क्षमता 30,000

0: होगी। स्टेडियम के बगल में 60 एकड़ भूमि पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा, जिसमें इंडोर खेलों की सुविधाएं मिलेंगी। ये स्टेडियम कानपुर, लखनऊ और वाराणसी के बाद प्रदेश का चौथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम होगा। अंशकालिक अनुदेशकों के बढ़े हुए मानदेय वितरण को लेकर कल प्रदेश भर में उनके सम्मान में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। लखनऊ में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अंशकालिक अनुदेशकों के सम्मान और बढ़े हुए मानदेय वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। सरकार द्वारा पूर्व में जारी शासनादेश के तहत अंशकालिक अनुदेशकों के मानदेय में वृद्धि का निर्णय लिया गया था। बढ़ा हुआ मानदेय 1 अप्रैल से प्रभावी किया गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 की कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम घोषित होने के बाद छात्रों के लिए विभिन्न सुविधाओं की घोषणा की है। बोर्ड ने इस बार मूल्यांकन प्रक्रिया को और अधिक सटीक और पारदर्शी बनाने के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली का उपयोग किया है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: पहले चरण में छात्र अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां मांग सकते हैं। ये ऑनलाइन लॉगिन के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएंगी और समीक्षा के लिए डाउनलोड की जा सकती हैं। जबकि दूसरे चरण में छात्र विसंगतियों के सत्यापन के लिए आवेदन कर सकते हैं या अंकन योजना के आधार पर विशिष्ट उत्तरों के पुनः मूल्यांकन का अनुरोध भी कर सकते हैं। बोर्ड ने कहा है कि सभी आवेदन निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन जमा किए जाने चाहिए और प्रत्येक चरण के लिए केवल एक आवेदन स्वीकार किया जाएगा। छात्र 19 से 22 मई के बीच मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रति प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसका शुल्क प्रति विषय ₹700 है। अनुपम और शिवांग की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ऊर्जा बचत की अपील के मद्देनजर प्रदेश के पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने विभाग के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से सप्ताह में कम से कम एक दिन सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने को कहा है। उन्होंने कहा कि यह पहल न केवल पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी का परिचायक होगी, बल्कि आर्थिक अनुशासन और ऊर्जा बचत के दृष्टिगत समाज में सकारात्मक संदेश भी देगी। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। सपा नेता मोहम्मद आजम खां को एक विवादित बयान के मामले में आज रामपुर की MPMLA कोर्ट ने 2 वर्ष की कैद और ₹20,000 जुर्माने की सजा सुनाई है। उन पर वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान थाना भोट क्षेत्र में एक सभा के दौरान तत्कालीन जिलाधिकारी के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने का आरोप था। भदोही में काशी नरेश विश्वविद्यालय की प्रथम नवनियुक्त कुलपति प्रोफेसर उमा श्रीवास्तव ने आज अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया है। कार्यभार ग्रहण करने के बाद मीडिया से बातचीत में प्रोफेसर उमा श्रीवास्तव ने कहा कि विश्वविद्यालय में शोध कार्यों और गुणवत्तापूर्ण पठन पाठन सुनिश्चित करना उनकी प्राथमिकता होगी।
2: बहुत पुराना कॉलेज है आजादी के बाद का पहला, और अब ये यूनिवर्सिटी में तब्दील हो गया है। इसमें रिसर्च वगैरह भी अब शुरू हो जाएगी या हो रही होगी, लेकिन अब क्या है कि रिसर्च बहुत पुरजोर तरीके से की जाएगी सबके साथ। तो फिर हाई क्वालिटी रिसर्च हो, स्टूडेंट्स रिसर्च ओरिएंटेड हो, कैंपस का माहौल बहुत अच्छा हो, और इस पे मेरा प्रयास रहेगा।
0: चित्रकूट नगर पालिका के अध्यक्ष नरेंद्र गुप्ता ने बताया कि चित्रकूट में 90 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न विकास कार्य कराए जाएंगे।
3: उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष मुख्यमंत्री जी के निर्देशन पर चित्रकूट के विकास के लिए आज चित्रकूट नगर में 90 करोड़ के आसपास का बजट प्रस्तुत किया गया है। इसमें सड़कों का निर्माण, नालियों का निर्माण और नगर के सुंदरीकरण, नगर के चमुखी विकास के लिए 26 और 27 इसका क्रियान्वयन किया जाएगा।
0: वट सावित्री का पर्व आज प्रदेश भर में आस्था और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। वाराणसी में सुहागिन महिलाओं ने अपने सुहाग और पति के दीर्घ स्वस्थ जीवन के लिए वट सावित्री निर्जला व्रत रखा है। व्रती महिलाओं ने विधि विधान से सावित्री माता की पूजा के बाद बरगद के पेड़ की परिक्रमा कर अटल सौभाग्य की कामना की। प्रयागराज में व्रती महिलाओं ने आज सुबह संगम में पवित्र स्नान करने के बाद बरगद के पेड़ की पूजा कर अपने सुहाग की सलामती और लंबी उम्र की प्रार्थना की। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार मॉनसून 18 जून को गोरखपुर के रास्ते प्रदेश में दस्तक देगा। इस वर्ष मॉनसूनी सीजन में सामान्य से कम वर्षा की संभावना व्यक्त की गई है। सिंचाई और जल संसाधन की ओर से लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर और प्रयागराज सहित प्रदेश के सभी 18 मंडलों में 31 मई तक बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित करने

का निर्देश दिया गया है। बाढ़ और प्रभावित क्षेत्रों की निगरानी के लिए ये कक्ष 15 जून से 15 अक्टूबर तक 24 घंटे सक्रिय रहेंगे। इनके जरिए जलस्तर की रियल टाइम निगरानी और आपदा की स्थिति में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी। ग्रामीण इलाकों में बाढ़ सुरक्षा समितियां तैयार की जा रही हैं। इनमें संबंधित क्षेत्र के जूनियर इंजीनियर, ग्राम प्रधान और लेखपाल सहित स्थानीय लोगों को जोड़ा जा रहा है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का किया भूमि पूजन और शिलान्यास। कहा, प्रदेश में विश्व स्तरीय स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित कर रही है सरकार। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, पिछले 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश ने विकास और निवेश सहित विभिन्न क्षेत्रों में बनाई है मजबूत पहचान। सीबीएसई के कक्षा 12वीं के विद्यार्थी उत्तर पुस्तिकाओं का करा सकेंगे पुनर्मूल्यांकन। ऑनलाइन आवेदन के बाद 2 चरणों में पूरी होगी प्रक्रिया। और प्रदेश में 18 जून को गोरखपुर के रास्ते मॉनसून देगा दस्तक। सिंचाई और जल संसाधन विभाग ने सभी 18 मंडलों में 31 मई तक बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित करने का दिया निर्देश। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: नए जमाने की नई तस्वीर, अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें, ले आएं आज ही दूरदर्शन का DD फ्री डिश। इसमें हैं आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स, इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और, सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका DD फ्री डिश।

0: सुन रहे हैं 100.7 एफएम रेनबो, ये मुझे पक्का यकीन है, क्योंकि आपके जो कॉल्स हैं, आपके जो मेल्स हैं ना, वो इस खबर पर, वो इस बात पर एकदम पक्की मोहर लगा रहे हैं कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। Yes, it's 7:32 in my studio. Clock program चल रहा है आपका अपना Hello FM, जहां आज आपकी mesmerizing RJ Moona है आपके साथ। और बहुत सारे जो हमारे callers हैं ना भाई, वो तो connected है, call वाला program है, call करेंगे ही, लेकिन बहुत सारे हमारे ऐसे दोस्त हैं जिनकी call नहीं collect हो रही है, तो वो हमसे mail के जरिए भी जुड़े हुए हैं और उनकी mail सबसे कुछ देर में लेंगे। फिलहाल आइए जानते हैं कौन है हमारे साथ फोन लाइन पर। हेलो हेलो हेलो हेलो, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हेलो हेलो हेलो, नहीं, मुझे लगता है कि कनेक्ट नहीं कर पाए हैं। चलिए दूसरी कॉल पे करते हैं हम बात। हेलो हेलो जी, गुड इवनिंग।
1: हेलो
0: हेलो, गुड इवनिंग जी, किससे बात हो रही है? हेलो हेलो सर, आपको आवाज आ रही है?
1: हेलो
0: हेलो, आपको आवाज आ रही है?
1: जी, हम मोहम्मद सद्दाम
0: जी,
1: रामपुर गढ़ा पुरवारे बाजार जिला वाराणसी से बोल रहे हैं।
0: जी जी जी, बहुत बहुत स्वागत है सद्दाम सर, कैसे हैं आप?
1: आपका प्रोग्राम सुनते बहुत अच्छा लग रहा है
0: जी, बहुत बहुत शुक्रिया। कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप
1: जी? कोई पुराना गाना सुना दीजिए,
0: कोई सा भी पुराना गाना अपने मन से,
1: पसंद का सुना दीजिए।
0: चलिए ठीक है, अपने मन से एक बहुत ही बेहतरीन सा ट्रैक अभी मैं प्ले करूंगी। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। आप किसी का नाम लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। नहीं भाई, नाम नहीं लेना, बड़ी जल्दी थी जाने के लिए।

0: लेकिन उन्होंने हमसे बात कर ली है। चलिए कोई नहीं, 7:34 का वक्त हो रहा है और एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए जानते हैं कौन है वो। हेलो हेलो
1: हेलो, गुड इवनिंग।
0: वेरी गुड इवनिंग सर, किससे बात हो रही है?
1: तालिब अंसारी बोल रहे हैं, राजा कटरा 12 बजे से।
0: तालिब जी बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, कैसे हैं आप?
1: जी बढ़िया है, ठीक है। हमने एक बचपन में एक मुहावरा सुना था।
0: हाँ जी सर बताइए।
1: ईद का चांद होना वो आप पर बिल्कुल सूट करता है, क्योंकि जब आप आते हैं उसके बाद चली जाती हैं, फिर उसके बाद काफी टाइम के बाद आती हैं।
0: अच्छा लेकिन देखिए ना, ईद का जो चांद होता है ना उसका इंतजार भी बहुत होता है ना?
1: हाँ ये चीज तो है,
0: ये है ना। तो अब हम अगर ईद का चांद आपने हमें बना ही दिया है तो आप इंतजार करेंगे तो इंतजार का फल भी मीठा ही होगा।
1: हाँ मीठा तो होता है, लेकिन जब ईद में सेवाई तो मिलती है वो भी मीठी होती है, और जब आप आती है तब भी अच्छा लगता है, मीठापन मतलब महसूस होता है, तो है तो सेम बराबर
0: सब सेम। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया भाई इस तारीफ के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए कौन सा सॉन्ग सुनना चाहते हैं?
1: हम सुनेंगे आपका सुरूर मूवी का, नाम है तेरा तेरा, हिमेश रेशमिया भाई साहब का गीत है।
0: जी जी जी, अरे उनका क्रेज ही अलग है।
1: जी उनका जब उस टाइम पर था तो उस टाइम सब लोग यही म्यूजिक बजा के थे, क्योंकि म्यूजिक बहुत अच्छी थी।
0: बिल्कुल बिल्कुल, और इसीलिए आज उनका एक सॉन्ग मैंने अपने प्रोग्राम में भी बजाया था।
1: हाँ मैंने सुना था
0: जी,
1: लेकिन अब ये वाला जो है ये अब हम सुनेंगे।
0: बिल्कुल
1: तेरा तेरा आपका सुरूर मूवी का
0: बिल्कुल प्ले करूंगी, किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं तो नाम ले लीजिए।
1: जी हमारे मोहम्मद आसिफ भाई हैं हैदराबाद से, और साबिर भाई हैं कानपुर से, और अकबर भाई हैं। जी बस
0: इतने लोग।
1: जी बस इतने लोग, लेकिन एक आपसे गुजारिश है कि आप जल्दी जल्दी आया करें।
0: अच्छा देखिए इसके लिए एक काम और हो सकता है, जब हमारे जो ऑफिशियल्स हैं जब वो आपसे मिलते हैं ना, तो आप उनसे तो ये भी कहा करिए कि थोड़ा मोना मैम को जल्दी जल्दी भेजा करिए।
1: फीडबैक में मतलब कहते हैं, लेकिन अब उसको सुनाई नहीं होती है, लेकिन आप जब आती हैं तो कॉल ज्यादा लेती हैं तो अच्छा लगता है।
0: चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, पूरी कोशिश रहेगी कि जरूर आपसे जल्दी जल्दी मुलाकात करें।
1: हमारे गांव राजा कटरा में आपको बहुत ही मतलब गौर से सुना जाता है, बहुत अच्छा लगता है।
0: जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, और कोशिश पूरी रहेगी कि जल्दी आऊं। ओके थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। तो भाई बहुत ही अच्छा लगता है जब हमारे जो ये दोस्त है ना इतने प्यार से हमारे साथ कनेक्टेड रहते हैं, हमसे करते हैं बात, और बात कही जब बात कर रहे हैं तो एक कॉल और आ चुकी है। आइए जानते हैं कौन है वो हमारे साथ। हेलो,
2: हाँ मिंटू तिवारी ग्राम बागाना जिला फतेहपुर से बोल रहे हैं।
0: जी बहुत बहुत स्वागत है मिंटू जी, कैसे हैं आप?
2: बहुत अच्छे हैं मैं।
0: और क्या हो रहा था?
2: बस बैठे थे, आपका प्रोग्राम सुन रहे थे, फोन मिला रहा है तो फोन लग भी गया।
0: जी जी जी, अच्छा वाह भाई वाह। चलिए बताइए कौन सा सॉन्ग सुनना चाहते हैं आप?
2: जवाना दीवाना सुना दिए, जवाने को अब तक नहीं है पता, गाना हम किसी को खास डेडिकेट करना चाहते हैं थोड़ा।
0: बिल्कुल बिल्कुल करिए।
2: पहले तो आपको आपके टीम जितने आगे सभी के लिए, प्रभाकर तिवारी मेरे छोटे भाई हैं, रसिल कुलराह से, और रजेंद्र प्रसाद हो गए उनका प्रतापगढ़ से, राहुल भाई हो गए इटावा से,
0: जी
2: और ग्राम फिल्मी इंपाल जी, और जितने जितने लोग सुन रहे सभी के लिए रहेगा।
0: जी जी जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आपका ये सॉन्ग अब से कुछ देर में मैं प्ले करूंगी, और ये जो सॉन्ग आपने हर किसी को डेडिकेट किया है वो उन तक जरूर पहुंचेगा, आप बस हमारे साथ जुड़े रहिए। और भाई अब वक्त तो चला है कि मैं गाना जल्दी से प्ले कर दूं जो रिक्वेस्ट किया था हमसे रिंकी पिंकी जी ने। और रिंकी जी आपको डाउट था ना कि ये गाना आपको पता नहीं है कि कौन सी मूवी का है, तो मैं बताती हूँ ये स्टंट मैन मूवी का है। तो ये लीजिए मैंने ये सॉन्ग प्ले कर दिया, इसे करिए आप एंजॉय।

भाई बहुत ही प्यारा सा ये ट्रैक जिसके रिक्वेस्ट हमसे रिंकी पिंकी जी ने की थी, और फाइनली आज रिंकी पिंकी को मैंने ये भी बता दिया कि स्टंटमैन का ये गाना है, नेक्स्ट टाइम से ना आप परेशान नहीं होंगे। चलिए फिलहाल अब वक्त हो चला है तालिब जी के रिक्वेस्ट का ये ट्रैक प्ले करने का, जो उन्होंने रिक्वेस्ट की थी हमसे आपका सुरूर मूवी से, और ये मैंने कर दिया है प्ले, इसे करिए आप एंजॉय। और अगर बाकी हमारे जो दोस्त हैं हमसे कनेक्ट करना चाहते हैं और अपने रिक्वेस्टेड ट्रैक सुनना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 0522-223-8845, और साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं 0522-223-8852 पर, और अपने जो फेवरेट सॉन्ग्स हैं वो यहाँ पर सुन सकते हैं।

0: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
2: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
3: So, 4:46 का वक्त हो चला है भैया, प्रोग्राम में 15 मिनट भी ढंग से हमारे पास नहीं बचे हैं, लेकिन ये वक्त इतनी तेजी से भागता है ना, मेरा मन करता है इसे रोक लूँ, बहुत सारी बातें आपसे करूँ और आप जितने भी गाने रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो सारे प्ले करूँ, लेकिन क्या करूँ, थोड़ा समय से बंधी हुई हूँ और सारी कॉल्स नहीं ले सकती, और कॉल ले भी लेती हूँ तो सबके सॉन्ग्स प्ले नहीं कर पाती, और इसलिए अक्सर आप नाराज भी हो जाते हैं, लेकिन आप नाराज ना हो, यही हमारी आपसे गुजारिश रहेगी, कोशिश पूरी रहती है हमेशा हमारी कि आपके जो रिक्वेस्टेड ट्रैक्स हैं वो मैं जरूर प्ले करूं, ज्यादा से ज्यादा कॉल लूं और साथ ही मेल्स भी लूं, हालांकि मेल वाला प्रोग्राम नहीं है, लेकिन इतने प्यार से अगर आप हमें मेल करते हैं, अपनी बातें लिखते हैं, तो मेरा फर्ज बनता है कि वो बातें मैं सब तक पहुंचाऊं, यानी आपका मेल जरूर पढ़ूं। So, बहुत सारे जो हमारे दोस्त हैं ना हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए जल्दी जल्दी से आपके मेल्स पढ़ते हैं। वैभव प्रकाश सिंह नागपुर महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़े हैं, लिखते हैं एफएम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा राम राम, और आप लोगों की कॉल और प्यारे प्यारे सॉन्ग सुनकर बहुत अच्छा लगता है, रिंकी पिंकी जी के जो सॉन्ग है वो भी अच्छे हैं चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड हेलो डियर मोना मैम, वेरी गुड इवनिंग, आई एम श्रेया यदुवंशी, गंगागंज रोड भमनऊ विलेज नकटौवा बाराबंकी से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। एंड ये लिखती है कि ये प्यारी सी शाम ऊपर से हमारी मोना मैम, और कनेक्टेड है हम, सुन रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, हेलो एफएम, आने वाली आरजी अंजू मैम का भी वेलकम चलिए सबको इन्होंने, यू नो जैसे कहते हैं ना कि हर किसी को प्यार से एकदम भर देते हैं, इन्होंने वही काम किया, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। रामराज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिला रायबरेली गाँव पहाड़ीपुर से, रामराज राजभानु रामशंकर भैया पप्पू पासी मनीष नीरज मधु मिर्जा इमरान बेग, और लिखते हैं कोई भी सॉन्ग सुना दीजिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पवन कुमार जी लिखते हैं, नमस्ते मैम, मैं पवन कुमार गौतम डॉक्टर शकुंतला मिश्र यूनिवर्सिटी लखनऊ से आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद पवन जी, थैंक यू सो मच। नीलू शर्मा रूपपुर चंदेला से, हाय मुना मैम एफएम की सोना, कैसी हो आप, थैंक यू सो मच, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एंड सारा पीहू अंजू दी मुना दी, आपके लिए दो लाइन अर्ज करती हूँ, आप दूर रहो या पास, मेरी चाहत हमेशा आपसे ही रहेगी, थैंक यू सो मच मुरादी, मेरी कॉल तो कभी लगती ही नहीं है, अगर इम्पॉसिबल हो तो मेरी प्रिय दोस्त पीहू की फरमाइश प्ले कर दीजिए, अच्छा इम्पॉसिबल नहीं पॉसिबल है चलिए कोशिश रहेगी कि जरूर कहीं ना कहीं आपके ये सॉन्ग प्ले कर दूं। मोना दीदी को प्यार वाला नमस्कार, हमारा फोन कभी नहीं लगता इसलिए नाम पढ़ दीजिएगा, कार्यक्रम प्यारा लग रहा है सुनकर सारा दुख भाग जाएगा, तो लीजिए, उम्मीद करती हूँ आपका सारा दुख भाग गया होगा, आपका नाम मैंने ले लिया है। इंद्रपाल मिश्रा जी ग्राम अमृता महोली सीतापुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अमृता ठीक है, यहाँ से हमारे साथ जुड़े हैं इंद्रपाल मिश्रा जी।

0: नमस्ते, आपकी आवाज़ अच्छी लगती है। जेठ की दोपहरिया पांव जलते हैं। वकील अहमद मंसूरी कटरा हथूरी जिला सीतापुर साहिब अंसारी रजिया अंसारी शमा परवीन रिंकी पिंकी महक अंसारी गुलफशा सिद्दीकी अमन सबका नाम इन्होंने लिख दिया है और प्रोग्राम अच्छा लग रहा है इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ग्राम पोस्ट हरहरपुर मटकली जिला बरेली से शाहरून नूर अंसारी फरियाद हुसैन अंसारी शकील अहमद इदरीशी मोइन अंसारी तस्लीम अंसारी और डीजे प्रधान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिन्हें प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच, वेरी गुड इवनिंग मैम, कैसे हो आप? मैं मलिहाबाद से हूँ और मैंगो इन्होंने भेजा है। हाय, मुझे तो लालच आ गई। कहा थे आप बहुत दिनों से बात नहीं हुई, मुझे सॉन्ग सुना दो। गम है किसका है, क्या करूं, गाना नहीं सुना सकती क्योंकि ये कॉल वाला प्रोग्राम है। हाँ, आप कॉल करेंगे, कॉल लग गई तो आपका सॉन्ग जरूर प्ले करूंगी। बट थैंक यू सो मच फॉर योर मेल। अशोक कुमार जी, वेरी गुड इवनिंग टू यू टू। रायपुर ओड्रा मितौली लखीमपुर खीरी से आप हमारे साथ जुड़े हैं, आवाज अच्छी लग रही है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच कि आपको प्रोग्राम भी अच्छा लग रहा है। मोनू सेठ जी लिखते हैं कि हम शॉप पे थोड़ा सा बिजी हैं लेकिन आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मास्टर राधे श्याम शाकिया खासगंज से जुड़े हुए, वेरी गुड इवनिंग आपको भी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप भी अच्छे होंगे। और आगे लिखते हैं, मैम आपकी आवाज़ सुनने को तरस गए थे, बहुत दिनों बाद सुन रहे हैं आपकी आवाज़, प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच राधे श्याम जी। एंड नीलू यादव का हमारे पास मेल आ गया है। राधे राधे, आई एम नीलू यादव फ्रॉम आशियाना बंगला बाजार लखनऊ। सभी प्रोग्राम बहुत पसंद आ रहे हैं, मैं और मेरी बेटी अनुराधा एंड श्रेया की तरफ से भी। थैंक यू सो मच मुना मैम, आपका प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, शुक्रिया। एम एन नवाब हमारे साथ जुड़ी हुई है, लिखती है मैं भी आपको सुन रही हूँ और साथ में काम भी कर रही हूँ। संडीला से आपका मेल आया है, थैंक यू एम एन फॉर योर मेल। एंड उसके अलावा सबका मेल मैंने पढ़ लिया है। मोहम्मद रिजवान जी रह गए थे, आखिरी मेल इनका है। मोहम्मद रिजवान जी लिखते हैं, नमस्कार, आप कैसे हो? आपकी आवाज बहुत क्यूट है, प्यारी है। फरिंदा हरदोई से हमें प्रोग्राम सुन रहे हैं और मेल कर रहे हैं और लिख रहे हैं कि सुपर सुपर प्रोग्राम आपका चल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ओह, थक गई, थोड़ी सी सांस ले लूं। चलिए सांस ले लिए, अब कॉल आ रही है, घंटी बज रही है, आइए जानते हैं कौन है हमारे साथ फोन लाइन पे। हेलो हेलो हेलो, किससे बात हो रही है हमारी? हेलो हेलो, आपको आवाज आ रही है? ओ, तो चलिए भाई, फोन तो डिस्कनेक्ट हो गया है। मैंने पूरी कोशिश की कि उनसे बात की जाए लेकिन बात नहीं हो पाई है। फिलहाल बहुत देर से एक गाना कर रहा है इंतजार, लेकिन मैं सोच रही हूँ क्यों ना उसको प्ले करने से पहले एक कॉल और ले लेती हूँ, शायद बात हो ही जाए। हेलो
1: हेलो,
0: हाँ जी, गुड इवनिंग।
1: गुड इवनिंग मैम
0: जी, किससे बात हो रही है?
1: मेरी मैम रेशु तिवारी से बात हो रही है।
0: रेशु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, कैसी हैं आप?
1: मैम बहुत खुश है, बहुत अच्छे हैं।
0: हाँ, आपकी आवाज से तो पता चल रहा।
1: मैम मेरी मतलब पहले फोन हम सब लोग मिलाते थे, सोचते थे कि कैसे मिल जाता। मैम 12 तारीख से मैं फोन ट्राई कर रही, मेरा दूसरे तीसरे दिन लग ही जा रहा है।
0: अरे वाह, ये हुई ना बात। देखा, अगर आप सोचते रहेंगे कि ये कैसे सबका हो जाता, मेरा कब होगा, करा दीजिए तो एक दिन हो जाता है, बस आपको मैनिफेस्ट करते रहना है।
1: जी जी,
0: चलिए बताइए कौन सा सॉन्ग सुनना चाहती हैं?
1: मैम सॉन्ग सुनना चाहते हैं, कभी खुशी कभी गम का, मेरी सांसों में तू है समाया, मेरा जीवन तो है तेरा छाया, तेरी यही वाला,
0: तेरी पूजा करूं मैं हरदम। किसे डेडिकेट करेंगी?
1: सबसे पहले अपने पति को
0: जी, आज तो बनता है।
1: और मेरे मतलब मेरी मेरे बच्चे को
0: जी जी,
1: और मेरी दोनों लड़कियों को, जितने भी जितने सब लोग सुने सभी को।
0: चलिए आपके पति के लिए खास करके हम ये प्ले कर देते हैं क्योंकि आज उन्हीं का ही दिन है।
1: जी,
0: तो ये मैंने प्ले कर दिया है, थोड़ी देर में करूंगी, मतलब अभी तो हमारे दूसरे लिसनर का सॉन्ग है और उसके बाद आप अपना सॉन्ग एंजॉय करेंगे। ठीक है
1: ठीक है, थैंक यू मैम,
0: थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। सो मिंटू जी ने हमसे रिक्वेस्ट की थी, इस जमाने को अब तक नहीं है पता। भाई क्या नहीं पता है, वो तो मुझे नहीं पता, शायद इन्हें पता हो। फिलहाल इन्होंने जो सॉन्ग हमसे की थी रिक्वेस्ट, मैंने प्ले कर दिए, करिए इसे एंजॉय।

मैडम जी ने हमसे रिक्वेस्ट की थी कि एक मैडम पुराना गाना आप जरूर प्ले कर दीजिएगा, बजा दीजिएगा, क्योंकि उन्होंने कोई सॉन्ग हमसे रिक्वेस्ट नहीं की थी, तो मैंने एक पुराना गाना प्ले कर दिया, इसे करिए आप एंजॉय। तो बहुत ही खूबसूरत सा ये ट्रैक है, मुझे बहुत पसंद है, इसीलिए मैंने प्ले किया है, इसे आप भी एंजॉय करिए, क्योंकि प्रोग्राम में टाइमिंग बहुत कम बची है।

0: हाँ, मन तो यही करता है कि छोड़ के ना जाऊं, लेकिन क्या करते हैं भाई, समय से बंधे हुए होते हैं और हमें जाना पड़ेगा, और हम जाएंगे नहीं तो दोबारा आएंगे कैसे। तो फिलहाल आज के जो लास्ट ट्रैक है, जिसकी रिक्वेस्ट हमसे हमारी एक बहुत ही प्यारी सी लिसनर ने की थी, वो मैंने प्ले कर दिया है, उससे आप करिए इंजॉय। रेशु जी थी जिन्होंने अपने हस्बैंड और अपने बच्चों के लिए इस ट्रैक की थी रिक्वेस्ट, वो मैंने प्ले कर दिया है, और नेक्स्ट टाइम बहुत जल्दी फिर से आपसे होगी हमारी मुलाकात। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।
1: मेरा

नमस्कार, रात्रि के 8 बजे हैं। सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य के लिए तैयार आपूर्ति व्यवस्था बनाने के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अपने 5 देशों के दौरे के तहत आज नीदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया इस समय कोविड महामारी, जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि इन चुनौतियों का जल्द समाधान नहीं किया गया तो वैश्विक विकास प्रभावित हो सकता है और बड़ी आबादी गरीबी की ओर बढ़ सकती है। प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने आज मैनपुरी के ट्रांजिट हॉस्टल में जन सुनवाई की। इस दौरान श्री सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि निजी नलकूपों हेतु विभागीय नियमों के अंतर्गत विद्युत कनेक्शन तत्काल स्वीकृत किए जाएं और जन शिकायतों का निर्धारित समय सीमा में गुणवत्तापरक निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी स्तर से प्राप्त शिकायत का समाधान संबंधित अधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री द्वारा वैश्विक परिस्थितियों के दृष्टिगत आम जन से की गई अपील के परिप्रेक्ष्य में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा राज्य सरकार की तैयारियों की समीक्षा कर कतिपय निर्देश पर आज प्रदेश के श्रम एवं सेवा योजन मंत्री अनिल राजभर की अध्यक्षता में वर्चुअल मोड से समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में तमाम विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। इस दौरान पश्चिम एशिया में होर्मुज जल डमरू मध्य के व्यापार आवागमन बाधित होने से खाड़ी देशों के कर्मचारियों के बेरोजगार होने की संभावना पर चर्चा हुई। वाराणसी में उपभोक्ताओं को बेहतर और पारदर्शी बिजली सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड UPCAL ने महत्वपूर्ण पहल शुरू की है। ऊर्जा विभाग के निर्देश पर प्रदेश भर में 15 मई से स्मार्ट मीटर समस्या निवारण एवं समाधान अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए विशेष कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। फर्रुखाबाद शनिदेव महाराज का जन्मोत्सव बढ़पुर स्थित सिद्धपीठ देवी मंदिर में आस्था और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर मंदिर को फूलों और आकर्षक लाइटों से सजाया गया। सुबह से ही भक्तों की भीड़ मंदिर में उमड़ पड़ी। सभी ने भगवान शनिदेव के दर्शन किए और पूजा अर्चना की। इस भक्तों ने न्याय के देवता को प्रसन्न करने के लिए सरसों का तेल, काले वस्त्र और सुगंधित फूल अर्पित किए और भंडारे का भी आयोजन हुआ। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। 8:45 पर आप सुन सकेंगे समाचार संध्या हमारे दिल्ली केंद्र से। और अगला कार्यक्रम है आपशार। सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

0: रुसवाई, तो कभी ढलती हुई शाम की अंगड़ाई,
1: शाम होने को है।
0: प्यार की बारिश, मोहब्बत की ठंडक, इश्क की आहें, तन्हाई का एहसास।

कुछ अल्फाज थे जो होठों तक आते आते रुक गए, अब वही गजल बनकर दिल से निकला किया करते हैं। 100.7 FM रेनबो पर मैं अंजू शुक्ला आप सभी का खैर मकदम करती हूँ, इस्तकबाल करती हूँ। आदाब। 8:05 का वक्त है और आज अमावस की रात है। आसमान में चांद भले ना हो, लेकिन अच्छी बात यह है कि कुछ रातें चांदनी से नहीं, आवाजों, एहसासों और खूबसूरत अल्फाजों से जगमगाती हैं। तो आइए आज की शाम को थोड़ा मुस्कुराहटों, थोड़ी नजाकत और कुछ शानदार गजलों के नाम करते हैं। पेशे खिदमत है प्रोग्राम आबशार।

आबशार यानी एहसासों का वो सिलसिला जहां गजलें सिर्फ सुनी नहीं जाती, हल्के हल्के दिल में उतरती चली जाती हैं। वैसे गजलों की सबसे प्यारी बात पता है क्या होती है? ये बिना शोर किए दिल की बात कह देती हैं। कहते हैं कि तेरा जिक्र हुआ तो महक उठी तन्हाइयां भी, तेरा जिक्र हुआ तो महक उठी तन्हाइयां भी, कुछ लोग यूं भी मौसम बदल दिया करते हैं। कुछ लोग जिंदगी में ज्यादा देर नहीं रहते, लेकिन उनकी बातें, उनका अंदाज लंबे वक्त तक मुस्कुराहट दे जाता है। एक मुलाकात उनसे और फिर आप देखिए कि आप कितनी देर तक मुस्कुराते रहते हैं उनकी याद में डूबे, उनके एहसास में।

0: असल गजलें भी बड़ी दिलचस्प होती हैं। हर इंसान अपनी कहानी इनमें ढूंढ ही लेता है। वो हंस कर मिले थे हमसे किसी रोज यूं ही, और उम्र भर की मुस्कुराहट दे गए। और जिंदगी में वास्तव में सही मायने में कुछ मुलाकातें होती हैं ना, जो वजह नहीं पूछती, बस दिल में एक अटूट कभी ना मिटने वाली याद बनकर रह जाती हैं।
1: डियर रेनबो लिसनर्स, आपका और हमारा रिश्ता है बड़ा पुराना, पर इसे और भी गहरा बनाने आ रहा है एक खास बहाना।
2: जी हाँ, FM रेनबो कानपुर के कार्यक्रमों पर अब आपकी राय, आपकी पसंद और आपके सुझावों का रहेगा हमें इंतजार। लेकर आ रहे हैं हम अपना फीडबैक शो मेल मिलाप।
1: हमें बताइए आपको हमारे प्रोग्राम्स कैसे लगते हैं, क्या और सुनना चाहते हैं आप। तो नोट कीजिए, हर महीने के चौथे बुधवार दोपहर 3:45 पर होगा हमारा आपका मेल मिलाप।
2: अपनी प्रतिक्रियाएं हमें लिखकर भेजें इस पते पर, कार्यक्रम मेल मिलाप, विज्ञापन प्रसारण सेवा, आकाशवाणी कानपुर, बेना झाबर रोड, कानपुर, पिन कोड है 208002।
1: हमें ईमेल करें, हमारा ईमेल एड्रेस है fmmelmilaap@gmail.com पर, यानी कि fmmelmilaap@gmail.com। भूलिएगा मत, हर महीने का चौथा बुधवार दोपहर 4:15 सिर्फ FM रेनबो कानपुर पर। मेल मिलाप।

0: दोस्तों, हम लेकर आ रहे हैं आपके होठों पर सजने वाले सॉन्ग्स को,
1: जो होंगे आपकी मेल्स पर बेस्ड मेलोडियस सॉन्ग्स।
0: तो अपने फेवरेट सॉन्ग्स को सुनने के लिए आप शाम 4 से 5 बजे हमारे साथ रहिएगा आपकी पसंद के सफर पर।
2: मैं कोई ऐसा गीत गाऊं के हार जो जगाऊं अगर तुम कहो।
1: Only on 102.2 FM Rainbow, the musical heartbeat.
0: तो मेल करने के लिए हमारा मेल आईडी है
1: airkansomedia@gmail.com।
0: तो हमारे साथ सुनिए रेनबो कानपुर पर 4 से 5 आपकी पसंद प्रोग्राम।

0: आवश्यक सूचना सुनिए। कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा और अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए दिए जाने वाले पद्म पुरस्कार, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण के लिए भारत सरकार द्वारा आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। इच्छुक व्यक्ति या संस्थाएं अपने नामांकन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in पर ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। नामांकन करते समय संबंधित व्यक्ति की उपलब्धियों और सेवाओं का स्पष्ट और विस्तृत विवरण सही प्रारूप में अंकित होना सुनिश्चित करें। पद्म पुरस्कारों से संबंधित नियम और विनियम padmaawards.gov.in पर देखे जा सकेंगे। एक बार फिर हम बताना चाहेंगे, padmaawards.gov.in पर आप नियम और विनियम इस अवार्ड से संबंधित देख सकते हैं। नामांकन करने की अंतिम तिथि है 31 जुलाई 2026। सूचना समाप्त हुई।
1: रविवार को एक विशेष कार्यक्रम हर रविवार दोपहर 12 बजे तक आप तक पहुंचता है। स्वस्थ शरीर और स्वस्थ जीवन की अवधारणा को सार्थक करने का प्रयास है एफएम रेनबो की ओर से। रविवार का साप्ताहिक कार्यक्रम हेल्थ एंड फिटनेस 12 बजे से 1 बजे के बीच, और कल यानी 17 मई को हमारा विषय है हाइपरटेंशन यानी उच्च रक्तचाप। और इस विषय पर आपके प्रश्नों, आपकी जिज्ञासाओं के उत्तर देने के लिए हमारे स्टूडियो में उपस्थित रहेंगी डॉक्टर कोमल अग्रवाल, आंतरिक चिकित्सा विभाग। और आप अपने प्रश्न डॉक्टर साहब से सीधे पूछ सकते हैं fmakashwanilakhnow@gmail.com इस मेल आईडी के माध्यम से, या फिर हमें डायल कीजिएगा 0522-2238-845 या फिर 0522-2238-852 पर। ये हमारे फोन नंबर्स हैं, याद रखिएगा। प्रोग्राम हेल्थ एंड फिटनेस कल यानी रविवार 12 बजे से लेकर 1 बजे के बीच। फिलहाल आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आबशार, और अब आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत गजल आपके रेडियो सेट पर।

दोस्तों, आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में अगर कोई चीज दो पल का सुकून देती है ना, तो वो है अच्छा संगीत और अच्छी शायरी। कहते हैं कि हमने खामोशियों को भी पढ़ना सीख लिया, अब हर बात लफ्जों की मोहताज नहीं लगती। और सच कहूं तो कुछ रिश्ते भी ऐसे होते हैं जहां बातचीत बहुत कम लेकिन समझ बहुत गहरी होती है। हर वक्त हम बहुत सीरियस हों, बहुत गंभीर हों, ये जरूरी नहीं। कभी कभी बस एक प्याली चाय, हल्की बारिश की खुशबू और एक अच्छी गजल काफी होती है। मिजाज अपना कुछ ऐसा बना लिया हमने, किसी ने कुछ भी कहा बस हौले से मुस्कुरा दिया हमने। यही तो है खूबसूरती जिंदगी की। हर बात को दिल पर ले ये जरूरी नहीं, कभी कभी मुस्कुराकर बस यूं ही कुछ लम्हे जी लीजिए।

ये गौर किया है आपने कि पुराने गानों और गजलों में एक अजीब सी गर्माहट होती है, जैसे कोई अपने पन से हाल पूछ रहा हो। दिल ने जब भी कोई खूबसूरत दुआ मांगी, हर दुआ में बस तेरा ही नाम आया। वैसे ये दुआएं भी बड़ी प्यारी चीज होती है ना। चलिए, गजलों की महफिल सजी हुई है, आबशार, मैं हूँ आपकी हमनवा अंजू शुक्ला। वक्त हो गया है 8:38 और गजलों की महफिल में एक बात हमेशा महसूस होती है कि अच्छे अल्फाज कभी पुराने नहीं होते। ये जो हल्की सी फिक्र करते हो ना मेरी, बस यही बात हमें अपनी सी लगती है। सच्चे रिश्तों में दिखावा कम, एहसास ज्यादा होने चाहिए, है ना, क्योंकि दिल हमेशा सच्चाई पहचान लेता है। वरना इस बेचारे दिल को जलाने की बात तो हर कोई करता है, अब कहां तक बचाएं इस दिल को।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत और नीदरलैंड मिलकर भविष्य की विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला तैयार करने पर काम कर रहे हैं। 21वीं सदी के भारत को अवसरों की भूमि बताया। भारत में सेमीकंडक्टर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और डच कंपनी ASML के बीच समझौते पर हस्ताक्षर। दिल्ली की अदालत ने नीट प्रश्न पत्र लीक मामले के मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी और सह आरोपी मनीषा वाघमारे को 10 दिन की सीबीआई हिरासत में भेजा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य किया। भारत ने सिंधु जल संधि पर मध्यस्थता न्यायालय के फैसले को अवैध करार देते हुए खारिज किया। और भारत की संजना ने गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महिला वर्ग के 77 किलोग्राम वर्ग में 3 कांस्य पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य की आपूर्ति व्यवस्था तैयार करने पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। 5 देशों की अपनी यात्रा के अंतर्गत आज नीदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये दशक आपदाओं का दशक बन गया है। उन्होंने कहा कि दुनिया पहले कोविड महामारी, फिर युद्ध और अब ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है।
1: पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं, अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की धरती बनकर उभर रहा है।
1: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशियंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड्स के राजा विलेम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से भी मुलाकात की। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और नीदरलैंड्स की सेमीकंडक्टर उपकरण निर्माता कंपनी ASML ने भारत में चिप निर्माण को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है। इस समझौते की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान की गई। ASML उन्नत और छोटे आकार के सेमीकंडक्टर बनाने में इस्तेमाल होने वाले विशेष लिथोग्राफी उपकरणों के क्षेत्र में अग्रणी कंपनी मानी जाती है। संयुक्त बयान में कहा गया कि इस साझेदारी के तहत ASML गुजरात के धोलेरा में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की आगामी 300 मिलीमीटर सेमीकंडक्टर फैब परियोजना की स्थापना और संचालन में सहयोग करेगी। बयान में कहा गया कि यह सहयोग सेमीकंडक्टर जैसी महत्वपूर्ण तकनीकों के क्षेत्र में भारत और नीदरलैंड्स के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री मोदी को आज नीदरलैंड्स में लिडेन विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने 11वीं शताब्दी की ऐतिहासिक चोल ताम्रपत्र भेंट किए। इन अमूल्य कलाकृतियों की वापसी दोनों देशों की सांस्कृतिक सहयोग और विरासत बहाली के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण अवसर है। ताम्र पत्रों के इस संग्रह में 21 बड़े और 3 छोटे ताम्र पत्र शामिल हैं। ये चोल राजा राजेंद्र चोल प्रथम की मोहर लगी एक कांस्य अंगूठी से बंधे हैं।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की अपनी यात्रा के तीसरे चरण में कल स्वीडन जाएंगे। स्वीडन के औद्योगिक केंद्र गोथेनबर्ग की यात्रा से भारत और स्वीडन के बीच द्विपक्षीय संबंधों, विशेष रूप से व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे उभरते तथा उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में और मजबूती आने की उम्मीद है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में स्वीडन में भारत के राजदूत श्री अनुराग भूषण ने कहा कि यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग और नवाचार के नए द्वार खुलेंगे।
1: We have a very long-standing partnership with Sweden on defense.
2: रक्षा क्षेत्र में स्वीडन के साथ हमारी साझेदारी बहुत पुरानी है, लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता के संबंध से आगे बढ़कर रक्षा साझेदार के रिश्ते में बदल गया है। अब दोनों देश और दोनों देशों की कंपनियां मिलकर रक्षा उपकरण बनाने और उनके उत्पादन करने की दिशा में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और साथ ही देश में हुए बुनियादी ढांचे के विकास से इस प्रयास को और भी अधिक गति मिली है।
1: एंड ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दैट हैज हैपेंड।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली की अदालत ने नीट प्रश्न पत्र मामले के कथित मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी और एक अन्य आरोपी मनीषा वाघमारे को आज 10 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया। विशेष सीबीआई न्यायाधीश अजय गुप्ता ने जांच एजेंसी की प्रस्तुत दलीलों के बाद कुलकर्णी और वाघमारे को सीबीआई हिरासत में भेजा। एजेंसी ने कहा कि जांच के लिए दोनों को राष्ट्रीय राजधानी से बाहर ले जाना आवश्यक है। कार्रवाई के दौरान सीबीआई ने कहा कि कुलकर्णी विषय विशेषज्ञ थे और 2026 के नीट स्नातक प्रश्न पत्र को तैयार करने में शामिल थे। सीबीआई ने कहा कि सह आरोपी धनंजय लोखंडे ने मनीषा वाघमारे से लीक सामग्री एकत्र की थी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 1 जुलाई से कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य कर दिया है। बोर्ड ने एक वक्तव्य में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा पाठ्यक्रम 2023 के अनुरूप इन 3 भाषाओं में से कम 2 भारतीय मूल की भाषाएं होनी चाहिए। सीबीएसई ने स्पष्ट किया कि कक्षा 10वीं में तीसरी भाषा R3 के लिए कोई बोर्ड परीक्षा नहीं होगी और R3 के लिए सारा मूल्यांकन पूरी तरह से विद्यालय आधारित और आंतरिक होगा। शिक्षा मंत्रालय ने देश में बीच में ही स्कूल छोड़ने वाले विशेष रूप से 14 से 18 आयु वर्ग के बच्चों की बढ़ती संख्या पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। स्कूल शिक्षा और साक्षरता सचिव संजय कुमार की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान द्वारा प्रस्तावित एक नई पहल की कार्यान्वयन रणनीति की समीक्षा की गई।
2: मंत्रालय में सचिव संजय कुमार ने स्कूल की पढ़ाई बीच में ही छोड़ने वाले बच्चों की गंभीर समस्या पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार कक्षा 1 में दाखिला लेने वाले हर 100 बच्चों में से केवल 62 बच्चे ही कक्षा 12 तक पहुंच पाते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि नवीनतम अनुमानों के अनुसार 14 से 18 आयु वर्ग के 2 करोड़ से अधिक बच्चे इस समय स्कूल नहीं जाते हैं। उन्होंने कहा कि आर्थिक मजबूरियां, घरेलू जिम्मेदारियां और आजीविका से जुड़ी चुनौतियां उन मुख्य कारणों में से हैं जिनकी वजह से बच्चे स्कूली शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता पर जोर देते हुए सचिव ने इस बात पर बल दिया कि हर बच्चे को कम से कम माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा मिलनी चाहिए। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारत ने अवैध रूप से गठित मध्यस्थता न्यायालय के सिंधु जल संधि पर

0: हालिया तथाकथित फैसले को खारिज कर दिया है। भारत इस न्यायालय के पहले के भी सभी निर्णयों को सख्ती से अस्वीकार कर चुका है।
1: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि तथाकथित मध्यस्थता न्यायालय ने कल अधिकतम जल भंडारण क्षेत्र से संबंधित एक फैसला जारी किया था। उन्होंने कहा कि न्यायालय की कोई भी कार्यवाही या निर्णय अमान्य है। श्री जायसवाल ने कहा कि सिंधु जल संधि को स्थगित रखने का भारत का निर्णय अभी भी लागू है। सिंधु जल संधि पर भारत और पाकिस्तान के बीच सितम्बर 1960 में हस्ताक्षर हुए थे। ये सिंधु नदी के जल बंटवारे और उपयोग को नियंत्रित करती है। भारत ने पिछले वर्ष पहलगाम आतंकी हमले के बाद संधि को स्थगित कर दिया था। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: महाराष्ट्र का गढ़चिरौली जिला नक्सल मुक्त हो गया है। नक्सल विरोधी अभियान अंतिम प्रहार के अंतर्गत 8 नक्सलियों की गिरफ्तारी और 5 अन्य के आत्मसमर्पण के बाद ये घोषणा की गई। पुलिस अधीक्षक एम नरेश ने बताया कि आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों पर कुल 38 लाख रुपए का इनाम था। तेलंगाना में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR 15 जून से शुरू होगा। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि बूथ स्तर के अधिकारी 25 जून से 24 जुलाई तक घर घर जाकर सत्यापन करेंगे। मतदाता सूची का मसौदा 31 जुलाई को प्रकाशित किया जाएगा। आपत्तियां और दावे 30 अगस्त तक प्रस्तुत किए जा सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची 1 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने सरकारी खर्च में मितव्ययिता सुनिश्चित करने और वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं और 30 सितंबर 2026 तक प्रभावी रहेंगे। इनका उद्देश्य राज्य के वित्तीय संसाधनों का कुशल प्रबंधन सुनिश्चित करना और सार्वजनिक व्यय में अधिक अनुशासन लाना है। इस बीच सरकार ने आज चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। इससे पहले कीमती धातुओं पर भारी सीमा शुल्क लगाया गया था। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा कि सोने और प्लैटिनम में से मढ़ी हुई चांदी को तत्काल प्रभाव से मुक्त आयात से प्रतिबंधित कर दिया गया है। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 19 मई से चीन की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे राष्ट्रपति शी चिनफिंग से मुलाकात करेंगे। श्री पुतिन की यात्रा चीन रूस मैत्री संधि की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर हो रही है। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों तथा आर्थिक सहयोग पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति पुतिन की इस यात्रा की घोषणा अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीन यात्रा समाप्त होने के 24 घंटे से भी कम समय में हुई है। मौसम विभाग ने कल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। केरलम, माहे, लक्षद्वीप, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारैक्काल और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भी ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। और अब कुछ खेल खबरें। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की संजना ने महिलाओं के 77 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता है। संजना ने स्नैच में 96 किलो, क्लीन एंड जर्क में 124 किलो और कुल 220 किलो का वजन उठाकर 3 कांस्य पदक अपने नाम किए। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता में गुजरात टाइटंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक कोलकाता ने 17 ओवर में 2 विकेट पर 199 रन बना लिए हैं। गुजरात ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत और नीदरलैंड्स मिलकर भविष्य की विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला तैयार करने पर काम कर रहे हैं। 21वीं सदी के भारत को अवसरों की भूमि बताया। भारत में सेमीकंडक्टर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और डच कंपनी ASML के बीच समझौते पर हस्ताक्षर। दिल्ली की अदालत ने नीट प्रश्न पत्र लीक मामले के मुख्य आरोपी PV कुलकर्णी और सह आरोपी मनीषा वाघमारे

को 10 दिन की सीबीआई हिरासत में भेजा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य किया। भारत ने सिंधु जल संधि पर मध्यस्थता न्यायालय के फैसले को अवैध करार देते हुए खारिज किया और भारत की संजना ने गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महिला वर्ग के 77 किलोग्राम वर्ग में 3 कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

जी मटक वटक ली हो तो थोड़ा बैठ जाइए, पानी वानी पी लीजिए, थोड़ा सा सुस्ता लीजिए, सांस ले लीजिए, है ना। मतलब आजकल वैसे कहा जाता है कि जब डीजे पे मटकना हो, कहीं डांस हो रहा हो, डीजे बज रहा हो, तो फिर मतलब सबके अंदर ऐसा जोश आ जाता है, फिर क्या ही कहा जाए। और फिर कहीं अगर सत्संग हो रहा हो, कथा हो रही हो, तो फिर लगता है कि थोड़ी देर में जाएंगे, जब प्रसाद बढ़ने वाला होगा तब जाएंगे, वरना इतनी देर कौन बैठेगा ना। तब यहाँ दर्द, वहाँ दर्द, दुनिया भर के दर्द। खैर ये तो अपनी अपनी बात है। खैर बस जब मस्ती भरा मूड होता है, माहौल होता है, तो अपने आप एनर्जी से आ जाती है ना। और ये एनर्जी रेनबो कैफे आप तक पहुंचाने में पूरी मशक्कत करता है, पूरा हफ्ते हम सारे आरजेज आपको झुमाने के लिए, आपको खुश रखने के लिए मेहनत करते हैं। और हमें पता है कि आपको पसंद भी आती है हमारी मेहनत, और इसीलिए जब इस तरफ नजर डालते हैं, मतलब हमने गर्दन इधर घुमा ली है, गाना थोड़ी देर में सुनाएंगे, थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, और इस ब्रेक में आपके ईमेल्स पढ़ते हैं। जी हाँ, जो ईमेल्स आपने हमें भेजे हैं, जो झड़ी लगी है, उसकी क्या ही कहने है। मोनू भैया ने सबसे पहले मेल किया है और कहते हैं, अंजू बहन जी को राम राम नमस्ते, माटी की सुगंध में हमने और हमने हमारे नानी जी ने बहुत मिस कर किया आज, और नानी आज हमसे नाराज है। काहे नाराज भैया, नानी जी पर नाम नाराज राज ना हुआ है, हम आउबे तो का मनाए लेवे, ठीक है नानी। बहुत नीक लागत जब मुस्कियात रहा तू है, नाराज रहा की जरूरत ना है नानी। और देखा देखा नानी अभी मान जाए मोनू भैया, चला कोनो बात नहीं। अच्छा अब आते हैं नेक्स्ट मेल पे। रॉयल अमित यादव जी यानी श्रेया यदवंशी है, गंगागंज रोड भानमऊ विलेज नकटुआ बाराबंकी समय लिख रही है। हेलो डियर आरजे, माय रेनबो की का सुकून प्यारी सी मैं मंजू, मॉर्निंग में मिस यू, और अब आप हुई है रूबरू, मिल गया है रात का सुकून, अमावस की रात है, हम सब रेनबो के पास है, अंजू मैम का साथ है, वाह वाह क्या बात है, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा, और थैंक यू सो मच श्रेया इतने प्यार के लिए और इतना प्यार भरा ईमेल भेजने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बस ऐसे हमारे साथ बनी रही है ना, फिर क्या ही कहने। और हमारी एनर्जी बरकरार रहती है जब आप लोगों का साथ रहता है। विजयपाल यादव भैया कहीं है,

हमने सबके साथ बना रहा, सुनत रहा करा हमेशा सवेरे 6 बजे से रात 12 बजे ताई कार्यक्रम, आपके अपना पसंदीदा कार्यक्रम, सारे कार्यक्रम FM रेनबो चैनल पर आए। ठीक है भैया, अब देखा, अब आगे बढ़ी, देखा आगे बढ़ी तो ये कहती आवा हाँ रेनबो कैफे पेश करने वाले को हमारा आदाब। और ये आदाब आया है ग्राम व पोस्ट हरहरपुर मचकली जिला बरेली से शाहरुआ नूर अंसारी जी, फरियाद हुसैन अंसारी, शकील अहमद ऋषि, मोइन अंसारी, तस्लीम अंसारी और DJ प्रधान भैया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। बस ऐसे ही हमारे साथ रोज बने रहा करिए, थैंक यू सो मच। अशोक कुमार भैया आपको भी वेरी गुड इवनिंग, नमस्कार। और आप हमें सुन रहे हैं रायपुर उडारा मितौली लखीमपुर खीरी से, और आपके साथ हैं बैरिस्टर चाचा अजय राज, प्रदीप राज, सब सुन रहे हैं, सबको हमारा नमस्कार, वेरी गुड इवनिंग। और नेक्स्ट मेल है हमारे पास वैभव प्रकाश जी का, इन्होंने भी सभी श्रोताओं को राम राम भेजा। आज के प्रोग्राम में मैं आगरा के समय के अपने कुछ दोस्तों का नाम लेना चाहते हैं, रजत रस्तोगी सीतापुर, नूरुद्दीन सिद्दीकी रायबरेली से, यतिन बजाज दिल्ली से, अभिषेक तलूजा दुबे जी दिल्ली से, और कहते हैं कि आप लोगों के साथ बिताए गए खट्टे मीठे पल बहुत खूबसूरत थे, थैंक यू सो मच। आगे उन्होंने लिखा, यारों ने मेरे वास्ते क्या कुछ नहीं किया, 100 बार शुक्रिया, बिलियन बार शुक्रिया, क्या बात है। वैभव प्रकाश सिंह नागपुर महाराष्ट्र से, वास्तव में आप बहुत लकी हैं जो आपके साथ इतने सारे प्यारे दोस्त हैं, वरना जो भीड़ होती ना उसमें सच्चे दोस्त बहुत कम होते हैं, कदका होते हैं, लेकिन जिनके पास सच्चे दोस्त होते हैं ना वो बहुत खुशकिस्मत होते हैं दोस्त। खैर, थाना राम शर्मा जी हमें लिख रहे हैं, हेलो गुड इवनिंग, आफ्टर वेरी हॉट डे योर कूलिंग पॉप टाइम इज वेरी एंटरटेनिंग एंड रोमांटिक, इट रिफ्रेश अस फुली, थैंक यू सो मच। बस ऐसी रिफ्रेशिंग सॉन्ग्स आपको हम सुनाते रहेंगे, फिलहाल एक और भोजपुरी तड़का लगाने की हम कर चुके हैं तैयारी, तो सुन लीजिए हमारे साथ। और अब 9 बजकर हो गए हैं 20 मिनट, आप हमें मेल कर सकते हैं fmakashwani@gmail.com पर, लेकिन भाई छोटी छोटी बातें लिखिएगा ताकि आप सबके मेल्स शामिल हो और गाने ज्यादा से ज्यादा हम आप तक पहुंचा पाएं।

भैया ये तो प्यार करने से पहले सोचना चाहिए था इसमें, बाकी जिससे आपने प्यार किया उसका क्या ही कसूर है ना, आप चाहे 100 खर्च करो चाहे उसके ऊपर 1000 खर्च करो। खैर मोहब्बत में ये सब चीजें मायने रखती हैं क्या? नहीं रखती ना, बिल्कुल कतई नहीं रखती भैया, किसी एंगल से नहीं रखती, क्योंकि सब कुछ बहुत बेशकीमती होता है मोहब्बत में, और उसके आगे जितनी भी चीजें होती हैं वो बिल्कुल उनकी कोई कीमत नहीं होती। बस एक दूसरे से प्यार करते रहिए, प्यार बांटते रहिए, दुनिया को बहुत खूबसूरत बनाते रहिए, क्योंकि प्यार से ही तो ये जिंदगी चलती है। और विकास जी ने हमें प्यार भरा सलाम भेज दिया, चरण स्पर्श भेज दिया, जिला उन्नाव से, तहसील सफीपुर, गांव सलीद से हमें ये सुन रहे हैं, रात 12 बजे तक ये जुड़े रहेंगे, थैंक यू सो मच। और इनकी प्यारी सी बहन है प्रिया, और इनके मित्र हैं ब्रजेश सिंह, दीपू बहराइच से, आप सब इनके साथ सुन रहे हैं, प्रोग्राम की तारीफ की है आपने, बहुत बहुत शुक्रिया, क्या बात है, बहुत सारे हमारे लिसनर्स हैं जो जुड़े हुए हैं लगातार, क्या इतने सारे मेल हम शामिल कर पाएंगे, बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए आगे। खैर जल्दी जल्दी कोशिश करते हैं। बाबू अंसारी जी नमस्ते, कैसे हैं आप? अरे भैया का डांस कर रहे हो, है जबरदस्त, देखना जरा मूछ मूछ ना आ जाए पैर में, मतलब एक इन्होंने GIF भेज दिया उसमें डांस करते हुए। अच्छा ये कोट वोट पहन के टाई लगा के डांस करना भी बड़े मजेदार होता है ना, चलिए कोई नहीं आप बस ऐसे लगे रहिए। और इन्होंने नमस्ते भेजा, प्रोग्राम की तारीफ की, नसीम अंसारी जी, मुन्नन अंसारी, फैज अंसारी और बाबू अंसारी जी, थैंक यू सो मच, बस ऐसे ही सुनते रहे हमें। आप देवकली अहमदपुर बाजार बाराबंकी से सुन रहे हैं। नेक्स्ट मेल है रामराज जी का, और रामराज जी को हम राम राम कहते हैं, आप कहां से सुन रहे हैं? इन्होंने लिखा है कि अच्छा पॉप टाइम नहीं, आज रेनबो कैफे, शनिवार को रेनबो कैफे आता है और मंगलवार को रेनबो कैफे आता है, बाकी दिन इस वक्त आता है पॉप टाइम प्रोग्राम। जिला रायबरेली गांव पहाड़ीपुर से रामराज, राजू भानु, रामशंकर भैया, पीर मोहम्मद वाले और पप्पू जी, मनीष जी, नीरज, मधु, मिर्जा, इमरान बेग, सब गाने तो आप लाजवाब सुनाते हैं, आपकी आवाज बहुत प्यारी, थैंक यू सो मच, नमस्कार, धन्यवाद आपको भी। मनोज विश्वकर्मा जी, राधे राधे, प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, थैंक यू। अबशार का भी इन्होंने सुना, इनके पूरे परिवार ने सुना, थैंक यू सो मच तारीफ के लिए। छत्तीसगढ़ जिला बलौदा बाजार ग्राम तारा शिव से आप हमें सुन रहे हैं, क्या बात है मोनू जी, काहेल ये अच्छा फिर से मेल किए। अब अंजू बहनी आई है तो प्रोग्राम में तो प्रोग्राम एकदम झमकौआ और झम झम झुआ होई, ईमा कोनो सक नहीं है, कितना झमाझम मेल भेज दियो है भैया। अरविंद कुमार दुबे भैया कहां से लिख रहे हैं? मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से हमें सुन रहे हैं अरविंद दुबे, ग्राम धर्मदेवा पोस्ट छठहा जिला मिर्जापुर से, और इन्होंने नमस्कार भेजा सभी श्रोताओं को, वट सावित्री पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं भेजी है, और ये 2009 से FM रेनबो सुनते हैं, रेडियो पर मिर्जापुर में कभी कभी फ्रिक्वेंसी मिल जाती थी, लेकिन अब तो देश विदेश के कोने कोने में हमारा FM रेनबो लखनऊ पहुंच चुका है, बिल्कुल इसमें तो कोई शक है नहीं, क्योंकि हम मोबाइल पर, गूगल पर, ऑनलाइन लाइव रेडियो के माध्यम से, या प्रसार भारती की मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर ऐप के माध्यम से आप सब तक पहुंचते हैं, तो बस हमें अपने पास ही रखिएगा। और इन्होंने ये कहा है कि क्षेत्रीय भाषा के गीतों की मिठास बहुत अच्छी है अरविंद दुबे जी, गोविंद प्रतिमा प्रतिष्ठा तन्वी दीपा श्याम कुमारी मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से हमें सुन रहे हैं, थैंक यू सो मच अरविंद जी। और आपको हम ये जरूर बताना चाहेंगे कि FM रेनबो पर शनिवार सुबह 10 से 11 और बुधवार सुबह 10 से 11 एक प्रोग्राम आता है सुगंध माटी की, उसमें आप अलग अलग भाषाओं के लोकगीत सुन सकते हैं, लोक संस्कृति का आनंद ले सकते हैं, और शनिवार को तो सिर्फ खास तौर पर अवधि लोकगीत आपके लिए प्रस्तुत किए जाते हैं, तो जरूर सुनिएगा। शोभित शर्मा जी ने भी हमें मेल किया है, थैंक यू सो मच, आप कहां से सुन रहे हैं हमें ये नहीं बताया, और आपके मेल में कुछ अलग तरह का कुछ है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा। आचल जी कैसी हैं आप? राम राम, हम बिल्कुल अच्छे हैं, कहा थी यहाँ की प्रोग्राम जबरदस्त चलत बाटे, तो भैया जबरदस्त एक चले दे है। आचल अंकित से ड्राइवरली से बहुत जने हमका मेल करे, नीलू शर्मा बहनी के भी मेल आ गया, लेकिन भैया चलो एक लगाते हैं पंजाबी तड़का, क्योंकि अगर पंजाब नहीं गए हम घूम फिर के तो फिर कहाँ गए भैया, मतलब हमारा ये सफर अधूरा रह जाएगा ना, तो चलिए पंजाबी, पंजाब से होकर आते हैं थोड़ा सा झूम कर मस्ती भरे अंदाज में, ठीक है, तो लगाइए भांगड़ा, थोड़ा सा बल्ले बल्ले कर लीजिए जी हमारे साथ, ये देखिए देखिए कितनी गल करती है भैया, गल ना करो, नाच दिखाओ।

0: ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ?
1: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
2: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
3: साढ़े नौ बज के 32 मिनट का वक्त हो गया। 100.7 FM रेनबो ट्यून किया है और आज है सैटरडे नाइट, और सैटरडे नाइट को होता है रेनबो कैफे। और ये खूबसूरत महफिल आपके बिना कैसे पूरी हो सकती है? आप लोग जब आते हैं हमारे इस कैफे में तभी तो रंग जमता है भाई, और रंग हम जमाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, और अलग अलग राज्यों की जो खुशबू है वो आप तक पहुंचाएंगे, और भोजपुरी के तो दीवाने हमारे पास हजारों हैं, और भोजपुरी की फरमाइश भी आती रहती है, तो भोजपुरी गाने मैक्सिमम आपको सुनने को मिलते रहेंगे बीच बीच में। फिलहाल जावेद अख्तर जी ने हमें मेल किया है, कहां से मेल कर रहे हैं ये? रेशमी नगरी मुबारकपुर आजमगढ़ से हमें मेल कर रहे हैं, और इन्होंने भी गुड इवनिंग भेजा है। अलग अलग रंग रूप सुनने को मिलेंगे क्योंकि आपकी मधुर आवाज में इस कार्यक्रम में जो मंत्र लगेगा वो गीतों का तड़का हमारे धड़कनों में बस जाएगा। क्या बात है, मतलब कहां कहां से आप लोग ये बातें कर लेते हैं। वैसे सबके सब आरजेस बन गए हैं, बोलते भी हैं, कविता भी कर लेते हैं, कवि शायर सब कुछ बन चुके हैं वैसे। अच्छा, अगला मेल हम पढ़ते हैं। गाना बजे तब पवा अपने आप थिरकेला, पवा थिरकेला तो गवा जवा के लोगवा सब देखेला, पर ना मंजू दीदी हम हई मुनेश कुमार राज गांव भानपुर हरउआ जिला लखीमपुर खीरी से। दीदी तोहर कार्यक्रम रेनबो पॉप टाइम का के का कही, हर घंटा एक से बढ़कर एक गाना बजावे लो दिल खुश हो जाला, और हम तो हर रोज हर घंटा टाइम से रेडियो लगा के लाइव सुनेला, और तुहार आवाज में ऐसा जादू बा कि घर द्वार के काम छोड़ के सब सुन ही बैठ जाला। दीदी सहरज बा हमार फरमाइश के गाना रे दैया, यही पता इंडिया मात खाएगा भैया कि हम फरमाइश के गाना ही ना बजाऊबा है। तुहार छोटा भाई मुनेश कुमार राज, छोटा भाई आपका बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद है, जय हो। बस फरमाइश वाला गाना ना कहा है हम, देखा वैसे जो ना प्लेलिस्ट पे बहुत मेहनत करी थे, और प्लेलिस्ट हमारे जो ना एक से बढ़कर एक गाना लेके आई थे, और उम्मीद करी थे कि आप सबका पसंद आवे है, तो चला बस हमारी प्लेलिस्ट एंजॉय करिए। महेंद्र दीवन जी कैसे हैं आप, घड़ी कम्मा आपको भी, और आपने भैया ये जो पोस्टर वोस्टर बना के भेज देते हो, एक फोटो हम खींच के वहीं लगे हुए अपनी स्टोरी पर, और लेकिन ये जो साड़ी है और गहना गुठी हमका पहराए दे यहाँ ना, और घड़ी हरी हरी, अरे वाह हरी हरी साड़ी, मतलब पूरा सावन आएगा वहाँ हमारी फोटो में, और ये मतलब हमारे पास तो है नहीं, ये कहाँ से हेर के लाया, अच्छा पहराए दे है, तो मतलब भेजन दे है आपने दीदी के लिए है, ठीक है। वैसे आपने ये लिखा है कि हमारी फेवरेट आर्ट अंजू शुक्ला मैम सादर प्रणाम, और आप हमें मेल कर रहे हैं गाँव रूड़ जिला नागौर राजस्थान से, और आपने AI के माध्यम से जो पोस्टर बनाकर हम सभी आरजेस का लगभग आप भेजते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, थैंक यू सो मच इतने प्यार के लिए। और इन्होंने लिखा है कि कल मुझे सोशल मीडिया के द्वारा पता चला कि आज रात 8 से 12 आपका कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगी, तो मैं आज सुबह से ही सारे काम सुबह ही निपटा दिए, पूरे दिन इंतजार था, थैंक यू सो मच। तो इन्होंने भी एक गाना लिख दिया है, और कहते हैं कि मुझे पता है कि फरमाइशों का प्रोग्राम नहीं, लेकिन रेडियो सुनते सुनते मेरा मन एक बेहद खूबसूरत गाने के लिए मचल गया है, तो चलिए कोशिश रहेगी। लेकिन हम आपको बताएं ना कि ये जिस सिंगर के गाने हैं उनके गाने हम और भी अलग अलग गाने लेकर आए हैं, और ये वाला गाना तो अक्सर सुनते रहते हैं आप लोग हैं, काहे लिए बता, मतलब हमको अपनी प्लेलिस्ट चेंज करने पे मजबूर मत किया करिए आप लोग, और इमोशनल ब्लैकमेल तो बिल्कुल मत किया करिए, क्योंकि हम हैं भैया बहुत सेंसिटिव अंदर से है, हमारे आंसू आंसू बहुत जल्दी निकल जाते, क्यों नाराज नहीं करना चाहिए तुम। अच्छा वैसे देखिए नीलू शर्मा बहनी हमको मेल कर रही हैं, और हमेशा की तरह इनके मेल में अकेले इनका नाम नहीं रहता है, बहुत सारे और लोग भी रहते हैं साथ में, जैसे कि मेरे साथ साथ सभी दोस्त आपको सुन रहे हैं, सारा पीहू मनु पूजा अनीता रोशनी बबिता ऋचा दी समरीन दी। अच्छा ये समरीन और ऋचा को नमस्कार बोलने के लिए कह रही है, तो नमस्कार नीलू की ओर सबको, और ये रूपपुर चंदेला से हमें फोन कर मैसेज कर रही हैं, और इन्होंने भी माँ सावित्री का आशीर्वाद सब पर बना रहे, शुभकामनाएं दी हैं, थैंक यू सो मच, रात 12 बजे तक बने रहिएगा, इन्होंने लिख दिया है कि वादा है निभाएंगी, और वादा तोड़ने वालों में से है नहीं हमारे जो प्यारे लिसनर्स हैं ना। तो और एक मेल और, रेनबो कैफे सुपर प्रोग्राम, और अंजू बहन जी हर प्रोग्राम में आप उन गानों को ढूंढ कर लाती हैं जो बहुत कम सुनने को मिलते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। और फिलहाल अब हम चलते हैं गाना अगला, ले लेती हूँ पानी वानी पी के आते हैं, आप राजस्थान घूम कर आइए, ठीक है, एक बढ़िया सा मारवाड़ी सॉन्ग आपके लिए, मतलब मूड चेंज हो गया, स्टेप चेंज हो जाते हैं, ये वाला डांस ऐसे ऐसे किया जाता है ना, नाच के बताऊं रेडियो पे दिखाई नहीं पड़ेगा।

0: मजेदार गाना है और डांस तो भैया बहुत खूबसूरत होता है राजस्थानी गानों पर, और इतना प्यारा डांस लगता है कि क्या बताएं। रेडियो है, नचा के तो नहीं दिखा सकते आप लोगों को और ना आप लोगों को देख सकते हैं, बस उम्मीद ये कर रहे हैं कि आप लोगों को मजा आ रहा होगा, इस प्रोग्राम को आप इंजॉय कर रहे होंगे। मैं हूं आरजे अंजू शुक्ला, आपने ट्यून किया 100.7 एफएम रेनबो और वक्त हो गया है 9:40। सोनू परवाना जी लिखते हैं कि आप सुपरफास्ट मेल की तरह सभी मेल पढ़ लेते हैं, आपसे मेल छूट जाए ये तो हो नहीं सकता। अरे दैया ये चैलेंज ना दे भैया, बहुत ही ज्यादा मेल आवत है और जो ना है कौनो ना कौनो तो छूटे जाते, लेकिन कोशिश यही रहा था कि सब मेल पढ़ ली। और वैसे सारे मेल्स पढ़ने के लिए हमें थोड़ा स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। अजय सिंह कुमार जी ने हमें मेल किया है, गुड इवनिंग भेजा है, कहते हैं आज आप रात के प्रोग्राम पेश कर रही हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, गाने बहुत अच्छे लग रहे हैं, मैम आज आपकी कमी इस प्रोग्राम सुगंध माटी में महसूस हो रही थी, खैर कोई शिकायत नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। भाई देखिए शिकायत करिएगा भी नहीं, हमारे सारे आरजेज बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं और आज तो हमने भी सुना का भैया विनय यादव भैया और ओम भैया ने का रंग जमाया था ना सवेरे प्रोग्राम सुगंध माटी में, बड़ा मजा आया था। और थैंक यू सो मच अजय कुमार सिंह जी, आप हमें सीतापुर में सुन रहे हैं, थैंक यू सो मच, 12 बजे तक हमारे साथ रहेंगे, मेल वेल करते रहिएगा ताकि हमें पता रहे कि हमारे साथ है कोई, है ना, हम अकेले नहीं यहाँ पर। रेणु देवी जी वेरी गुड इवनिंग, और आपने भी हमें मेल किया, प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, पूरे प्रोग्राम के पूरे परिवार के साथ सुन रहे हैं, राम सेवक रेणु आयुषी उषा नीलू, और कहाँ से सुन रहे हैं ये आपने नहीं लिखा है, थैंक यू सो मच। आगे अच्छा ये औरास उन्नाव से सुन रही है, थैंक यू। और हिस्टोरिया यानी ओम प्रकाश उजाला जी हमें सुन रहे हैं, बस इन्होंने लिखा जानते हैं क्या लिखा, आए हाय आए हाय। चलिए नेहा वर्मा गुड इवनिंग कहती है, मुझे आकाशवाणी लखनऊ से प्रसारित सभी कार्यक्रम सुनने में अच्छे लगते हैं, प्रोग्राम बेहतरीन लग रहा है, गानों का सिलेक्शन मस्त है। नेहा वर्मा, अर्पिता, हर्षिता, अंजलि सुधाकर, कोमल सियाराम, गौरपुर और बमना खेड़ा जिला हरदोई से आपका मेल आया है, थैंक यू सो मच, बस ऐसे ही बने रहिएगा हमारे साथ। ब्रजेश सिंह दीपू भैया,
1: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित तिवारी, यू आर लिसनिंग कानपुर शहर की म्यूजिकल हार्टबीट 102.2 FM रेनबो कानपुर।

हमें वो सब तालिब अंसारी जी बटोरने जाते हैं, लगता है चादर पे सब सजा के हमें फोटो भेजे, अरे मजाक कर रहे हैं भैया। चलिए राजा कटरा बाराबंकी से आप इंजॉय कर रहे हैं, बस ऐसे हमारे साथ बने रहिएगा। और इसके बाद हमारे पास मेल है सोनू भार्गव जी का, गुड इवनिंग भेजा इन्होंने, चक उमरी झरेखापुर जिला सीतापुर से, और बुंदेली गाने की फरमाइश की है। तो भाई आज के लिए माफी चाहते हैं, आज हमारी लिस्ट में बुंदेली गाने नहीं है, लेकिन अगली बार जरूर लेकर आएंगे, वादा है हमारा आपसे। और आकाश लोधी जी मलिहाबादी जी लिखते हैं कि सर्वे भवन तो सुखिनः, मां सभी सुखी हुए, सभी रोग मुक्त रहे, सभी का जीवन मंगलमय बने, और यही तो दुआ मांगते हैं ना। और आज वट सावित्री महापर्व है आज, और आज सब परिवारों के लिए, परिवार की सलामती के लिए जो व्रती महिलाएं उन्होंने पूजा अर्चना की है, तो बस हम सबकी भी यही दुआ है कि सब सुखी रहें, सब सलामत रहें। विनोद कुमार जी कहां से हैं आप? अर्थापुर पोस्ट रामगढ़ चीनी मिल जिला सीतापुर से, और रेनबो कैफे प्रोग्राम झक्कास लग रहा है, शुभ रात्रि, गुड इवनिंग। अरे अभिने, अरे भैया रात 12 बजे तक बने रहिएगा मेरे साथ, ठीक है? हम भी मेहनत करते हैं, तो आप लोग की भी नींद थोड़ी सी खराब करना जरूरी है ना। कोई बात नहीं, देर तक सो लीजिएगा, कल संडे है। विजय लक्ष्मी कुशवाहा जी संडीला हरदोई से, सांडी जनपद हरदोई से, मैम आज FM पता नहीं क्यों रेडियो पर सुनाई नहीं दे रहा है। कोई बात नहीं, मोबाइल पर 100.7 गूगल पर टाइप कीजिए और झट से हमारे साथ जुड़ जाइए, बिल्कुल क्लियर आवाज आपको सुनाई पड़ेगी, ठीक है? चलिए बढ़िया वाला गाना आप तक पहुंचा रहे हैं, गाना सुनिएगा, बताइएगा कैसा लगा।

हाँ तो भैया नाजुक कमर है, अगर तो थोड़ा संभाल के नाचिए कूदिएगा, ऐसा ना हो कहीं लचक जाए तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे ना, फिर दवाई लगाइएगा, फिर दर्द निवारक दवा के भरोसे चलना पड़ेगा। वैसे रोशनी रावत जी क्या लिख रही हैं, इन्होंने नमस्ते भेजा है, कल से इंतजार कर रहे थे आपका अपशार प्रोग्राम, अच्छा लगा, आज की सारी जो प्लेलिस्ट है वो बहुत अच्छी है, गर्दा बना रहे दल गर्दा वर्दा नहीं तहलका मचा दिया, ये अच्छा है। और आगे ये लिखती कि 12:02 तक सुनेंगे, वाह क्या बात है, ये हुई ना बात, हम जय हिंद बोलेंगे तब आप भी सोइएगा, ठीक है अपना रेडियो बंद करके। और रोशनी हमें चंडीगढ़ में सुन रही है, ग्राम पोस्ट बमना तहसील सफीपुर जिला उन्नाव की रहने वाली हैं। सदा शिव जी हमें सुन रहे हैं, ग्राम सलीमपुर पोस्ट मुंडेरी जिला सीतापुर से मेल कर रहे हैं, प्रोग्राम की तारीफ की है इन्होंने, थैंक यू सो मच, रोज सुनते हैं लेकिन मेल नहीं कर पाते हैं, कोई बात नहीं आज आपका मेल आया हमें अच्छा लगा, और एफएम पर जब गाना बजता है तो पैर अपने आप थिरक जाते हैं, क्या बात है, अच्छी अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है ना। अर्पित शर्मा जी हमें लिख रहे हैं, हेलो गुड इवनिंग, आफ्टर अ वेरी हॉट डे योर कूलिंग प्रोग्राम इज वेरी एंटरटेनिंग एंड रोमांटिक, इट रिफ्रेश अस फुल्ली। वैसे ये मेल हम पढ़ चुके हैं, राजस्थान से आप हमें मेल कर रहे हैं, क्या बात है, बस ऐसे ही सुनते रहिए। तालिब अंसारी जी आपका मेल शामिल हो चुका है, बहुत बहुत शुक्रिया। रॉयल अमित यादव जी ने भी हमें लिखा है, रात सुबह का इंतजार नहीं करती, खुशबू मौसम का इंतजार नहीं करती, जो भी मिले उसका आनंद लिया करो क्योंकि जिंदगी वक्त का इंतजार नहीं करती, और कुछ आरजे आरजे नहीं दिल का सुकून होते हैं, जैसे कि अंजू मैम, थैंक यू सो मच, बहुत तारीफें आपने लिखकर भेज दी हैं, और प्रोग्राम में मेरी नाम वाली फीलिंग ए ए मतलब आ रही है, एकदम रॉयल अंदाज में प्रोग्राम है, क्या बात है, थैंक यू सो मच। कृष्णकांत जी कैसे हैं, इन्होंने लिखा है, जब भी आप इस प्रोग्राम को होस्ट करती हैं तो गाने जबरदस्त बजते हैं, साथ साथ चटपटी गपशप का जो तड़का आप बीच बीच में पेश करती हैं वो लाजवाब लगता है, ऐसे ही स्वस्थ बेहतरीन मनोरंजन करती रही, हम सभी श्रोताओं का भरपूर प्यार और स्नेह आपको सदैव मिलता रहे, बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से आभार आपका कृष्णकांत जी, कैसरगंज बहराइच से आपने हमें मेल किया है। और नेक्स्ट मेल है हमारे पास इंद्रपाल मिश्रा जी का, और इन्होंने कहां से मेल किया, अमृता महोली सीतापुर से, इंद्रपाल मिश्रा, नरबीर, आशा, अवनीश, विनीश, कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है और सारे ग्रामीण श्रोता मिलकर सुन रहे हैं, इन्होंने सबकी तरफ से धन्यवाद बोला है, इन्होंने दोबारा मेल करके भी धन्यवाद बोला। कोमल तिवारी जी भी कैसरगंज बहराइच से हैं, और वेरी नाइस सॉन्ग सिलेक्शन, आप बहुत दिनों बाद शाम को प्रोग्राम में आई हैं कोमल तिवारी कैसरगंज बहराइच जी, हाँ शनिवार सुबह मिलते हैं ना, और वैसे अब अगले शनिवार को सुबह मिलेंगे, और शाम के प्रोग्राम में आने को हम भी दिल से बेताब थे, और इसीलिए देखिए आ गए आपके पास है ना, तो बहुत अच्छा लग रहा है हमें भी, बहुत दिनों बाद इस प्रोग्राम में और रात के प्रोग्राम में हम आए। विनीत कुमार जी आपका मेल हम पढ़ चुके हैं, थैंक यू सो मच, पहले भी आपका मेल शामिल कर चुके हैं, ग्राम अर्थापुर पोस्ट रामगढ़ से आपने हमें मेल किया है। पिंकी बारी जी का भी मेल आ गया है, चेहरे पर सादगी बातों में प्यार है, अंजू जी का अंदाज सबसे खास और शानदार है, क्या बात है, जो एक बार सुन ले उनकी मीठी आवाज उसके दिल में बस जाता है, उनका एहसास है शब्दों में मिठास, चेहरे पर नूर है, आरजे अंजू शुक्ला जी का अंदाज बड़ा मशहूर है, जहां भी जाए खुशियां बिखेर देती हैं, उनकी बातें दिल को सुकून देती हैं, और अंजू शुक्ला जी जब गाने सुनाती हैं रेडियो की महफिल में जान ले आती हैं, उनकी आवाज में ऐसा प्यारा सा नूर है, हर गीत सुनना जैसे दिल का सुरूर है, वी लव यू। ओहो सच में मेरा दिल मतलब बाग बाग हो चुका है, अमीनाबाद से हमें पिंकी इतना सारा प्यार भेजने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बस ऐसे ही हमारे साथ बने रही और अपना प्यार हमें देती रही। आकाश लोधी मलिहाबादी जी ओके, आपने भी गाने की फरमाइश लिखी, लेकिन ये फरमाइशी प्रोग्राम नहीं है, बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे हमारे साथ बने रहिए। वकील अहमद जी ने भी प्रोग्राम की तारीफ लिखी है, और आपके साथ आपने मसूरी अहमद मसूरी जी हैं, वकील अहमद मसूरी, कटका हतूरी जिला सीतापुर, साहिबा अंसारी, शाजिया अंसारी, क्षमा परवीन, रिंकी पिंकी, सबके नाम लिखे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ। कृषि आकाश का भी मेल आया है, गुड इवनिंग, आपको भी प्रोग्राम आज अच्छा लग रहा है, मलिहाबाद से आप हमें सुन रहे हैं। राजेश कुमार जी कहते हैं, जब हम उनके घर गए कहने दिल से दिल लगा लो, उनकी माँ ने खोला दरवाजा, हम घबरा कर बोले, आंटी बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलवा लो। जी राजेश कुमार विद्यार्थी, शोध छात्र एग्रीकल्चर, सुपर फास्ट एक्सप्रेस दीदी को प्रणाम, आपको भी बहुत बहुत आशीर्वाद प्यार। सुल्तान रजा जी वालेकुम सलाम, आपको भी सुल्तान, इकबाल रजा, अफजाल भाई, मोनिश रजा, सादिक रजा, जीशान भाई, मम्मी पापा, छोटा सा अमान, अये छोटे से अमान को प्यार, क्या कहें, कुछ नहीं जाता, दर्द मीठा है, सहा नहीं जाता, कदर मोहब्बत हो गई हमको, एफएम रेनबो से इसको सुने बिना रहा नहीं जाता है, खाना खा रहे थे इसलिए लेट हो गए मेल करने में, कोई बात नहीं अभी वक्त था, आपका मेल हमें मिल गया है, फिलहाल एक गाना इंतजार कर रहा है, बड़ा ही धमाकेदार गाना है, सुना दूं, चलिए सुनाती हूं, पहले थोड़ा सा म्यूजिक है ना, चेक कर ले वही वाला गाना है कि नहीं है। आ गया भैया, आ गया गाना, सुनिए बताइएगा गाना कैसा लगा, है ना मजेदार गाना है, वैसे एंजॉय कीजिएगा।

फिलहाल हमारा दिल तो आप सब ले जा रहे हैं, इतने प्यारे प्यारे मेल्स इतनी तारीफों के साथ आप हमें भेजते हैं, थैंक यू सो मच। आपका दिल हम तोड़ना नहीं चाहते, लेकिन बहुत सारे लोगों के मेल्स हम पढ़ नहीं पाएंगे, शॉर्ट में जल्दी से पढ़ने की कोशिश करते हैं। अमर सिंह यादव जी ने हमें मेल किया है, गुड इवनिंग भेजा, मलिहाबाद से है, प्रोग्राम की तारीफ लिखी है, थैंक यू सो मच। सावित्री देवी जी ने हमें मेल किया है, भरतपुर बरगदी सीतापुर माफ कीजिएगा अर्जुनपुर लखनऊ से हमें सुन रहे हैं, प्रोग्राम की तारीफ कर रही है। इन्होंने भी लिखा है, पहली बार आपको सुन रहे हैं इस प्रोग्राम में, अरे बहुत बार आ चुके हैं इस प्रोग्राम में, और गुड इवनिंग आपको भी। अनुराग गुप्ता जी ने अभी अभी एक मेल भेज दिया है, काजल प्रमोद लक्ष्मी गुप्ता अंश गुप्ता यश गुप्ता अनुराग गुप्ता, और इन्होंने लिखा है वैसे छोटे क्रिएटर्स को भी सपोर्ट मिलना चाहिए इंस्टाग्राम पर। अच्छा, वैसे नाम इन्होंने लिखे हैं कुछ, थैंक यू सो मच। और लिखते हैं कि आज के गाने सच में दिल को छू गए, आपकी आवाज अच्छी लग रही है, थैंक यू, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। और इसके अलावा अनुज जी का भी मेल है, गुड इवनिंग भेजा, इन्होंने श्रीनगर लखीमपुर खीरी से प्रोग्राम की तारीफ की है, थैंक यू। देखिए फरमाइशी गाने तो बजाना बड़ा मुश्किल होता है, इस प्रोग्राम में तो बिल्कुल कतई नहीं शामिल हो सकते हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि मेरी प्लेलिस्ट पहले से रेडी रहती है। और रणवीर गुप्ता जी का भी मेल आया है, बबीता रानी सत्यम सुंदरम सबका, सारे लोग हमें सुन रहे हैं कहां से, इन रेडियो सखी अंजू शुक्ला जी को नमस्कार भेजा है, इन्होंने कहां से आप सुन रहे हैं, अच्छा ओखला संगम विहार दिल्ली से, बहुत बहुत शुभ संध्या आपको भी, बस ऐसे हमारे साथ बने रहिएगा। इसके अलावा बबीता राव जी वेरी गुड इवनिंग, 8 बजे से सुन रहे प्रोग्राम, सारे अच्छे लग रहे हैं, प्रोग्राम कोई भी हो जलवा तो हमारी अंजू मैम का ही रहता है, 100.7 के सभी आरजेस टैलेंटेड नहीं बल्कि मल्टी टैलेंटेड है, आपका प्रोग्राम होम थिएटर पर रेडियो की फुल आवाज में सुन रहे हैं, प्रोग्राम चारों तरफ, ओके थैंक यू, और अवधि अच्छी लगती है, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सारी तारीफों के लिए। और साथ ही साथ नीलू ने कहा कि पूजा जी ने बताया है कि उनके मोहल्ले में होम थिएटर पर हमारा प्रोग्राम धूम मचा रहा है, थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू कहिएगा हमारी तरफ से इनको भी, यानी पूजा जी को भी थैंक यू। और साथ ही साथ इन्होंने भारत सिंह चंदेल और उनकी पूरी फैमिली, निष्ठा रौनक कार्तिक खुशबू सिंह चंदेल और टीएस चंदेल जी शिवराजपुर लालपुर डेवन तालाब से हमें सुन रहे हैं, आप सबको भी नमस्कार। प्रिंसी सिंह विजयलक्ष्मी कुशवाहा जी आपका मेल हम पढ़ चुके हैं, ओके और मनोज कुमार राज जी ने भी फिर से मेल कर दिया है, रैम्बो कैफे हो गया, अरे भैया रेनबो कैफे, ये रैम्बो वैम्बो ना बनाओ इसको। राजेश कुमार ने कहा है कि आपका मेल मैंने पढ़ दिया राजेश जी, ओके और बड़ा प्यारा मेल आपने लिखा था। गुलफशा सिद्दीकी थैंक यू आपको भी, आप संडीला से भी सुन रही हैं। सुल्तान रजा जी आपका भी मेल हम शामिल कर चुके हैं, अरे आपने सुना नहीं क्या, देखिए आपका मेल हम ऑलरेडी शामिल कर चुके थे, अगर किसी का मेल छूट गया हो तो भाई माफी चाहते हैं। अनुपम कुमार जी का भी मेल आया है, कहते हैं ओके दिस इज सुरभि मैडम, आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th, मैडम योर प्रोग्राम इज सो गुड, आई कैन नॉट एक्सप्रेस इन वर्ड्स मैडम, एंड यू टू गुड, थैंक यू सो मच डियर। डिस्ट्रिक्ट सीतापुर से आप हमें सुन रही हैं सुरभि, बहुत बहुत शुक्रिया। और एक लास्ट ट्रैक के साथ आपको छोड़े जा रही हूं, और भैया ये वाला गाना भी आपको पसंद आएगा आई एम श्योर, उसके बाद वापस आइए तो रजनीगंधा में पुराने गीतों की खूबसूरत महफिल आपका इंतजार कर रही है। अंजू के ऐसे प्रोग्राम रेनबो कहना आज वसंता इतना ही, प्रोग्राम रजनीगंधा में रात 12 बजे तक आपके साथ रहूंगी, तो सुनते जरूर रहिएगा और अपनी हाजिरी लगाते रहिएगा ईमेल के माध्यम से।

0: नमस्कार, रात्रि के 10 बजे हैं, आप सुनिए मुख्य समाचार। नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने वाराणसी में नगर विकास विभाग एवं ऊर्जा विभाग की अलग अलग समीक्षा बैठक कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मंत्री श्री शर्मा ने कहा कि नगर से संबंधित सभी विकास कार्यों जैसे रोड, नाली, दीवारों की पेंटिंग, पार्कों का रखरखाव, पार्कों का सौंदर्यीकरण, इंटरलॉकिंग तथा रोड के किनारे सुंदरीकरण के कार्यों को तत्काल प्रभाव से पूरा किया जाए। 15 मई की रात्रि में नगर विकास मंत्री ने नगर आयुक्त के साथ शहर का निरीक्षण भी किया। इस दौरान उन्होंने शहर की सड़कों, नालियों, सौंदर्यीकरण कार्यों तथा दीवारों की पेंटिंग का जायजा लिया। कुछ स्थानों पर निर्माण कार्य चलते हुए पाए गए, जहां मंत्री श्री शर्मा ने स्थानीय लोगों से बातचीत कर कार्यों की गुणवत्ता एवं प्रगति की जानकारी ली। प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने आज जुपिटर ऑडिटोरियम इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में आयोजित कृष्ण राधा से रणभूमि तक नाट्य प्रस्तुति का अवलोकन किया। उन्होंने नाट्य प्रस्तुति की सराहना करते हुए निर्माता श्रीमती नीलम मुंतशिर को बधाई दी तथा कहा कि महिलाएं आज प्रत्येक क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रही हैं। जब समाज में महिलाओं का सम्मान होता है तभी राष्ट्र प्रगति कर सकता है। राज्यपाल ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण का चरित्र समाज को जीवन मूल्यों, कर्तव्य निष्ठा एवं धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। उन्होंने नाटक में प्रस्तुत कर्ण प्रसंग का उल्लेख करते हुए कहा कि यह प्रसंग महाभारत के अभिमन्यु प्रसंग की भी याद दिलाता है। कर्ण और अर्जुन दोनों भाई थे, लेकिन उनके जीवन और कर्मों में कितना बड़ा अंतर था, यह हमें जीवन की दिशा चुनने का संदेश देता है। महोबा में हमीरपुर तिंदवारी सपा सांसद अर्जेंद्र सिंह लोधी ने के प्रधानमंत्री मोदी पर कथित आपत्तिजनक बयान मामले में नया मोड़ आ गया है। वीडियो वायरल होने के बाद पहली बार मीडिया के सामने आए सांसद ने खुद पर लगे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। सांसद अर्जेंद्र सिंह ने दावा किया है कि वायरल वीडियो पूरी तरह से फर्जी है और AI तकनीक के जरिए उनके शब्दों से छेड़छाड़ कर इसे बदनाम करने की साजिश रची गई है। जनपद जौनपुर में राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया गया। इस वर्ष राष्ट्रीय डेंगू दिवस की थीम है डेंगू नियंत्रण के लिए जन भागीदारी, जांच करें, सफाई करें और ढकें। डेंगू दिवस मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य है कि जनमानस को डेंगू के कारण, लक्षण, बचाव आदि के प्रति जागरूक किया जाए। इसके वाहक मच्छरों के रोकथाम, प्रभावित लोगों के जांच उपचार में सहयोग की प्रति जन भागीदारी बढ़ाई जाए। इसके जांच उपचार के प्रति लोगों को संवेदीकृत किया जाए ताकि समय से लोग जांच उपचार प्राप्त कर सकें। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन अब समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन रात्रि 11 बजे प्रसारित किया जाएगा। आप सुनते रहिए FM रेनबो, जिस पर अगला कार्यक्रम है रजनीगंधा।
1: नमस्ते कानपुर, मैं हूं मनोज मुंतशिर शुक्ला और आप सुन रहे हैं 102.2 FM रेनबो कानपुर, कानपुर शहर की म्यूजिकल हार्टबीट।
2: पहला नशा, पहला खुमार।
3: हाय, दिस इज उदित नारायण, यू आर लिसनिंग 102.2 FM रेनबो, शहर की म्यूजिकल हार्टबीट। दिल से जुड़े रहें और सुनते रहें शहर की म्यूजिकल हार्टबीट को।

नमस्कार, मैं हूं सिंगर अभय जोधपुरकर एंड यू आर लिसनिंग टू 102.2 FM रेनबो कानपुर। सुनते रहिए और म्यूजिकली बने रहिए FM रेनबो कानपुर के साथ। थैंक यू।

सकता हुआ कार्यक्रम रजनीगंधा। वक्त हुआ है 10:05। रजनीगंधा, जहां पुराने गीत सिर्फ सुने नहीं जाते, महसूस किए जाते हैं। आज की रात थोड़ी खामोश है, थोड़ी गहरी है, क्योंकि आज है अमावस की रात। लेकिन दिलों में है यादों की रोशनी जो बाकी है, और इन यादों, मोहब्बत, तन्हाई, मुस्कुराहट और जिंदगी के खूबसूरत एहसासों के साथ रात 12 बजे तक हम सुनेंगे पुराने दौर के वो नगमे जो वक्त के साथ और भी ज्यादा खूबसूरत हो गए हैं। कुछ रातें गुजरती नहीं, दिल में उतर जाती हैं, और आज की रात वैसी ही मालूम होगी। तो आइए शुरू करते हैं आज रजनीगंधा की ये खूबसूरत महफिल।

पुराने फिल्मी गीतों की सबसे खूबसूरत बात क्या होती है जानते हैं? ये सिर्फ सुने नहीं जाते, जिए जाते हैं। हर धुन के पीछे कोई चेहरा, कोई मौसम, कोई अधूरी बात छिपी होती है। कुछ गाने वक्त नहीं बताते, बस वो पुराना वाला दौर वापस ले आते हैं। शैलेंद्र साहब, साहिर लुधियानवी, शकील मदायूनी, आनंद बख्शी जैसे तमाम दिग्गज गीतकार सिर्फ गीत नहीं लिखते थे, वो जिंदगी लिखा करते थे। मोहब्बत कैसी होती है, इंतजार क्या होता है, जुदाई चुपचाप कितना दर्द देती है, ये सब उनके अल्फाज बड़ी आसानी से कह जाते थे। और जब उन शब्दों को नौशाद साहब, मदन मोहन, एसडी बर्मन, रवि साहब जैसे तमाम होनहार संगीतकारों की धुनें मिलती थी ना, तो वो गीत सीधा दिल में उतर जाता था। आवाज की इस रात में जब बाहर सन्नाटा होता है तो दिल के अंदर बहुत शोर होता है। अक्सर कभी किसी की हंसी याद आती है, कभी कोई आखिरी मुलाकात, और कभी वो बातें जो कहनी तो बहुत थी मगर कह नहीं पाए। लफ्ज थक गए थे शायद, तभी तो खामोशियों ने चुपचाप रिश्ता संभाल लिया था।

शकील बदायूनी साहब के लिखे हुए अल्फाज, माशाद साहब का रूहानी संगीत और मोहम्मद रफी साहब की बेहद खूबसूरत आवाज। इस गीत को सुनते हुए ऐसा लगता है जैसे मोहब्बत सजदा बन गई हो। कितनी तहजीब थी ना उस दौर की मोहब्बत में, आज की तरह जल्दबाजी नहीं थी। लोग इंतजार में भी प्यार ढूंढ लेते थे और यही वजह है कि उस दौर के गीत आज भी जब सुनते हैं ना तो दिल को सुकून देते हैं। क्या गजब की नफासत थी उस दौर में, मोहब्बत को भी अदब से पेश किया जाता था। आज भी जब ये गीत सुनते हैं तो दिल में एक अजीब सी नरमी उतर आती है। इश्क अगर सच्चा हो तो आवाज भी मानो दुआ सी लगती है। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रजनीगंधा 100.7 FM रेनबो पर, जिसे आप कहते हैं धड़कन लखनऊ की। वक्त हुआ है 10:21 और मैं हूं आपके साथ आपकी हमनवा अंजू शुक्ला।

हर आमस के बाद चांद फिर लौटता है और शायद जिंदगी भी ऐसी है। कुछ रातें बहुत अंधेरी होती हैं, मगर वही रातें हमें सिखाती हैं कि छोटी सी रोशनी की कीमत क्या होती है। और उस रोशनी के इंतजार में रात का ये वक्त दिल को बड़ा ईमानदार बना देता है। दिन में जिन एहसासों को हम छुपा लेते हैं, रात उन्हें धीरे धीरे आवाज देने लगती है। पुराने गीत भी शायद इसीलिए रात में ज्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि आए दिल की बात होती है। कुछ यादें सोती नहीं, बस सारी रात चुपचाप जागती रहती हैं। दिल की दहलीज पर खड़ी आहिस्ता आहिस्ता दस्तक देती रहती हैं, मानो बहुत कुछ कहना चाहती हैं। इस एक रात में अपने दिल का हर हाल बयां कर देना चाहती हैं।

किशोर दा को जब सुनते हैं ना तो लगता है जैसे कोई अपना मुस्कुराते हुए दिल की बात कह रहा हो, है ना। वक्त हो रहा है 10:31। मैं हूँ आपकी अपनी आरजे अंजू शुक्ला और आप सुन रहे हैं रात की नरम खुशबुओं से सजा कार्यक्रम रजनीगंधा, जहाँ पुराने गीत सिर्फ सुनाए नहीं जाते, महसूस किए जाते हैं, जिए जाते हैं। पुराने दौर का संगीत इसलिए आज भी दिलों पर राज करता है क्योंकि इसमें शोर नहीं था, सुकून था, अल्फाज में तहजीब थी, धुनों में मिठास थी और सबसे बड़ी बात उसमें इंसानी जज्बातों की सच्चाई थी। वैसे आप सब भी अपने रेनबो के साथ पूरी सच्चाई पूरी शिद्दत के साथ जुड़े होते हैं। इस वक्त ईमेल पर मुझे पता चल रहा है कि हमें कौन कौन सुन रहा है। अतुल कुमार यादव जी हमें सुन रहे हैं, कुलदीप मौर्य मितौली लखीमपुर खीरी से, अनुराग गुप्ता सीतापुर से, नीरज कुमार लखीमपुर खीरी से, एम नवाब भी हमें सुन रही हैं, शैलेश कुमार, नीलू शर्मा, विकास, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। और अब वो गीत जो किशोर दा का एक और अंदाज आप तक पहुंचाएगा। बहुत दिनों बाद इस गाने को सुनवा रही हूँ और सुन रही हूँ, साथ दीजिए।

पुराने गीतों की सबसे खूबसूरत बात यह थी कि गीतकार सिर्फ शब्द नहीं लिखते थे, वो एहसास लिखा करते थे और यही पुराने संगीत की खासियत थी। एक हल्की सी शिकायत भी इतनी नफासत के साथ कह दी जाती थी, गा दी जाती थी कि सुनने वाला भी मुस्कुरा दे और थोड़ा थोड़ा भावुक भी हो जाए। इन गीतों में चंचलता है, मासूमियत है, इतना अपनापन है जैसे कोई दोस्त हमारे ही दिल की बात कह रहा हो।

पुराने गीतों में जो नफासत थी वो सीधे रूह तक उतर जाती है ना, जैसे कोई पुराना खत जिसे बार बार पढ़ने का मन करता है। और शायद इसीलिए रात के इस पहर में ये पुराने गाने ज्यादा अपने लगते हैं। शमा जलती रही रात भर रोशनी के लिए, और परवाना मिटता रहा सिर्फ मोहब्बत के लिए। इश्क की यही रवायत सदियों से चली आई है। कोई जलकर चमकता है तो कोई जलकर फना हो जाता है।

रात में जब शमा जलती है, परवाना उस पर कुर्बान होता है, और अमावस की रात हमें सिखाती है कि हर रोशनी हमेशा आसमान में नहीं होती, कुछ उजाले दिलों के अंदर पलते हैं, किसी की दुआ में, किसी की याद में, तो किसी के इंतजार में, और ये सब भी तो रोशनी ही है। दिल अगर उम्मीद से भरा हो तो अंधेरा भी रास्ता बन जाता है। और शमा की महफिल में तो हर कोई उजाला चाहता है, मगर सिर्फ एक परवाना ही है जो जलकर खुश होता है, और यहां पर तो खुशी अलग ही तरह की है भाई।

शैलेंद्र साहब हो, साहिर लुधियानवी साहब, मजरू सुल्तानपुरी, शकील मनावनी या आनंद बख्शी, इन तमाम लोगों ने, इन तमाम दिग्गज गीतकारों ने मोहब्बत को सिर्फ इश्क तक सीमित नहीं रखा। जिंदगी, तन्हाई, इंतजार, दर्द, उम्मीद, विरह, हर रंग को गीतों में पिरोया है। और फिर उन अल्फाजों को जब नौशाद साहब, एसडी बर्मन, मदन मोहन रवि, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और ऐसे तमाम होनहार संगीतकारों की धुनें मिलती थी ना, तो गीत सिर्फ गीत नहीं रहता था, एक एहसास बन जाता था। रफी साहब की आवाज में दर्द भी दुआ जैसा लगता है, तो किशोर कुमार साहब की आवाज में शरारत भी है और तन्हाई भी है। मुकेश साहब की आवाज के तो क्या ही कहने। और आशा जी, लता जी जब गाती थी तो ऐसा लगता था कोई दुआ गा रही हूं। कभी कभी सोचिए कितनी सादगी से ये लोग जिंदगी का फलसफा कह जाते थे, बिना भारी शब्दों के सीधे दिल में उतर जाने वाली बात। और इन्हीं बातों से सजे हैं अगले घंटे प्रस्तुत होने वाले कुछ चुनिंदा गीत। रजनीगंधा में इस घंटे का सफर यहीं तक। मिलते हैं समाचार के उस पार रजनीगंधा का अगला घंटा लेकर। रात 12 बजे तक ये सफर यूं ही जारी रहेगा। सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।